आखिरत में उसकी वापसी हो रही है, जिस तरह पहली जिंदगी में उसी से उसकी जिंदगी का आगाज हुआ था। इस तेज और सरीय झलक से कादर ताकत का हल्का सा जलवा सामने आता है जो हमारे एहसासात पर मुअसर और गहरे असरात छोड़ जाता है। सामने कराम, इस आया मुबारक की हिकमत और बसीरत के हवाले से बात करें तो इस आया में जिंदगी और मौत के हवाले से बात आई है और ये कैसी अटल हकीकतें हैं ये जिंदगी और मौत जिनसे इनकार मुमकिन नहीं है। इसका मुशाहदा कट्टर से कट्टर काफिर भी अपनी आंखों से करता है। कितने करीब रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब, अमीरों और गरीबों को हमने मिट्टी तले दफन कर दिया और आए दिन करते रहते हैं और एक दिन खुद भी इन्हीं मुर्दों में शामिल हो जाएंगे। दुनिया में बड़े बड़े अतबा और हुकमा गुजर चुके हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अमराज के लिए बड़ी बड़ी उमदा अदवियात तजवीज़ की मगर मौत का तरियाक तलाश न कर सके। हम कुछ नहीं थे तो खालिक़े कायनात ने हमें ज़िंदगी अता की और फिर दुनिया से रुखसत होंगे। तो जिसने पहली बार ज़िंदगी अता की तो क्या वो दूसरी बार अता करने पर कादिर नहीं है? यकीनन है। फिर वो हिसाब किताब के लिए हमें मैदान हशर में इकट्ठा करेंगे। सामने कराम, ये आयत मुबारक हमें चौकस और मुतनब्बी करती है कि हम उस दिन के आने से पहले अपनी दुनियावी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अमाल कर लें जो रोज़ क़्यामत की रुसवाई और ज़िल्लत से हमें बचा लें। आगे अल्लाह सुभान व तआला उम्मत से खिताब आम करते हैं, उनसे इरशाद हो रहा है कि तुम तो खुद ही सारी कायनात रज़ी के मकसूद व मुता हो, फिर ये कैसी हमाकत होगी कि तुम किसी और मखलूक को मकसूद व मुता बना लो। यह आयत हर किस्म के शरीर और हर किस्म के मखलूक परस्ती की जड़ काट देने के लिए काफ़ी है। इस फर्श ज़मीन पर जो कुछ भी है सब इंसान के लिए है, नहीं कि इंसान किसी और मखलूक के लिए हो। और मुशरिक इंसान इस फितरी और कुदरती तरतीब को उलट देता है। हदीस नबवी का यह हिस्सा भी सुन लीजिए, अक्सर बेशतर लोगों ने ये टुकड़ा हो सकता है कि सुना है। इन दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिलआखिरा, दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। क्योंकि खलीफतुल्लाह के बेशक यही शान होनी चाहिए कि सब कुछ उसके लिए हो और वो खुद रब कायनात के लिए हो। वो जिस चीज़ को जिस तरह भी चाहे अपने तसरफ में लाए और उसका जवाब दे सिर्फ अपने मालिक व खालिक के सामने हो। मर्तबा इंसानी का ये शरफ एहतराम इस्लाम ही का कायम किया हुआ है। इरशाद खुदावंदी है, والذي خلق لكم ما في الارض جميعا, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए वो सब चीज़ें पैदा की जो ज़मीन में है। समझने के नाम यहाँ खलक लकुम, लकुम यानी तुम्हारे लिए, तो इस लफ्ज़ का यहाँ बहुत गहरा मफहूम और इसमें अमीक मानवियत है। ये लफ्ज़ इस मफहूम के लिए कती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक अजीम काम के लिए पैदा किया है। इसलिए पैदा किया है कि वो ज़मीन में खलीफा बने, ज़मीन में जो कुछ है उसका मालिक हो, ज़मीन की तमाम अशिया में मौसर फ़ाइल हो। वो इस वसी अरीज़ मुल्क में सबसे आला वजूद है, इस वसी मेरा से अर्जी का आला सरदार है। ज़मीन और उसके हालात इनकलाबात में इसका रोल सबसे अहम है। वो ज़मीन और मशीनी आलात का सरदार है, मशीनी आलात का ग़ुलाम नहीं जैसा कि आजकल मादी दुनिया में है। वो इन तगैरात इनकलाबात का ताबे और महकूम नहीं जो मशीनी आलात के ज़रिया नौ इंसानी के बाहमी ताल्लुकात और अतवार में पैदा हो रहे हैं। फिल मुकाबिल अगर आप मादियत के ये अलम बरदार इनको देखें तो ये मादियत परस्त और मेटरलिज़म के जो ताबेन हैं, जो कहना चाहते हैं, जो इसका दावा करते हैं, जो इसके अलम बरदार हैं, ये इंसान की हैसियत और उसके रोल को हकीर करार देते हैं और इंसान को अंधे बहरे मशीनी आलात का ताबे बना कर रख देते हैं। हालांकि इंसान ज़मीन का मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सरदार है। सामने कराम, फिर गौर कीजिए, सतह ज़मीन के ऊपर और सतह ज़मीन के नीचे अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेहिसाब नेमतें पैदा की हैं जो इंसान के शुमार और कतार से बाहर हैं। इरशाद होता है, वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो कभी न गिन सकोगे। हवा, रोशनी और पानी बग़ैर कीमत की इतनी बड़ी नेमतें हैं कि अगर सिर्फ उसी पर इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहे तो हरगिज़ अदा नहीं कर सकता। इतने एहसानात व इनामात पाने के बाद उस पर लाजिम है कि वह हर वक्त उसी की इताअत का दम भरे और उसका नायब होने की हैसियत से

इंसान में चीजों का नाम रखने की सलाहियत ना होती तो कितनी ज्यादा दुश्वारी होती, और एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में कितनी जहमत पेश आती। हर शख्स जो दूसरे शख्स को किसी चीज के बारे में कुछ बताना और समझाना चाहता, उसका मोहताज होता कि खुद उस चीज को उसके सामने हाजिर करे। मसलन खजूर के दरख्त के बारे में किसी से कुछ कहना हो तो खजूर का दरख्त उसके सामने लाना होता, पहाड़ के बारे में कुछ बताना होता तो खुद पहाड़ के पास जाना होता। किसी शख्स के मुताबिक कोई बात बतानी हो तो उस वक्त तक बात को समझाना मुमकिन न होता जब तक उस शख्स को बुलाना लिया जाता। कितनी बड़ी मशक्कत थी ना, जिसके साथ जिंदगी बसर करने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। हकीकत यह है कि जिंदगी अपने रास्ते पर रवा दवा न होती अगर अल्लाह ताला इंसान के अंदर चीजों के नाम रखने की सलाहियत वदियत न करता। फरिश्ते इस सलाहियत के जरूरतमंद न थे, उन्हें अपने फराइज अदा करने के सिलसिले में सलाहियत की जरूरत हाजत न थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेबसी और आजसी का इजहार करते हुए अपने रब की तस्बीह और तख्तीस की। قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ। फरिश्तों ने कहा तो हर ऐब और हर नक्स से पाक है, हम ला इल्म हैं सिवाय इसके जो तूने हमें सिखलाया है, बेशक तू बेपनाह इल्म रखने वाला है और हर बात की हिकमत से बाखबर है। सामने किराम, इंसान के पास जो इल्म है अल्लाह ताला कहता है इंसान का जाती कमाल नहीं, हर चीज के मकसद वजूद की हिकमत को अल्लाह ताला जानता है, मखलूक को उसका कमा हक को इदराक नहीं हो सकता। अब जिस तरह फरिश्तों को तखलीक आदम की गायत समझ ना आ सकी और उन्होंने ये कह दिया कि इंसान तो जमीन में खून रेजी करेगा, अब ये पता चला कि फरिश्तों के पास भी हर चीज़ का इल्म नहीं है, वो भी इतना ही इल्म रखते हैं जितना अल्लाह ताला ने उनको सिखा दिया है। हर चीज़ का इल्म रखने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला महज इल्म ही नहीं रखता बल्कि हर इल्म के साथ हिकमत भी उसका खासा है, जो ज़रूरी नहीं कि मखलूक में से भी हर इल्म रखने वाले को हासिल हो। यहाँ चीज़ों के नाम सिखा कर अल्लाह ताला ने इंसान पर मेहरबानी फरमाई है, वरना नामों के बगैर चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करना बल्कि इंसान की सारी गुफ्तगू ही शायद नामुमकिन हो जाती। इंसान की कदर मंजिलत सिर्फ इबादत के साथ ही नहीं इल्म के साथ भी है, और ये इल्म ही उसे अमल की राह पर डाल सकता है। फरिश्तों की इज्जो खाकसारी का ये आलम देख लीजिए, सुभानका ला इल्म लना, ये अदब का आला तरीन नमूना है। अब अल्लाह ने फरमाया, हे आदम तुम फरिश्तों को नशिया के नाम से आगाह करो। قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم, आगे अल्लाह फरमाता है, فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون। जब आदम ने उन्हें नशिया के नाम बतला दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ज़मीन और आसमान के तमाम गैब मुझ पर रोशन हैं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मेरे इल्म में है, और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। अब गैब समावाती वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान के तमाम गैब मैं जानता हूँ या मुझ पर रोशन है। अब गैब से मुराद वो अशिया जो मखलूक की नज़र से पोशीदा हों, वरना अल्लाह ताला के लिए गैब शहूद अक्सा हैं, उसके यहाँ माजी हाल और मुस्तकबिल सब का सब हाल ही है। गैब السماوات यानी मागाब عن الانظار في السماوات والارض, जमीन और आसमान में जो बात नजरों से पोशीदा हो वो गैब कहलाती है। हकीकत यह है कि गैब का तमाम इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ولله غيب السماوات والارض, आसमानों और जमीन के खुफिया हकायक का इल्म अल्लाह ही को है। मजीद सूरह नाम की एक और आयत में है, عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو, और गैब की चाबियां सिर्फ उसी के पास हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता, उसकी बारीक बीनी की कोई इंतहा नहीं है। सुभान अल्लाह। ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين, और बहर बर में जो कुछ है उसे वो जानता है, और दरख्तों से कोई पत्ता तक नहीं गिरता जिसे वो जानता न हो, और न ज़मीन की तारीखियों में कोई दाना ही है जिससे वो बाखबर न हो, और तर और खुश्क जो कुछ भी है सब किताब मुबीन लोहे महफूज में मौजूद है। इंसानी दिलों में जो वसवसे पैदा होते हैं रब्बे कायनात उनसे भी बाखबर है।
جیسے کہ لازمت

0: किया जाए और समर और बसर को काम में लगाया जाए। पर ये ख्याल कीजिए कि मैं आपका कोई मामूली किताब नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि खालिक कायनात का कलाम है जो उसने रसूलुल्लाह के जरिए आप तक पहुंचाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद खुदावंदी है, इन फी ذلك الذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد। बेशक इसमें दर्स इबरत है उसके लिए जिसके पास कल्ब सलीम हो, ये जो कान लगाकर बात सुने और दिल से हाजिर हो। तो यहाँ लफ्ज कल्ब यानी जिंदा दिल के माने में है कि अल्लाह ताला ने कल्ब यानी दिल को एहसास करने, इबरत हासिल करने और सोचने समझने के लिए बनाया है। जब तक आदमी का दिल ये काम करता है उस वक्त तक उसका दिल जिंदा है, और जब तक दिल जिंदा है यानी उसमें सोच विचार की सलाहियत है उस वक्त तक आदमी भी जिंदा है। इसलिए कि आदमी की हकीकी जिंदगी उसके दिल की जिंदगी से है। अगर दिल ये खसूसियात खो बैठा तो फिर आदमी भी मुर्दा है, अगर उसकी रगों में कितना ही खून दौड़ता फिरता हो। औ अल कसम वहु शहीद, यानी अगर दिल पूरी तरह बेदार ना हो तो कम से कम इतनी बात तो इंसान के अंदर होना कि कोई माकूल आदमी उसको कोई बात सुनाए तो उसको तवज्जो से सुने। ये तवज्जो भी इंसान के लिए बड़ी खैर और बरकत का बायस है। इससे भी बस औकात दिल की गफलत और इसके इबरत पजीरी की सलाहियत जिंदा हो जाती है। लेकिन जो शख्स ऐसा बदकिस्मत हो कि न उसका दिल ही बेदार हो और न वो किसी माकूल आदमी की बात सुनने ही के लिए अपने कान खोलने पर आमदा हो, तो ऐसे आदमी के अंदर कोई माकूल बात किधर से रह पाएगी। नसीहत हासिल करने और उससे फैजयाब होने के लिए दिल से सोचने समझने की सलाहियत और बात को तवज्जो से सुनने की आदत के अलावा शहीद का लफ्ज बोलकर मजीद चौकस किया जा रहा है कि वो महज जिस्म और जान के साथ ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग के साथ हाजिर रहे। मसलन गौर कीजिए कि वही नमाज कीमती बनती है जो हुजूर कल्ब से खुशू-खुजू के साथ अदा की जाए। उसी तरह वही तिलावत सूदमंद साबित होती है जो तदब्बुर और पूरे शऊर से की जाए और उसके अहकाम को दिल और जान से तस्लीम किया जाए। इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने लोगों को समझाने के लिए कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत पकड़े यानी अपनी जिंदगी को संवार लें। ये कुरान फसी अरबी जबान में है जिसमें कोई ऐब और इख्तलाफ नहीं है ताकि वो डर जाए और आखिरत के अंजाम से जो है ना बच जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल शऊर से नवाजा है और शरफ इंसानियत का तकाजा है कि उसको बरोए कार लाया जाए। कुरान हकीम से वही लोग फैजयाब हो सकते हैं जो उस पर तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं, जैसा कि रब्बे करीम का ऐलान है, अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फालुहा। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते या दिलों पर उनके कुफल चढ़े हुए हैं। इन ज़ाहिरी बसारत के साथ साथ जब तक दाखिली बसीरत से काम न लिया जाए इंसान कभी भी इस हकीकत को नहीं पा सकता। कुरान हकीम ने यह बात बड़े वाज़ह अल्फाज में बताए कि हकीकी अंधापन तो दिल का अंधापन है। जो लोग ज़ाहिरी आंखें रखते हुए भी अक्ल व फिक्र से काम नहीं लेते वो बसारत रखते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि उन्होंने बसीरत से काम न लिया और वो दिल के अंधे हो गए। तो सामने कराम, ये कुरान हकीम किताब अजीम है, उसी की तालीमात पर अमल पैरा होकर हमारे असलाफ कदर मंजिलत और अरूज व सरबुलंदी से हम किनार हुए थे। आज उम्मत मुस्लिमा इस दौलत बेबहा और मताए ग्रां से गाफिल हो चुकी है। उसी महज बरकत के तौर पर महफिल और मजलिसों में पढ़ा जाता है, मगर उसकी कीमती और लाजवाब तालीमात का असर कहीं दिखाई नहीं देता, बहुत कम ही दिखाई देता है, इस हद तक तो जरूर कह सकते हैं। ये मुसलमान के लिए जिंदगी गुजारने का आईन यानी दस्तूर हयात है, मगर आज मुसलमान के लिए हर तरफ से जिल्लत और खारी क्यों है। हाय अफसोस, इसकी एक ही वजह है कि मुसलमान अब इस कुरान हकीम से काफी दूर चले गए हैं। कुरान आज फिर उम्मत मुस्लिमा को पुकार रहा है, वला तहिनु वला तहसनु व अंतुम अलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम दिल शिकस्ता न हो, गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। प्रोग्राम पल्स ऑफ द कुरान के आज के इस हल्के से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा शरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी
2: लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा, एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज, इबादत और अल्लाह की रजा के लिए

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: सलाम हो इब्राहिम अलैहि सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाअत कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन किराम, ईद उल अज़हा के मौके पर पेश किए जाने वाले इस रूह परवर और ईमान अफरोज प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत में आप सब सामीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। मैं हूँ तलहा अशरफुज़्ज़मान और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी को इस्लामी इस्तेलाह में जालिब रहमत यानी रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाला अमल क्यों समझा जाता है। सामिन किराम, कुर्बानी और नुज़ूल रहमत के दरमियान एक गहरा और बराह रास्त ताल्लुक पाया जाता है, जो इस्लामी तालीमात में वाज़ह तौर पर बयान किया गया है। कुर्बानी बतौर जालिब रहमत इलाही फजलो करम को मुतवज्जह करने का जरिया है। यह इस तरह है जैसे माली सदका अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचता है। यह अमल अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करने का एक अहम जरिया है और अल्लाह की रजा बराह रास्त रहमत के नुजूल का सबब बनती है। कुर्बानी का यह पहलू इस बात पर दलालत करता है कि सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक फ़ाल अमल है जो अल्लाह ताला की रहमत को बंदे और माशरे की तरफ मुतवज्जे करता है। जब बंदा खालिस नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है तो उधर हकीकत अल्लाह से उसकी रहमत का तलबगार होता है और अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। कुर्बानी की कबूलियत और उसके नतीजे में रहमत इलाही का नुज़ूल अहादीस मुबारका में वाज़ह तौर पर बयान किया गया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि कुर्बानी के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं। कुर्बानी का जानवर क़यामत के रोज़ अपने सींगों, बालों और खुरों समेत हाजिर होगा और उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत पा लेता है। ये एक गैर मामूली फजल है जो कुर्बानी के अमल को हासिल है। यानी अगर कुर्बानी में इखलास है तो ये कुर्बानी करने से पहले ही यानी खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत पा लेता है। ये कुर्बानी की खसूसियत है, इसके लिए अल्लाह ताला की गैर मामूली रजा और फौरी रहमत का इजहार यहाँ नुमाया है। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की नीयत और कुर्बानी के जज्बे को इस कदर पसंद फरमाता है कि उसकी कबूलियत का ऐलान अमल की तकमील से भी पहले कर देता है। एक ऐसी रहमत है जो इस इबादत को दीगर आमाल से मुमताज करती है और उसे इलाही बरकात के नुजूल का एक तेज रफ्तार जरिया बनाती है। सामिन किराम, सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह नेमतें अता करने का जिक्र फरमाया और उसके शुक्राने में नमाज और कुर्बानी का हुक्म दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, बेशक हमने आपको कौसर अता की तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इस सूरा में अल कौसर से

0: और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
1: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
1: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
0: दोस्तों, रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है, और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं जिनमें कैद और गाड़ी की जब्त शामिल है। विदारत दाखला अपने इरादों का वाजे तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके। रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग ना सिर्फ जिंदगियों को खतरे में डालती है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है। ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुँचाते हैं। FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहानहू व तआला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लू आम वअंतुम बख़ैर।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिर्द के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज ईद का दिन है और इसी ईद के दिन में आप सभी लिसनर्स को तहे दिल से मुबारकबाद। ये एक स्पेशल शो है, ईद के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये फिट एंड फेस्टिव, आप समझ रहे हैं इस बात को, फिट रहिए और साथ ही साथ आप जश्न भी मनाइए। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा खास प्रोग्राम है जो ईद की खुशियों को सेहतमंद और पॉजिटिव लाइफस्टाइल के साथ जोड़ता है। इस शो का मकसद लोगों को ईद के फेस्टिव माहौल में भी एक्टिव, फिट और मेंटली फ्रेश रहने की तरगीब देना है। इसमें फिटनेस टिप्स, हेल्दी हैबिट्स, स्ट्रेस रिलीफ आइडियाज और ईद सेलिब्रेशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश किया जाता है ताकि हर कोई ईद को एनर्जी और खुशी के साथ एंजॉय कर सके। आप ये प्रोग्राम FM 107 की जानिब सुन रहे हैं और हमारा सोशल मीडिया नंबर जो आपको पता होगा, व्हाट्सएप नंबर जो है 6622107 है और इस पे अगर आपको कुछ भी, आप लोगों का कुछ भी ओपिनियन है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर। तो आगे बढ़ते हैं ऑन आवर सेकेंड सेगमेंट जो है हेल्दी ईट बाइट। जी हाँ दोस्तों, ईद के मौके पे हर कोई हर किसी किस्म का खाना पसंद करता है, खा लेता है विदाउट एनी चेक। स्मार्ट ईटिंग टिप्स जो है मैं आपसे शेयर करूंगा और स्मार्ट ईटिंग टिप्स में एक फ़ायदा है, ईद के दिन सुबह उठना, फिर नमाज में जाना, फिर वापस आके कुछ खाना, दोस्तों से मिलना या भारी कुछ यू नो मॉर्निंग बाइट्स आप ले लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है। ईद खुशियों, मिलने जुलने और लजीज खानों का त्यौहार है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इस दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए और स्मार्ट चॉइसेस के साथ आप ईद को एंजॉय भी कर सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। ये थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि हम लोग खाते हैं, खाने पर कोई मीटर यानी स्केल या रूल यू नो हम लोग अप्लाई नहीं करते, यू नो मीटर टेप, खाए जाते कितना खाना है ये किसी को नहीं पता। तो द पोर्शन कंट्रोल इज वेरी एसेंशियल। अक्सर हम जज्बाती होकर ज्यादा खा लेते हैं जो बाद में हेवीनेस और थकान का सबब जो है बन जाता है, इसलिए छोटी प्लेट्स यूज करें और हर चीज थोड़ी मकदार में लें और इससे आप हर डिश का टेस्ट भी एंजॉय करेंगे और ओवर ईटिंग से भी बच जाएंगे, दैट इज गारंटेड। इसके साथ साथ हाइड्रेशन को ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ओवरऑल बॉडी के लिए हाइड्रेशन तो मस्ट है। मीठी ड्रिंक्स और चाय कॉफी के बजाय पानी ज्यादा पीने की आदत डालें। इस दौरान होता क्या है कि हर कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स उठा लेता है, यू नो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो लोग कहते हैं कि भाई ये अच्छा है, थोड़ा सा तेल ऑयली फूड के बाद लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन दोस्तों दिस इज नॉट हेल्दी एट ऑल और बच्चों को तो बिल्कुल मना कर दीजिएगा। पानी ना सिर्फ आपको फ्रेश रखता है बल्कि डाइजेशन में भी मदद करता है। हर दावत के दरमियान पानी पीना ना भूलें। लोग अक्सर उठा लेते हैं यू नो बॉटल चलते चलते, भाई चलो भाई एक कोल्ड ड्रिंक्स दे दो या कोई जूस दे दो या कोई यू नो बच्चों के लिए आजकल बहुत सारे कलर ड्रिंक्स बाजार में बहुत है, तो नुकसानदायक है। दैट इज आई वुड रिकमेंड कि ऐसे आप लोग ना करें, बिकॉज पानी से ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक हो ही नहीं सकता। अगर पानी में अगर आपको थोड़ा सा चटपटा इस तरह का चाहिए तो ओके, यू कैन गो फॉर अ लेमन वाटर, यू कैन गो फॉर एनीथिंग दैट इज हेल्दी नॉट अनहेल्दी। सुबह की बात करूं मैं, ब्रेकफास्ट हम लोग अक्सर देखते हैं कि ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता जो है हम लोग स्किप कर जाते हैं, कोई चाय पी लेता है, कोई यू नो बिना नाश्ते के निकल पड़ता है। ऐसा आप लोग अगर करेंगे तो दैट सिस्टम ग्रेजुअली तो नहीं बट धीरे धीरे यू नो व्हेन यू ग्रो ओल्ड, अब जब उम्र दराज होंगे तो आपको वो इफेक्ट्स पता चलेगा. सो ब्रेकफास्ट स्किप ना करें. बहुत लोग ईद के दिन सुबह नाश्ता नहीं करते हैं और सीधा हैवी लंच या ब्रंच ले लेते हैं. फिटनेस टिप्स उल्टा सीधा इधर उधर का सोशल मीडिया में देखकर आजकल लोग तो खुद ही न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं, तो इसी को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से मैं एक गुजारिश ये है कि ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें. थोड़ा खाएं आप, ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशियंट, थोड़ा खाएं, लेकिन उसके बाद नमाज के लिए जाइए. ये आदत अनहेल्दी है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट को स्किप किया है. लाइट और हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसे फ्रूट्स या अंडा आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है और दिन भर एनर्जी देता है. अंडा, प्रोटीन इंटेक, आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रोटीन इंटेक इज वेरी वेरी एसेंशियल. नॉट ओनली जस्ट कि आप गोश्त से ही प्रोटीन ले, आप अंडों से भी ले सकते हैं. डेली 2 बॉइल्ड एग इन द मॉर्निंग और इसके साथ अगर एक केला ले लें और एक बनाना ले लें, दैट इज क्वाइट अ फिलिंग ब्रेकफास्ट, क्वाइट अ फिलिंग. आप देखना कि पूरे दिन में आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब लंच तक आप वेट कर सकते हैं. मिठाई, लोग बहुत मिठाई पसंद करते हैं. मिठाई इज नॉर्मल, नेचुरल, जस्ट लाइक कि बच्चों को टॉफी दे दे बच्चे खुश हो जाते हैं, तो आपको भी अगर किसी आप किसी घर पे हैं और आपके सामने अगर प्लेट पे अगर मिठाई आ जाए खाने के बाद, तो आप तो कहेंगे कि वाह क्या बात है. लेकिन ये बहुत ज़रूरी टिप है दोस्तों कि स्वीट्स यानी मिठाई को माइंडफुली इंजॉय करें, यानी कि टपाटप टपाटप. मिठाई ईद का हिस्सा है, ये आई एक्सेप्ट दिस, आई एक्नॉलेज, सबको पता है, लेकिन हद से ज्यादा लेना जरूरी नहीं. अपनी फेवरेट स्वीट चूज करें और उसे आहिस्ता आहिस्ता एंजॉय करें. इस तरह आप अपनी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई करेंगे और कैलोरीज भी कंट्रोल में रहेंगी. मोटापा जो आप कहते हैं ना कि अराउंड द वेस्ट जो है टायर्स, ट्यूब एंड टायर्स बन जाते हैं, तो मिठाई इज अ स्लो किलर. शुगर यानी चीनी, चाय के साथ चीनी लेना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ स्लो पॉइजन. आप चीनी के बगैर आप उसमें शहद भी ले सकते हैं, हनी, एंड बट गो फॉर द प्योरेस्ट हनी. ये बाजार में मिलते हैं, सुख वाकई में बहुत तरह इस तरह के, यू नो देर आर देसी हनी जिसको हम कहते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और इस ईद स्मार्ट ईटिंग को अपनाएं और खुशियों के साथ सेहत को भी सेलिब्रेट करें. हेल्दी हैबिट्स के साथ ईद और भी खूबसूरत बन जाती है. देखिए, आप अगर बीमार पड़ जाएंगे ईद के दिन, और ईद उल अज़हा वाले जो है ये बकरीद है, और इसमें यू नो 4 डेज, यू नो 5-6 दिन जो छुट्टियां हैं, इसमें अगर आप बीमार पड़ जाएं, एक तो गोश्त ही गोश्त, यू नो कुर्बानी का गोश्त जो है वो आपके घर पे या आप किसी के घर पे जाएंगे, दैट इज़ देयर. एंड इसके साथ साथ खाना पीना, दावतें, तमाम चीज़ें हैं जो कि यू नो कैलेंडर में नहीं है. आपको बुलावा आ जाता है कभी आपके पड़ोस से, कभी आपके दोस्त से, कभी आपके अहबाब से. तो यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है यू नो प्लानिंग करके खाना. अब लोग आप कहेंगे कि यार ये खाने के टाइम ये प्लानिंग शानिंग क्या है. नहीं दोस्तों, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, प्लानिंग हर जगह पे इम्पॉर्टेंट है. पहले के ज़माने में लोग कुछ और थे, पहले के ज़माने में लोग चलते थे, पहले के ज़माने में लोग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पैदल ही चल जाते थे, क्या धूप क्या गर्मी क्या बारिश क्या ठंड. आज वी हैव बिकम अ काउच पोटैटो, यानी हम जहाँ बैठ जाते हैं वहीं बैठे रह जाते हैं और वहीं पर चबाते रहते हैं खाना पीना. ये जो है ना, दिस इज वी डोंट डू वर्कआउट. आप मतलब आप एक यू नो डू अ सर्वे, आपको पता चलेगा कि वर्कआउट्स बहुत कम है. लोग जिम जाते हैं, जिम में जाते हैं, कुछ कहते हैं कि दिखावा भी है, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस है. लोग आजकल बहुत सारे चीज़ें करते हैं लेकिन वो शौकिया है. यू नो बहुत रेयर इस तरह के लोग आपको दिखेगा कि जो शौक, जो पैशन के लिए कर. बाकी आई डोंट नो, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट. इसलिए मैं कहता हूँ जो खाना पीना खाते हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा पोषण, उसको सोच समझ के, थोड़ा मेजर करके, प्लानिंग करके. प्लानिंग, अगेन द वर्ड प्लानिंग, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. अब दोस्तों, अब जो हम बात करेंगे वो है फिट मूव्स की. यहाँ दोस्तों फिट मूव्स, ईद के दिन अक्सर हम ज़्यादा खाना, मीठी चीज़ें और रिलैक्स रूटीन इन्जॉय करते हैं. बड़ा बिंदास, कुछ नहीं करना, खाओ पियो लेटो, ये एक वर्ड है, ये एक फ्रेज है जो हमारे देसी लोगों को बहुत पसंद है. अरे क्या करना है, लेट जाओ. लेकिन थोड़े से मूवमेंट ऐड करके आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइजेस और फन एक्टिविटीज के जरिए आप ईद को और भी एनर्जेटिक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मशवरा देना चाहूंगा दोस्तों कि दोपहर के खाने के बाद कोई एक्सरसाइज नहीं, ठीक है? दोपहर के बाद नोबडी डज एनी एक्सरसाइज, उस टाइम आराम की जरूरत होती है और 15 मिनट्स ऑफ कूल नैप, जिसको कहते हैं कि आफ्टरनून सिएस्टा अंग्रेजी में, और अगर हम अपनी देसी लैंग्वेज में बोलें पैलुला, तो ये कर लीजिएगा तो आप देखेंगे, इन अनदर वर्ड हम कह सकते हैं कि पावर नैप। पावर नैप का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक घंटा दो घंटे तक आप पड़े रहे, नो, आप 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट तक खींच सकते हैं। रात के खाने के बाद अ लाइट एक्सरसाइज, जिसके बारे में बता रहा हूँ, मूवमेंट, दिस मूवमेंट, चलना फिरना, ये बहुत ज़रूरी है। फौरन लोग करते क्या है, हमारे देश के लोग जो हैं वो करते हैं खाना खा के सीधा बिस्तर पर, यू नो, बच्चों को भी कहते हैं कि भाई सीधा बिस्तर, भैया बच्चे हाथ में रिमोट लेके बैठ जाते हैं टीवी देखने के लिए, दिस इज डेंजरस। और आजकल थोड़ा बहुत पिछले 10 साल में मैंने नोट किया है कि देयर आर चेंजेस हैपनिंग अराउंड एंड बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया फॉलोइंग, और सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड बिकम मोर इनटू द थिंग ऑफ फिटनेस, थोड़ा, आई मीन परसेंटेज इज वेरी लेस, स्टिल आई वुड से कि अभी बहुत काम बाकी है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है स्ट्रेचिंग, ये मॉर्निंग में आप कर लीजिएगा, सुबह उठकर 5 से 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें। आजकल ताइची बड़ा फेमस हो रहा है, ताइची भी, यू नो, स्कूलों में, आपको याद है स्कूलों में जब आप जाते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो पी टीचर आपको कहते थे कि ये स्ट्रेच योर आर्म्स, हाथ को सीधा करें, बैक करें, ऊपर करें, स्ट्रेच करें, तो दोज आर ताइची। बेसिकली ताइची एक, यू नो, चाइनीज फॉर्मेट है, चाइनीज स्टाइल है ऑफ कीपिंग योर बॉडी फिट, माइंड एंड बॉडी फिट। तो ये स्ट्रेचिंग जो है हम सबको पता है, लेकिन करना किसी को नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे योर मसल्स विल गेट एक्टिव, इससे बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है और दिन की शुरुआत फ्रेश फील के साथ होती है। इसके बाद आप कुछ स्क्वाट्स और मार्चिंग इन प्लेस ट्राई कर सकते हैं। ये सिंपल मूवमेंट्स हैं जो घर पर आसानी से किए जा सकते हैं और मसल्स को एक्टिव रखते हैं। हम लोग बहुत थक जाते हैं, द रीजन बीइंग दैट वी आर नॉट ईटिंग हेल्दी। आज ईद का दिन है और ईद के दिन में लोग अक्सर यही करेंगे कि खाना खा लेंगे। मैं कितना ही बोलूं और FM 107 की जानिब कितने ही हेल्दी टिप्स दिया जाए, लोग अक्सर यही करेंगे, अरे भाई छोड़ो, अब जो है तो है, हमारे दादा परदादा ने, यू नो, प्लेट भर भर के खाना उन्होंने खाए थे। दोबारा मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि दोज टाइम्स वर डिफरेंट, एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी फ्रेश, और लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, आज लोग एसी में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो हाफ ऑफ आवर मसल्स इज इनएक्टिव, डेड एकदम, देखा जाए तो डेड तो नहीं कहूँगा, मतलब आई वुड से कि लेथार्जिक, तो मसल्स हैव बिकम लेथार्जिक, इसीलिए आपकी बॉडी जो है, माइंड जो है, टायर्ड फील करती, एंड दैट इज द रीजन वाई एवरीबडी, आजकल हर कोई फिटनेस एक्सपर्ट्स या स्पोर्ट्स जो करते हैं वो कहते हैं कि 15 मिनट का तो सुबह मॉर्निंग में आपको कर ही लेना है। चले 15 मिनट आज तो घटा दिया गया है, ताइची कहता है, ताइची एक्सरसाइज जो है वो उसका कहना है कि 7 मिनट आप कर सकते हैं। 7 मिनट कोई दे नहीं सकता है क्या? दे सकता है, लेकिन वही है कि आप फोर्सफुली अपने आप को फोर्स करें, ले जाएं ऑन दैट मैट अंदर आपके जो लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में जो मैट है उस पर करें आप, अब देखिएगा फर्क पड़ेगा, और ईद के दौरान ये काफी एसेंशियल है। अगर पॉसिबल हो तो फैमिली के साथ इवनिंग वॉक का एक रूटीन बना लीजिए, इससे क्या होता है, बॉन्डिंग भी होती है और फिटनेस भी मेंटेन रहती है। मैं रात वाली जो बात मैं कर रहा हूँ, रात के खाने के बाद वाई हम लोगों को वॉकिंग करने का एक मशवरा या सलाह दी जाती है, बिकॉज डाइजेशन को इम्प्रूव करना होता है। खाएंगे तो आप भाई आज चाप, आज तो ये, आज तो करी और ये रोटी चावल बिरयानी ये सब आप खा लेंगे, लेकिन रात में अगर आप वॉकिंग ना करेंगे तो वो पता चलेगा कि ये फैट एक्यूमुलेट हो रहा है आपके अराउंड द वेस्ट, एंड आपको चलते फिरते आपको लगेगा कि अरे अगल बगल में मेरे टायर्स हैं ट्रक के टायर्स। तो 15 मिनट कम से कम आप रात को वॉक कर लीजिए, थोड़ा आपको बेहतर महसूस होगा और स्लगिश जो लेजी फील होने से आप बच जाएंगे। करके देखिएगा, फायदा देगा आपको। और इसी के साथ से एक बात और कि ईद हॉलीडेज को एक्टिव बनाने के लिए कुछ सिंपल गेम्स भी इंक्लूड करें, जैसे कि म्यूजिकल चेयर्स, लाइट क्रिकेट मैच, बैडमिंटन या फ्रिस्बी। बैडमिंटन कोर्ट्स बहुत हैं दोहा में, आप लोग बुक कर लीजिए, व्हाई नॉट, क्यों नहीं जा सकते हैं आप लोग। दोस्त यारों से तो मिलते ही हैं, तो उनको ही भी इंक्लूड कर लीजिए एंड गो फॉर अ वन आवर बैडमिंटन। बैडमिंटन से ज्यादा फिटनेस एक्सरसाइज हो ही नहीं सकता। हाँ यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, है काफी कुछ है। अभी तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, स्क्वॉश भी है, देयर आर पैडल स्पोर्ट भी है, स्विमिंग भी है। लेकिन आप वो बोलेंगे कि स्विमिंग करने का मतलब है कि अरे फिर सब कुछ गीला हो गया, फिर तौलिया लाओ और ये साफ करो, ये करो, तो आप बैडमिंटन कोर्ट में चले जाएं और इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज पूरे बॉडी के, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, लिम मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, आर्म मूवमेंट, नेक मूवमेंट, सब कुछ हो जाएगा। तो आप बच्चों को लेके जाएं और वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, ट्रेनिंग करिए, दैट गिव्स यू अ कंप्लीट रिगरस ट्रेनिंग, जहाँ आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं होगी। ये आप करके देखिए, बच्चों के साथ खेलना ना सिर्फ फन होता है बल्कि ये एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी भी है। घर के अंदर आप स्किपिंग या मिनी डांस सेशन भी कर सकते हैं। डांस का मतलब नहीं है कि नाचना, डांस का मतलब यह है कि थोड़ा यू मूव योर बॉडी, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रेचिंग करें, आप अपना हिप्स को मूव करें, आप अपना नी को मूव करें, आप अपना यू नो थाइस को स्ट्रेच करवाइए। सो दोज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट टू फाइनली आई मीन पूरे बॉडी की ओवरऑल जो ज्योमेट्री है उसको ठीक करने के लिए दीज आर स्मॉल स्टेप्स जो है काफी कुछ फायदेमंद है और आप लोगों के लिए आई थिंक इट विल ग्रेटली हेल्प यू ड्यूरिंग दीज ईद हॉलीडेज। आप छोटी छोटी चैलेंजेस भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि कौन ज्यादा स्टेप्स कंप्लीट करेगा या फैमिली फिटनेस चैलेंज, ठीक है। इससे सब लोग मोटिवेट रहते हैं और हेल्दी कॉम्पिटिशन भी बनता है। तो दोस्तों, इस ईद में सिर्फ खाना और आराम ही नहीं बल्कि थोड़ी सी मूवमेंट भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए, रिक्वेस्ट के साथ। फिट रहकर ही आप ईद की खुशियों को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आके इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं फिट एंड फेस्टिव शो विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
2: वेलकम बैक टू फिट एंड फेस्टिव शो। ईद का ये स्पेशल शो है और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और आप लोगों से काफी कुछ हमने शेयर किया है कि ईद के दिन, ईद के दौरान, ईद के छुट्टियों में क्या क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। दीज आर द फैक्टर्स दैट विल कीप यू फिट एंड फेस्टिव मोमेंट पे कंप्लीट। एक यू विल बी एनर्जाइज्ड एंड यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स ऑफ सेलिब्रेशन। तो माइंड एंड मूड रीसेट करना ये एक इम्पॉर्टेंट। आजकल हर लोग, हर जो यू नो कहते हैं कि भाई हम थक गए हैं, हमारा दिमाग बड़ा थका हुआ है, मूड जो है हमारे मूड को कुछ हो गया है, हम बोर फील कर रहे हैं। आजकल बच्चों भी कह रहे हैं, बच्चे लोग आजकल ये भी कहते हैं कि मूड मेरा क्या होगा। अरे भाई, 13, 12, 13 साल, 11 साल के बच्चे आजकल ये कह रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे एक वेलनेस एडवाइस, चलिए एडवाइस नहीं, एक सजेशन देना चाहूँगा। ईद का वक्त सिर्फ जश्न और खुशियों का नहीं बल्कि अपने जहन और मूड को रिफ्रेश करने का भी बेहतरीन मौका होता है। बिजी रूटीन, मेहमान नवाजी और सोशल एक्टिविटीज के दरमियान अपनी मेंटल वेलनेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग सेल्फिश हो जाइए। सेल्फिश इसलिए हो जाइए कि आप अपने आप को हेल्दी रखना है। ये इसी सोच को दिमाग में रख के कहिए कि आई एम सेल्फिश, मुझे वहां नहीं जाना है इस वक्त, बिकॉज उस वक्त मुझे कुछ फिटनेस टिप्स FM 107 की जानिब जो हमें दिया गया है उसको मैं फॉलो करना है। एंड यही आपका जो सीक्रेट ऑफ यू नो आई वुड से द सक्सेस टू हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, यही सक्सेस है। जब तक आप अपने आप को सेल्फिश नहीं बनाएंगे, यारे दोस्त ने बुलाया, अरे वो फलाने ने बुलाया, अरे हमारे वहाँ दावत है, कट डाउन। ऐसे भी ईद की बात है हम कर रहे हैं, नॉर्मल डेज में भी लोग वीकेंड में लोग थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं। जुमेरात शाम से फ़ोन आना, मैसेजेस आना, हाँ भाई कब मिल रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो है, ये जो मिलने मिलाने के वाला प्रोग्राम जो है, ये 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। एडवांस में बुकिंग, हाँ भाई वहाँ मिलते हैं। सो दिस गैदरिंग्स आर गुड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गैदरिंग्स अच्छी बात नहीं है। अपने देश के लोग मिलते हैं, पड़ोस, अपने ही मोहल्ले के, वो जब आप मिलते हैं तो अच्छा लगता है। आप अगर पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं, आप लोग मिलते हैं, पुरानी बातें आप लोग शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसके साथ साथ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जब भी बोलते हैं ना एक्सरसाइज, तो लोग सोचते हैं एक्सरसाइज मतलब अरे वो सब उठाओ जी, वेट उठाओ। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज का मतलब ये है जस्ट फिटनेस रूटीन, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, बेसिक चीज़ें, नॉट लिफ्टिंग 110 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, वो जो आर्म बाइसेप्स ट्राइसेप्स को ठीक करना होता है जिम में खड़े होके और शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को सल्लू भाई जैसे बनाने के, नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिटनेस का मतलब है वेलनेस, माइंड वेलनेस, माइंडफुलनेस, एंड सेकेंडली इट्स योर बॉडी, मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा ठीक करने के लिए बेसिक रूटीन है जो आपको आपको जरूरत है, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू पे सो मच मनी फीस टू गोइंग टू द जिम और फलाना ढिमकाना ये सब करें, नहीं ऐसा कुछ मत करें। तो मिलने के लिए भी आप जो दोस्तों से मिलते हैं उसी टाइम को थोड़ा कट आउट करके आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप अपना मूड को रिसेट कर सकते हैं, माइंड को रिसेट कर सकते हैं। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोना, सोना नहीं गोल्ड नहीं, स्लीप, नींद, नॉट दैट सोना, मैं येलो मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि यार स्लीप मतलब सोना मतलब नींद मतलब सोने की तरह ही है, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लोग कहते हैं अरे नींद नहीं आ रही है, भाई नींद कैसे आपके पास पहुँच गए, मतलब बस से उतर के लिफ्ट में चढ़ के, इट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस यू ट्रेन योर सेल्फ टू स्लीप ऑन टाइम। आप वक्त के साथ वक्त बनाइए कि मुझे 8 बजे तक, 8:30 बजे तक सब कुछ कंप्लीट करके आई वुड नीड टू हिट द बेड, आप देन प्रिपेयर योर माइंड अकॉर्डिंगली कि मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ एक्सरसाइज, ये आपको ही करना है। डोंट गो फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट, अदर ट्रिक्स, नींद इज समथिंग जो आपकी बॉडी में आपको ही आपके लिए मेहनत करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है स्लीप रूटीन को मेंटेन करना, जैसे कि 8 बजे सोना है रात को, 9 बजे सोना है, तो मेंटेन दैट रूटीन। ईद के दिनों में अक्सर रात देर तक जागना और सुबह देर से उठना आम बात है, ये देसी लोग, लेकिन कोशिश करें कि अपनी नींद का रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। 6 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद आपके मूड को फ्रेश रखती है और एनर्जी लेवल हाई करती है। तो ये आप लोगों को तो पता है, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, एंड आई वुड से कि ये जो मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं, साथ साथ हॉर्मोन्स की बात करते हैं, ये तो नॉर्मल बायोलॉजिकल आवर बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, इज ऑल रिलेटेड टू हॉर्मोन्स, इज ऑल रिलेटेड टू लॉट ऑफ फैक्टर्स। हमारी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है, तो इस केमिकल फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, और इसी गाइडलाइंस में स्लीप यानी नींद वन ऑफ द फैक्टर्स है। नींद को कंट्रोल करना, काबू करना, नींद को भगाना नहीं, नींद को आराम से, जैसे आप मेहमान नवाजी करते हैं दोस्त यार अहबाब के लिए, वैसे ही नींद को बुलाइए, नींद आपके पास आराम से, दे विल सर्व यू। दिस इज स्ट्रेस रिलीफ, दिस इज अ स्ट्रेस रिलीफ की भी बात है, नींद से स्ट्रेस रिलीफ भी गायब हो जाती है, और इससे स्ट्रेस जो है, हम लोग वी वॉन्ट टू डिस्ट्रेस अवर माइंड, डिस्ट्रेस अवर बॉडी, तो नींद इज वन ऑफ द एलिमेंट टू डिस्ट्रेस दैट। ईद पर तैयारी, कुकिंग और गैदरिंग्स कभी कभी थकान और स्ट्रेस का सबब बन सकती हैं, इसलिए दिन में कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालें, हल्की सी वॉक, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना, या बस थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना आपके स्ट्रेस को कम कर देगा, यकीनन करके देखिए। वी गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस अपने डेली लाइफ में, काम ऑफिस में हर तरह के काम है, घर जाते हैं तो देयर इज डोमेस्टिक आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चों के स्कूल हैं, तमाम चीज़ें हैं दिमाग में घूमते, और माइंड इज लाइक एन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो कि आपको ही दे चलाते रहता है। तो उसी माइंड को कभी कभार ऐसा ना हो कि भाई वो बर्न आउट हो जाए, ओवर स्ट्रेस हो जाए एंड देन सब कुछ गड़बड़ा जाए. इसीलिए माइंड को रेस्ट देना ही ऑल्सो इज अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर डेली रूटीन. इसके साथ एक और बात यह है कि ब्रीदिंग को रीसेट करें. यानी बहुत इफेक्टिव तरीका है कि ब्रीदिंग रीसेट करना. जब भी आपको स्ट्रेस या फटीग फील हो, 2-3 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें. आहिस्ता से गहरी सांस लें, कुछ सेकंड्स होल्ड करें और फिर धीरे से छोड़ दें. यह सिंपल टेक्निक आपके माइंड को काम रखती है और फोकस को इम्प्रूव करती है. अच्छा, ये जितने भी बातें हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं प्लीज करके देखिएगा. ये तो मैं तो सिर्फ ये होता है कि भाई अरे तो बस यू नो ज्ञान सजेशंस, यू नो दिस आर द थिंग्स. या आई नो दिस आर टिप्स. आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोगों के लिए है. आप लोग अगर इसको कहेंगे कि नहीं करना है तो नहीं करना है. बट योर बॉडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर हेल्दी फैमिली. हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड is important. ईद के दिन अपनों के साथ वक्त गुजारना, हंसी मजाक और पॉजिटिव वाइब्स भी आपके मूड को naturally अपलिफ्ट करते हैं. नेगेटिव सोच से दूर रहकर gratitude को अपनाएं. Gratitude, you know, आप किसी के लिए कुछ करें, किसी के लिए कुछ मदद करें, कुछ भी करें, feel that gratitude. That itself is so calming on your mind. आपको अच्छा लगेगा और अल्लाह के लिए करेंगे आप. अल्लाह के लिए करेंगे. बस बंदों से आपका कोई रिश्ता नहीं है. बंदों के लिए आपने कोई काम किया, उस बंदे ने आपको मुड़कर नहीं देखा, भूल जाइए. आपने काम किया, अच्छा काम किया, अल्लाह की राह पे आपने कुछ किया. दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कुड डू ड्यूरिंग दीज ईद हॉलीडेज. इस ईद सिर्फ जिस्म ही नहीं अपने माइंड और मूड को भी रिसेट करें. खुश रहना और रिलैक्स रहना ही असली सेलिब्रेशन है. दोस्तों ये बातें बहुत ही पुरानी हैं, आम बातें हैं कि फिट रहना, माइंड को रिसेट करना. और आज के दौर में तो एवरीबॉडी हैज़ अ मोबाइल फोन्स ऑन देयर हैंड और सबको पता है कि कैसे क्या, मतलब कैसे कैसे चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, बच्चों को कहाँ मना कर सकते हैं, कहाँ नहीं मना कर सकते हैं, यू नो फैमिली में किस तरह के हेल्दी एटमोसफियर बिल्ड करना है. दीज आर पार्ट ऑफ यू नो द वेलनेस, माइंडफुलनेस. ये जो चीज़ें हैं आजकल आपको सुनने में मिलेगा. इवन कतर गवर्नमेंट दे गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द वेलनेस एस्पेक्ट. कतर गवर्नमेंट, कतर के जो यू नो डिफरेंट हेल्थ सेक्टर्स हैं, दे ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द नीड टू हैव अ गुड माइंड एंड अ बॉडी एंड अ हेल्दी लाइफ. ये एक बहुत बड़ी बात है. हम तो अपने यू नो जितने भी ममालिक के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर के लोग जो देसी लोग, क्या कितने भी एक्सपैट्स जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें इस बात की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि जो रियासत कतर की जानिब जितने तरह के प्रोग्राम्स हैं फॉर दी हेल्दी माइंडफुलनेस, हेल्दी वेलनेस, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, यू नो ज़ईफ जो जो ओल्ड एज हैं उनको लेकर जिस तरह के प्रोग्राम्स, हेल्दी गाइडलाइंस शेयर करते हैं, आप लोगों को मिलता होगा, आप लोग देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे. इसी बात पे हम लोग यू नो हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट क्रिएट सच अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ऑल यू लिसनर्स ड्यूरिंग दिस ईद हॉलीडेज. और ये एक मौका है जहाँ पे हम अपने बॉडी को थोड़ा तो ध्यान दे दें. भाई कब तक ठंडा पीते रहेंगे और गोश्त के दौरान गोश्त खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं, रोटी चबा रहे हैं. जरा इस कभी कभार मैं भी सोचता हूँ कि सोचिए ज़रा इस चीज़ को, जब आप कोरमा रोटी या चावल रोटी खा रहे हैं और उसी के बीच में यू आर गल्पिंग, यानी आप पिए रहे हैं ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक्स. इमेजिन करिए कि तेल, कोरमा में तेल, रोटी और उसके साथ कोई एक लिक्विड जो कि हेल्दी नहीं है. सोचिए वो आपके पेट में जो आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें जाकर ये क्या क्या क्या फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में क्या बन रहा है, आप कभी सोच सकते हैं? जब सोचेंगे ना, जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप थोड़ा डर जाएंगे. एंड ये डर ही बेसिकली आपको इस रास्ते पे ले आने पे मजबूर करेगा कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड आवर माइंड. तो दोस्तों इस ईद खुशियों के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, स्टे एक्टिव, चाहे हल्की वॉक हो, फैमिली गेम्स हो या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, हर मूवमेंट आपको फ्रेश और एनर्जेटिक रखती है। फेस्टिव मूड को एंजॉय करें लेकिन बैलेंस के साथ, ताकि आप ईद के हर लम्हे को पूरी तरह महसूस कर सकें, अपनों के साथ वक्त गुजारें और पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं। और एक दफा फिर आप सबको एक सेहतमंद, खुशगवार और यादगार ईद मुबारक। दिस इज मोहम्मद अमीन साइनिंग ऑफ अलोंग विद साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी। अगले एक और एपिसोड में हम मिलेंगे बहुत जल्द ही, तब तक के लिए खुश रहिए एंड एंजॉय योर ईद। अस्सलाम वालेकुम।
3: ईद की रात होगी और भी ज्यादा स्पेशल, स्पेशल जहां होगा नॉनस्टॉप फन, म्यूजिक और सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, क्योंकि आ रहा है शो जश्न ए ईद।
4: ईद मुबारक।
1: और होगी आपकी रिक्वेस्ट, फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ, तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज, ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज।
3: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब। तो मिस मत कीजिए जश्न ईद, ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
6: आज ही राब्ता करें
5: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: ईद के चारों दिन,
6: चारों दिन
5: सुबह होगी और भी खास,
6: खास
5: सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवेश खान, 7 से 9 बजे सुबह मजेदार गुफ्तगु, ईद की खुशियां,
6: ईद की खुशियां,
5: आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ,
6: मस्ती के साथ
5: हर ईद की सुबह मनाए खुशियां FM 107 के साथ, दिल से देसी।
7: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहानहू व तआला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लु आम वअंतुम बख़ैर।

उसकी किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

जा रहे। इस ईद पर सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि अपनों के साथ मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। FM 107 की जानिब से मैं आपकी अमीता आप सभी को ईद उल अदा की दिली मुबारकबाद देती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107, दिल से दिल।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 टाइम चेक।

अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान. मॉर्निंग मस्ती ईद लेकर एक दफा फिर मैं आ गई हूं, मतलब दूसरा दिन है ईद का. तो आप लोगों को बहुत पहले तो मुबारक हो ईद का दूसरा दिन, और उम्मीद करती हूं कि आपका कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, आपने बहुत इंजॉय किया होगा. आप लोग कहीं गए होंगे, मतलब घूमने फिरने गए होंगे, कोई दावत अटेंड की होगी, या फिर आपके घर में दावत होगी, कुछ ना कुछ तो मतलब मज़ेदार किया होगा आपने डेफिनेटली. तो जो भी किया है, जो कुछ भी हुआ है, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. हमें

बताइएगा। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हो रहे हैं 7:02 और मेरा और आपका साथ इस शो में रहने वाला है 9 बजे तक। आज हम क्या करेंगे तो मॉर्निंग मस्ती ईद में आज भी हम खूब सारी बातें करेंगे, और जैसे कि पहला घंटा हमारा उसमें स्कार चलेंगे और उसके साथ ही हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी करेंगे कि ईद हमें बेसिकली मैसेज क्या देती है, क्या ख़ास तौर पर ये वाली जो ईद है ईद उल अज़हा इसके पीछे अगर हम मतलब इसको डीपली ज़रा देखें तो क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना, एक मतलब वो जो है ना कहना चाहिए कि एक अच्छा इंसान या फिर एक वो प्रोग्रेसिव इंसान वो होता है जो कि थोड़ा अपनी ज़िंदगी अपने इर्द गिर्द की जो जो चीज़ें मतलब उसके पास हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट भी करता रहता है, तो वो भी हम साथ साथ करते रहेंगे। और आज हम मुख्तलिफ हवालों से कुछ बातचीत करेंगे ईद पे ही रहते हुए कि मतलब इसको किस तरह से समझा जा सकता है। साथ ही साथ क्या होने वाला है, हाँ आज भी ब्रेकफास्ट टेबल, उसके हवाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे और आप लोग भी हमसे शेयर कर सकते हैं आप लोग किस तरह से क्या प्रेफर करते हैं ख़ास तौर पे अपने नाश्ते के हवाले से, तो ये आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और शेयर करने के लिए नंबर्स हमारे 4434377, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो 6622107 पे आप हमें मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो ये है वो तरीका जिसके थ्रू आप शो में शामिल हो सकते हैं। और मुझे फील हुआ कि मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी कम जा रही थी और मेरा ख्याल है अब ठीक हो गई होगी, अब आवाज़ बेहतर होगी। खैर जी, तो आज का सिलसिला मतलब मैंने जैसे ही बताया तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये फील आ रही है कि आज ज़्यादातर लोग जो है ना सो रहे होंगे, क्योंकि कल तो ये था कि ज़रा मतलब वो ईद की नमाज लेट हुई थी तो उसके बाद एक बहाना बचता है कि चलो ठीक है मतलब अभी मतलब उठे हुए हैं तो चलो नाश्ता कर लो अभी जल्दी, फिर मतलब थोड़ा सा घूम घाम लेते हैं, ईद का पहला दिन होता है, एक्साइटमेंट भी होती है, मतलब थोड़ा सा ईद गुजारने ना मतलब होती है क्या नहीं भाई, मतलब ऐसे ही सो जाएंगे क्या पता चलेगा ईद का। लेकिन आज चूंकि दूसरा दिन है और काफी सारे लोग रात में देर से अपने घरों में आए होंगे या रात देर तक जागे होंगे, तो मुझे लगता है कि फजर की नमाज पढ़ के मोस्टली लोगों ने सोचा होगा कि सो जाते हैं भाई मतलब अभी क्या है, मुझे ये वाली फील आ रही है। और कल ये और ज्यादा होगा क्योंकि कल फ्राइडे होगा, फिर उसके बाद अगले दिन और ये उस तरह से है। चले खैर देखते हैं मतलब कितने लोग ज्वाइन करते हैं, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं एटलीस्ट कि आप जाग रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कोई तो है जो सुन रहा है। वरना सीरियसली मतलब इस तरह के ओकेजन्स पे सुबह सुबह अगर आप खासतौर पे शोज़ कर रहे हो, जैसे रमज़ान में अपने जुमा हफ्ता करना होता है और मुझे ऐसा लग रहा होता है कि कोई नहीं सुन रहा, तो उस वक्त लगता है कि यार हम आपस में ही बातें कर रहे हैं मतलब खुद ही खुद बातें करें। और आज तो चूंकि मैं शो में बिल्कुल ही अकेली हूँ तो मुझे ऐसे ही लगेगा कि मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। खैर जी, तो ये सिलसिला हमारा 9 बजे तक जारी रहेगा। अब देखते हैं कि कितने लोग मैं आज के शो में ज्वाइन करते हैं। एक्सपेक्ट तो मैं कर रही हूँ कि आप लोग डेफिनेटली कोई ना कोई तो उठा होगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि मतलब सुबह सवेरे भी उठने का आदि होगा। और नसीम ने ना अपनी हाजिरी लगवा दी है, उन्होंने कहा ईद उल अज़हा मुबारक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, इसका मतलब है कि नसीम तो जाग रहे हैं और नसीम है मतलब सुबह उठने वाले। चलिए गुड, ज़बरदस्त, अच्छी बात है, मतलब कुछ लोगों का ऐसा होना चाहिए कि छुट्टी वाले दिन भी वो जल्दी उठ जाए। फिर मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ ना तो ये बड़ा ही नामुमकिन होता है, इसलिए मुझे एहसास हो रहा है, इस बात का अंदाजा हो रहा है कि यार छुट्टी है तो क्यों कोई जागेगा, मतलब सो ही रहा होगा। लेकिन एक मैसेज और आया और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग, कह ईद मुबारक मैम, मोहम्मद, ग्रेट, जबरदस्त मोहम्मद, अच्छी बात है, मोहम्मद खलील भी इस वक्त जाग रहे हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं मुझे। गुड मॉर्निंग भाई, आप ये बताएं ईद कैसी गुजरी, नसीम आप भी बताएं ईद कैसी गुजरी, कल क्या किया आप लोगों ने, कुछ खास हुआ, कुछ अच्छा सा मतलब कुछ ज़रा हटके रूटीन से कुछ जो कुछ किया हो वो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा, मैं भी आपको बताऊंगी कि हमारा क्या सीन रहा और क्या किया। अच्छा, तो सिलसिला ये है कि अभी हम थोड़ी देर के बाद असकार की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मतलब ईद के हवाले से, अच्छा कल मैं बात कर रही थी सुन्नत इब्राहिम की और उसमें हमने ज़िक्र किया था कि किस तरह से मतलब जो है ना वो वाकया हुआ था, ख्वाब नज़र आया था और फिर ये मतलब जो है इरादा किया कि हाँ मतलब अगर अल्लाह ताला की राह में सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो वो सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गए। अच्छा, आज मैंने बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट देखी जो कि अभी नहीं थोड़ी देर के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी आफ्टर स्कार, कि ये जो जमारात के ऊपर कंकरियाँ मारी जाती हैं हमें उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पता तो है लेकिन कहीं कहीं जहन से निकल जाता है।
تو اس کے حوالے سے بات کریں گے کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, کیا ہوا اور کیوں یہ جو ایک روایت ہے یہ جو ہے نا کنٹینیو چلی آ رہی ہے, اور کب سے چلی آ رہی ہے یہ میں آپ

0: आपको बताऊंगी और थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैंने पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ये भी एक तरह के ना छोटे छोटे से रिमाइंडर्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें पता होती हैं, लेकिन मतलब फिर भी मतलब जब हम वो कर रहे होते हैं ना, रूटीन में कोई हिस्सा बना हुआ होता है तो लग रहा होता है कि मतलब ये ओके, मतलब ये ऐसे ही हो रहा है। जैसे नमाज के हवाले से देखें, नमाज में भी होता है कि रोज़ हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसको उस तरह से अगर मतलब थोड़ा सा समझ के उसकी ट्रांसलेशन के साथ अगर आप वो चीज़ें अदा करना शुरू कर दें, या जैसे अब जब मैंने पहली दफ़ा अतियात के बारे में पढ़ा था कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि ओके मतलब हम तो इस तरह से लेते नहीं हैं उसे कि जिस तरह वो है। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो, कुछ चीज़ें हों, तो उसमें ज़रा एक ज़्यादा आपका ना इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, अमजद इकबाल साहब का मैसेज आ गया और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी पाकिस्तान में ईद? और पाकिस्तान में तो उस वक्त 9:07 हो चुके होंगे ना, तो पाकिस्तान कितने बजे उठ जाते हैं छुट्टी वाले दिन? अमजद इकबाल आप बताएं, और कैसी गुजरी ईद ये भी साथ साथ बताएं। सुल्तान अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम, ईद मुबारक हो यू एंड योर ऑल स्टाफ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान अहमद, आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, और उम्मीद है कि आप लोगों की मतलब आपकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी। ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ईद का क्या सिलसिला रहा और कितने दिन ये ईद सेलिब्रेशन जारी रहती हैं। कुछ लोगों का ये सीन होता है भाई कि वो लोग एक दिन ईद हो जाती है, मतलब सब लोगों से ईद वीद मिल लेते हैं, ईद मुबारक कह देते हैं, कुछ अच्छा खा पी लेते हैं, फिर कहते हैं भाई ठीक है हो गई ईद। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, मतलब उन लोगों के लिए एक दिन काफ़ी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ, मतलब 4 दिन हम ईद मना रहे होते हैं, और उसके साथ कुछ जो है ना वो ऐसे होते हैं ना महीनों महीनों तक ईद का सिलसिला जारी रहता है, पूरा का पूरा महीना, मतलब पहले शवाल का, फिर उसके बाद ये जिलहज का, पूरा पूरा महीना जारी रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद अभी एक और जो चीज़ हो रही होती है ना, ख़ासतौर पर यहाँ पे तो हम वो चीज़ नहीं इसलिए फील करते क्योंकि यहाँ हमारे रिश्तेदार वगैरह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो सिलसिला हुआ करता था वो ये कि अब जो लोग हज करने गए हुए आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसके हवाले से वो दावतें या तो अपने घर में रख रहे हैं, वो अपने मतलब हज करके आए रिश्तेदार, तो लोग उनको अपने घर में इनवाइट कर रहे होते हैं मुबारकबाद वगैरह देने के लिए, उनके मतलब ज़रा एक रिस्पेक्ट में कि हज करके आए हैं ज़रा मतलब ना उस तरह से, तो वो एक सिलसिला चल रहा होता है, कभी इसके घर दावत, कभी उसके घर दावत। और चूंकि मतलब हम लोगों के ज़्यादा वो वाली एक होती है ना कि मतलब अगर एक को बुलाया है तो सभी लोगों को बुला लो, तो वो सिलसिला भी काफ़ी लंबा लंबा चलता है, तो ये सीन भी होते हैं। खैर जी, मतलब आप लोग शेयर कीजिएगा कि क्या सिलसिला है, क्या चल रहा है, और इस वक्त अब हम थोड़ी ही देर के बाद मूव करते हैं असकार की तरफ। हम असकार सुनेंगे, असकार सुन के वापस आएंगे और फिर अपनी बातचीत का सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग ज़रूर कॉल करेंगे, हमें कॉल करने के लिए नंबर्स मैं आपको बताऊँगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम आपसे शेयर करते हैं अपने नंबर्स एक दफ़ा फिर से, और भी बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन अभी सुनकर आते हैं हम असकार।
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك

जी राइट वेलकम बैक. आप सुन रहे मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महावंश. और एक दफा फिर से आप सब लोगों को जितने भी लोग सुन रहे हैं ईद मुबारक. राइट और आज मतलब जैसे मैंने कहा था कि हमने कल सिलसिला जो शुरू किया था अपना, मैंने आपको बताया था सुन्नत इब्राहिमी के बारे में, तो वहाँ पे मतलब एक जो बड़ी अहम चीज़ है जो बहुत ही मतलब जो ना हज का एक बेसिक रुकन है वो ये कि जमरात के मकाम पे कंकरियाँ मारी जाती हैं. तो जैसे कल मैंने आपको बताया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब में मुताबिक एक मतलब जो इस्लाम में ये बताया गया हमें कि जब नबी को ख्वाब देखते हैं तो वो ख्वाब नहीं होता बल्कि एक डिवाइन रेवलेशन होती है, वही की सूरत ही होती है ख्वाब भी. तो अल्लाह ताला ने उनको सेक्रीफाइस करने का हुक्म दिया अपने बेटे को और उन्होंने उसको समझा, एक्सेप्ट किया और फिर

उसकी तैयारी शुरू कर दी। जब उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बताया तो उन्होंने भी बग़ैर किसी पस उपश के उन्होंने फ़ौरन से उस हुक्म को कबूल किया। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मतलब अगर ऐसा है, अल्लाह ताला ने आपसे ये डिमांड किया है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आप मुझे इसमें बिल्कुल फर्मा बरदार पाएंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे ही मैं करूँगा और आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और ये हमें कुरान में भी हुक्म मिलता है कि इसी तरह से ये जो चीज़ है वो हमें नज़र आती है। अच्छा, इसके अलावा फिर हुआ ये कि जब ये हो गया कि बाप बेटे दोनों तैयार हो गए और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब वो इस चीज़ को जो है ना मतलब करेंगे, अंजाम देंगे, तो शैतान काफ़ी परेशान हो गया और उस वो जानता था कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ये चीज़ कहाँ जाएगी। तो वो चाहता था कि किसी तरीके से इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोक दिया जाए। तो उसने ये कोशिश की, मतलब तीन दफ़ा वो मुख्तलिफ मकामात पे, जो आज जमरात के ही मुख्तलिफ जगह हैं, पिलर्स बने हुए, तो वहाँ पे वो अपीयर हुआ और उसने कोशिश की कि किसी तरीके से वो जो है इनको ये कहे कि आप ना करेंगे, ये तो सिर्फ ख्वाब है, आप क्यों इस मामले में जो है ना मतलब इतना सीरियस हो रहे हैं और आप अपने बेटे को कुर्बान कर देंगे, ये कैसे हो सकता है, इतना आपका मतलब इस उम्र में आपको ये बेटा मिला है और ये इतनी बड़ी कुर्बानी आप क्यों दे सकते हैं, आप अल्लाह ताला से कुछ और मुतालबा कर लें। तो इस तरह की मुख्तलिफ उसने मतलब जो है ना कोशिशें की कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी तरीके से इस अमल से पास रख सके। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जितनी दफ़ा वो सामने आया, इतनी ही दफ़ा, सात दफ़ा कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो कंकरियाँ उठाई नीचे से और उसको ज़ोर से मारी। तो ये जो है ना आज वही स्पॉट्स, मतलब मैं सॉरी तीन दफ़ा कह रही थी, सात दफ़ा का अमल है, तीन मुख्तलिफ मकामात पे आया था लेकिन सात दफ़ा उन्होंने कंकरियाँ उठाई थी, तो सात कंकरियाँ होती हैं। तो खैर जी, तो ये वही जगह आज जहाँ पे हाजी इकट्ठे होते हैं और कंकरी मारते हैं, तो ये वही जगह है। अच्छा, पहली दफ़ा जब शैतान आया था तो उसने एक विस्पर किया कि मतलब फ़ादर के तौर पे ना कि ये मतलब आप वालिद हैं तो इस तरह का क्यों मतलब आप अपने बेटे को कुर्बान करेंगे। फिर दूसरी दफ़ा आया और उसने जाके हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, जो कि मतलब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा थी, उनको कोशिश की कि किसी तरीके से उनके दिल में गम इतना पैदा कर सके कि वही रोक दें। फिर थर्ड टाइम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सामने आके उसने फिर से दोबारा कोशिश की कि किसी तरीके से वो मतलब ना इस चीज़ से अपने वालिद साहब को रोक दें, लेकिन तीनों तरफ से वो नाकाम हुआ और वो कंकरियाँ उसको खाना पड़ी। तो खैर ये किस्सा था और उसकी वजह से ना मतलब उसने उस वक्त कोशिश की थी पूरी, और आज तक जब हाजी ये अमल कर रहे होते हैं, कंकरियाँ मार रहे होते हैं, तो शैतान को वाकई मतलब हमें लग रहा होता ना एक ये क्या है, ये तो पत्थर मतलब एक है, मतलब कोई जगह है वहाँ पे कंकरियाँ लोग मार रहे हैं, तो इसका क्या इतना मतलब जो ना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। मतलब उसको वाकई वो चीज़ बहुत हिट करती है, ना सिर्फ ये कि वो जो भी उसकी किसी तरह की भी जो उसकी हैयत होगी, जिस तरह का भी वो जिस्म रखता होगा नहीं रखता होगा वो हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उससे हट कर एक साइकोलॉजिकली भी ना हर दफ़ा उसको ये चीज़ हिट करती है बहुत ही बुरी तरीके से कि उसने कोशिश की और वो नहीं कर सका, क्योंकि उसका तो पूरा मतलब जो एक अज़ल से हमेशा जो है ना मतलब एक इंटेंशन है वो यही है कि वो इंसानों को किसी तरीके से भटका सके। और हम जैसे कमज़ोर इंसान तो आ भी जाते हैं, वसवसों का भी शिकार हो जाते हैं। कितनी दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं लेकिन हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक ऐसा ख्याल आ जाता है कि क्या ज़रूरत है, मतलब ये कुछ ज़रा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, समझेगा किसी की मदद करना चाह रहे हैं तो दिल में ख्याल आता है मतलब कि हमारी भी तो अपनी 10,000 ज़रूरतें हैं ना, उसको मतलब हटा के हम किसी और के लिए कुछ इतना कुछ करें तो क्या ज़रूरत है, मतलब उसको ख़ुद भी करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल में आ रही होती हैं और हम लोग उस चीज़ को, खैर एक मतलब इस मामले में जैसे भी हम लोग कुछ दिन पहले डियर फैमिली में भी बात कर रहे थे, सेक्रीफाइस के हवाले से हमारा टॉपिक था, तो उसमें थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूजन्स भी हो जाती हैं, ये बात मैं मानती हूँ, कि कहाँ पे किस हद तक जाना है किस हद तक नहीं जाना, इस चीज़ को भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। डेफिनेटली मतलब एक मुसलमान को ख़ास तौर पर मतलब थोड़ा मतलब अकलबंदी के साथ ज़िंदगी को जो ना गुजारना चाहिए, तो वहाँ पे उसको ये चीज़ समझ में भी आनी चाहिए। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हम कोई अच्छा अमल करने जा रहे होते हैं और हमारे जहन में आता है एक वसवसा और फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि ये ज़रा ज़्यादा हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा कम कर लें, या क्या ज़रूरत है अभी नहीं बाद में कर लेते हैं, इस तरह की जो चीज़ें
اور ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ترین نبی ہیں, پیغمبر ہیں, ان کے اوپر تو یہ وار شیطان کا کبھی چلا ہی نہیں, اور وہ

मुमकिन हो ही नहीं सकता था कि वहाँ पे चलता, और अल्लाह ताला की जो भी मतलब जो पसंदीदा जो नेक लोग होते हैं, जो मतलब एक पूरी मतलब जो पैगंबरों के अलावा और जो लोग हैं वो डेफिनेटली बहुत मेहनत करते हैं अल्लाह ताला के लिए, अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं मुसलसल, तो वो भी उनके ऊपर भी नहीं शैतान का कोई वार चलता। और अल्लाह ताला हम लोगों को भी उस रास्ते पे रखे कि हम उसके वरगलाने से, उसके वसवसों से किसी तरह से बच सकें। और मेरे पास आ गया मैसेज शहजादा सलीम, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। शहजादा सलीम हमारे साथ हैं, जबरदस्त भाई आप भी उठे हुए हैं, सुबह सवेरे उठे हुए हैं, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा ये भी मैं आपको बताती चलूं कि भाई आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 4434377, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और 6662107 पे आप लिख के भेज सकते हैं हमें अपना मैसेज।

0: साइट और आप थोड़ी बहुत चीजें भी आपसे शेयर कर लेते हैं. कल यहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ या फिर आपके लिए क्या कुछ मौजूद है जो कि आप अगर ईद पे इंजॉय करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, आपके जहन में आइडिया नहीं आ रहा कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ आपके लिए क्या कुछ अवेलेबल है जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, या अकेले भी जाना चाहते हैं तो अकेले भी. अगर ईद इवेंट्स हो और कतारा पे फायरवर्क्स ना हो, ऐसा नहीं होता. और सबसे ज़्यादा लोग कतारा के जो फायरवर्क्स है ना, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं. उसके पीछे बड़े सारे रीजंस हैं. एक रीज़न तो यह है कि कतारा का जो पूरा मतलब जिस तरह का इन्वायरमेंट, जो आर्किटेक्चर वगैरह है ना, वो उसके लिए बड़ा ही सूटेबल है, बहुत अच्छा लगता है. जब आप कतारा पे जाके देख रहे होते हैं फायरवर्क्स, तो कतारा पे इस दफ़ा भी फायरवर्क्स आपके लिए है. 27 से लेके 29 मई के दरमियान आप 8:30 बजे फिक्स होता है ये जो फायरवर्क्स है, तो आप ये जाके वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं. बहुत ही मज़ेदार फायरवर्क्स. और आप लोग जाइए, और ख़ासतौर पे वो लोग जो कि नए नए आए हुए हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो फायरवर्क्स को ज़रूर देखें, क्योंकि इतना ग्रैंड, इतना ज़बरदस्त, मतलब बड़ा मज़ा आता है. तो आप लोग जा सकते हैं कतारा पे जाके, जैसे मैंने आपसे कहा 8:30 बजे. तो 8:30 बजे का मतलब ये है कि आपने कोशिश करनी है कि अपने घर से आप तकरीबन, मतलब पहले तो फासला देख लें कि कितना है. अगर आप 1/2 घंटे में पहुंचते हैं तो फिर आप 1.5 घंटे पहले निकलें, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है वहां तक पहुंचने में 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए पहले, ताकि आपको जगह मिल जाए. फिर उसके अलावा पार्किंग ढूंढना और वहाँ तक पहुंचना, अच्छा खासा ठीक ठाक रश होता है ईद के दिनों में, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ना 1.5 घंटा एक्स्ट्रा रख के चलें, मतलब उससे पहले पहले पहुंचने की कोशिश करें. 6 बजे निकल जाएं, या फिर मतलब अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा रश हो सकता है तो उससे पहले भी निकल जाएं. जितना पहले जाएंगे उतना आप इंजॉय कर सकेंगे, आपको प्रॉपर सिटिंग एरिया वगैरह मिल जाएगा और वहाँ पे बैठ के आप प्रॉपरली जो है वो इंजॉय कर सकेंगे फायरवर्क्स को. इसके अलावा क्या हो रहा है, तो इसके अलावा फायरवर्क्स के अलावा यहाँ पे कतरी अर्दा डांस भी परफॉर्म किया जाएगा, और फिर यहाँ इसके अलावा ईदी गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है बच्चों के लिए. तो काफ़ी कुछ हैपनिंग है, आप यहाँ जा सकते हैं. और ये एक तरह का मतलब जो है ना बिगेस्ट ईद अट्रैक्शंस कहलाता है कतर में कतारा, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही क्राउड आता है. तो आप ज़रूर जाइए और जाके फायरवर्क्स को भी इंजॉय कीजिए. यहाँ पे आपको कतर का ओरिजिनल जो कल्चर है वो देखने का मौका मिलेगा, और सारी मतलब फैमिली के लिए ना, मतलब जैसे ईदी भी मिल रही है, गिफ्ट्स भी हैं और म्यूज़िक भी है, बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. तो आप जा सकते हैं ईजिली और अपनी ईद को बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए. मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, ब्लेस योर होम विद लव एंड पीस. ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है. सभी पुरानी बातों को, गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज. विश यू अ वेरी जॉयफुल एंड सेफ ईद उल अधा. और सुनते रहें FM 107, दिल से.

आपके साथ आपकी आरजे भावेश और हम बात करें काफी सारी चीजों के हवाले से. अभी जो है वो वक्त आ गया है कि हम आपसे थोड़ा सा शेयर करें इस हवाले से. देखें कि ये जो ईदें होती है ना, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वो वैसे तो रोज आना ही, मतलब एक दिन आता है नया और वो गुजर जाता है, ये वाला सिलसिला होता है. लेकिन ईद कि अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक दिन नहीं होता बल्कि एक एहसास होता है जो हमारे दिलों में रहता है हमेशा. अच्छा, अगर हम देखें तो हम सबकी ही मतलब लाइफ में ना अपनी जो बचपन की ईदें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो हमें ईदें मतलब वाकई अगर देखा जाए ना तो बचपन की ईदें आपको अपनी ईदें लगती हैं. उसके बाद तो बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये ख्याल वो ख्याल, ये मुश्किल वो परेशानी, वो मजबूरी, ये वाले सिलसिले चल जाते हैं और बाज़ औक़ात हम इन दिनों को भी ना मतलब उस तरह से खुल के इन्जॉय नहीं कर पाते. तो ये एक प्रॉब्लम होता है जो ज़्यादातर लोगों का होता है. लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ना मतलब देखें परेशानियाँ, मुश्किलात, ये वो सारी की सारी झमघटे जो भी ज़िंदगी के हैं ये तो चलते रहेंगे, इन्होंने हमेशा चलना ही चलना है. लेकिन जहाँ पे कहीं इस तरह के मौके आते हैं और वो ख़ास तौर पे वो मौके जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक तरीका ये होता है कि हम उनको इन्जॉय करें, उनको इन्जॉय करें प्रॉपर उसी वे में जिस तरह से अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करते हैं. और उसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप शुक्र करें इस चीज़ का कि आपके पास वो नेमत आई है, आपको वो चीज़ मिली है. और हम अगर मतलब थोड़ा अपने बिहेवियर को चेंज करें ना तो हमारी ज़िंदगी में वैसे ही खुशियाँ और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. अपने बिहेवियर को चेंज करने की ही बात होती है. आप जहाँ पे फील करना शुरू कर देते हैं आपकी ज़िंदगी में नेमतें कितनी हैं, तो आप डेफिनेटली खुश भी होना शुरू हो जाते हैं. और मेरा अपना ये मानना है कि इस तरह के जो भी दिन मतलब आपकी लाइफ में आ रहे हों, ईद हो या मतलब कुछ और इस तरह के ओकेजन्स, जहाँ जहाँ पर आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई खुशी मिलती है, तो उस दिन का ये एक तरह से ना हक बनता है, तकाजा है कि आप उसको सही तरह से इंजॉय करें प्रॉपरली और उस पे अच्छा कुछ ना रूटीन से हटकर करने की कोशिश करें जो आम दिनों में नहीं करते वो करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में ना आने वाले सालों में कल कहना चाहिए कि आपको याद रहे कि 2026 की ईद ना हमने इस तरह से गुजारी थी, ये किया था हमने, हम फलां जगह गए थे, हमने फलां जो है ना नई डिश बना के इंजॉय की थी, ये कपड़े पहने थे या कुछ भी. और हाँ, तस्वीरों का भी एक बड़ा मतलब एक कल्चर है, लोग लेते हैं ये तस्वीरें, तो आप पोस्ट करें ना करें लेकिन अपने लिए आप तस्वीरें वगैरह भी ले लिया करें, वो भी एक अच्छा ही मामला होता है. मतलब आपको आने वाले सालों में ये याद रहता है कि हाँ मतलब ये वाली ईद इस तरह से गुजरी थी और ये वो. ख़ासतौर पर आजकल तो जो हमारी मुख्तलिफ़ ऐप्स वगैरह हैं ना वो आपको वैसे ही याद दिलाती रहती हैं लास्ट ईयर ईद पर आपने ये

किया था, वो आते रहते हैं आपके पास नोटिफिकेशंस, तो अच्छी बात है. मतलब ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी यादें बना सकते हैं, और ईदें तो इसका बेहतरीन ज़रिया होता है. तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जहाँ कहीं पे भी हों, अकेले भी हों, आपको लग रहा हो कि आप यहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं, फैमिली नहीं है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना मतलब दिल पे ना लें. ये सोचें कि अल्लाह ताला से आपने मांगा था, डेफिनेटली आप चाह रहे थे अकेले, मतलब अकेले रहना नहीं लेकिन आना, तो वो आप आ गए. अल्लाह ताला ने आपके लिए सारे वसाइल बनाए और आपको यहाँ तक पहुँचाया, आपकी ज़िंदगी में बहुत हद तक बेहतरी आई. तो उसका ये है कि आप डेफिनेटली उस चीज़ का शुक्र अदा करें और उस चीज़ को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें. गम को ना तारीख दिया करें हर चीज़ पे. जो अच्छी चीज़ें हैं उनको, खुशी उनके ऊपर हमें मनानी चाहिए और उनको महसूस करना चाहिए कि देखो ये मांगा था और ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है. मैसेज है मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. और ये कहते हैं कौन, ये है मुस्तफ़ा कमाल, आपको भी वालेकुम सलाम और ईद मुबारक भी. और इसके साथ ही मेरे पास मैसेज है और ये है अमजद इकबाल साहब का, और कहते हैं कि जी, और ये दूसरा ये है कि ईद पर तो पाकिस्तानी मूवी आई भी होती है और कौन सा सिटी सेंटर में, कतर मॉल में, बहुत सारी ऐसी जगहों पर लगती है, तो वो भी आप देख सकते हैं. और जवाब तो पाकिस्तानी 3 मूवीज़ आई हैं और अच्छी हैं, ये भी आप डिसाइड करके टाइम पास कर सकते हैं. अच्छा, 3 में से 1 तो मुझे पता है जिसका मैंने इरादा किया हुआ भी है, बल्कि हम कल देखने गए भी, लेकिन एक चीज़ अनफॉर्चुनेट ये है कि वो 15+ है और अभी मतलब छोटा वाला बेटा जो है ना वो 15 का नहीं है, तो इसलिए वो मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं देख सकते आप, तो ये वाला सीन हो गया हमारे साथ. लेकिन ये कि और कौन सी मूवीज़ आई हैं, मुझे तो एक ही का पता है, तो वो आप बताएं कि कौन सी वाली मूवीज़ है. क्योंकि अच्छा, ये वाली जो मूवी है जो 15+ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, फ़ाहद मुस्तफ़ा की जो आई है ना जॉम्बीट, मैं उसकी बात कर रही हूँ. मुझे लगता है कि वो शायद इसलिए है क्योंकि उसमें जॉम्बीज़ वगैरह उन्हें दिखाए हुए, तो उनको लग रहा होगा कि थोड़ा छोटा बच्चा होगा तो डर जाएगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये वाली कोई सीन होगा. वरना पाकिस्तानी मूवीज़ नॉर्मली ऐसी होती हैं कि आप ईज़िली देख सकते हैं, तो उसमें तो कोई मसला नहीं होता. लेकिन 2 और कौन सी मूवीज़ हैं, एक मैंने फरहान सईद की कोई देखी है, कोई ट्रेलर वगैरह, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगी, बल्कि उसका टॉपिक इस तरह का लग रहा था, कल ही वो ईयरवे पे दिखा रहे थे, कि मैं सोच रही थी कि इन टॉपिक्स पे अब तक बनाने की ज़रूरत क्या है भाई आपको, मतलब ये बहुत हो गया आप तो, ये मतलब बॉलीवुड ने 1000 दफ़ा बना के छोड़ दिए, इसके ऊपर क्यों बना रहे हो. तो एक तो मुझे वो याद पड़ी है, नाम नहीं पता, और दूसरी कौन सी आप बताएं, मतलब एक और जो आप कह रहे हैं. अच्छा जी, सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो. और कल का दिन जो हमारा गुजरा वो ये था कि ईद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद सब अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में जाते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर कुर्बानी, और फिर जो है उसका गोश्त तकसीम करना, और फिर शाम को हमारी बेटी आ गई, हमारे दामाद आ गए. और इस दफ़ा तो हमारी ज़बरदस्त सिलसिला ये हुआ होगा कि पहली ईद है ना मेरा ख्याल है आपकी बेटी की, हाँ लास्ट ईयर ही तो शादी हुई है, तो पहली ईद है, तो डेफिनेटली वो एक अलग ही मज़ा होता है बेटी के आने का और सब कुछ. चले जी गुड. और इकट्ठा खाना खाया तो यही होता है ईद पर, तो हमने उनके घर जाना है, हमने इधर दावत है, और फिर एक बच्चे की आमीन है तो उधर भी दावत है, और आमीन से मुराद ये है कि हाँ मुझे बिल्कुल पता है, आमीन से मुराद ये है कि उस बच्चे ने कुरान पाक ख़त्म किया है और उसकी उम्र बहुत छोटी है, इसकी वजह से उसके घर वालों ने खुशी के तौर पर अपनी फैमिली के सब दोस्तों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया. आज का खाना हमारा जो है उस बच्चे की आमीन की वजह से है, कुरान पाक जो उसने मुकम्मल किया. तो जी, अब हम लोग तो मैसेज ही कर सकते हैं, कॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन कॉल करेंगे, कोशिश करूंगा, आज बैलेंस नहीं है, अभी जा नहीं सकता. चलिए मसला नहीं. अमजद इकबाल साहब, आपने मैसेज कर दिया, डिटेल में बता दिया कि क्या कुछ आपने किया, तो ये भी काफ़ी है. जो लोग यहाँ रह रहे हैं भाई, वो कॉल कर लें, अभी कॉल नहीं करेंगे, जब बिल्कुल आखिर का टाइम होगा ना, तो जब सब लोगों को एकदम से ख्याल आ जाएगा कि उन्होंने कॉल करनी है. तो चलिए गुड, ज़बरदस्त. अमजद इकबाल साहब, आप अपनी दावतें और अपनी जो सारी जो मसरूफ़ याद हैं अच्छे तरीके से गुजारें, खूब अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें अपनी ईद को बेटी के साथ, घर वालों के साथ, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत बरकत दे और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियां लेकर आए. जी, तो आ जाते हैं हम फिर से. हाँ, ईद के हवाले से जो मैं बात कर रही थी, तो हाँ, हम सब लोगों का ये मामला होता है कि हम लोग ना बचपन की ईदें याद करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. बचपन की साइड से बातें, आपकी जो यादें होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत सुनहरी होती हैं, और वो हमेशा दिल चाहता है कि उनके बारे में सोचा जाए, और सोचना भी चाहिए, और बल्कि अपने घर वालों से, अपने बच्चों वगैरह से शेयर भी करना चाहिए अपनी जो मेमोरीज हैं, जो जो चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस की हैं उनको ज़रूर करना चाहिए. लेकिन साथ में ये भी जहन में एक बात रखा करें कि भाई, आपने जो अपनी ज़िंदगी, अपना बचपन गुजारा है, उसको खूबसूरत बनाने में आपका माँ बाप का, आपके इर्द गिर्द के लोगों का बड़ा रोल रहा है, उन्होंने आपको वो इन्जॉयमेंट करने दिए, तो अपने बच्चों का वक्त है, उनको भी उसी तरीके से खुशियाँ गुजारने दें. उनके लिए भी मतलब ना वो वाला नहीं, मतलब एक सोग वाला कुछ

0: हंसी में इस बात पे कि अक्सर लोग ये बोलते हैं
1: जी, क्या कहा आपने?
0: मैं कह रही हूँ हंसी में इस बात पे थी कि अक्सर लोग हम दोनों को लेके कंफ्यूज होते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि लैंग्वेज माशाल्लाह मेरी तरह है ना आपकी, यूपी वाली, मैं इंडिया यूपी से ताल्लुक रखता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: और नाजिया मैडम जो है वो हमारे यहाँ से ही है, वो अलीगढ़ से है, उनसे मेरी एक मरतबा बात हुई और दूसरी बार आपसे बात हो रही है माशाल्लाह। ईद मुबारक हो मेरी तरफ से।
0: आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और मेरे दादा जो है ना उन्होंने माइग्रेट किया था अलीगढ़ से, तो हमारा ताल्लुक भी अलीगढ़ से है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी।
0: जी जी,
1: तो बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो पूरी टीम है ना, आप सब मेरी फैमिली हैं और मेरे आप उस्ताद भी हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि आप जो मुझे दुआएं सीखने को मिली हैं और जो बहुत सी जानकारी मिलती रहती है माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह,
0: बहुत
1: अल्लाह जजाए खैर दे और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए।
0: आमीन।
1: जी
0: जी,
1: बस काम था मेरा तो।
0: अच्छा जी जी, चले ये तो बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, कल आपने किया क्या?
1: बस कल तो मैंने, हमारे यहाँ तहरी बनती है, मैंने बकरे का जो कुर्बानी होती है ना उसकी तहरी बना के, यहाँ उसको मजबूस बोलते हैं और हमारे यहाँ उसको तहरी बोलते हैं।
0: सही सही सही सही, तहरी यानी जो येलो वाले चावल होते हैं उसको तहरी कहते हैं।
1: येलो वाले, वेरी गुड वेरी गुड, वही खाई माशाल्लाह मजा आ गया।
0: जबरदस्त। ये तहरी कैसे बनती है, मतलब मजबूस मसाले कम होते हैं?
1: जी मसाले कम होते हैं, पहले मसाला भूनते हैं, फिर उसमें गोश्त डालते हैं, फिर चावल भीगे हुए रहते हैं ऑलरेडी पहले ही, फिर उसमें वो डाल देते हैं, बस बन गई तहरी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: सही है, क्योंकि हमारी यहाँ बनती है आलू की तहरी ना, तो हमें वो पता है, लेकिन ये मैं समझ गई कि येलो चावल को बेसिकली कहा जाता होगा। अब ये मेरी मतलब एक इजाफा हो गया है मेरी मालूमात में कि येलो जो चावल होते हैं उनको तहरी कहते हैं। सही सही,
1: आप सुनना
0: जी जी,
1: कभी कि मुझे फरनगर की तहरी मशहूर है और मेरठ की हलीम बिरयानी।
0: अच्छा ग्रेट, जबरदस्त
1: जी, क्योंकि मेरा ताल्लुक वहीं से है ना, मुझे फरनगर से, मेरठ मेरे से 56 किलोमीटर है, तो इसलिए आसपास के इलाकों के बारे में मुझे मालूम रहता है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जबरदस्त,
1: जैसे अलीगढ़ के ताले और खुर्जा के बर्तन।
0: जबरदस्त ग्रेट, तो आपने मतलब जो है इस तरह से सेलिब्रेट की ईद, गुड। और आज का क्या प्लान है?
1: बस आज तो हम बिरयानी बनाएंगे जी।
0: बिरयानी बनाएंगे। सही सही, तो ये बिरयानी कौन बनाएगा, आप खुद बनाने का इरादा रखते हैं या घर पे कोई बनाएगा?
1: नहीं मेरी तो फैमिली यहाँ नहीं है, हम दोस्त हैं 4-5।
0: हाँ अच्छा अच्छा, जबरदस्त,
1: तो हम सब मिलकर बनाते हैं।
0: ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, तो आज भी अच्छी तरह से एंजॉय कीजिएगा, बिरयानी बनाइएगा और खूब अच्छी तरह मतलब जो है वो एंजॉय कीजिएगा अपनी ईद को, ठीक है?
1: ओके जी, ओके ठीक है, जजाकअल्लाह।
0: चलें, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एक दफा फिर आपको ईद मुबारक, थैंक यू जी। रही जी, तो हमारे साथ थे मोहम्मद अख्तर साहब, जबरदस्त भाई, और इसके साथ एक ब्रेक लेते हैं, कॉल आ रही है, लेकिन अब ब्रेक के बाद फिर हम आपकी कॉल लेते हैं।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर न करें। स्ट्रॉन्ग

0: और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
1: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।

0: के अलावा और कुछ ना कुछ खाते ही नहीं हम लोग।
1: ओए होए जबरदस्त, ये तो ट्राई करना पड़ेगी, लेकिन उसके लिए अब ये मसला ही है कि वहां जाना पड़ेगा।
0: अरे नहीं बहन, आप अपने उधर भी बना सकते हो।
1: बना सकते हैं, चलो मैं ट्राई करूंगी, आज मैं देखूंगी जरा कि कैसे बनती है, मैंने कभी नहीं ट्राई की।
0: ट्राई करनी होगी गुलबर्गा की तारी।
1: अच्छा, यही लिख के सर्च करूं?
0: जी बहन,
1: जी बहन, जबरदस्त जबरदस्त। चलें, ठीक बात है, क्योंकि वही होता है ना कि एक ही जैसी हम लोग बिरयानी खाएंगे या पुलाव खाएंगे, तो हमें ये अच्छा एक आइडिया मिल गया कि गोश्त की भी होती है तहरी।
0: जी जी जी बहन, और सबसे पहली बात, दूसरी बात ये कि अपन तो बिरयानी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, पूरा साल ही खाते ना हम तो। ऐसा तो नहीं कि नहीं, संडे आता है तो बिरयानी बनती है, जुम्मा आता है तो सब पुलाव बनता है। ये जो तहरी होती है ना बहन, ये अलग ही होती है, मतलब।
1: हाँ, मुझे मिल गया, नजर तो आ गया, उन्हें सर्च किया है गुलबर्गा की। हाँ, ढूंढते हैं इसको बनाते हैं।
0: यही तो अभी, मतलब आप घर पे जाओगे, तारी बनाओगे, अभी हमारे को भूख लगी तो हम किधर आएंगे बिन एड्रेस दे ना आपको।
1: नहीं, आज तो मैं नहीं बनाऊंगी, आज तो हम बाहर जाएंगे।
0: अरे बहन, अभी 3-4 दिन 5 दिन छुट्टी थी, अभी सोच रहा हूँ क्या करूँ, तारी खाने गए।
1: तो अच्छा, वैसे आप कुकिंग कर लेते हैं सिर्फ?
0: जी बहन, कुकिंग कर लेता हूँ, सिर्फ अंडा बॉइल कर लेता हूँ, अंडा फ्राई कर लेता हूँ।
1: अच्छा, तो फिर किसके ऊपर मतलब डिपेंड करना पड़ता है खाने के मामले में?
0: मैडम के घर में है ना।
1: अच्छा,
0: बहुत मेहनत करती है।
1: चले, गुड, जबरदस्त, चले, अच्छा है ना, इंतजाम तो हुआ है आपका।
0: जी, एक दिन अपने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को ना मतलब खाना बनाना सिखाओ, तो बोलते रहने दे बेटा, पूरा चूल्हा वूल्हा बाहर फेंकना पड़ेगा तेरे चक्कर में, हम लोग को तुम मत फेंक, बोले तू ये सब ये नहीं फायदा हुआ, बोले
1: नहीं। कुछ लोगों का वाकई ऐसा होता है, ये लोग हाथ जोड़ देते हैं, ये भाई तुम काम ना करो, प्लीज तुम काम ना करो।
0: कल रात में फजील भाई बेचारे बता रहे थे, बोले मैं घर पे गया प्याज काटने के लिए, तो उनकी जो बीवी थी तो उनको बोलती हाथ जोड़ के, बोले मत काटो तुमने। काम बढ़ा दी।
1: सही बात है, ऐसे ही होता है, ज्यादातर आदमी जो कि घर पे यूजली काम नहीं कर रहे होते ना, जिनको आदत नहीं होती, उनके अगर वो आ जाए हेल्प करने के लिए, तो और ज्यादा बंदा परेशान हो जाता है कि ये क्यों आ गए भाई। बिल्कुल। अच्छा, आसिफ थोड़ी देर रुके, हम जिंगल की तरफ चलते हैं, फिर वापस आके बात करते हैं, होल्ड पे रहिएगा।
0: ओके।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
3: राइट, 8:01 हो गया है और आप लोग सुन रहे हैं एफएम 107 पे शो मॉर्निंग मस्ती। ईद, ईद का है दूसरा दिन, आप सब लोगों को हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। और आसिफ को मैंने कहा था होल्ड पे रहे, आसिफ चले गए, आसिफ को समझ में नहीं आए। चले जी, हम करते हैं मैसेज आपका पढ़ लेते हैं। और मेरे पास अच्छा कॉल मी बहन का तो आसिफ का ही मैसेज था। आसिफ कहाँ चले गए आप? मैं तो आपका, मैं सोच रही थी कि आगे कंटिन्यू करते हैं बात। अच्छा दी, डियर आरजे मावश एंड द एंटायर टीम ऑफ एफएम 107, ईद मुबारक टू यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मे दिस ईद ब्रिंग्स हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस एंड काउंटलेस स्माइल्स इन टू योर लाइफ। और स्पेशल विशेज टू आरजे मावश फॉर ऑलवेज स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंटरटेनमेंट थ्रू योर वॉइस। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और ये हैं सईद अजगर। सईद अजगर ने बहुत सारी दुआएं भी भेजी हैं पूरी एफएम 107 की टीम के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। और इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। आपको और सब सुनने वालों को ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो। और बचपन की ईद की बात की जाए तो मेरे ख्याल में बचपन की ईद ही दरअसल ईद हुआ करती है। सादगी इतनी कि बस नए कपड़े मिल गए तो खुशियों को ठिकाना ना रहा, और वो ईद के नए जूते सबसे छुपा कर रखना, ईद की सुबह ही सबकी नज़रें उन पे पड़ें, एक अलग ही तजस्सुस होता था। और जेब में 10-15 रुपए की ईदी किसी बेशबा खजाने से कम नहीं लगती थी। और 3 रुपए की बोतल, 2 रुपए की दह भले और सर पर ढेर सारा तेल लगाकर मेले से खरीदी हुई वो रंगदार ऐनक लगाकर जब हम निकलते थे तो खुद को किसी शहजादे से कम नहीं समझते थे। सारा दिन गलियों में घूमने की बेफिक्री और आज़ादी ही असल ईद थी। और आज के बच्चे हज़ारों की शॉपिंग करके भी शायद वो लज्जत नहीं पा सकते क्योंकि उनके पास चीज़ों की कसरत तो है पर वो मिठास नहीं। हमें तो याद है कि ईद का दूसरा जोड़ा अक्सर हमारा स्कूल यूनिफॉर्म हुआ करता था, मगर उसमें भी जो बरकत खुशी थी वो आज के महंगे ब्रांड्स में कहाँ। बस सलाम, दुआ में याद रखना, जफर अली का मैसेज है। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, क्या बात है। और अच्छा, हमारे मतलब घर पर हमें सुनने को मिल रहे होते थे ताने, अम्मी बता दीदी, अम्मी का ये वाला कहना होता था कि हम अपने बचपन में ना ईद जो मनाते थे तो उसमें यही वाली जो चीज़ें हैं वो सारी मतलब जो है वो कपड़े रख के सोते थे, देखते रहते थे पूरी पूरी रात कि कपड़े जो है ना सुबह पहनने हैं। और वो हम लोगों को बेसिकली कह रही होती, तुम लोग ना शुक्रे हो, तुम लोगों का कदर ही नहीं है ये वाला सीन होता था। तो खैर वो उस पर ना मुझे बड़ी हंसी आती है, वो बताती हैं कलर्स वाले ना कोई चश्मे हुआ करते थे, वो पन्नियाँ टाइप लगी हुई होती थी, वो कलर्ड पेपर नहीं उस तरह का होता है तो ट्रांसपेरेंट, तो वो होता था और उसको पहन के घूम रहे होते थे और उस पर इतने खुश होते थे कि उसे पता नहीं क्या लग रहे हैं। तो मेरे जहन में आपकी उस बात से ना अम्मी वाली जो है ना वो चीज़ आ गई कि अम्मी अक्सर ये बताया करती थी, मुझे सोच के मैं तसव्वुर करती थी तो हंसी आ रही होती थी। कॉलर है हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: हेलो अस्सलाम वालेकुम, मावेश खान, ईद मुबारक।
3: ईद मुबारक
4: पूरा टीम को मेरे तरह स्पेशल ईद मुबारक।
3: आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं?
4: क्या हाल है? ठीक है, सही है, अच्छा है, बच्चा लोग सही है। आपको बच्चों को भी मेरी तरह से स्पेशल ईद मुबारक करो, अब इंशाल्लाह तो बड़ा होएगा।
3: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम तो बताएं, मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ नाम आपका।
4: मैं तो आपका बहुत पहला वाला जो आदमी था, मेरा नाम आशिक जान है। मैं पहला कभी
3: आशिक जान, हाँ नहीं वो अब मुझे पता है, मैं बस थोड़ा सा नाम जो ना मिस कर रही थी, जहन में तो आ गया था आपसे बहुत दफा बात हुई है। कैसे हैं भाई और कहाँ थे आप?
4: मैं तो दोहा में वही टीम से, फिर मैं के पाला चेंज किया कंपनी से, अल्हम्दुलिल्लाह लिमोजिन पकड़ा हुआ है। मैं अभी लिमोजिन चलाते, आपको खुद पता है कि लिमोजिन में कस्टमर ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से टीम नहीं मिलते है। लेकिन मैं आपका पूरा 24 घंटे रेडियो सुनता है और आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टीम अच्छा है। और जो आपने कुरान का जो सुबह सुबह जो बात करता था आदमी लोग को पूरा सिखाता था, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम चला था। आपको कामयाब करे अल्लाह आपको बचा नेक सलामत सर करे इंशाल्लाह पूरा दुनिया को काबुल कबूल है इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है
3: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई और इतनी सारी दुआएं मेरे बच्चों के लिए खास तौर पे करने के लिए एक्स्ट्रा शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया
4: बहुत शुक्रिया बस मैं सुनते हैं लेकिन टीम नहीं मिलते आज मैं तीन चार बार ट्राई किया लेकिन मैं बोला चलो इंशाल्लाह मिल जाएगा लेकिन बहुत अच्छा हो गया बहुत टीम के बाद बहुत अच्छी हो गया
3: हां बहुत एक जमाने के बाद आपसे बात हो रही है बहुत जमाने के बाद बिल्कुल
4: बहुत अच्छा हो गया लेकिन मिला ये बहुत अच्छा है क्यों आदमी लोग थोड़ा तीन तक जिंदा है मर जाएगा भरोसा कुछ भी नहीं है
3: अल्लाह आपको लंबी उम्र दे इंशाल्लाह ताला लंबी उम्र दे इंशाल्लाह आपको भी और सब लोगों को इंशाल्लाह ताला लेकिन ये है कि हाँ बात करते रहना चाहिए मतलब थोड़ा मतलब जब भी कभी हो जब आपको टाइम मिले तो जरूर कॉल किया करें क्योंकि जो खासतौर पर पुराने लोग होते हैं ना पुराने हमारे लिस्टनर्स तो होते हैं कहीं ना कहीं दिमाग में जी जी
4: हाँ इंशाल्लाह कल मैं गया था कतार में
3: अच्छा ग्रेट
4: जी बहुत रश था लेकिन मैं उधर एक पैसेंजर उतारा दूसरा मैसेज दिया 19 मिनट था फिर बाद में आया वो सुल्तान ने रोड बंद किया फिर 20 मिनट हो गया फिर मैं छोड़ के सीधा वापस अल्फाज में आया फिर बोले इसका फायदा भी नहीं दो बुकिंग दिया दो बुकिंग छोड़ के वापस आ गया
3: ओए होए अच्छा ये वाला सीन चल रहा है
4: जी वो आदमी लोग बहुत था ना रश बहुत था इसकी वजह से बहुत भीड़ था ना आदमी मिलता था ना रोड मिलता था लेकिन बहुत भीड़ था शाम को 9:30 बजे तक आदमी लोग पूरा वापस आता था ना घरों की लेकिन बहुत भीड़ था इसकी वजह से
3: सही सही हाँ ये तो है ये बाकी मसला है
4: अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा था हर एक जगह में जगह जगह में लेकिन बहुत अच्छा तरतीब है अच्छा सा क्लीनिंग है अच्छा सा कारोबार है बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा प्रोग्राम चलते है दोहा में देखो मेरा आपको खुद भी मालूम है 33 साल हो गया लेकिन दोहा में आप लोग का अपना घर का जैसा सोचते है अपना घर का जैसा समझते है यकीन करो हम लोग इधर से जाएगा 1-1.5 साल के बाद अपना घर में 4-5 महीने हम लोग का दिल नहीं लगता इधर है 2-3 साल ऐसा हम लोग को महसूस होता है जैसा अपना घर में होएगा
3: ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही मैंने जब हम लोग नए नए आए थे ना जब मैंने ये बात सुनी थी कि यहाँ तो जो आ जाता है वो वापस कभी नहीं जाता उस वक्त समझ में नहीं आती थी बात लेकिन अब वाकई ऐसे लगता है कि यहाँ पे रहना मतलब एक बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए
4: जी जी अपना घर का जैसे देखो महेश खान साहब हम लोग 92 में आया था कंपनी में अभी मेरा 33 साल खलास हो गया पहले उर्दू का प्रोग्राम नहीं था बाद में 5 घंटा हो गया 6 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप लोगों ने धीरे धीरे बहुत कामयाब किया अभी 24 घंटा चलता रहेगा लेकिन कतर के अलावा को और भी तरक्की दी बहुत अच्छा प्रोग्राम चलते है सब आदमी लोग खुश है और टीम भी पास होते है ड्यूटी के साथ लेकिन समझो हम लोग ऐसे है कि पूरा दिन अपना घर में हो गया इतना अच्छा सब बहुत चीज पूरा मतलब मौत होता है और पूरा दुनिया को अच्छा लगता है ना
3: बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है चलें गुड जबरदस्त आप अच्छे से इसी तरह से मतलब खुश रहें इंशाल्लाह ताला और खूब अच्छे से अपनी जो रोज ईद के अलावा भी बाकी दिन भी बहुत अच्छे से गुजारते रहें इंशाल्लाह
4: अल्हम्दुलिल्लाह बस आप अल्लाह को आपको कामयाब करे और साथ में बच्चा लोग को पूरा फैमिली को और मेरे तरफ से स्पेशल ईद मुबारक करो और बाकी मेरा पुराना कंपनी वाला जो सुनता है उमर और रज़ा वो भी कभी कभी आपको मैसेज करते है उसको और साथ में इस्तेमान है और आदमी लोग है जितना आदमी लोग कंपनी में होगा सबको मेरे तरफ से ईद मुबारक हजार बार आपको स्पेशल और आपका टीम को भी ईद मुबारक हजार बार
3: बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी थैंक यू ख्याल रखिएगा अपना थैंक यू जी अल्लाह हाफिज रही जी तो हमारे साथ है हमारे कॉलर उसी के साथ बढ़ते हैं हम एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: ईद की रात होगी और भी ज्यादा स्पेशल स्पेशल, जहां होगा नॉन स्टॉप फन, म्यूजिक और सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, क्योंकि आ रहा है शो जश्न ए ईद।
2: ईद मुबारक।
0: और होगी आपकी रिक्वेस्ट, फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ, तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज, ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज।
1: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब। तो मिस मत कीजिए जश्न ईद। ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं मॉर्निंग

0: वापस आ गए एक दफा फिर से हम मॉर्निंग मस्ती ईद में और हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: जी ईद मुबारक आपको. सबसे पहले तो क्या हाल चाल है आपके?
1: जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मैं गुलाम अंजुम बात कर रहा हूँ.
0: जी जी क्या हाल चाल है?
1: मैं ठीक हूँ बस. ईद कुर्बान के इस मुबारक मौके पर तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो.
0: आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो.
1: जी कहते हैं कि हो मुबारक ऐसी हजारों ईदें, हो मुबारक ऐसी हजारों ईदें, मुसरतों की हर घड़ी आपको मुबारक.
0: जबरदस्त आमीन. जी तो कैसी गुजरी आपकी ईद कल?
1: कल तो बहुत अच्छी ईद गुजर गई और बिल्कुल यानी कि ना कहते कि पहले दिन जो होता है ना ईद का वो घर पे ही गुजारा जाए तो बेहतर है. एक तो मिलने मिलाने का सिलसिला भी रहता है और कल इतनी मुलाकातें हो गई कि घर में मेहमान वगैरह आता रहे, हम भी किसी के घर जाते रहे तो वो सारा दिन तो तकरीबन रात के तो मेरे हालांकि 11:15 तो हो गए होंगे.
0: अच्छा
1: तो माशाल्लाह बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा. हम भी के क्योंकि एक दो तीन हमारे घर जो है ना बिल्कुल साथ साथ भी है, जैसे मैं हूँ, बड़ी बाजी है, उनके बच्चे भी हैं तो फिर वो दूसरी फैमिलीज वाले भी जब आ जाते हैं तो वो फिर दो तीन फैमिलीज ना हम लोग मिल के ना एक दूसरे के घर चले जाते हैं. तो कभी यहाँ मिलके खाना खा लिया, कभी वहाँ मिलके खाना खा लिया. तो बस कल यही था कि वो पहले ईद की नमाज पढ़ी तो फिर बड़ी बाजी के घर चले जाते हैं, वहाँ पे सलाम वगैरह करते हैं तो वहाँ नाश्ता वगैरह किया तो कुर्बानी वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया. तो फिर वो बस यही था कि वाइफ कह रही थी कि आप खाए कुछ, मैंने कहा जब तक वो कलेजी नहीं बनेगी ना मैं कोई चीज अपने नहीं खाऊंगा.
0: सही
1: है. दोपहर के तकरीबन 2 बज गए तो वो बार बार मुझे वो कुछ गोश्त वगैरह आ गया इधर उधर से तो मैंने कहा छोटी बोटियां कर लेता हूँ. तो मुझे बार बार कह रही है आप कुछ खा ले बादशाह सलामत, कुछ खा ले आपको भूख लगी होगी, आपको सुबह से खाया हुआ है. अब मैं कह रहा हूँ कि मैं भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सब्र करो गोश्त वाले आते हैं. नहीं नहीं मैं अभी सेवैया लेके आती हूँ, कुछ और लेके आती हूँ. बाद में आती होती है बड़ा एहसास करती है.
0: तो फिर आपने कलेजी से ही नाश्ता किया है.
1: वो ये हुआ कि जैसे ही 2:45 तो मैं थोड़ा लेटा थक गया था तो वो फिर दरवाजा लॉक हुआ. बड़ी बाजी खुद के ये लो मैं ना आपके लिए कलेजी का सालन तैयार हो गया आप खा लेना.
0: सही हो गया.
1: फिर मैं फौरन उठा मैंने सबसे बस मेरा दिल चाहता है मैं ना कलेजी का सालन खाऊ ईद वाले दिन. बल्कि स्पेशली जो हमारे इधर उधर जो घर होते हैं मैं कहता हूँ बस आपने ना वो कलेजी तैयार जब हो जाएगी ना फिर वो खाऊंगा, चाहे अपना घर हो चाहे साथ दूसरों का घर हो. बल्कि कलेजी का सालन सुबह भी खाया और शाम में भी खाया दूसरा वो भांजी के घर में ना वो भी साथ रहती है, उनके यहाँ भी गए, वो भी ईद वगैरह मिली, उनको ईद गिफ्ट भी दिए, बच्चों को भी दिए.
0: अच्छा
1: तो बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छा. बस मिलने मिलाने में इतनी मोहब्बत हो जाती है ईद के दिन. यूं लगता है कि जैसे दिल चाहता है कि गैरों को भी बंदा जो है ना वो करे लगा ले.
0: हाँ और लेकिन आप तो मैं सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त चीज है कि आपके मतलब सारी फैमिली यहीं पे रहती है, ये एक बड़ी बात.
1: जी
0: क्योंकि वही रिश्तेदारों को इंसान वो कर रहा होता है ना, मिस करता है, अच्छा लगता है कि हाँ आपके रिश्तेदार आपके यहाँ पे पास हों, तो ये चीजें हम बड़ी मिस करते हैं.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल. हमारे यहाँ बल्कि मेरी ज्यादा ईदें जो है ना बचपन से लेकर अब तक यहीं पे गुजरी है.
0: अच्छा
1: तो मुझे पाकिस्तान तो इतना मजा ही नहीं आता, मैं जाता हूँ क्योंकि बचपन से यहाँ हूँ तो यहाँ पर सारी ईदें गुजरी हैं. बल्कि हर साल यही होता है कि यहीं पे ईद गुजारी जाए.
0: सही. तो बचपन से यहाँ पे इसी वजह से भाई बहन यहाँ पर है आपके?
1: जी जी मेरे बहन भाई भी इधर हैं, फिर आगे उनके आगे जो बच्चे हैं उनकी बहू हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं.
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रेट जबरदस्त बहुत अच्छी बात.
1: बहुत कुछ लोग कहते हैं आप लोगों की तो लगता है तीसरी नस्ल शुरू हुई, चौथी भी नस्ल शुरू हो जाएगी.
0: इंशाल्लाह ताला जबरदस्त जबरदस्त बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त. जी आप कुछ बता रहे थे.
1: माशाल्लाह मेरे 2 पोते भी है माशाल्लाह, वो भी रात में आए हुए थे.
0: अच्छा
1: मोहम्मद और असद.
0: माशाल्लाह.
1: तो हमारी बहू भी बहुत अच्छी है
0: माशाल्लाह.
1: तो वो माशाल्लाह बस वो दूसरी कंट्री से है, नेपाल से है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है. वो भी आई थी रात को.
0: जबरदस्त.
1: तो बहुत वो क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा. बेटी भी आई हुई थी, वो भी शादीशुदा है.
0: ग्रेट.
1: तो बस ये मिलके यही होता है, आपस में हम लोग फिर बातें करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे, बच्चों को मैं गले लगाता हूँ, प्यार करता हूँ मेरे लिए तो वो छोटे बच्चे हैं
0: ना हाँ सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ईद आपने गुजारी है भाई मतलब सबसे ज्यादा इम्प्रेस मैं आपकी ईद से हुई हूँ
1: और फिर मुझे ये एक शौक होता है वो जो कड़क नोट नहीं होते नए नए पाँच वो बच्चों को मुझे देने में बड़ा मजा आता है। मैं पुराने नोट नहीं देता, वो नए नोट देता, मैंने रखे होते
0: हैं। अच्छा
1: जी। मुझे ना कभी कभी अपना माजी भी याद आता है कि किसी को हम भी बच्चे थे और हम भी इस तरह वो ना हमें कभी कभी कतर में दो दो तीन तीन रियाल पांच रियाल से ज्यादा ईदी नहीं मिलती थी। दस रियाल तो दूर की बात है, पांच रियाल से ज्यादा, पांच रियाल भी उस वक्त ना बहुत ज्यादा होते थे। तो कभी कभी तो कोई दो दो रियाल ही बस देते थे, तीन तीन रियाल भी दे देने, तो वो हमने ये जमा कर करके ना हमारे पास कोई 40 या 45 रियाल बन जाने या 50 रियाल, फिर हमने सोचना इनका क्या करे। पहले तो हमने उनको गिनते रहना, फिर संभालते रहना, तो किसी जगह पे रखे रहना, फिर उसके बाद सोचना अब क्या करूँ। तो वो मेरी आदत होती थी कोई ना कोई बुक खरीद लेना या कोई ऐसी चीज खरीद लेना जो यानी कि ना वो हमारे इस्तेमाल में आए, वो उसकी कोई याद रहे। तो इस तरह अपनी ईदी को जो है ना बच्चों को भी हम यही समझाते हैं, बेटा जो आपकी ईदी होती है ना इससे कोई ऐसी मुफीद चीज खरीदे जो आपको मुस्तकबिल में भी फायदा दे।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब थोड़ा वो कुछ
1: अच्छा,
0: कुछ
1: एक बात शेयर करने वाले थे, मेरे सामने एक डायरी पड़ी हुई, वो अचानक मैंने कल निकाली थी।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर डेट लिखी हुई है 1987 की। तो उसके अंदर भी कुछ मैंने वो ना एक मुझे इस पेज को पढ़ना सैफुर रहमान साहब का ना नाम लिखा हुआ है।
0: अच्छा,
1: उनके ना ऑफिस का नंबर है मेरे पास, वो 894420। ये वो जमाना था 87, 88, 89, तो ये उनके ऑफिस का नंबर होता था 894420 और 894463। अब तो वो शायद सुनने होंगे, तो हम तो वो उस पुराने जमाने के लोग हैं।
0: अच्छा जबरदस्त भाई।
1: जी जी,
0: उस वक्त की चीजें रखी हुई आपकी डायरी, लिखा करते थे आप?
1: जी जी, डायरी लिखा करते थे, इसमें बहुत सारे ईद के शार भी हैं। और एक मैं आपको वो शेर सुनाता हूँ कि वो उस वक्त जब हम ना ईद कार्ड के ऊपर लिखा करते थे, हमें पाकिस्तान से ना बहुत सारे मुझे ईद कार्ड आते थे, मैं भी उनको ना लिखा करता था। वो कम उम्र में ना ऐसे ही एक जज्बा था मेरे अंदर ना, तो वहां से एक मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि एक शेर था कि उधर से चांद तुम देखो इधर से चांद हम देखे, उधर से चांद तुम देखो इधर से चांद हम देखे, निगाहें यही टकराए और दिलों की ईद हो जाए।
0: होए होए।
1: तो बस इसी तरह शार वगैरह लिखा करते जी। और फिर एक जगह लिखा मैंने कि आंखों में जलते हैं तेरे प्यार के दिए, कहता है मेरा प्यार तुझे ईद मुबारक, ईद मुबारक।
0: ये किसको लिख के भेज रहे थे ये शेर?
1: ये बस वो कम उम्र में इंसान को होता ही है थोड़ा।
0: ये सिर्फ जमा किए या फिर लिख के भेजे भी किसी को, ये बताएं?
1: बस वो अपने बड़ों को लिख देते थे हम लोग, अपने जाने वालों को, बस सबको भी लिखा करता था ईद। सबको लिखा करता था। अभी देखे ना जमाना, मैं विश बहन अभी जमाना भी चेंज हो गया।
0: जी जी।
1: अब देखे लोग व्हाट्सएप पे कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो हमारा दौर कुछ और था, अभी कुछ दौर और है, आने वाला दौर भी शायद कुछ और हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: अब तो जमाने के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो भी तब्दील होती जाती है। जी
0: जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये बड़ा अच्छा, मतलब जो है ना ये जो होता था ना कार्ड्स लिखने का सिलसिला, लेटर्स लिखने का सिलसिला, इसका वाकई कोई नियमुल बदल नहीं है।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो पहले से वो ईद कार्ड को फिर सलामी ईद लिखा करते थे और इसके नीचे लाजम दो तीन अशआर तो मैं लिखा ही करता था। बिल्कुल
0: ग्रेट। जी जी जी।
1: और पुराने जमाने में ना कुछ ऐसे होते थे वो जो ईद कार्ड होते थे बहुत पुराने जमाने के, मैंने एक ईद कार्ड देखा था शायद मेरे वालिद साहब के जमाने का, तो मेरे वालिद साहब की तस्वीर है, अब तो इस दुनिया में नहीं है, और एक तरफ मेरे एक भाई की तस्वीर है और एक तरफ मैं हूँ एक, और वो ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना, हाँ जी ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना ईद कार्ड है मेरे पास।
0: अच्छा, तो ईद कार्ड कैसे बना था ये?
1: वो ये पता नहीं पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पर कैसे बनाते, तो इस तरह से ना तस्वीर बीच में ना, तो वो छोटी छोटी तस्वीरें भी होती थी उसके ऊपर भी ईद कार्ड बनाया करते थे। जी
0: जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी मेमोरी है
1: जी, बहुत अच्छी मेमोरी है। तो उस वक्त अब तो ये जो है ना वो कार्ड वाला सिलसिला खत्म होता जा रहा है.
0: बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब अब तो देना दिलाना ही नहीं है ना कार्ड्स का बिल्कुल भी. जबकि अभी इस वक्त आप किसी को लिख के भेज देते हो कुछ, आप 50 लोगों को मैसेज कर दो कुछ भी, लेकिन उसमें वाली फील नहीं होती. आपको भी पता होता है कि बस आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चलता है. आप सुनाए, आपकी ईद कैसी गुजरी?
0: अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब जो है वो फैमिली के साथ, हमारा वो वाला सिलसिला तो नहीं है. मैं आपके ऊपर तो रश कर रहा है मुझे माशाल्लाह से कि इसी तरह से मतलब हो ना, सारे आपके फैमिली साथ में हो तो बहुत मजा आता है. लेकिन खैर हम अपने जो चार लोग हैं हम इधर उधर घूम लेते हैं, तो बस यही किया हमने. लेकिन मजा आया, अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह.
1: चलिए बहुत शुक्रिया. चलिए अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और कायनात का जरा जरा जो है आपकी खुशियों में शामिल हो जाए, मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात. और आखिर में यह है कि रंग छाया ईद का, झूमते हैं फूल भी, वो मुबारक कह रहे हैं फूल भी.
0: जबरदस्त जबरदस्त भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. बहुत ख्याल रखिएगा और आज भी वैसे ही लोगों से मिलना जुलना कीजिएगा, खूब अच्छे से इंजॉय कीजिएगा. ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. भाई जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे और शहजादा सलीम का मैंने देखा कि मैसेज आया हुआ है, वो कहते हैं कि मुझे कॉल करें. तो चलें आपको भी हम कॉल मिलाते हैं और आपसे भी फिर ईद की ज़रा मुबारकबाद वगैरह शेयर करते हैं इंशाल्लाह. तो देखते हैं शहजादा सलीम हमारी कॉल उठा लें जल्दी से. पहले दो नंबर मैं मिलाती हूँ और जल्दी से कॉल मिला के फिर उनसे बात करते हैं. चलिए आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे. उसके साथ ही साथ व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है 6622107 जिस पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं. तो मैं मैसेजेस देख लेती हूँ जब तक किसका आया हुआ है. शहजादा सलीम अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक कहते हैं. इसके साथ ही शकील अहमद ने मुझे कहा है अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सिस्टर, आपको भी गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक भी आपने कहा. और इसके साथ ही हैं हमारे साथ अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू. अच्छा ये मैसेज पढ़ती हूँ, शहजादा सलीम ने कॉल उठा लिया है तो हम पहले उनसे बात कर लेते हैं. हेलो अस्सलामु अलैकुम.
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातहू. ईद मुबारक.
0: ईद मुबारक आपको भी. ईद मुबारक. कैसे हैं भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. कैसी गुजरी मामी फैम की?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी अच्छी गुजरी. बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, उन्होंने बताया ना मूवी देखने गए लेकिन वो मूवी देखने नहीं दी. उन्होंने देखने नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं 15 प्लस अलाउ नहीं है. तो अभी फिर उसको वजह से हमने देखी नहीं. अब देखें, पता नहीं देखना होती है कि नहीं होती.
2: जी जी जी जी
0: जी जी.
2: बाकी बेहतरीन रहा हमारा. मेरा तो ईद का तो ऐसा रहा, मेरी तो मसरूफियत रही थी एक लास्ट वीक से पहले से ही, क्योंकि हमारे जो वेलफेयर ऑफिसर और कंपनी का कुछ मैनेजमेंट है उन्होंने ना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग के लिए ना मेरा नाम डाल. तो उसमें क्या क्रिकेट तो होता ही है, बीच में फुटबॉल और वॉलीबॉल और दो टीम हो गई. तो इनके सामने इतनी मसरूफियत रही तो फिर हमने हमारा जो और ग्राउंड एक ही था उसमें गोल भी बना था फुटबॉल का और उसमें पिच भी बनी थी क्रिकेट की.
0: अच्छा.
2: तो हमने ना कंबाइन कर लिया. तो फिर मैंने क्या बोला, हमारा क्रिकेट का सिर्फ तीन ही टीमें और नॉकआउट है, सिर्फ टोटल तीन ही मैच होगा. ठीक है, तो आपने फिर ईद की नमाज पढ़ के आना है 5:30 और 6:00 राउंड स्टार्ट कर दो, 9:00 ग्राउंड खाली हो जाएगा.
0: अच्छा.
2: फिर उसके बाद उनको दे दो शाम को. हाँ शाम को उनको दे दो. तो और फिर गर्मी भी कब रही, गर्मी का भी बड़ा मसला था. तो बहरहाल क्रिकेट का तो हो गया और हम तो पहली नॉकआउट में बाहर हो गए, क्योंकि हमारे टीम के प्लेयर ने ना दो प्लेयर ने 3×6 = 7 कैच छोड़े. जीता हुआ मैच वो प्लेट में परोस के दे दिया और बाहर हो गए. हाँ तो फिर बाकी कुछ रहा अपना अच्छा खासा. मैं तो उसमें भी था, ऑर्गेनाइजिंग में भी था ना, तो मुझे भी सर्टिफिकेट वगैरह मिला, गिफ्ट वाउचर मिला और मेडल्स वगैरह भी बनाए. तो बड़ा अच्छा रहा, मतलब पूरा दिन मसरूफियत. रात को फ्री हुए 9:30 तकरीबन, ये सारा पूरा उसमें अच्छा दिन. अब बस मैंने उठा फिर मैंने रेडियो लगाया कि मैनेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, कॉलिंग बिजी चल रही थी तो आसिफ भाई की बात सुन रहा था कॉलिंग पे. उसके बाद फिर ये आ गया, जेल आ गया. तो फिर मैं बोला देखते हैं बाद में फिर इंशाल्लाह. फिर मैंने मैसेज डाल दिया, मैं बोला चलो बात तो इंशाल्लाह हो जाएगी. तो बहरहाल बेहतरीन रहा
0: ईद का. गुड जबरदस्त, मतलब आपका तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा और आपका वो फेवरेट भी है, आपकी हॉबी भी है, तो जबरदस्त भाई, मतलब मजा आया. लेकिन ये दुख रह गया कि हार गए. हाँ
2: अरे हाँ वही ना, साथ से तो बोलते मैनेजमेंट और भी हलवा हलवा एकदम
0: होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, मतलब कभी कभी ये भी याद बन जाती है
2: वो ही ना, अरे तीन का और वो ऐसे बैट्समैन के कैच तुम छोड़ रहे हो, तो वो तो बिंदा से था उठा दे, हाँ दे रहा है हवा में, ये तो बोल रहे ये कैच नहीं पकड़ने वाले, ये लोग लगता है वो तो कॉमेंट्री जो कर रहा था ना उसने तो ये बोल, ये लगता है ये बोल्ड ही करेंगे, ये कैच नहीं पकड़ने वाले लोग।
0: आपकी टीम जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से इंस्पायर ना हो गई हो
2: ऐसा कुछ बड़ा। और वो मैंने वो जो आप चल रही थी ना टॉपिक जो तिहारी की ना,
0: जी जी जी जी जी
2: हाँ, तिहारी बॉम्बे में भी बहुत फेमस है और बड़ी आसान रेसिपी है मैमिश मैम।
0: हाँ मैंने देख ली रेसिपी, मैंने देख ली अभी बैठे बैठे
2: हाँ। हमारे भी घर में बनती है ना,
0: अच्छा।
2: वो गोश्त मसाले में ना अच्छा भून के इतना बॉईल करते, पानी इतना डालते, वो चावल धो के रखते ना उसी में बिठा देते, फिर पानी नहीं डालते, तो यानी चावल भी बैठ जाता है फरफरा एकदम से और मस्त हो जाती है। इसमें सारे होते हैं हरे मसाले, टमाटर, अदरक, लहसुन और सारे गर्म मसाले पाउडर करके,
0: बस वो बिरयानी मसाला थोड़ा सा मतलब हल्का सा मिसिंग है, वैसे तो सारे मसाले
2: बेटा दो मसाले तो उसमें कोई भी, बस ये क्या उसको बॉईल करना है, पानी डाल के ना अच्छा बॉईल होके जब पीस निकाल के जब हाथ से आप दबाओगे ना तो वो जब कहना है गोश्त उसमें, फिर ये चावल जो धुला हुआ डाल के बिठा दो दम पे खत्म, उसके बाद क्या है फिर आने दो।
0: अच्छा हम लोगों के यहाँ पुलाव बनता है बेसिकली ज्यादा, मतलब अगर सादी की तरफ हो या फिर बिरयानी बनती है, तो ये थोड़ी सी यूनिक चीज है। गोश्त की तहरी मैंने पहली दफा सुनी आज।
2: और इसमें एक क्या मालूम कारस्तानी पता है आपको, इसमें जो गोश्त जो बोटियां रहती है ना, चाहे बीफ हो चाहे मटन, तो छोटी छोटी रहती है, सिर्फ बोटियां नहीं थी, हड्डियां नहीं दिखेगी इसमें बिल्कुल भी, सिर्फ बोटियां बड़ी छोटी छोटी एकदम पेपर मेड गोली जैसी होती है ना, मतलब छोटी छोटी मतलब गोली होती है, बोटियां खेलते ना इस तरह की, हाँ इस तरह के, वो बड़े बड़े पीसेस नहीं होते हैं मिलेंगे इसमें। और बड़ा उसी में फिर है ना एक है ना नवरत्न पुलाव भी आ जाता है, तो उसमें ना कबाब है ना, कबाब डालते हैं बीच में, पार्टीशन मारते हैं चावल का, उसके बाद बॉयल अंडे, फिर पार्टीशन मारते हैं, उसके बाद चिकन कबाब है ना वो डाल के फिर चावल का पार्टीशन मारते, तो उसको ना फिर नौ आइटम डाल के उसको बोलते हैं नवरत्न।
0: नवरत्न, अच्छा ये कोफ्ते की बात तो नहीं कर रहे आप, कोफ्ते अंडे
2: कबाब, यानी हर हर तरह के ना उसमें स्टेप बाय जो है ना, मतलब डिस्प्ले रहता है और बीच में ना चावल है ना पार्टीशन आते रहता है पैकिंग, फिर तो ऐसे नौ तरह के होते हैं, उसको बोलते हैं नवरत्न, ये सब ईदों में होता है ज्यादा।
0: अच्छा अच्छा।
2: और फिर और एक है जमजम, बड़ा फेमस है वो भी जमजम।
0: अच्छा।
2: वो भी एक अलग, वो भी एक अलग नायाब है, बहुत सी चीज एक्सपेरिमेंट करने मिलती जब भी वेकेशन जाओ ना यहाँ वहाँ, तो बहुत सी बड़ा मतलब बहुत अच्छा है, ये इंडिया भी तो और पाकिस्तान दोनों खाने में तो मशहूर ही है,
0: मशहूर है बिल्कुल,
2: ये एक एक इलाके का जरा एक फेवरेट होता है।
0: बिल्कुल। अच्छा हमारे यहाँ जैसे सबसे ज्यादा खाने जो मशहूर है वो कराची के हैं, और कराची के लोगों को देखें तो कराची के जितने भी वहाँ पे लोग जो हैं, जो लोकल्स हैं, वो इंडिया से हिजरत कर आए ना, माइग्रेट कर आए, तो बेसिकली वो इंडियन फ्लेवर्स ही हैं। तो ये है सिलसिला, चलें गुड, जबरदस्त, आपने काफी सारी चीजें बता दी, मैं सारी रेसिपीज देखूंगी बैठ के, नवरत्न पुलाव सारी चीजें।
2: किसका प्रोग्राम है
0: अब मेरे बाद दोपहर में, मुझे आइडिया नहीं है बेसिकली, क्योंकि पता नहीं किसका होने वाला है, हाँ मुझे आइडिया नहीं है।
2: 10 बजे 9 बजे तो नहीं होगा, 10 बजे
0: हाँ 10 बजे मुझे आइडिया नहीं है कि किसका है, शायद दोपहर में है
2: वो इनाम वाला, खाली शाम का है 5 बजे का जो वाउचर बट रहे 500 रियाल के,
0: शायद शायद नाजिया लोगों के शो में नहीं था इनाम कल रात में 8 से 10,
2: कल बहुत पूरा बिजी था मैं।
0: अच्छा मुझे लगता है कि शायद उस शो में भी हो, क्योंकि वो 8 से 10 है ना, तो शायद उसमें भी होना तो चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अब मुझे कन्फर्म नहीं है।
2: हाँ मैं भी सरोवर भाई, ये लोग मॉर्निंग में है 10 बजे अभी कोई शायद, मेरा ख्याल है।
0: अच्छा,
2: अभी
0: अच्छा।
2: तो फ्री है आज तो कल जरा ज्यादा मुसरिफ थी, तो थोड़ा थोड़ा लास्ट में ना शाम को जरा बैठा था रिलैक्स होके, तो थोड़ा लगा तो कबीर भाई का चल रहा था मैं, तो फिर उसके बाद फिर मैं बिजी हो गया, तो थोड़ा सा बिजी हो गया मैंने।
0: सही सही। चले मैं भी देख के ना आपको बताती हूँ कि किसके किस वक्त में शोज हैं, तो फिर मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्म करती हूँ।
2: सैटरडे तक चलेगा ना ये?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सैटरडे तक यही चलना है। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा, अच्छे से गुजारें ईद। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। राइट जी, तो अच्छा ये मैं बता दूं कि मैंने अभी इनके कहते हुए देखा कि किस किस के शोज़ हैं, कब हैं। तो हाँ, दोपहर में 10 बजे से, हाँ है 10 बजे से अभी, मतलब थोड़ी देर के बाद आरजे सर्वर एंड आरजे मीता आपके साथ होंगे, और उसके बाद फिर हाउसफुल ईद होगा विद आरजे कबीर, और ये 5 से होगा, 5 से लेके आई थिंक 8 बजे तक है, और फिर रात में जश्न ईद विद फजील एंड आरजे नासिया। तो ये है सिलसिला। अच्छा जी, इसके साथ ही हम मूव करते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं थोड़ी देर में।

राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ. ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू. ईद का दूसरा दिन और उम्मीद है कि अच्छा गुजर रहा होगा. जो लोग उठ चुके हैं उन लोगों का नाश्ता वगैरह या तो हो गया होगा या फिर चल रहा होगा. और हाँ, नाश्ते से याद आया भाई, नाश्ते के हवाले से बात करनी थी. तो आज का नाश्ता जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सोचा पहले मैंने भी खुद ये था कि मैं आज ही बना लूँगी, लेकिन हुआ ये कि कल जो हमने बनाया वो बच गया था. तो बच गया था तो हमने सोचा कि भाई आज तो उसी को मतलब यूटिलाइज करना है. जो चीज़ें वो आज हम दोबारा से वही इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे अपना. कल वाला बना बहुत अच्छा था, मज़ा आया, बहुत मज़ेदार नाश्ता. और नाश्ते में मतलब एक अलग भाई मज़ा होता है. और आज ये है कि आज का सीन ये है कि आज वैसे भी घर वाले सो रहे हैं, तो अब जाके मैं भी थोड़ा सा सो ही जाऊंगी और उसके बाद फिर उठ के हम थोड़ा सा लेट नाश्ता करेंगे. लेकिन कल वाला ही नाश्ता होगा. लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट टेबल रोज़ाना मतलब अरेंज करनी है और कल इंशाल्लाह मैं ये इसके ऊपर आऊँगी जो आज मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग आज अपने घर पे अगर बना सकते हैं हलवा पूरी तो बहुत ही अच्छा रहेगा. क्योंकि ट्रेडिशनल थोड़ा सा ना मतलब देसी वाला जो अपना नाश्ता है वो किया जा सकता है, घर पे बना लें. और घर पे बनाने का बड़ा भाई इजी वे है. आज मेरा इरादा है कि मैं आलू बॉयल करने के लिए रख दूंगी, छोले बॉयल कर लूंगी और उसके बाद झटपट बनता है बिल्कुल. मतलब कोई ऐसा जो है ना बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत को टाइम नहीं लगता. बस आपने थोड़ा सा करना है ये दोनों चीज़ें आपके पास, छोले आलू बॉयल हैं थोड़े थोड़े से ले लें जितने क्वान्टिटी में आपको चाहिए. उसके बाद आपने राई दाना और कलौंजी इन चीज़ों का कड़ी पत्ता वगैरह डाल के आप थोड़ा सा बघाड़ कीजिए. उसमें ही जो बॉयल आलू हैं छील वील के उनको डाल दीजिए. कोई बहुत ज़्यादा कटवट करने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही वो अपनी शक्ल ले लेते हैं. साथ ही आप छोले डाल दें, चंद मसाले डालते हैं वो डाल दें. और मैं उसमें क्या करती हूँ कि उसको थोड़ा सा मतलब फ्लेवर देने के लिए थोड़ा जो अचार वगैरह होता है ना, मिक्स अचार आपके घर पर, वो शामिल कर दें पकने को.

देंगे, खुद ही पक पका के आराम से जो है ना वही हलवा पूरी वाला जो वो सालन आता है ना उसके साथ वो बन जाएगा। अच्छा, यूजुअली लोग अलग अलग भी बनाते हैं लेकिन हम ये करते हैं कि साथ ही बना लेते हैं, तो दोनों में एक ही चीज़ में दो दो मज़े आ जाते हैं। तो ये कर सकते हैं आप, और पूरियां भी वैसे इजीली बन जाती हैं, अगर आप चाहें तो बना लें चाहें तो बाहर से ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो भी यही है कि पहले से आटा गूंद के रख दें तो फिर इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता है, ईज़िली बन जाती हैं। तो कल का इंशाल्लाह इरादा मेरा है ये, और हलवा बनाना भी बहुत ही आसान होता है, आपको पता ही होगा तो मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन ये कि ये नाश्ता जो देसी नाश्ता होता है ना अपना हलवा पूरी वाला नाश्ता, मेरा ख्याल है इसको इंडिया में लोग छोले भटूरे भी कहते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन कुछ मिलता जुलता होता है। तो चाहे वो छोले भटूरे हो चाहे वो हलवा पूरी हो, लेकिन इसका तो कोई मैच है ही नहीं। ईद हो या कोई भी ख़ास ओकेजन हो तो आपको मतलब एक होती है तलब कि भाई हलवा पूरी। अच्छा, हमारी ये है सीन कि मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि घर पे बनी हुई ना एक हलवा पूरी, आपको एक तो थोड़ा सा ये भी होता है कि मतलब अपने घर पे बनाई है, एक अलग मतलब बच्चे भी खुश हो रहे होते हैं। अच्छा, ये यूजुअली हमारी अम्मी बैठ के जिस वक्त में मतलब ये होता है कि वैसे आप ब्रेड खा ली, यूजुअली ऐसे ही होता है, लेकिन जब ख़ास अहतमाम हुआ करता था ना बैठ के कि अम्मी पराठे बना रही हैं तो सब उनके आस पास बैठे होते थे। और हमारे उधर पाकिस्तान वाले घर में हमारा ये था कि नीचे एक चूल्हा बाकायदा लगवाया हुआ था किचन के बाहर, कि जहाँ पर बैठ के नीचे अम्मी मतलब जो है ना पराठे बनाने होते थे, आलू के पराठे बनाने हैं कुछ इस तरह का, तो वो नीचे बैठ के बनाया करती थी। तो सारे बहन भाई इर्द गिर्द बैठ जाते थे बिला वजह सब बैठ के उनको बनाते हुए देख रहे हैं। तो ये मज़े का सीन होता है, आप बाज़ार से इजीली ले सकते हैं, लेकिन अगर घर पे बनाते हैं तो आप यकीन माने कि बच्चे बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से, कुकिंग करते हुए माँ को देख के उनके मतलब एक बात होती है जो मुझे फील होती है कि मेरे बच्चे भी खुश हो रहे होते हैं और हम भी खुश होते थे जब हमारी अम्मी मतलब इस तरह से बना रही होती थी, हम आसपास खड़े होते थे साथ में हेल्प कर रहे होते थे। तो ये एक अलग बात है, बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो बाहर से मंगवा के खा लें, जैसे आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू ऑल बिलव्ड आरजेस क्रू मेंबर्स एंड ऑल एसोसिएट्स, यू पीपल आर टू ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग। तो आई एम नॉट अ हिंदी और उर्दू स्पीकर, बट एवरी डे व्हेनेवर आई गेट टाइम आई यूज टू लिसन यू गाइस, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस थ्रू योर वॉइस एंड वर्ड्स एंड मेक अस मोटिवेटेड। मे अल्लाह ब्लेस यू, मोहम्मद शुएब अल नजर फ्रॉम बांग्लादेश। क्या बात है, आपका मैसेज बहुत देर से शामिल हुआ, इसके लिए माजरत भाई, लेकिन ये के बीच में कॉल्स आ गई थी। थैंक्स अ लॉट, आपके मैसेज को देख के बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक 107 एफएम की पूरी टीम का इन लिसनर्स को, मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव सक्सेसफुल लाइफ मकसूद आलम। मकसूद आलम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके भी ईद विश का। जी राइट, तो ये था हमारा भाई आज का शो, तकरीबन बस हम एंड पे पहुंच गए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे शोज अच्छे लग रहे होंगे। बाकी जैसे अभी हम आपको बता चुके हैं थोड़ी देर पहले कि पूरे ही दिन आपके लिए बहुत कुछ है, आप पूरे दिन हमारी ट्रांसमिशन को इंजॉय कर सकते हैं और उसमें हिस्सा भी ले सकते हैं। कुछ जो प्रोग्राम्स आपके लिए हैं जिसमें आप कैश प्राइजेस जीत सकते हैं तो उस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और वो कैश प्राइजेस हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कल और परसों के दिन भी मैं आपके साथ होने वाली हूँ, देखते हैं कि कितने लोग सुबह जो है ना छुट्टी वाले दिन जागने की आदी हैं। तो आप लोगों से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मौका मिलता है तो ज़रूर आइएगा हमारे साथ, शो में शामिल होइएगा, और फ्राइडे और ये सैटरडे भी जो ईद के दिन है सेलिब्रेट करें। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि एक ईद की ना मतलब वो सेलिब्रेशन का एहसास रहता है इन शोज़ के ज़रिए भी, चाहे फ्राइडे हो सैटरडे हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप सुन सकें तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वही है कि वो अगर नहीं कोई रिमाइंड करवाने वाला हो ना तो आहिस्ता आहिस्ता रंग फीके पड़ने लगते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शो में शामिल हों और कॉल कर सकें कॉल करें, अगर नहीं कर सकते तो चलें सुन ही लीजिएगा, लेकिन हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे बस इजाजत तलब करती हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल 7 से 9। ईद मुबारक एक दफा फिर आप सब लोगों को मेरी तरफ से, और अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और उनके हमवतन आर प्रगनंदा को मायूस कुन शिकस्तों का सामना करना पड़ा। फ्रांस के आली रेजा फिरोजिया लगातार दो जीत के बाद पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच गए हैं। जर्मनी फुटबॉल टीम के हेड कोच खुलियान नागल्समान ने वाज़े कर दिया है कि उनकी टीम का मकसद फीफा वर्ल्ड कप जीतना है और एक दिहाई से ज़्यादा अरसे की मायूसियों का खत्मा करना है। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में हफ्ते को डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन का मुकाबला आर्सेनल से होगा। मारूफ टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रांस के वैलेंटीन रॉयर को एक सख्त और तवील मैच में शिकस्त दी और ये मुकाबला 3 घंटों से ज्यादा देर तक जारी रहा। पेरिस में जारी फ्रेंच ओपन टेनिस में मर्दों के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर आज खुआन मैनुअल केरुरंडलो का सामना करेंगे। जो खुआन ने पहले राउंड में ग्रेट ब्रिटेन के जैकॉब फियानले को हराया था। फ्रेंच ओपन के वीमेन सिंगल्स इवेंट में अरेना सावलेंका, नाओमी ओसाका, अमांदा एनिसोबोवा और डिफेंडिंग चैंपियन कोको गॉफ आज अपने सेकेंड राउंड मैचेस खेलेंगे। वहीं सिंगल्स ड्रॉज में बर्तानिया की आखिरी बाकी रहने वाली खिलाड़ी कैटी बोल्टर का मुकाबला 28th सीड अनास्तासिया पोटापोवा से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ मैच में राजस्थान ने बुध के रोज हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज़ हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क के शहरियों, मुकीम अफराद और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से बरदर मुल्क उर्दन के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ऐमन अस्सफ़दी ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दो तरफ़ा तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद फ़रोग़ देने के वसाइल पर तबादला ख़याल किया। वज़ारत औक़ाफ़ उमूर इस्लामी की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औक़ाफ़ ने ईद उल अज़हा के मौके पर फ़रहत ईद के नाम से एक ख़ुसूसी इक़दाम किया, जिसके तहत रियासत के मुख्तलिफ़ इलाकों में 19 बड़ी मसाजिद और ईदगाहों में तकरीबन 4,000 बच्चों में तहफ़ तकसीम किए गए। कतरी हज मिशन ने इमसाल हज के लिए अपनी जामे ऑपरेशनल मनसूबाबंदी पर अमल जारी रखते हुए अराफात से मुज़दलिफ़ा तक हज्जाज की रवानगी को मेट्रो ट्रेन के ज़रिए मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किया। कतारा कल्चरल विलेज ने कल ईद उल अज़हा के मौके पर अपनी रिवायती तकरीबात का आगाज़ किया, जिसमें मुतनव्वे सकाफती और तफरीही प्रोग्राम्स शामिल हैं। लुबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक जाबहक अफराद की तादाद 3,269 हो गई है, जबकि 9,840 अफराद जख्मी हैं। सामीन इसी के साथ साथ आज का नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचता है। उर्दू रेडियो कदर FM 107 के स्टूडियो से साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद सूडानी और न्यूज़ रूम से नफीस मोहम्मद अमीन और मुझे फुरकान शाहिद को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।
2: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, ब्लेस योर होम विद लव एंड पीस। ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है। सभी पुरानी बातों को, गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। विश यू अ वेरी जॉयफुल एंड सेफ ईद उल अधा। और सुनते रहें FM 107 दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नासिया एफएम 107 से एंड वेलकम टू आवर स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड ईद वैल्यूज. दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं काइंडनेस की. और ये कहते हैं कि ईद उल अधा की रूह है. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि छोटी छोटी काइंडनेस भी कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है. और शायद इसे ही कहते हैं रिपल इफेक्ट. बिल्कुल उस लहर की तरह जो पानी में एक छोटी सी बूंद गिरने से दूर तक फैल जाती है. ईद उल अधा भी असल में इसी काइंडनेस, सेक्रिफाइस और शेयरिंग का पैगाम देती है. जब हम कुर्बानी करते हैं तो सिर्फ एक फर्ज अदा नहीं करते, बल्कि अपने अंदर की सेल्फिशनेस को, अपने अंदर के ईगो को, अपने अंदर की अना को कुर्बान कर देते हैं. ये एक्ट हमें सिखाता है कि अपनी खुशी को भी कई बार दूसरों की खुशियों के साथ जोड़ कर देखो. शायद यही असल इंसानियत है. सोचिए, जब आप किसी जरूरतमंद को गोश का एक हिस्सा या एक जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हिस्सा देते हैं, तो सिर्फ आप उसे एक मील उसके साथ शेयर नहीं करते, बल्कि उस पल में एक मुस्कुराहट, उस पल में एक एतमाद, उस पल में एक भरोसा भी आप उस तक पहुंचाते हैं. ईद की खुशियां अधूरी हैं अगर हम आसपास अपने लोगों का और ऐसे लोगों का जो जरूरतमंद है उनका ख्याल ना रखें. कई बार एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस लोगों को मजबूर कर देता है बड़े बड़े काइंडनेस एक्ट करने के लिए. कुछ आपने किया जो उस शख्स ने आपसे सीखा और वो अपनी उसी कैपेसिटी में जितनी भी उसकी है इस्तात कुछ ना कुछ बेहतर किसी और के लिए करना चाहता है. वो शख्स कल किसी और के लिए अगर अच्छा करता है तो यकीन मानिए इसका सवाब आपको भी मिलेगा. काइंडनेस का ये सिलसिला सिर्फ चैरिटी तक ही महदूद नहीं है. आप एक सिंपल जेस्चर से भी किसी की लाइफ में फर्क पैदा कर सकते हैं. जैसे किसी वर्कर को ईद मुबारक कह देना, किसी कलीग के लिए चाय बना देना, या किसी तन्हा इंसान के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लेना. ये छोटी छोटी चीजें सोसाइटी को ज्यादा कनेक्टेड और कंपैशनेट बनाती हैं. ईद उल अधा हमें और आपको सेक्रिफाइस करना सिखाता है. हमें और आपको बताता है एम्पैथी को अपनी लाइफ में किस तरह से इनकलकेट करना है. दोस्तों, ये फेस्टिवल सिर्फ रिचुअल नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है जहां इंसान दूसरे के लिए भी सोचता है, उनकी मदद करता है, अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करता है और अपनी खुशी को कुर्बान करने के लिए तैयार है. आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में काइंडनेस का रिपल इफेक्ट और ज्यादा पावरफुल हो गया है. एक पॉजिटिव सा मैसेज, एक इंस्पायरिंग स्टोरी या एक स्मॉल हेल्प भी सोशल मीडिया के जरिए हजारों लोगों तक पहुंचाई या पहुंच सकती है. इस तरह एक छोटी सी गुड डीड एक बड़ा मूवमेंट बन जाती है. अगर हम सिर्फ ईद के दिन ही नहीं बल्कि रोजाना अपनी जिंदगी में काइंडनेस को अपना लें तो यकीन मानिए सोसाइटी में एक बड़ा रियल पॉजिटिव चेंज लेकर हम आ सकते हैं. हर घर, हर मोहल्ला, हर शहर एक बेहतर जगह बन सकती है. क्योंकि याद रखने वाली बात यह है कि काइंडनेस फ्री होती है, काइंडनेस कंटेजियस होती है और इसका इम्पैक्ट प्राइसलेस होता है. एक छोटी सी मेहरबानी किसी की जिंदगी बदल सकती है. दोस्तों, इस ईद सिर्फ कुर्बानी जानवर की ना दें, बल्कि अपने ईगो, अपनी सेल्फिशनेस, अपने सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड की भी कुर्बानी दें और कोशिश करें कि आप अपनी काइंडनेस से दूसरों को इस तरह से मुतासिर करें कि वो भी मजबूर हो जाएं दूसरों के साथ उसी तरह से एक्ट ऑफ काइंडनेस करने के लिए. क्योंकि जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो उसकी लहर कभी भी रुकती नहीं, टूटती नहीं. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. आप सभी को एक बार वापस से ईद की ढेरों मुबारकबाद. सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी.
1: अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आरजे मावश
0: FM 107, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे, और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे। आमीन।
1: क्रिकेट हो
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।

सबको तहे दिल से ईद मुबारक। आज इस खास दिन में आज हम बात करेंगे खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग क्रिकेटर्स, स्टार क्रिकेटर्स मैं अगर कहूं तो मैं गलत नहीं हूं, राहुल द्रविड़। जी दोस्तों, राहुल द्रविड़ इंडिया के सबसे अजीम बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उनके करियर में, उनके प्लेइंग करियर में उनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद होगा, क्योंकि उनकी बैटिंग टेक्निक और पेशेंस बहुत मजबूत थी। फास्ट बॉलर्स उनको आउट करने में काफी परेशान रहते थे बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिफेंस। राहुल द्रविड़ ने अपने इंटरनेशनल करियर में इंडिया को कई मुश्किल मैचेस में संभाला और अपनी काम पर्सनालिटी से फैंस का दिल जीता। उनकी पैदाइश बैंगलोर में हुआ और उन्होंने 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, जहां उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबको मुतासिर किया। राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में शामिल हैं। उन्होंने दुनिया के लगभग

कामनेस और पेशेंस है तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी टॉप बॉलर्स को आप रोक सकते। और इन द एंड इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उस टेस्ट मैच में हराकर ऑस्ट्रेलिया का जो 16 सक्सेसिव टेस्ट विक्ट्रीज उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड था ये, उसको रोका। एंड आज भी वो इनिंग्स एक नौजवान क्रिकेट के लिए एक मिसाल के तौर पर हर एक्सपर्ट्स हर कोचेस सबको कहता है कि देखिए वो इनिंग्स ऑफ राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण। उनकी पार्टनरशिप सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और लक्ष्मण के साथ बहुत मशहूर रही है। रिटायरमेंट के बाद राहुल द्रविड़ ने कोच के तौर पर भी बहुत कामयाबी हासिल की। उन्होंने इंडिया के यंग क्रिकेटर्स को गाइड किया और डिसिप्लिन, हार्डवर्क और सिंप्लिसिटी की मिसाल बन गए। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए अल्लाह हाफिज़।

0: विद आरजे फजील ईद के दूसरे और चौथे दिन दोपहर 3 बजे, जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर, एक उम्मत और ईद में मोहब्बत का पैगाम। ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामिने किराम, मैं हूँ तलहा अशरफुज़्ज़मान और आप सुन रहे हैं ईद उल अज़हा का खुसूसी प्रोग्राम पैगामे ईद। सामिने किराम, ईद उल अज़हा सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं, ये इंसानियत, हमदर्दी, मोहब्बत और इज्तमाई तआवुन का अजीम पैगाम है। कुर्बानी का ताल्लुक सिर्फ जानवर ज़बह करने से नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने, गरीबों के चेहरों पर खुशी लाने और माशरे में मोहब्बत फैलाने से है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इबादत को सिर्फ फर्द तक महदूद नहीं रखता, बल्कि उसके असरात पूरे माशरे तक पहुंचते हैं। इसीलिए कुर्बानी के फवायद सिर्फ इंसान की अपनी जात तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे माशरे पर अपनी बरकतें और रहमतें नाजिल करते हैं। जब एक मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी पेश करता है, तो उसके दिल में ईसार, सखावत और हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं, और यही जज्बात एक इस्लामी माशरे की असल खूबसूरती है। कुर्बानी का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि उसका गोश्त उन लोगों तक भी पहुंचता है जो शायद पूरे साल गोश्त खाने की इस्तेआत न रखते हों। कितने ही ऐसे घर होते हैं जहां ईद के दिन कुर्बानी का गोश्त खुशी, उम्मीद और मोहब्बत का पैगाम लेकर पहुंचता है। सोचिए, एक गरीब माँ जिसके बच्चे शायद कई दिनों से अच्छे खाने के मुंतजर हों, जब उसके दरवाजे पर कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, तो सिर्फ खाना नहीं पहुंचता, बल्कि एहसास, मोहब्बत और अपनाइयत भी पहुंचती है। यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही कुर्बानी की असल रूह है। अल्लाह ताला को ये बात बेहद महबूब है कि बंदा

0: उसकी दी हुई नियमतों में दूसरों को भी शरीक करे। जब मुआशरे के ताकतवर लोग कमजोरों का सहारा बनते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। सामने किराम, आज दुनिया मादियत की तरफ बढ़ रही है, मगर इस्लाम हमें दिलों को जोड़ने की तालीम देता है। कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि खुशी सिर्फ अपनी जात के लिए ना हो बल्कि दूसरों को भी उसमें शरीक किया जाए। इसीलिए कुर्बानी भाईचारे और खुवत का अजीम दर्स देती है कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त से, एक रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार से और एक अमीर को एक गरीब इंसान से करीब कर देती है। ईद के दिन जब लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, सलाम करते हैं, दुआएं देते हैं और कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हैं तो दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, फासले खत्म होते हैं और माशरे में एक खूबसूरत रूहानी फिजा कायम होती है। इस्लाम चाहता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हों, एक दूसरे के दर्द को महसूस करें, एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। सामिन किराम, आज हमें अपने मुआशरे में इसी रूह को जिंदा करने की जरूरत है। नफरतों, हसद, खुदगर्जी और दूरियों के इस दौर में कुर्बानी हमें मोहब्बत, कुर्बानी, खिदमत और इत्तेहाद का रास्ता दिखाती है। जब मुसलमान अल्लाह के रिजा के लिए एक साथ कुर्बानी करते हैं, इबादत करते हैं और एक दूसरे के साथ खैरखाही का मामला करते हैं तो ये इज्तिमाई नेकी अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचती है। और हकीकत यही है कि अल्लाह की रहमत उन मुआशरों पर नाजिल होती है जहां मोहब्बत हो, भाईचारा हो, जरूरतमंदों का ख्याल रखा जाता हो, इंसाफ हो। आइए इस ईद के मौके पर हम सिर्फ जानवर को कुर्बान करने वाले न बने बल्कि अपनी खुदगर्जी को भी कुर्बान करें, अपना गुरूर कुर्बान करें, अपनी नफरतें कुर्बान करें और अपने दिलों में मोहब्बत, हमदर्दी और खुवत को जगा दें। अल्लाह ताला हमें कुर्बानी की हकीकी रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुआशरे में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा फरमाए और हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत, हमदर्दी और खुवत के इन पैगामात के साथ आज के इस हलके से साउंड डिजाइन नदीम अंसारी और मुझे तलहा शफ़ुज़्ज़मान को दीजिए इजाजत और आप सबको ईद उल अज़हा के इस मौके पर दिल की गहराइयों से ईद मुबारक।
1: अल्लाह की रहमतों और नेमतों से आपका घर हमेशा भरा रहे। इस ईद पर सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि अपनों के साथ मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। FM 107 की जानिब से मैं आपकी अमीता आप सभी को ईद उल अदा की दिली मुबारकबाद देती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107, दिल से दे।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेल, इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए सुबह के 10:01, यानी कि ये वो टाइम है जब आरजे सरवर मिर्जा और आपकी अमिता आ जाते हैं आपके लिए लेकर। ये
0: आप सुन रहे हैं घर घर ईद, ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम अहलन व सहलन, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, और साथ साथ हैप्पी ईद, जैसे कि अमिता ने सबको विश कर ही दिया है। अमिता, क्या हाल चाल है, कैसी है, खैरियत से हैं?
1: मैं बहुत मजे में हूँ, और आज जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी कल के पहले दिन का, तो हमारा ये हाल रहा तो हमारे लिसनर्स का क्या हाल रहा होगा। मैं एक्चुअली बातें कर रही थी, हमारे कतर को बताना चाहेंगे कि पहला दिन जो ईद का होता है ना, जितनी एक्साइटमेंट, जितनी खुशियां होती हैं, उतना ही पहला दिन थका देता है। मतलब ये एक, ये नहीं कहेंगे कि मतलब ये बड़ी सैड सैड सी चीज़ है, बट ये भी होता है। और मैं और सरवर ये कह रहे हैं कि हमने कल जम के दावतें इंजॉय की, यहाँ वहाँ घूमे फिरे, हमारी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय किया, लेकिन रात में जो हुआ हमारे साथ, पैर थक गए, सर में दर्द हो गया, बट स्टिल वी आर रिफ्रेश्ड, क्योंकि आज
2: आपका साथ
1: आज,
2: है।
1: आज आपका साथ भी है, और दूसरा दिन है भाई ईद का, और मुझे लगता है ना सर्वर की जो दूसरा दिन होता है ना
2: जी,
1: वहाँ से असली दावतों का सफर शुरू होता है।
2: क्या बात
1: पहले
2: है?
1: दिन तो मतलब वो कहते हैं ना कि एकदम चलो चलो, मतलब आ जाओ, एक हमारे साइड कहते हैं कि नेक कर लिया।
2: अच्छा।
1: कि भाई ईद है तो नेक कर लिया, चलो हाँ। लेकिन अब दूसरा दिन है भाई, सब रिलैक्स हो चुके हैं, सारी कुर्बानी से भी सब सॉर्टेड है, उन्होंने गोश्त भी जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने थे सब कुछ हो गया है। आज जो दावतें होने वाली है उसका असली मजा होने वाला है। तो हमारे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं भाई, हम आज सिर्फ दावतों के लिहाज से बात करेंगे, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि आपका ट्रेडिशन क्या है, घर की वो स्टार डिश कौन सी है जो हर साल बनती है।
2: बिल्कुल सही।

0: और साथम साथ भाई ये दो घंटे का जो सफर है हमारा आपके साथ रहने वाला ही है और हम लोग आपको आज भी गिफ्ट वाउचर जो है वो देने वाले हैं गुनाइदन रेस्टोरेंट से पूरे 1000 कतरी रियाल के गिफ्ट वाउचर्स आज मैं और अमिता आपको देके जाएंगे। यहाँ पर पहले एक घंटे में हम पहला विनर बनाने वाले हैं और दूसरे घंटे में हमारे जो दूसरे विनर हैं वो हम बनाकर जाएंगे और आपको भाई बहुत बहुत मुबारकबाद भी हो पहले से ही उसकी जो भी आज जीतने वाले हैं।
1: यस
0: मुख्तलिफ बातचीत के साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि बहुत आसान से सवाल जो है अमिता आपसे करने वाली हैं और आपको विनर बना देने वाली हैं आज का। तो करना क्या है अमिता हमारे साथ जुड़ने के लिए ये भी बता दीजिए।
1: एब्सोल्युटली, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। पहला तो मैं व्हाट्सएप मैसेजेस का नंबर बता देती हूँ 6622107 6622107 क्योंकि कुछ हमारे लिसनर्स हमें कॉल पे नहीं जुड़ पाते हमारे साथ, तो यू कैन टेक्स्ट द आंसर 6622107 पर और जो हमें कॉल करना चाहते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दे कैन कॉल अस 443-443-77 पर। आई रिपीट 443-443-77 एंड ये हमने जो गुनाइदन रेस्टोरेंट के अमाउंट बताए हैं दैट इज टोटल ओके सो 1000 कतरी रियाल एज इन डिवाइडेड दोनों घंटे में 500 कतरी रियाल का पहला वाउचर इस घंटे जाएगा और 500 कतरी रियाल का दूसरा वाउचर अगले घंटे जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: तो जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दे कैन स्ट्रेटली कॉल अस।
0: क्या बात है भाई, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए और फिलहाल अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। भाई एक नगमे के साथ अगर प्रोग्राम का आगाज हो जाए तो फिर बात ही अलग है और ईद है तो फिर ईद के हिसाब से गाना भी यहाँ पर।
1: चले फिर एंजॉय करें, कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ FM 107 पर
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल। सफा के साथ एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से, तो सुनना मत भूलिएगा और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल पर RJ सफा के साथ दिल से देसी।
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: आप सुन रहे हैं घर घर ईद, ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: तो यस, हमारी देसी पार्टी, क्या हाल चाल है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन। घर घर ईद हमारा स्पेशल शो आपके साथ, हम है हमारे आरजे मिर्जा, आरजे सरवर मिर्जा एंड आपकी अमिता। तो जनाब ये बताएं कि ईद कैसे मन रही है, दूसरा दिन है, कॉल करें हमें 443-443-77 पर। एंड डेफिनेटली ये कॉल सूखी सूखी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर ईदी बांट रहे हैं गुनाइदन रेस्टो के 500 कतरी रियाल के दो वाउचर, यानी टोटल 1000 कतरी रियाल। तो भाई कहाँ पर है, कहाँ पर है लोग बाग।
3: बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में हम लोग इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मैसेज तो हमने लेना शुरू कर दिए हैं और अब हम कॉल भी लेना शुरू कर रहे हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, 443-443-77 हमारा नंबर है और वहीं पे आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। तो नंबर हमारा 666-22-107 हमारा नंबर है, इस पे आप अपने जवाब बता सकते हैं जो अब अमिता आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही हैं। और जब आपकी कॉल आएगी तो उसके हिसाब से भी इंशाल्लाह ताला बहुत आसान से सवाल हम करने जा रहे हैं जिनका जवाब आपने देना होगा। बढ़ते हैं आगे और खासम खास दिन पे खासम खास लोग हमारे साथ जुड़ते हुए। अमिता अगर आप इजाजत दें तो फिर अब हम चैंपियंस कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं।
2: बिल्कुल, बात करना शुरू करते
3: हैं। चलिए साहब, तो पहले कॉलर को आज यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। हेलो, सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम,
3: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
4: अहमद।
3: अहमद, कैसे हैं अहमद?
4: ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
3: माशाल्लाह,
2: क्या बात है,
3: कैसी चल रही है ईद?
4: ईद अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन नमाज़, हमारे पास बहुत काम थे, मैं आपको कॉल भी कर सकता बट बहुत सारे हाई वॉल्यूम थे कॉल्स क्योंकि आप कॉल नहीं जा सकता ना, तो इसलिए आके तो।
3: अच्छा, तो चलिए आज तो आपकी हमारे साथ मुलाकात हो ही गई अहमद भाई।
4: हाँ, क्योंकि फिर मैंने आज आपके भी शो में हिस्सा लिया है, वरना क्योंकि जो बाकी दो शो थे ना, कबीर और फजील और नादिया वाले में, उनमें मैं थोड़ा बिजी हूँगा तो।
3: ओके, अपने ईद के इंतजाम को भी बताते हुए अहमद यहाँ पर। तो चलिए भाई अहमद, रेडी हैं आप गेम के लिए, रिडल के लिए, अमिता के सवाल के लिए?
2: यस बिल्कुल। तो अहमद ये बताएं कि आप थोड़ा किचन की चीजों से, डिशेस से थोड़ा सा मतलब वाकिफ हैं, या फिर मैं आपसे कुछ और पूछूं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं आपको ना आपको एक इजी सा सवाल देती हूँ, ठीक है? पहले आप हमारे कॉलर हैं, हमारे बाकी लिसनर सोच रहे होंगे वाह मतलब अहमद पे इतनी मेहरबानी, बट यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अहमद ने इतनी मुश्किलों से वक्त निकाला।

0: है और इतनी सारी तैयारियों के बीच, तो ये रहा आपके लिए एक छोटा सा रिडल, ठीक है? और ये किसी डिश से रिलेटेड है. अब आपको बताना है कि ये डिश कौन सी है. ओके
1: ओके,
0: चले मैं आपको बताती हूँ. मैं गोल हूँ या लंबा, मैं गरम तवे पर नाचता हूँ, लोग मुझे ग्रीन चटनी और अनियंस के साथ बड़े शौक से खाते हैं. गैस कीजिए मैं क्या हूँ. हाँ क्या?
1: रोटी
0: नहीं है.
1: क्या डोसा है?
0: नहीं. अच्छा, ये रोटी डोसा ये वो वाली फील्ड नहीं है. ये वो वाली वैरायटी नहीं है.
1: गोल गोल लंबा लंबा है ना.
0: हाँ तो रोटी थोड़ी ना होगी लंबी लंबी. सोचो सोचो कोई डिश है. ये बड़ी कमाल की डिश है, हर घर में बनती है ये, बड़ी लाजवाब.
1: पानी पूरी, क्योंकि उसमें भी चटनी डलती है, दाल में वो और सब उसके फूड होता है.
2: यार ईद है यार अहमद भाई, यार ईद पे क्या हो सकता है ऐसा.
0: देखो हम हिंट देना चाहते हैं, फिर आप एकदम यू करके पहचान लोगे, ठीक है? देखो अभी ये अपनी
2: सही जवाब आ रहे हैं हमें व्हाट्सएप पे.
0: कुर्बानी वाली ईद है, ठीक है? अब इस टाइम पर उससे रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारी डिशेस बनती हैं. ओके अब आप सुनो, अब आप सोचो इसके बारे में कि वो गोल गोल क्या बनता है, कभी कभी लंबे शेप में भी बनता है, गरम तवे पर नाचता हूँ मतलब गरम तवे पर उसे सेका जाता है
2: घर के अंदर, घर के अंदर,
0: घर के अंदर, ठीक.
1: तवे में तो बस रोटी होती है ना.
2: अच्छा अच्छा, पैन में ग्रिलर में सीखों पे.
0: आप बताएं क्या हो सकता है. ग्रीन चटनी और पुदीने की चटनी के
2: यार,
0: साथ.
2: अहमद भाई सीख पे क्या बनाते हो यार ईद पे?
0: कम ऑन
1: क्या फिर क्या, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी ऐसे नहीं बनाया.
0: अहमद की मम्मी, अहमद की अम्मा सुन रही है. अरे नहीं बना है आपके घर में, आपको याद नहीं है. अच्छा क्या किया जाए. हाँ एक चले इस थोड़ा सोच के बताएं.
2: सीख हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं अहमद?
1: कबाब.
0: बस ठीक है, हमने आपका जवाब लिख लिया है. सो अहमद आप बहुत हद तक पहुंच गए जवाब के नजदीक, तो हमने आपका जवाब लिखा है.
2: अब हमारे साथ बने रहना है, ठीक है?
1: बस कबाब मैं फाइनल आंसर रहने
0: दूँ. ठीक है, आप फाइनल आंसर रहने दे कबाब, ठीक है? हम जो कि सही आंसर डिक्लेयर नहीं करते ना, तो आपका जवाब तो हमने अब नोट किया हुआ है, ठीक है? और बस अब हमारे साथ रहे 12 बजे तक, क्योंकि खैर इस घंटे ही हम आपको बता देंगे कि पहला तो, लकी विनर कौन है.
2: अगर दोबारा अगर आप जीत जाते हैं वैसे दोबारा दूसरे को देंगे हम.
1: सर्वे ने सीख खोला ना,
0: तो हमें हिंट देनी पड़ी ना.
2: चलिए चलिए ठीक है अहमद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. ईद मुबारक.
0: ईद मुबारक
2: आपको और आपकी फैमिली को. थैंक यू सो मच. तो भाई ये थे अहमद हमारे साथ. देखा आपने किस तरीके से बहुत ही आसान सवाल जो है अमिता आपसे कर रही हैं, और आपने उसका जवाब देना है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला जब हम आखिर में विनर जो है बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा. यहाँ पर एक और चैंपियन हमारे साथ जुड़ते हुए. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम
2: अस्सलाम रहमतुल्लाह. कौन है हमारे साथ?
3: ईद मुबारक आप लोगों को, दोनों को अमिता जी.
0: खैर मुबारक, खैर मुबारक,
2: ईद मुबारक मेरे भाई को. कौन है हमारे साथ?
3: मेरा नाम समी परवेज.
0: समी परवेज साहब. ओके समी भाई, कैसे हैं समी जी? बहुत बढ़िया. हम आज एक्चुअली जिक्र कर रहे थे मैं और सर्वर की, भाई देखो पहले दिन ईद का ना बहुत टफ जाता है, मतलब जितनी एक्साइटमेंट हैप्पीनेस रहती है उतना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है. तो आप ये बताएं कि दूसरा दिन क्या चल रहा है, क्योंकि दूसरे दिन में तो असली दावतों का सिलसिला शुरू होता है.
3: हाँ अभी तो दोस्त लोग वगैरह बता रहे नॉर्थ सिद्रा फार्म जाएंगे मिलकर.
0: अरे वाह, मतलब
3: मॉर्निंग में जस्ट आपके कॉल से फोन आया अभी उनका मॉर्निंग में.
0: हाँ जी.
3: तो बोले कई लॉन्ग टूर जाते हैं, मैंने बोला आप ही डिसाइड करो. तो बोले चलो नॉर्थ सिद्रा फार्म चलते, बोले स्ट्रॉबेरी खाएंगे थोड़ा, मतलब गोश्त बहुत हो गया, बोले अभी
0: फ्रूट खाएंगे ये बोला. लेकिन काफी दूर है तो प्लीज थोड़ा गर्मियाँ है ना, तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा, क्योंकि वहाँ जाते जाते ना पसीने थोड़े से आ जाते हैं.
2: वहाँ जाते जाते आपको थोड़ा सा नॉन वेज और खाना पड़ेगा, फिर जाके आप पहुँचेंगे और फिर आप जाके स्ट्रॉबेरी खा पाएंगे.
0: एब्सोल्युटली, बट आपको बहुत अच्छा लगेगा. मैं वहाँ कई बार गई हूँ, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस.
2: क्या बात है भाई.
0: सो ठीक है भाई, तो आपसे सवाल पूछ लेते हैं हम. ओके इनसे किस

0: तरह का सवाल पूछा जाए सरवर, ये बता दे।
1: अरे बहुत ही आसान जो आप पूछ रही हैं आज, वैसे ही आज।
2: बहुत शुक्रिया
0: चले ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, ध्यान से सुने कि क्या हो सकता है ये। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है कि हर ईद मेरी डिमांड वीआईपी से भी ज्यादा होती है, मैं घर घर जाता हूँ अपनी तेज औजार के साथ और सबका काम आसान करता हूँ, कौन हूँ मैं?
2: कसाई तो नहीं कही?
0: कसाई तो नहीं कही, ये आप मुझसे नहीं पूछ सकते, आपको जवाब देना है।
2: हाँ हाँ, छुरी शायद है, नाइफ, नाइफ होगी, नाइफ हर घर जाती है।
0: औजार में कुछ भी हो सकता है, आप बस अपना जवाब दें, आप जिस चीज पे
1: कंफ्यूज तो करने के लिए बैठे ही आपको।
0: आप बोलेंगे अमिता ये मेरा
1: क्या है, आपका फाइनल जवाब परवेज भाई?
0: एक बार और मैं दोहरा देती हूँ आपके लिए, हर ईद मेरी डिमांड वीआईपी से भी ज्यादा होती है, मैं घर घर जाता हूँ अपने तेज औजार के साथ और सबका काम आसान करता हूँ, कौन हूँ मैं?
2: हाँ, मेरा फाइनल आंसर कैसा ही पूछा।
0: ठीक है, तो हमने आपका जवाब नोट कर लिया है।
1: अहलन व सहलन, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कुछ कहना चाहते हैं?
2: सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक।
1: चलिए साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक मेरे भाई को, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए परवेज भाई, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई अमिता, आज तो आप बड़े छान छान के फिल्टर्ड क्वेश्चन निकाल रही
0: हैं। करके मैं रिडल्स लेके आई हूँ।
1: अच्छा मैं ये बता दूं आपको कि ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं तो हमारे साथ जो कॉल पे होते हैं उनसे तो हम कर ही रहे होते हैं और पीछे जो आपके जवाब व्हाट्सएप पे आ रहे हैं तो ये तमाम जवाब वालों को हम अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सवाल निकल गया, आपने जवाब दिया तो टाइम निकल गया, बिल्कुल भी नहीं। आपका मैसेज अगर हमें आ गया है और उसमें जवाब सही है तो वो भी हम शामिल करते हैं अपने लिस्ट में।
0: एब्सोल्युटली, तो यही कहना चाहेंगे कि आप अगर हमें सुन रहे हैं और कोई सवाल जब मैं पूछ रही हूँ हमारे कॉलर से तो आप उसका जवाब हमें 666-22-107 पर अपने नाम के साथ दे सकते हैं। अभी हमारे साथ कोई और जुड़ गया, सलाम अलैकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक।
0: अरे खैर मुबारक, खैर मुबारक,
1: ईद मुबारक। कौन है हमारे साथ?
3: मैं फैसल हूँ सर, सरोज भाई।
1: फैसल,
0: फैसल, ओके फैसल जी, अब फैसल है या फैसल है?
3: जेड है,
0: जेड है ना, हाँ वही फैसल, फैसल, फैसल, ओके। कैसे हैं फैसल जी?
3: हाँ बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह,
1: बहुत बढ़िया। फैसल भाई कहाँ से हैं?
3: मैं केरला से हूँ।
1: आई वाह, इसीलिए मैंने पूछा। कैसे
3: आपको आप पकड़ लिया?
1: हाँ मैं बिल्कुल, मैं केरला वाला से बहुत प्यार करते हैं फैसल भाई। तो रेडी है?
0: यस एब्सोल्युटली,
3: बिल्कुल।
1: क्या बात है,
0: रेडी है फैजल भाई। तो इनसे हम ये पूछ लेते हैं, एक्चुअली आज बड़े मजे मजे के रिडल्स हैं तो मैंने जरा सोच के पूछ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आराम से इतनी देर में फैजल भाई के साथ बिरयानी बना लेता हूँ।
0: चलिए फैजल,
3: बिरयानी तो मस्त है।
0: मेरा अगला सवाल होने वाला था कि कब आपने बिरयानी चख ली इतने जल्दी। हाँ ये बताया मुझे, तो चलो इन्होंने आंखों से चख ली है आपके वीडियोस देख के। चले आए फैजल भाई, आपके लिए सवाल है, मेरी कोई वॉइस नहीं है पर मैं आपकी स्माइल्स कैप्चर कर लेती हूँ, 10 साल बाद आप मुझे देख कर आज की बिरयानी याद करते हैं, कौन हूँ मैं?
3: फोटो,
0: आर यू श्योर?
3: श्योर, वॉइस नहीं है और अभी भी आज भी हम लोग को फीट में आ जाता है पुराने फोटो देखो बोल।
1: केरला वाला बहुत होशियार होता है भाई, बहुत होशियार।
0: हमने आपका जवाब,
1: आपका जवाब लिख लिया है फैजल भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे
3: आपको भी और पूरे अपने रेडियो के जितने भी टीम है उनको भी और
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ईद मुबारक।
3: ईद मुबारक,
1: ईद मुबारक। तो ये जो फैजल भाई हमारे साथ और हमसे करके गए बात और साथ ही में बड़ा आसान सा सवाल का जवाब भी जो है मिल गया है।
0: एब्सोल्युटली मिल गया है और बड़ा वो तो हम देख ही रहे हैं। बढ़िया है कि आपको अपना कोई भी एक जवाब फाइनल करके हमें बताना कि भाई ये हम सोच रहे हैं। रिडल्स आपकी तरफ एक से बढ़कर एक आते जाएंगी और कोई और भी जुड़ गया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल कतर, कैसी हैं मीता आरजे भाई, कैसे हैं आप भी?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम.
2: तो आपके आपकी इतनी खूबसूरत आवाज हमें नाम भी बताते जाए हमारे सारे लिसनर्स को. हम पहचान जाते हैं कई बार आपकी आवाज, लेकिन हमें लगता है कि हम एक बार सुन ले आपके मुंह से. ये मिस अली जब आप बोलती है ना बड़ा मजा आता है.
0: नाम बताने में क्या है
2: और क्या, बिल्कुल. तो कैसा कैसा जा रहा है आज का दूसरा दिन मिस अली, ये बताए.
0: अभी मैं जागी हूँ, थकावट इतनी थी अभी जागी हूँ.
2: अभी जागी है, वाह क्या बात है, लकी यू लकी यू.
1: कल खूब सारी दावतें करी हैं मैं सली ने, कोरमा बिरयानी कलेजी पाए शीरी लज्जम गट्टम गट्टा गट्ट सारी चीजें, मगर हमें नहीं पूछा मैं सली ने.
0: नहीं मैंने आपको कहा तो था कि मैं बुलाऊंगी आपको.
2: बुलाओगे ना गी. बुलाएंगे बुलाएंगे. ये बिल्कुल हमारी तरह है, स्पेशली हाई फाई कर लेते हैं अपन. क्या बात है मिसली, बस बड़े मजे के हाल है और हमारे भी वही हाल है जो आपके हाल है. तो हमने कहा चले अब आज इसी बात पे, गुनाहिदन रेस्टोरेंट के 500 कतरी रियाल के 2 गिफ्ट वाउचर हम बांटने वाले हैं. एंड आज का सवाल हम आपके लिए सीधा लेकर आते हैं, आप जरा ध्यान से सुने और बताए की क्या हो सकता है. ओके
0: ठीक है
2: बिल्कुल. सो हियर इज योर क्वेश्चन, कि मैं दिखती नहीं हूँ पर मैं सबके दिलों में हूँ, जब बड़े बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं तो मैं वहाँ होती हूँ, मैं क्या हूँ?
0: दुआ हो सकती है, ये डिश तो नहीं है.
2: डिश नहीं है ना, आर यू श्योर अबाउट दैट?
0: दुआ हो सकती है, मैं दिखती नहीं हूँ, दुआ दिखती तो नहीं है, दी जाती है, की जाती है.
2: ठीक है डन. तो आपका हमने जवाब नोट कर लिया है एंड लेट्स सी कि अब ये लकी की लिस्ट में आ पाता है कि नहीं. हम भी यही दुआ करते
0: हैं. अरे ले आए ले आए, अल्लाह करे
2: इंशाल्लाह.
0: बस वो गाना है ना यारो सब दुआ करो.
2: यस दिल के पर याद करो. चलो ठीक है हम ये करते हैं कोशिश. ओके मिस अली बिफोर यू गो कोई मैसेज?
0: बस यही है कि आज दूसरा दिन है.
2: हां जी
0: जो रूठे हैं उनको मना लें.
2: वाह क्या बात है.
0: और मिल लें, देखे जिंदगी बड़ी मुख्तसर है अमिता और सरवर.
2: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली.
0: अभी है कहते हैं ना कि हम लोग सारी उम्र इन्हीं चक्रों में रहते हैं, ये बना लो ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो, बनाने के चक्रों में रहते हैं
2: जी.
0: बिगड़ी हुई बातों को संवारने के चक्रों में नहीं रहते. पता नहीं कि ये पल दोबारा आएगा भी कि नहीं.
2: बिल्कुल सही.
0: वो शेर है ना एक मिनट का, एक मिसरा आपको सुना.
2: बिल्कुल बिल्कुल सुना.
0: नहीं मिसरा नहीं, पूरा पूरा शेर ही सुना.
2: शेर सुना है, शेर सुना है.
0: नहीं मुझे पूरा नहीं याद आ रहा,
2: जितना आ रहा है वो सुना.
0: सामान सामान उम्र भर का, पल पल की खबर नहीं.
2: दैट्स नाइस, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. ये बहुत, हाँ बोले बोले.
0: नहीं बस यही है कि मैंने मुझे मैंने कहा ना बिगनिंग में कुछ है था लेकिन हाँ एक मिनट. आगा आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं. आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं. सामान उम्र भर का, पल की खबर
1: नहीं. क्या बात है.
0: तो रूठों को मना लें, पता नहीं फिर ये पल आता है कि नहीं. और ये बड़े अच्छा और ये बड़े अच्छे मौके होते हैं कि हम लोग एक दूसरे आगे बढ़े और मिले और सुलह करें. तो ये जो त्योहार होते हैं ना, ये हमें एक मौका देते हैं कि चलो पिछली बातों को भुलाकर.
2: Yes, exactly. Miss Ali, I think you're perfect. You're perfectly saying. और मेरे ख्याल से हमारे सारे listeners जो सुन रहे हैं आपकी बातें सुनकर सबके जहन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि लिस्ट में कौन है जो नाराज बैठा है, चलो उसे पकड़ा जाए.
1: चलिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. ईद मुबारक आपको और आपकी फैमिली को. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू सो मच.
0: यू टेक केयर योरसेल्फ. ओके बाय बाय. अल्लाह
2: हाफिज़.
1: चलिए भाई, तो एक और चैंपियन उसके बाद ब्रेक की जानिब, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे जो जवाब आए हैं उनको भी इकट्ठा करना है. इस बीच आपको जो हम गाना सुनाते हैं तो व्हाट्सएप वालों के जवाब हम इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वो भी लिस्ट में शामिल हो जाएं. यहाँ पर हमारे साथ चैंपियन जुड़ गए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: गुलाम
1: मुस्तफा साहब कैसे हैं? खैरियत, ईद मुबारक.
3: जी जी, ईद मुबारक. कहते हैं कि कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं, ये इश्क इलाही का पैगाम है. ये तकवा, इंसार, खुवत और इंसानियत का नाम है.
2: वाह, क्या बात है, क्या बात है. सो गुलाम मुस्तफा साहब, सबसे पहले तो बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है? आज दूसरा दिन है, क्या हाल है दावतों को लेकर?
3: कल तो बिल्कुल सारा दिन ऐसे मसरूफियत में गुजरा कि मेहमानों का सिलसिला, और हम भी किसी के यहाँ गए, आने जाने में बहन भाइयों के बच्चे, और एक दूसरे को ईदी देना, बच्चों को गिफ्ट, और ये वो बहुत ही अच्छा दिन गुजरा. हर चेहरे को पर इतनी ज्यादा मुसरत थी, हर आदमी इतना खुश था कि लग रहा था कि हम गैरों को भी गले लगा ले.
2: वाओ, दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट. एक्चुअली ये फीलिंग हमारे कतर में चार गुना ज्यादा आती है, ये तो मैंने महसूस किया है. तो बढ़िया रहा. पर हम आज यही बात कर रहे थे कि दूसरा दिन जो होता है ना, जब असली खाना शुरू होता है, तो आप ये बताएं कि आपके घर में कोई ऐसा ट्रेडिशन है कि ये पर्टिकुलर डिश बननी ही बननी है, कोई एक डिश?
3: कलेजी मैं बहुत शौक से खाता हूँ ईद के पहले दिन.
1: क्या बात है भाई,
2: खाते हैं
1: बहुत शौक से खाते हो, खिलाते भी हैं
2: माशाल्लाह.
1: खिलाते भी हैं, अभी बताएंगे, लोकेशन भेजेंगे अभी व्हाट्सएप नंबर पे हमारे.
3: जी जी, वो कहते हैं कि घर का दरवाजा खुला रखा है, वक्त मिल गए तो जहमत करना.
1: अरे जहमत की क्या बात है भाई, आपने बुलाया, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं आप गुलाम मुस्तफा साहब, कैसे नहीं आए?
2: यहाँ पर सर्वर ब्रो ने ना अभी अपने शूज डाल लिए, मतलब लेसेस जो खोल के बैठे हुए थे उन्होंने टाइट कर लिए.
1: गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं तो दावत भी तो लेनी पड़ेगी उससे कम बदले में. तो चलिए भाई, मुस्तफा भाई रेडी हैं?
3: रिजल्ट तो वैसे बड़ा मुश्किल है, तमिली चले कोशिश कर.
1: अरे कुछ भी नहीं, हम कौन सा यहाँ पर कोई और बात कर रहे हैं, कलेजी बिरयानी बनवा रहे हैं हम भी.
2: और खास तौर से ईद के मौकों पर जो बातें होती है ना, उन्हीं से रिलेटेड रिडल्स हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हमें बहुत सोचना पड़े. एंड हियर इज योर क्वेश्चन, अब आप ध्यान से सुने, ठीक है? मैं आज घर की सबसे म्यूजिकल चीज हूँ, मतलब इन ईद के दिनों में मैं आज घर की सबसे म्यूजिकल चीज हूँ, हर 5 मिनट में बजती हूँ क्योंकि मेहमान आ गए, मैं क्या हूँ? कमान, सोचिए.
3: ईद होती है?
2: नहीं, ईद के मौके पर होती है.
3: ईद के मौके पर होती है. अच्छा, दोबारा बोलिए.
2: अच्छा ठीक है, ध्यान से सुने. मैं हर ईद का मैं बोल देती हूँ, हर ईद घर की सबसे म्यूजिकल चीज हूँ, हर 5 मिनट में बजती हूँ, मेहमान आ गए.
3: तो ईद मुबारक का पैगाम है.
2: आहा, आहा,
1: और वो आता कैसे है?
2: आहा,
1: वो आता कैसे है?
3: वो मेहमान कैसे है?
1: क्या बात है भाई गुलाम मुस्तफा साहब, तो आपका जवाब लिख लें हम.
3: जी आप लिख लें, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया.
2: तो नहीं,
3: और मैं कहूँगा कि हो मुबारक ऐसी हजारों ईदें, मुसर्रतों की हर घड़ी आपको मुबारक.
1: क्या कहने भाई,
2: आपको भी, आपको
1: मुसर्रत, जहाँ भी हमें सुन रहे हैं तैयार हो जाइए, अगला नंबर आपका है. बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच. ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़. चलिए जी, तो फिर अब बढ़ जाते हैं आगे, और यहाँ पर कुछ ईद के हवाले से गाने शाने भी हो जाए भाई.
2: क्या बात है, तो आपने कहीं नहीं जाना है, इस म्यूजिकल ब्रेक को एंजॉय करें, फिर हम आते हैं और फिर गुनाइदन रेस्टोरेंट के गिफ्ट वाउचर्स आपके नाम होंगे.
1: बिल्कुल आपके नाम होंगे, फिलहाल एंजॉय कीजिए वल्ला रे वल्ला वल्ला, शिखर, श्रिया घोषाल, राजा हसन और कमाल खान की आवाज में. ईद की एकदम याद दिला देगा गाना, अनिता ने खास लगवाया आप लोगों के लिए.

0: क्या बात है भाई अमिता, क्या जबरदस्त इस वक्त माहौल बना रखा आपने भाई है।
1: एब्सोल्युटली, सारे गाने फुल वॉल्यूम पे एंजॉय करने लायक।
2: आप सुन रहे हैं घर घर ईद, ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: तो यस, हमारी देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, यहाँ पर हमारे आरजे सरवर मिर्जा और मैं आपकी अमिता हाजिर है घर घर ईद स्पेशल शो लेकर, जहाँ पर आपके पास है मौका जीतने का गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कदरी रियाल का गिफ्ट वाउचर। और अभी हमारे साथ कोई जुड़ा क्या सरवर?
0: बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं कोर चैंपियन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वईद मुबारक जनाब।
0: ईद मुबारक सर आपको भी। कौन है हमारे साथ?
3: नईम परवेज नाम है मेरा।
0: नईम परवेज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे नईम भाई?
3: अल्लाह का शुक्र एहसान है, बिल्कुल जनाब आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं,
1: क्या बात है।
0: शुक्रिया नईम परवेज साहब, कैसी रही ईद आपकी?
3: ईद माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रही, हम बच्चों के साथ बच्चे हल्ला गुल्ला करते रहे माशाल्लाह। कुछ मेहमान आए हुए थे बाहर से, काफी दूर से आए हुए हैं ईद बनाने के लिए यहाँ कतर में
0: जी।
1: अरे वाह,
3: बहुत अच्छे दिन गुजरे किया।
0: क्या बात है भाई। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि आपका नाम हमने लिस्ट में ऑलरेडी शामिल कर लिया है नईम भाई, क्योंकि आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा है हमें, राइट?
3: जी बिल्कुल सही कहा।
0: तो ये देखिए एकदम सच्ची बात, ताकि सबको ये रहे कि भाई अमिता जो है सर्वर के साथ मिलके सही फैसला कर रही है विनर का। तो चलिए खैर, आप तशरीफ लाए, आपसे बातचीत हो गई और माशाल्लाह से आज घर पे ही इंतजाम होगा परवेज भाई डिनर वगैरह का? तो
3: जी आज यहीं पे है, अगर आप चाहें तो आ जाए बिस्मिल्लाह।
0: अच्छा, चाहूंगा तो मैं जब आप बुलाएंगे।
3: मैं तो बुला रहा हूँ आपको, मैं दावत दे रहा हूँ, आइए आप।
0: मोहब्बत भाई नवाजिश, आज एक्चुअली मेरा अमिता के यहाँ डिनर है, तो मुझे बचा रहा अमिता जल्दी जल्दी स्टूडियो में चारों तरफ दिख रही।
1: क्या हुआ? मैं नहीं समझ
0: ये तलवार मेरे ऊपर कैसे गिर गई। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई, आप ऑलरेडी लिस्ट में हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी देर में हम विनर भी घोषित कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
3: ओके
0: बाय। तो ये थे हमारे साथ नईम भाई, जिनको हमने ऑलरेडी शामिल कर लिया है भाई। तो अगर आप लोगों ने मैसेज हमें भेज दिया है तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आप लिस्ट में ऑलरेडी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम मैं आपके साथ मिक्स होता ईद मुबारक।
0: ईद मुबारक शेखो, कहाँ थे? कल से गायब, आज आए?
4: बिल्कुल, कल हमारा ईद का जो था इस तरह से मसरूफियत का दिन था, क्योंकि कंपनी के ऑर्गेनाइजिंग में मैं हूँ, तो क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हुआ था, तो उसमें दो और पार्टिसिपेटिंग टीम थी कंपनी की, वॉलीबॉल और फुटबॉल, तो सारी कुछ जिम्मेदारियां थी। हमारा तो मैच हो चुका सुबह ही और हम नॉकआउट में पहले राउंड में बाहर हो गए, उसके बाद शाम तक निपटाने में रात के 9:30 बज गए सारा कुछ निपटाने में। तो बैर हाल बेहतरीन, अच्छा दिन मसरूफियत में गया, इसीलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया कहीं।
0: चलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, मगर आपने पार्टी शार्टी तो कर ली, ऐसी बात नहीं है।
4: नहीं, कंपनी दे विल बी प्रोवाइडेड स्पेशल द मटन बिरयानी।
0: अरे तो इंग्लिश में ही होने वाली है ये बकरा, इंग्लिश वाला मटन बिरयानी।
4: यार
0: पहले तो आप मैच जीता करते थे तो बॉल जो है या तो वो ले जाया करते थे शहजादा सलीम साहब, या फिर समोसे चाय पे बात हो जाती थी। अब बकरीद पे क्रिकेट में सोच रहा हूँ कैसा होगा, चापों पे बोंगों पे?
4: नहीं नहीं, असल में ऑर्गेनाइजिंग में मैं था और फिर मुझे कहीं फाइनल में एम्पायरिंग भी देना करना पड़ा, तो मेरे लिए फिर एक मेडल और एक गिफ्ट वाउचर तो दिया गया है।
0: हाँ,
4: लुलू हाइपर मार्केट का
0: जिम्मेदारी वाला मसला हो गया ये तो। ये मत बताओ कहाँ का दिया हुआ, आज हमारी बात करो उसका नीचे वरना कॉल काट दूंगा।
4: जी जी, अभी आपके यहाँ से वाउचर मिलने वाला है ना,
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
4: एक मेरी कंफ्यूजिंग है अमिता जी और सरवर भाई से, अगर 500 का ये जो गिफ्ट वाउचर है रेस्टोरेंट का खाना खाने का, तो मैं तो 500 रियाल का खाना कैसे खाऊंगा अकेला?
0: यही तो है मसला, अब आपको जवाब खुद ही मिल गया। आप बात किससे कर रहे हैं सुकस? यार सवाल भी खुद ही, जवाब भी खुद ही। यार शहजादा भाई ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, यार जवाब से तो आप बात कर रहे हैं ऑलरेडी।
4: जी तो मेरी दिली खुशी रहेगी कि जो भी कुछ मेरे इनाम में शामिल होना
0: चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दावत का शहजादा भाई, आपको कहने की जरूरत भी नहीं है, मैं ऑलरेडी उसमें शामिल हूँ भाई।
1: मैं यहाँ पर एंट्री मारती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे सर्वर बिल्कुल इमोशनल हो रहे हैं और उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि आपका वाउचर है उनके नाम है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, चलो की टीम के अलावा और लिस्नर को भी स्पेशली।
0: तो हमारे शहजादा सलीम साहब का बड़प्पन है, तो अब आपसे सवाल पूछ रही है अमिता जी। अमिता रेडी?
1: यस बिल्कुल रेडी। अब हमारे सलीम भाई भी रेडी हैं, तो चले आपसे अब सवाल है, ये बड़ा मजे का है, आई एम श्योर कि आप यूं चुटकियों में जवाब देंगे, ठीक है? तो अब इसको थोड़ा ध्यान से सुने कि दावत ओवर होते ही पेट फुल हो जाता है सबका, ठीक है? अब सबको मेरी जरूरत है ताकि हैवी खाना डाइजेस्ट हो सके, तो मैं क्या हूँ?
4: यू
1: ब्रांड्स का नाम ना ले, अलाउड नहीं है।
4: सॉफ्ट ड्रिंक्स।
1: अच्छा और सोचे, और सोचे, ओके और सोचे, चलो ठीक है, आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स बोला
4: और इसके अलावा जीरा, लेमन जीरा, लेमन जीरा पानी के साथ।
1: अच्छा
4: सोने के लिए
1: थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, मैं कह रही हूँ आप अच्छा बोल रहे
4: हैं। नहीं
1: नहीं, यहाँ ने आपने टिप नहीं देनी है, यहाँ आपने मतलब थोड़ा बताना है। ये हर घर में होता ही है, स्पेशली जब मेहमान आते हैं, ठीक है? सो दावत ओवर होते ही पेट फुल हो जाता है और आप कहते हैं कि चले अब इसका सिलसिला शुरू करते हैं, तो वो कौन सी चीज है?
4: यस यस, मीठा, सारे बेहतरीन मीठे।
1: मीठा से पेट डाइजेस्ट, खाना डाइजेस्ट नहीं होता।
0: नहीं ये पी नहीं रहे, मुझे लग रहा है इन्होंने रखी नहीं है, कह रहे बख्तीद में नहीं भाई, देर खाना ही जा रहे तो मछली बात को साइड में कर दो।
1: अच्छा सुने, ये ना पीने की चीज है
0: यार, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, सुबह उठते ही चाहिए, खाने के बाद चाहिए, रात में चाहिए।
1: अच्छा चाय कॉफी पर आप आके रुक रहे हैं, इज दिस योर फाइनल आंसर?
0: चलिए जवाब लिख लिया आपका शहजादा सलीम साहब हमने, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और विनर हम ले सकते हैं, अभी हमारे पास गुंजाइश है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, ईद मुबारक।
1: ईद मुबारक, ईद मुबारक,
4: ईद मुबारक।
0: ओके बाय। तो भाई ये थे शहजादा सलीम साहब, हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम शामिल कर सकें अपने साथ।
1: राइट।
0: हेलो सलाम अलैकुम।
5: वालेकुम सलाम सर और भाई, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, और कौन है हमारे साथ?
5: मैं बात कर रही हूँ,
0: कल वेलकम मैम, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी ईद गुजर रही होगी आपकी।
5: अमीरा कैसी हैं आप?
1: अरे बिल्कुल मजे में, बस मैं आपकी आवाज ही सुन रही हूँ। तो आप बताएं कैसे कैसे गुजर रहा है आपका दूसरा दिन, ये तो बता दें जरा हमें।
5: दूसरा दिन अभी सोके गुजरा है, अभी उठ के तैयारियां करेंगे, कुछ आपको दावत से जाएंगे।
1: ये हिसाब किताब है। तो कल तो अपन ने बहुत दावत, आपके घर में कोई आया था दावत में? मुझे लगता है कि ना ये जो यार सच में अम्मी कह दी यार, सर्वर बहुत याद आ रही है।
0: अब मैं भी जाऊंगा भाई, मैं भी अम्मी के आ रहा हूँ और खाना हम वही खा लेंगे दोपहर का। इसरा जी
5: मेरी अम्मी
1: आप सच्ची
5: अम्मी
1: है, हमारा कहने का मतलब वही था, क्योंकि एकदम आपने अम्मी ने कहा, अम्मी का जब जैसे ही आपने जिक्र किया ना, तो मेरी जुबान वही लड़खड़ा गई, मैंने कहा मैं क्या बोलू, याद आ गई मुझे याद।
5: नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, आप मेरे साथ आए, मेरी अम्मी एक घर पे, मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर खाना भी खिलाऊंगी।
1: हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच, इतनी मोहब्बत से आपने हमें बोला। और इसी बात पे चले अब हम फटाफट आपसे सवाल पूछते हैं, सो लेट्स सी कि अगर आप आज लकी हुई तो गुनायदन रेस्टोरेंट के 500 कतरियाल के गिफ्ट वाउचर भी आप जीत सकती हैं, ठीक है? तो अब जरा ध्यान से सुने क्या हो सकती है ये चीज। तो मैं कोई गैस वाला स्प्रे नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक रॉयल ऑयल हूँ, बस एक ड्रॉप सुन ले, बस एक ड्रॉप अपनी कलाई पर लगाओ और दिन भर खुद को और सबको महकाओ। व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है ये?
5: ऊद।
1: आपको लगता है ये ऊद है? और थोड़ा और थोड़ा क्लोज आए, और थोड़ा बोले।
5: और परफ्यूम।
1: ओके ये थोड़ा और सोचे, और सोचे, इट्स अ रॉयल ऑयल, क्या हो सकता है?
5: इट्स अ रॉयल ऑयल, रॉयल ऑयल,
1: कम ऑन, आप बहुत नजदीक हो,
5: रॉयल ऑयल,
1: बहुत नजदीक है आप।
5: ऑयल
1: कम ऑन यू कैन डू इट. अच्छा फिर से सुने, एक बार फिर से सुने, ये कोई गैस वाला स्प्रे नहीं है, ठीक है, ये एक रॉयल ऑयल है, खुशबूदार ऑयल है, जिसका एक ड्रॉप अगर हम अपनी कलाई पर लगाते हैं तो दिन भर खुद को और सबको महकाते हैं. कौन सी चीज है, कम ऑन, आप बहुत नजदीक है, मैं आपको बता दूं.
5: अच्छा रॉयल ऑयल, बुखूर, परफ्यूम.
1: अच्छा किसी एक पर रुक जाए, मैं आपका जवाब फिर नोट कर लूंगी.
5: कलाई में लगाते हैं राइट?
1: हाँ कलाई में
5: लगाते हैं. गैस पे नहीं होती. मैं ऊद से ही जाऊंगी, लाइक
1: अच्छा आप ऊद से जाएंगे, ठीक है चले, मैंने आपका जवाब नोट कर लिया यहाँ पर, एंड लेट्स सी कि फिर आगे क्या होता है. अच्छा ठीक है डन है.
0: मेरे ख्याल में अब हम इसरा से ही आज के चैंपियन जो है उनका भी नाम लेते हैं.
1: सो इसरा अभी आपको सर्वर कुछ नंबर बताएंगे, उस नंबर के दौरान कोई नंबर चूज कीजिए और फिर बताएं कि कौन हो सकता है आज का लकी विनर. सो सर्वर जल्दी से बताएं.
0: ओके देन, तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो चैंपियन लिस्ट है फिलहाल वो पहुंच चुकी है 38 तक, और 1 से लेके 38 तक.
1: ये सिलेक्टेड चैंपियंस हैं, ऐसा नहीं है 38 से भी ज्यादा हमें मैसेजेस आए हैं, बट ये है कि ये सिलेक्टेड चैंपियंस हैं जिनमें से कोई एक आज का लकी विनर बनेगा इस घंटे.
5: इसमें मेरा नाम है,
1: इसमें आपका नाम शामिल है.
0: शामिल है, बिल्कुल.
1: तो इन्होंने कहा है सर्वर ने कि 1 से लेकर 38 तक कोई एक नंबर आप चुने.
5: ओके, इंशाल्लाह 18
1: नंबर चुन लिया है. चले ठीक है इसरा, अब हम देखते हैं कि कौन लकी विनर होता है 18 नंबर पे. बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. अल्लाह हाफिज इसरा, हैव अ गुड डे.
0: थैंक यू सो मच. तो भाई ये थी इसरा हमारे साथ, और यहाँ पर जो हमारे साथ अब चैंपियन जुड़ गए हैं भाई, उनका नाम बता दें क्या कहती हैं?
1: बिल्कुल बताएं.
0: ओके देन, उनका नाम है आसिफ भाई.
1: क्या बात है,
0: क्या कहने आसिफ भाई जीत गए हैं. और आसिफ भाई के जो, क्योंकि आसिफ और भी है मुख्तलिफ, तो हमारे जो आसिफ भाई हैं 1087 जिनके नंबर में आखिर में है, वो है इस घंटे के चैंपियन. क्या बोलती है,
1: कंग्रेचुलेशन.
0: चलिए भाई, तो ये थे हमारे इस वक्त के इस घंटे के चैंपियन, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अब अगले घंटे में भी कोई ना कोई बेहतरीन जो आजकल खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी जीतने वाले हैं या जीतेंगे. और भाई अपने कहना चाहिए ख्याल करते हुए, बहुत ही ज्यादा मैंने और अमिता ने शफल करते हुए, टॉस करते हुए, मिलाते हुए, मिक्स करते हुए, सारी चीजें हमने यहाँ पे लगा दी हैं.
1: एब्सोल्युटली.
0: और ये हमारी तरफ से आज के जो विनर है आसिफ भाई मुबारकबाद पहले घंटे के. अब अगले घंटे में एक और विनर हमारे साथ जरूर होंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं भी मत जाइए. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और वापस आ रहे हैं, और सिलसिला जो जीत का है वो जारी रहेगा. सुनते रहिए FM 107
1: दिल से देसी.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। घर घर ईद का ये दूसरा घंटा शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए सुबह के 11:05।
0: आप सुन रहे हैं घर घर ईद ए फॉर अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: हाँ जी, तो बिल्कुल वेलकम बैक है एलन वसेलन। 11:05 और हमारे जो आज के चैंपियन हैं, हमने कोशिश तो करी थी कि भाई उनसे खैर खैरियत पूछ सकें और इस वक्त उनको बता सकें, तो कॉल ड्रॉप हो गई है। एनी हाउ, चलिए साहब, तो अब दूसरा सिलसिला भी शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रेक पे मतलब गाने सुनाने के लिए जब हम आपको जाएंगे तो उससे पहले हम शुरुआत कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा आर शुरू हो गया है और अब आपने करना यही है भाई, सेम है मसला। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 666-22107, इस पे मैसेज कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पहले चैंपियन आ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, ईद उल अज़हा मुबारक मेरे प्यारे भाई सरवर मिर्ज़ा, और आपको भी, मेरे बहन को भी, सारे सुनने वालों को
2: अहलन व सहलन, ईद मुबारक भाई जान। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
3: अल्लाह का एहसान है, अल्लाह से राजी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, उम्मीद है। बड़ा प्यारा ईद था, बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह।
1: क्या बात,
3: मुझे उम्मीद है कि जिस जिसने भी ईद गुजारी होगी तो अच्छा, और आज का दिन भी अच्छा जा रहा होगा।
1: मैं
3: तो बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। आपका नाम बताए भाई
3: जी। करीम भाई।
2: करीम भाई, करीम, करीम शाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या बात है भाई। करीम भाई खैरियत से हैं? अपनी खैरियत बताई दी, तो करीम भाई रेडी हैं? अब अल्लाह से राजी हैं भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो अमीता,
3: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जा रहा है। बस मैंने कहा भाई, आप प्रॉमिस किया था जरूर आऊंगा, मसरूफियात कुछ ज्यादा थे, नींद भी बहुत कम की है, जाहिर है लोग आते जाते हैं, कोई रस्म सिस्टम वो हिसाब किताब है ना, तो उसी हिसाब से तो आज मैंने कहा कि अपने बहन भाई से बात हो जाए। जाहिर है यहाँ पर भी तो हमारे एक फैमिली की तरह कम्युनिटी चल रही है ना।
2: मेरा भाई कैसा, करीम भाई पे पैसा ही पैसा।
1: हाय करीम भाई, चले आपसे सवाल पूछते हैं एंड लेट्स सी कि आप सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ठीक है,
3: इंशाल्लाह कोशिश करते हैं
1: जी। बिल्कुल, आपकी कोशिश कामयाब होगी क्योंकि बड़े सिंपल सवाल है। चले ध्यान से सुने। तो बच्चों को ये बहुत प्यारी है और बड़े इसे देते हैं। ठीक है, बच्चों को ये बहुत प्यारी है, बड़े इसे देते हैं। मैं वो सैलरी हूँ जो बिना किसी काम के मिल जाती है, तो मैं क्या हूँ?
3: टॉपी।
1: क्या?
3: टॉपी देते हैं बच्चों? टॉपी
1: नहीं। टॉपी सैलरी नहीं है करीम भाई। सुने सुने सुने, बच्चे बहुत प्यार करते हैं इस चीज को। ठीक है
2: यार, ये चीज तो आप उसूलते उसूलते बड़े हो गए करीम भाई, बल्कि आज तक उसूल रहे हो। हद हो गई टॉपी।
3: तो वो कहते हैं ना, बच्चे से किसी ने पूछा कि आपका मामू, बोला वही मेरा मामू है।
1: मामू? करीम भाई, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही हूँ, जैसे आपने टॉपी बोला ना, सर्वर मुझे देख रहे हैं जब से। अच्छा ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज है, बच्चों को बहुत प्यारी है, बड़े से देते हैं,
2: पैसे पैसे कह रहे हैं, बट
1: पैसे दे रहे हैं, लेकिन पैसे उसका नाम क्या है? ईद के मौके पर
2: इस रस्म का नाम क्या है?
3: यही तो समझ में नहीं आ रहा यार। ये मैं
2: अंजलि
1: चले
2: मतलब करीब तो है नाम,
1: करीब
2: तो
1: है। हाँ। करीब है, करीम भाई काफी करीब है। और कोई नहीं, हमने आपका जवाब लिखा है एंड इंशाल्लाह अगर आप लकी हुए तो आपको गुनाइदन रेस्टोरेंट के 500 कदर रियाल का गिफ्ट वाउचर मिलेगा।
3: मेरे बहन, मैं लकी हूँ। मैं
1: क्या बात है,
2: कुलसुम ने, सुमैया ने, मारिया ने, मिसाली ने, सब ने जवाब यहाँ पे, नसरीन यार माशाल्लाह भाई, लेडीज के जवाब क्या सही आ रहे हैं भाई यहाँ पर यार। करीम भाई यार, अच्छा, खुदा के वास्ते यार लेडीज के सामने थोड़ी तो इज्जत रख ले यार।
3: सर भैया सर बात हो रही है ना, देखो ना, मैं ज्यादातर बाहर रहा हूँ ना, जो बच्चे होते हैं मामलात होते हैं, सबसे ज्यादा तो ये लेडीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बच्चों को वही संभालती है, तो मर्दों में इनको ज्यादा पता होता है।
1: करीम भाई आप एक्चुअली समझ नहीं पा रहे, ये आपको पता है, ये हमको पता है कि आपको पता है, लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रही है, तो कोई मसला नहीं।
2: आपको पता है, आपको पता है कि हमें पता है, हम दोनों को पता है कि आपको पता है, मगर आपको जो पता है वो आप इस वक्त पता नहीं लगा पा रहे कि आपको क्या पता है। पता पता पता
1: कोई नहीं करीम भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड इंशाल्लाह फिर आपसे कनेक्ट करेंगे।
2: क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
3: आप लोगों को खुश रखे। देखो आप लोगों ने हमें हंसाया, बात हुई, लोग सुन पा रहे, बहुत बड़ी बात है। जिसको ये बात समझ में आ रही, परदेश में आप एक आदमी को हंसा रहे हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों और फैमिली दोस्तों को तरह तरह के लोगों की सोच होती है मिस करते हैं, और वो यहाँ आ जाते हैं, आप उनका दिन बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में बरकत डाले, ये बहुत अच्छे दिन है, खुश रहो, सलामत रहो।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई ये थे करीम भाई हमारे साथ, और इनका जो नाम है वो हमने शामिल कर लिया है अपनी लिस्ट में, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन है आज जो सबसे अच्छी डिश बनाने वाला है। फिलहाल के लिए दूसरे चैंपियन हमारे साथ जुड़ते हुए अमिता जी,
4: अस्सलाम वालेकुम,
2: ईद मुबारक, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आपको भी ईद मुबारक भाई। कौन है हमारे साथ?
4: मैं हमजा बात कर रहा
1: हूँ। हमजा, ओके हमजा भाई, कैसे कैसे हैं आप ये बताएं।
4: ठीक ठाक, अल्लाह बात कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे।
1: बिल्कुल खैरियत से हमजा भाई। तो तो ये बताएं हमजा भाई कि आज दूसरा दिन क्या चल रहा है, मतलब किस तरह से गुजरेगा, क्या करेंगे आप?
4: क्या करेंगे, दूसरे दिन हमारा तो ड्यूटी पे है।
1: हाँ, ड्यूटी तो अपनी भी है। हाँ, ड्यूटी के बाद
4: हम जाते हैं रात के टाइम घर, दूसरा
1: क्या क्या क्या आप क्या बोले,
4: यहाँ जाते हैं रूम बस की बात है, हमारा फोन होता है, आराम करने का टाइम हो जाता है।
1: अच्छा, आराम करने का टाइम हो जाता है। चले कोई नहीं, अभी वीकेंड में ऑफ रहेगा आपका?
4: इंशाल्लाह।
1: तो वीकेंड में कुछ सोचा है, क्योंकि ईद का मौका है, फायरवर्क्स वगैरह भी हो रहे हैं इस बार, तो
4: देखिए इंशाल्लाह इरादा।
1: अरे वाह, चले आपका इरादा नेक है तो वो जरूर पूरा भी होगा। आए इसी बात पे हम आपके साथ सवाल पूछते हैं, एंड लेट्स सी कि आप सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ठीक है,
4: अगर यही सवाल मुझसे पूछ जाए तो बेहतर रहेगा। हाँ? तो करीम भाई नहीं बता सके।
1: अच्छा
2: तो फिर हम आपसे वो लेंगे भी। ऐसे थोड़ी जाने देंगे। ग्रैंड मास्टर गोगो। हंस रहे यार।
1: मुझे भी काफी हंसी आ रही है कि हमारे सर में जो है ना,
2: एक्चुअली होता क्या है कि ये जो अमिता आपसे सवाल पूछती है ना, वो इसलिए भी हैं ताकि हमारे जो व्हाट्सएप पे जिन भाई सबको मौका नहीं मिल सकता ना हमसे बात करने का, बात करना तो एक बहाना है, मगर वो सवाल सुन के जो हमें व्हाट्सएप पे जवाब आ जाते हैं वो भी फिर हम लोग शामिल कर लेते हैं अपनी लिस्ट में। तो इसलिए जरूरी है बदले बदले सवाल और बदले बदले हम।
4: देखते हैं, ट्राई करते हैं।
1: चले, अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो चले बताएं, मैं ब्लैक हूँ यानी कि मैं काला हूँ, और आंखों की शान हूँ, ईद की नमाज से पहले मेरा लगाना एक पुरानी ट्रेडिशन है, मैं क्या हूँ?
4: फिर रिपीट कीजिएगा।
2: एक बार
1: सर्वर ब्रो मुझे बहुत हंसा रहे, तो कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है,
2: ईद है भाई, ईद है।
1: हाँ, मैं ब्लैक हूँ यानी कि मैं काला हूँ, और आंखों की शान हूँ, ईद की नमाज। नहीं सुन तो लीजिए।
2: अरे लेकिन मैं सुनो तो, लेकिन वो
1: ईद की नमाज से पहले मेरा लगाना एक पुरानी ट्रेडिशन है, तो मैं क्या हो सकता हूँ?
2: सही जवाब आया है यहाँ पे, चार पांच लोग मैं देख रहा हूँ। ओ हो हो हो हो, सही जवाब।
1: बताएं क्या कह रहे हैं?
2: नसीम भाई और भी लोग हैं जिनका नाम लिखा नहीं है।
4: आंखों की शान है ना,
1: सनग्लासेस ईद की नमाज।
2: अरे आंखों की शान तो मैं हूँ यार, मैं हमजा भाई, मैं
4: अच्छा।
1: नहीं, बट सनग्लासेस पहनना ट्रेडिशन थोड़ी है।
2: हाँ ये बात भी सही है। अब वो बेचारे शाहिद भाई हमारे चश्मा लगाते हैं आंखों वाला, बहुत उनकी आई साइड वीक है, अब वो तो सनग्लासेस लगा नहीं पा रहे, वो तो सादा चश्मा लगा रहे, तो वो चांद कैसे हुई उनकी आंखों की।
1: देखिए मैंने सबसे आपको ना बड़ी हिंट मिलती है शुरुआत में कि मैं ब्लैक हूँ, मतलब जब कहते ना कि मैं एक काली सी चीज है जो आंखों की शान बढ़ा रही है, और ईद की नमाज से पहले इसे इसको लगाना एक ट्रेडिशन है, मतलब बहुत जगह पर, ठीक है हमने यहाँ पर थोड़ा सा कम देखी है।
2: आशा भोसले ने तो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में लगवा दिया था ये एक टाइम पे, और अभी आलिया भी लगवा के गई थोड़े दिनों पहले। नहीं पहुंच पा रहे।
1: चले कोई नहीं,
4: पता नहीं
1: क्या कह रहे
4: ऑप्शन तो देना, ऑप्शन ए बी सी तो बताएं।
2: आपका पहला ऑप्शन है सरवर, दूसरा ऑप्शन है सरवर मिर्जा, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद सरवर मिर्जा, और चौथा है मोहम्मद सरवर मिर्जा बेग।
1: चले
2: कौन
1: कोई नहीं,
2: सेलेक्ट करेंगे आप ए बी सी डी बताइए। हाँ
1: वो अभी
4: लेंसेस तो नहीं है ना, लेंसेस नहीं होंगे
2: लेंसेस। और ज्यादा चश्मों से बड़ी मोहब्बत है इनका, अच्छा कलेक्शन होगा मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है अच्छा कलेक्शन होगा हमजा भाई के पास चश्मों का। अच्छा हमजा भाई आप चश्मा लगाते हैं क्या, मतलब वैसे दूरबीन वाला?
4: नहीं सर, नहीं लगा
2: था
4: बिल्कुल भी।
2: तो इतनी चश्मा लगाने की यार, हर बात में चश्मा ही नहीं हट रहा।
1: बट हमजा भाई आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया, एंड
2: आप भी लिस्ट में शामिल हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपने इतना हमें हंसाया।
1: चश्मे वाली लिस्ट में हमने आपको शामिल किया, एंड कोई बात नहीं आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम कल परसों भी है यहाँ पर, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं
2: अमिता असल में इतना दरिया दिल है, मुझे मालूम है आपसे दूसरा सवाल पूछने वाली है, आपको जाने देंगी नहीं, या आपसे बकरीद पे कबाब कलेजी दिल गुर्दे बनवा के आपको लिस्ट में डालेंगी जरूर, जबकि मैं तो कह रहा था कि भाई चश्मे से आगे बढ़ जाते हैं।
1: चलो अब मैं जो बोलने वाली हूँ, मुझे लग रहा है कि ये क्या जवाब देंगे, पर ठीक है
2: ये चश्मा ही कहेंगे हर बार, चश्मा आई लेंस कॉन्टेक्ट लेंस चश्मा लगाइए।
1: अब आप सुने ध्यान से, ठीक है। मैं ग्लास की बनी हूँ और डजन्स में आती हूँ, दर्जनों में मतलब डजन्स में आती हूँ, मेरी खन खन की आवाज बताती है कि लेडीज रेडी हो गई हैं, मैं क्या हूँ?
4: चूड़िया।
1: आर यू श्योर अबाउट दैट?
2: क्या कहने, मतलब भाभी सुन रही है साथ में?
1: जवाब चेंज तो नहीं करना है ना?
4: अच्छा
1: ठीक है, मैं फिर लिख लेता
4: हूँ।
2: पहला भी जवाब भाभी से ही ज्यादा रिलेटेड था, आप बता नहीं पाए, अच्छा हुआ ये बता दिया, वरना घर नहीं जाते आज आप।
1: लेंस लग जाते।
2: चलिए भाई अब्दुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, ईद मुबारक मेरे भाई को, थैंक यू सो मच। ये थे अहमदा भाई हमारे साथ, और यहाँ पर सिलसिला जो है जारी और सारी है। बड़े यार आज तो अमिता वाकई आप बड़े, मैं यकीन जानिए आप लोग शायद सच ना समझे इस बात को, मगर मुझे यकीन जानिए अमिता ने सवाल के जवाब नहीं बताए, क्योंकि ऐसा ना हो मैं पेपर लीक कर दूं। आजकल आप समझ रहे हैं ऐसा
1: लीक करने की पूरी गुंजाइश थी।
2: अमिता ने वाकई मुझे, मैं खुद पूछता हूँ पहले, जैसे ही सवाल आपसे पूछती है इनकी तरफ इशारों से ये है तो फिर बाद में पता चलता है। एनी हाउ चलिए यहाँ पे अगले चैंपियन हमारे साथ जुड़ते हुए, हेलो, ये कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे भाई? हेलो हाय
5: हेलो
1: चले कोई नहीं। तो अहमद अभी ये तो बता दो, मतलब कल हमारी बात हुई थी मेरे ख्याल से कि नहीं हुई थी?
5: नहीं मैं कल कॉल करा था बट कॉल काट दी जा रही थी ना, तो इसलिए।
1: अच्छा कॉल आपकी लग नहीं रही थी, एक्चुअली नॉन स्टॉप यहाँ पर कॉल आ रही है ना,
5: नॉन स्टॉप
1: अपना फोन कभी ऐसा लगता है कॉल ड्रॉप हो गई या कॉल कट गई ऐसा इस तरह से। सो अहमद लाइक सेकंड डे ऑफ ईद, व्हाट्स सो एक्साइटेड, क्या चल रहा है ये बताओ?
5: भाई आप जो पहले मिठाइयों का बात कर रहे थे हाँ. ना तो मेरी मम्मा हर ईद ये बताती रहती है एंड इट्स अ कस्टर्ड सो ये विद ग्रीन जेली एंड इट्स लाइक मेड विद सम लाइक पुडिंग मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे जब आते हैं ना पता नहीं ऐसा क्यों होता है जब मैं खाता हूँ ना तो मुझे उल्टी आना शुरू हो जाती है प्लेट खा के या ज्यादा खा के भर भर के खा के
1: अच्छा
5: हाँ मुझे पता नहीं बट ऑल ऑफ माय जो भी मेरे खानदान में मम्मा पापा या फिर मेरा एवरीवन लाइक्स इट

0: But not me and my brothers.
1: अच्छा अच्छा, तो अहमद आपकी उम्र क्या है, if it's okay to ask?
0: No, it's okay. 12.
1: माशाल्लाह. तो अहमद को फिर ईदी वगैरह मिली कि नहीं मिली?
0: हाँ मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी खर्च नहीं किया और 4,000 तक आ गया.
1: अरे माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है
2: यार. इतने तो हम अभी भी नहीं कमा पा रहे अहमद भाई. ईदी से मिल गए मेरे भाई को, माशाल्लाह.
1: आप इस ईदी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे?
0: अभी तो कोई प्लान ही नहीं होता. मेरे बहुत टाइम से मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया. अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस्तेमाल किया इस पे, अभी कुछ महीने पहले, लाइक 7-8 महीने पहले. इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, बस 200 रियाल ही खर्च किए थे, 300. तो अभी तक तो ये यहाँ तक ही पड़े हुए, देखते बाद में क्या होगा.
1: That's so sweet. मतलब देखें सरवर, इतने प्यार से ये बता भी रहे हैं कि तकरीबन बस इतना ही खर्चा हुआ है और बाकी आपने सेव किया. बहुत कम बच्चे होते हैं जो सेव रखते हैं इस तरह से.
2: चलिए भाई, अब सवाल पूछ लेते हैं अहमद से जल्दी से. ओके
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो अहमद
0: फर्स्ट आंसर करेक्ट,
1: फर्स्ट क्या?
0: पहला आंसर.
2: हाँ वो बिल्कुल करेक्ट था, मगर वो आप लिस्ट में शामिल जब नहीं हुए थे तो इसलिए अब हम आपसे दोबारा सवाल पूछ रहे हैं.
1: यस, तो अब आपका सवाल है, मैं वाइट हूँ, क्रीमी हूँ और ड्राई फ्रूट से भरी हुई हूँ. मेरे बिना ईद की मॉर्निंग्स इनकम्प्लीट है. सब मुझे चम्मच भर भर के खाते भी है और पीते भी है. मैं क्या हूँ?
0: ग्रीन है?
1: नहीं नहीं, वाइट है. वाइट हूँ, क्रीमी हूँ.
0: अच्छा.
1: और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं इसमें और ईद की सुबह ये हर घर में बनती है. ठीक है,
0: रसगुल्ले.
1: रसगुल्ले बनते हैं आपके यहाँ? क्या बात है. और क्या हो सकता है?
0: रसगुल्ले हैं.
1: चलो चलो, एक एक जवाब दे दो ताकि हम इसे लिख लें और फिर
2: जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी.
0: वाइट और क्रीमी में क्या है? नहीं सॉरी, अगर सोचने ने बुरा ना मानना प्लीज.
2: आप अपना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जवाब.
1: आप हमें व्हाट्सएप,
0: मैंने व्हाट्सएप तो किया है, बट मैंने कहा चलो मैं कॉल भी कर ही लेता हूँ.
2: जल्दी बेटा,
1: बिल्कुल
2: क्योंकि हमारे पास टाइम अब ब्रेक का हो रहा है. जी
1: नहीं, नो मसला. अब एक रसगुल्लों पे आप आए, अब एक काम करें, आप थोड़ा सा सोचें. हमारा व्हाट्सएप नंबर है
0: या फिर खीर खीर
1: खीर. ठीक है, हमने आपका जवाब नोट किया है. ठीक है,
2: ओके अहमद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो भाई ये थे अहमद हमारे साथ और अब हम बढ़ते हैं आगे, ब्रेक ले रहे हैं फौरन. उससे पहले जल्दी से एक कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम. और बी फॉर बड़े भाई.
2: अहलन व सहलन, क्या बात है. बी फॉर बड़े बड़े भाई, क्या हाल चाल है. ईद मुबारक. मेरे ख्याल में सही वक्त पे आ गए ज़ुल्क़रनैन साहब. ब्रेक
3: अभी मेरी कॉल ड्रॉप हुई है ना यार. अभी
2: अच्छा, अभी हुई है.
3: कह रहे थे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही. मैंने कहा यार हमारी आवाज नहीं पहुंची अब तक.
2: क्या कहने, आप पहुंच गए क्योंकि अजान का ब्रेक लेना है ज़ुल्क़रनैन साहब. तो जल्दी से सवाल अमिता पूछेंगी आपसे.
1: ठीक है भाई, आपके लिए सवाल है कि मैं छोटा हूँ, ब्राउन हूँ और बहुत स्वीट हूँ. ईद प्रेयर्स के बाद सबसे पहले मुझे ही खाया जाता है. मैं क्या हूँ?
3: मैं छोटा हूँ, ब्राउन हूँ तो
1: स्वीट भी हूँ.
3: स्वीट भी हूँ.
1: हाँ, ईद प्रेयर्स के बाद
3: सबसे पहले गुलाब जामुन है.
1: नहीं. हाँ, और बताए दूसरा क्या हो सकता है. अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल एग्जांपल नहीं, मैं आपको एक हिंट देती हूँ. ये ड्राई फ्रूट है.
3: ड्राई फ्रूट है तो खजूर है.
1: अच्छा, ये आप इस पर फाइनल करते हैं?
3: जी जी,
1: ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं.
2: चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्क़रनैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं खातिनो हज़रात, और इंशाल्लाह ताला वापस आने के बाद ये जो सिलसिला है चैंपियन बनाने का ये जारी रहेगा. फिलहाल इस दरमियान, इस ब्रेक के दरमियान हम जो व्हाट्सएप के हमारे माशाल्लाह साथी हैं उनको
1: शामिल करेंगे अपनी लिस्ट में,
2: शामिल करेंगे. फिलहाल आपके लिए ये खासम खास गाना.
1: बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर की जमीन पर दुनिया के हर कोने से आए हुए लोग, उनकी कहानियाँ, उनके जज्बात और ईद की वो यादें जो घर से दूर भी दिल के करीब हैं। एक खास शो जहां आपकी मुलाकात होगी उन लोगों से जो अपने मुल्क से दूर रहकर भी ईद को अपने अंदाज में महसूस करते हैं। उनकी कहानी, उनकी मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में आंसू। आरजे नाजिया के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम कतर से सलाम। ईद के पहले और तीसरे दिन रात 10 बजे से ओनली ऑन FM 107। कतर से सलाम।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: नरम दिल लोग बेवकूफ नहीं होते, वो जानते हैं कि दूसरे लोगों का उनके साथ बर्ताव और सलूक कैसा है, लेकिन वो बार बार मुआफ कर देते हैं क्योंकि वो खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। मुआफ करने का मतलब अपने मुखालिफ को गले लगाकर दोस्ती कर लेना नहीं होता, बल्कि ये अपने दिल के साथ एक अहद करना होता है कि जो अजियत या तकलीफ मुझे मेरे मुखालिफ ने दी है, मैं बदले में उसे उसी किस्म की अजियत नहीं दूंगा। याद रखिए, ऐसा ज़र्फ़ रखने वालों को दुनिया में इज्जत, अजमत और ताकत नसीब होती है। अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करने और लोगों में आसानियाँ बांटने की सआदत अता फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: ईद की महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार। ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज, इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है। इस खास पेशकश में ईमान अफरोज गुफ्तगु, दिल को जगा देने वाले रूहानी पैगाम और ऐसी याद दहानियां शामिल हैं जो कुर्बानी, मोहब्बत इलाही और इत्तेहाद के असल मायने को रोशन करती हैं। ईद उल अज़हा के इस बाबरकत मौके पर सुनिए लब्बैक की सदा, लब्बैक की सदा ईद के 14 दिन दोपहर 1 बजे से सीन के साथ ओनली ऑन FM 107।
5: FM 107 पेश करते हैं ईद स्पेशल शो ईद की धुन, और इस मौसिकी भरी महफिल की मेजबानी कर रही हैं आपकी अपनी A4 अमिता। सुपरहिट नगमे हो या ईद की दिलचस्प और अनोखी बातें, A4 अमिता बनाएंगी आपकी ईद को और भी यादगार। तो रास्ते के ट्रैफिक में हो या घर पर दोस्तों के साथ, ईद की धुन से हम बदल देंगे आपका मूड। तो सुनिए ईद की धुन ईद के चारों दिन A4 अमिता के साथ शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं घर घर ईद A4 अमिता और सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर।

0: अपने लिए कह सकता हूँ कि अभी आप लोग भी भूल जाइए और हमें बुला लीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पर आ गए हैं इस वक्त अमिता और सरवर आपके साथ, जहाँ पर सिलसिला जो है विनर्स बनाने का कायम है। और साहब, पहले एक घंटे में आज के हमारे जो विनर रहे हैं वो रहे हैं आसिफ भाई, और मैं आसिफ शाह कहने वाला था, असल में करीम शाह मुझे याद आ गए। करीम भाई, अगर आज उनसे भी बड़ी अच्छी अच्छी बात हुई, उन्हीं से कॉल का शुरुआत भी हुई। करीम भाई, आप भी हमें मैसेज करिएगा, आप कोई शायरी बताने वाले थे तो उसके हवाले से अगर वो शायरी मुझे भेजेंगे तो वो मैं पढ़ दूंगा। अभी प्रोग्राम से पहले पहले मुझे एकदम याद आ गया। चलिए, तो साहब फिलहाल का जो सिलसिला है, हमने व्हाट्सएप के नंबर जो है आपके जो जो जवाब आए थे और सही जवाब थे वो हम लोगों ने सारी उसकी लिस्ट बना ली है। फिलहाल हमारे पास अभी भी वक्त है कि हम अपने कॉलर्स और विनर्स बना सकें, और कॉल करने के लिए आपको नंबर पता ही है हमारा, 443-443-77 पे आप कॉल कर सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है कि हम आपकी कॉल ले लें, और वहीं अगर आपने मैसेज करना है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर है हमारा 666-22107। और फिलहाल तो अमिता, क्या है भाई आज का प्रोग्राम, क्या है यहाँ के बाद कहाँ जाएंगी?
1: यहाँ के बाद सीधा घर जाके सबसे पहले तो कुछ ठंडी लस्सी एंजॉय करूंगी। बट अभी हमारे लिसनर जो हमारे साथ जुड़ रहे, देखते हैं कि आज वो गुनाहिदीन रेस्टोरेंट के 500 कदरी डॉलर गिफ्ट वाउचर जीत पाते हैं कि नहीं।

0: हीरो से बात कर रहा हूँ।
1: हमारे तो आपका मत कहिए, कहिए
0: नहीं
1: आप दोनों के पड़ोसी।
0: हाँ मुझे तो
1: ये जो मंसूरा मुंतजा है ना, ये पूरा हम तीनों ने मिलके संभाला हुआ है, मतलब अमिता है, फिर मैं हूँ और फिर कबीरा, तीनों वही है आपके आसपास। तो अब आप बताइए, तीन तीन पड़ोसी अभी तक दावत नहीं आई।
0: चलो भाई कबीर को तो जानता हूँ, कबीरा कौन है?
1: वही है वही है,
2: कबीर को प्यार से कबीरा कहते हैं।
1: उसके साथ मैं ए लगा देता हूँ ताकि मेरी भी गुंजाइश रहे कहीं आने जाने की, अगर आपने खाली उनको इनविटेशन दिया तो साथ में मैं भी आऊंगा फिर।
0: नहीं ठीक है, मुश्किल नहीं है, शाम को एक बोतल लेकर आओ, इंशाल्लाह बिरयानी खिलाएंगे, हमने बिरयानी पकाई है ना रूम में।
2: बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो आपका नाम एक बार बताएं हमें।
0: जी सर अमिता, मेरा नाम मुदस्सर है।
2: मुदस्सर भाई, ओके मुदस्सर भाई,
1: अपना भाई मुदस्सर।
2: यस मुदस्सर भाई, तो अब हम सीधा सवाल की तरफ रुख करते हैं क्योंकि वक्त एकदम भागे जा रहा है, तो अब देखते हैं कि आप सही जवाब देते हैं कि नहीं। रेडी?
0: दुआ कर दे कि सवाल जैसा हो कि मुझे मतलब इसका जवाब जानता हो।
2: बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल 100% जानते हैं। अभी आपने बिरयानी बनाई है ना?
0: जी हाँ, लेकिन मैं देखो मैं कुकिंग का मतलब एक्सपर्ट नहीं है, अगर आप मुझे
2: नहीं एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है, ये आप जानते हैं, ठीक है ये मुझे पता है। चले आप सुने, ठीक है, मैं किचन में हूँ, ठीक है मैं किचन में हूँ और बहुत सीटी बजाता हूँ।
1: अरे ये मेरा काम,
2: मेरे सुने तो, सुन तो लीजिए,
1: अब आगे सुनूंगा ही नहीं।
2: मेरे बिना दावत का जो मीट है वो कभी नरम नहीं बन पाता, तो क्या हूँ मैं?
1: अब ये आप आधे सवाल में जो जवाब दे रहे थे आप मेरा नाम लेने वाले थे, अब आप सही बताइए कौन ज्यादा सीटी बजा रहा है।
0: जी जी जी, सवाल का जवाब है कुकर।
2: कुकर है? आर यू श्योर?
0: जी
2: ठीक है, तो भाई सरवर जी इनका जरा जवाब लिख लिया जाए।
1: जी बिल्कुल, मैंने लिख लिया
2: है, कुकर पर आकर अपना आंसर लॉक किया है।
1: ओके मुदस्सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त कम है और ज्यादा से ज्यादा हम चैंपियंस को जोड़ना भी चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
1: अस्सलाम
3: जी,
1: ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत। कौन है हमारे साथ?
3: आमिना खातून।
2: आमिना जी कैसी हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: बस खैरियत, और कैसे गुजर रही है आपकी ईद?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, इस साल तो थोड़ा और अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह।
2: क्या बात है माशाल्लाह,
1: क्या बात है भाई माशाल्लाह। जान सकती है अमिता के क्यों इतनी खास गुजर रही है आमिना जी?
3: जी इसलिए कि इस साल मेरी फैमिली थोड़ा ज्यादा हो गई है, कि मेरे इंडिया से मेरे देवरानी आई हुई है, उनके तीन बच्चे हैं माशाल्लाह
2: माशाल्लाह। दैट इज सो नाइस, दैट इज सो नाइस। हमें लगा कि जैसे आपने कहा फैमिली बढ़ गई कि कुछ गुड न्यूज वगैरह का इस तरह से।
3: नहीं वो तो आप दुआ करें, अल्लाह अगर लिखे रहेंगे नसीब में तो भी
2: डेफिनेटली, दुआएं हमारी हमेशा आपके साथ है। और अमीना बेगम जी थोड़ा सा हम हंस दिए, बिल्कुल नाराज ना हो, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे एकदम से, हम आपको ना बधाइयां देने वाले थे।
3: नहीं तो ये लोग आए ना तो
1: माशाल्लाह
3: ऐसे लग रहा
1: कि हाँ भाई रिश्तेदार आए हुए हैं, अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि त्योहार हो फेस्टिवल हो और उस पे रिश्तेदार साथ आ जाएं, घर वाले वही अपने करीबी सगे, तो बात ही कुछ और होती है। मगर अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर अब जैसे अमिता मुझे बेचारी तीन दिन लगातार बुला रही है, देखिए आमना जी क्योंकि अकेला महसूस कर रहे हैं ना ये लोग, ये इनके घर वाले
3: नहीं, तो
1: भैया हम अकेला महसूस नहीं कर रहे, हमारे यहाँ बताइएगा।
3: ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ 16 साल से हूँ, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह यही, जब मैं ये रेडियो लगाती हूँ तो ऐसे लगता था कि हम अभी आज ईद है या बकरा ईद है ऐसे पता चलता था, घर में रो नहीं पता चलता।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
3: लेकिन और फिर मेरी बेटी जब हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा हमें वो महसूस हुआ, नहीं तो मैं अकेले 10 साल मुझे मेरे बच्चे नहीं थे।
2: अच्छा अच्छा,
3: मैं अकेली थी तो अभी तो पता चलता था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस साल तो मैं ये लोग आए तो ऐसे लग रहा मैं इंडिया में ही हूँ पूरे।
1: माशाल्लाह ऐसी ही ईदें आपकी गुजारे जिसमें आप खुश खुर्रम रहें और घर वाले साथ जुड़े। अमिता आप सवाल कर लेते हैं आमना जी से,
2: चले आपसे अब सवाल पूछ लिया जाए, आपको बड़ा मजा आने वाला है ये सवाल सुनकर, ठीक है। मैं स्पाइसेस का मिक्स हूँ, ठीक है मतलब सारे मसालों का मिक्स हूँ, लौंग इलायची दालचीनी, मैं एक चुटकी भर डल जाऊं तो खाने की जान बन जाती है, मैं क्या हूँ?
1: तू लौंग इलायची, वो तो गाना याद आ गया।
2: क्या कह रही है?
1: नमक
3: नमक
2: नहीं, नमक नहीं।

0: सुन तो लीजिए, ये सारे जो मसाले होते हैं ना उसका मिक्सचर है, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी और भी कई मसाले, और जरा सा चुटकी भरी डलता है, चुटकी भर डलता है खानों में, काली मिर्च, नहीं नहीं और सोचे, मिक्सचर ऑफ मसालास।
1: तो खाना नहीं बना रही है मैंने बाजी लग रहा है
2: नहीं
1: बनाती है तो बताइए ना स्पाइसी तो फिर खाना बन रहा, चिकन बन रहा, स्पाइसी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना,
0: क्या हो सकता है
2: स्पाइसी के लिए तो
1: मतलब मसालों का पूरा मोहल्ला एक साथ आ जाता है ईद मनाने के लिए।
0: ये मिक्सचर है, सिर्फ एक एक मसाले का नाम नहीं लीजिए अमीना जी, ये मिक्सचर ऑफ मसाला है, और हमेशा खाने के आखिर में जैसे खाना बन रहा होता है ना, डिश बन रही होती है, आखिर में चुटकी भर डालते हैं
2: मसाला है।
0: आपको लगता है गरम मसाला है कि भी कुछ और तो नहीं है नहीं सर्वर जी वो खाना बनाती है
1: अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो समझ रहा था कि शायद दावत लेके भी फायदा नहीं होगा ना जी की
2: नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना
1: माशाल्लाह। अब ये तो देखिए आमना जी खा के ही बता पाएंगी अमिता
2: नहीं नहीं आप लोग के दावत है, आप लोग आ जाइए इंशाल्लाह।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
2: ऐसी बात नहीं, मैं तो कुकिंग में फेल होने वाली थी अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग में
0: चले बहुत मजा आया, लेकिन
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: ध्यान रखिए अमीना जी, अल्लाह हाफिज़।
1: अब हम आखिरी कॉलर को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे चैंपियन हमारे साथ, और वो हैं ये, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम अगेन मिस अली। अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी, दोबारा कॉल कर सकते हैं?
1: जी जी जी दोबारा कॉल तो कर ही सकते हैं, और अब आप हमारे साथ विनर जो है उनको भी घोषित करेंगे मिस अली।
3: अच्छा इतना बड़ा काम, अच्छा सर एक बात कह रही थी आप लोगों से, आप जो व्हाट्सएप पे जो जवाब दे रहे हैं ना आपको, मैं तो मतवातर दे रही हूँ,
1: तो
3: बस आप उन्हीं को शामिल करें जो सही जवाब दे।
1: बिल्कुल मैम ऐसे ही कर रहे हैं, ये जो बीच बीच में हम लंबे लंबे ब्रेक पे जा रहे हैं मैं और अमिता, दो दो गाने, तीन तीन गाने आज आपको सुनाने पड़ रहे, उसमें वही होता है कि हम वही सेग्रीगेट कर रहे होते हैं एक्चुअली कि जिनके सही जवाब आते हैं।
0: ऑलराइट मिस अली जी, अभी हमें दूसरा कॉल लेनी है सॉरी हमारे बात बिल्कुल खत्म
1: नहीं, मेरे ख्याल में तो अब हम मिस अली से
0: ही पूछ लेते हैं। मिस अली जी
1: आपका भी नाम हमने लिख लिया है मिस अली इसके अंदर, और अब आपने बताना ही है, एक मिनट मैं आपका भी नंबर यहाँ,
0: तो कितने कौन से नंबर के बीच हमें बताना है मिस अली को?
1: मिस अली को बताना है 1 से लेके 39 के दरमियान, 1 to 39।
0: यस, तो मिस अली इनमें से कोई एक नंबर आप चूज कर लीजिए, बिल्कुल सोच के एकदम कर रहा हूं,
1: आराम से कोई जल्दी नहीं मिस अली, क्योंकि आप ही विनर जो है इस वक्त घोषित
0: करने, वाली है। यस
3: 1 से लेकर 39 तक।
0: यस यस
3: 37
0: Are you sure?
3: Yeah, 100%
0: 37 Okay, so server 37 पे जरा देख लिया जाए कौन है आज का विनर,
1: और इस पे मोहर लगा दूं, बिल्कुल हमने देख लिया है साहब, और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मिस अली,
0: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच, अभी जवाब आ जाएगा कि कौन आज का विनर है, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थी मिस अली, और यहाँ पर विनर जो है घोषित कर गई है, और अब मैं उसका नाम बताने जा रहा हूँ।
0: yes.
1: अभी तक अमिता को भी नहीं पता है क्या नाम, अमिता क्या कहती हैं आप? कल माशाल्लाह हमारे साथ दो लेडीज
0: थी, right.
1: विनर थी, आज आसिफ भाई ने मौका उठाया पहले घंटे में, अब दूसरे एक घंटे में यहाँ पर क्या कहती हैं, कोई जेंट्स होंगे या कोई लेडी ही होंगी, आप क्या कहती हैं, क्या समझती हैं?
0: मैं तो हमेशा फीमेल को ही
1: वोट दूंगी
0: इसमें कोई वो ना समझे कि मतलब अरे हमें क्यों नहीं वोट दे रही, बट हाँ आज मुझे लगता है कि इस घंटे
1: मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है,
0: इस घंटे कोई ब्यूटीफुल लेडी अच्छा? ही जीतनी चाहिए।
1: चलिए भाई तो बिल्कुल सही है, आज की जो हमारी विनर है अगले एक घंटे में जो अब बनी है वो है रुखसाना साहिबा।
0: क्या बात है रुखसाना जी, मुबारका।
1: मिस अली के हाथों आपको ये विनर बनाया गया, और इधर अमिता भी थी साथ में, तो भाई आज बैलेंस भी रहा, उधर आसिफ भाई बने, इधर रुखसाना जी बनी। रुखसाना अगर कोई और कंफ्यूज अपने नाम से करे तो मैं बता दूं कि 6-7 जिनके नाम में है आखिरी
0: नंबर में आता
1: नंबर में है। असल में मैं सोच रहा हूँ ना कि आप कैसे हम लोग
0: एब्सोल्युटली और आपने जीता है गुनाइदीन रेस्टोरेंट का 500 कतरी रियाल का गिफ्ट वाउचर।
1: दोनों ने आसिफ भाई ने भी रुखसाना ने भी
0: और जिसके डिटेल्स डेफिनेटली हमारे एफएम 107 की टीम आपसे आपके नंबर के थ्रू कनेक्ट करेगी और बताएंगे कि कब कहां कैसे कलेक्ट करना है ये वाउचर। सो थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, ये डिटेल्स आप तक जरूर पहुंचेंगी,
1: जरूर जल्द से जल्द आप लोगों को ये डिटेल्स पहुंचने वाली है। सबको ही बहुत बहुत मुबारक हो भाई, नहीं बने आज विनर कोई ऐसी बात नहीं, एफएम 107 सुबह से रात तक आप लोगों को मौके दे रहा है, मुख्तलिफ प्रोग्राम में हम लोग जुड़ते हैं इसीलिए कि आप लोगों की ईद और भी ज़्यादा बेहतर हो। तो सिर्फ मेरे अमिता के साथ ही नहीं, आप शाम में भी, दोपहर में भी, रात में भी, सुबह भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में सब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की ईद अच्छी से अच्छी सेलिब्रेट हो, तो उसका एफएम 107 के प्रोग्राम्स का हिस्सा ज़रूर बनिए। इंशाल्लाह ताला मुझसे और अमिता से कल आपकी मुलाकात सही 10 बजे हो जाएगी, जहां पर दो और विनर हम बनाने वाले हैं।
0: एब्सोल्युटली, तो कल और परसों ये वीकेंड और भी स्पेशल होगा, सो डोंट मिस इट। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एफएम 107।

0: आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, ब्लेस योर होम विद लव एंड पीस। ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है। सभी पुरानी बातों को, गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अज़हा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: सलाम हो इब्राहिम अलैहिस सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाद कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत, ईद के दूसरे और चौथे दिन रात के ठीक 10 बजे सिर्फ और सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दिल से देसी।

0: से घर होते हैं जहां ईद के दिन कुर्बानी का गोश्त खुशी उम्मीद और मोहब्बत का पैगाम लेकर पहुंचता है। सोचिए एक गरीब माँ जिसके बच्चे शायद कई दिनों से अच्छे खाने के मुंतजर हों, जब उसके दरवाजे पर कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है तो सिर्फ खाना नहीं पहुंचता बल्कि एहसास मोहब्बत और अपनाइयत भी पहुंचती है। यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही कुर्बानी की असल रूह है। अल्लाह ताला को ये बात बेहद महबूब है कि बंदा उसकी दी हुई नियमतों में दूसरों को भी शरीक करे। जब मुआशरे के ताकतवर लोग कमजोरों का सहारा बनते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। सामने किराम, आज दुनिया मादियत की तरफ बढ़ रही है मगर इस्लाम हमें दिलों को जोड़ने की तालीम देता है। कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि खुशी सिर्फ अपनी जात के लिए ना हो बल्कि दूसरों को भी उसमें शरीक किया जाए। इसीलिए कुर्बानी भाईचारे और खुवत का अजीम दर्स देती है कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त से, एक रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार से और एक अमीर को एक गरीब इंसान से करीब कर देती है। ईद के दिन जब लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, सलाम करते हैं, दुआएं देते हैं और कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हैं तो दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, फासले खत्म होते हैं और माशरे में एक खूबसूरत रूहानी फिजा कायम होती है। इस्लाम चाहता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद हों, एक दूसरे के दर्द को महसूस करें, एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। सामिन किराम, आज हमें अपने मुआशरे में इसी रूह को जिंदा करने की जरूरत है। नफरतों, हसद, खुदगर्जी और दूरियों के इस दौर में कुर्बानी हमें मोहब्बत, कुर्बानी, खिदमत और इत्तेहाद का रास्ता दिखाती है। जब मुसलमान अल्लाह के रिजा के लिए एक साथ कुर्बानी करते हैं, इबादत करते हैं और एक दूसरे के साथ खैरखाही का मामला करते हैं तो ये इज्तिमाई ने कि अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचती है। और हकीकत यही है कि अल्लाह की रहमत उन मुआशरों पर नाजिल होती है जहां मोहब्बत हो, भाईचारा हो, जरूरतमंदों का ख्याल रखा जाता हो, इंसाफ हो। आइए इस ईद के मौके पर हम सिर्फ जानवर को कुर्बान करने वाले न बने बल्कि अपनी खुदगर्जी को भी कुर्बान करें, अपना गुरूर कुर्बान करें, अपनी नफरतें कुर्बान करें और अपने दिलों में मोहब्बत, हमदर्दी और खुवत को जगा दें। अल्लाह ताला हमें कुर्बानी की हकीकी रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुआशरे में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा फरमाए और हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत, हमदर्दी और खुवत के इन पैगामात के साथ आज के इस हलके से साउंड डिजाइन नदीम अंसारी और मुझे तलहा शफुज़्ज़मान को दीजिए इजाजत और आप सबको ईद उल अज़हा के इस मौके पर दिल की गहराइयों से ईद मुबारक।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107, दिल से देसी।

की खुशबू, कुर्बानी का जज्बा और खुशियों का जहां। ये ईद हमें सेक्रीफाइस, पेशेंस और शेयरिंग का पैगाम देती है। अल्लाह करे कि ये दिन आपके लिए खुशियाँ, बरकत और सुकून लेकर आए। अपने घर वालों, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियाँ बांटना ना भूलें। दुआ है कि अल्लाह आपकी हर कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को कामयाबी और रहमत से भर दे। मैं हूँ नाजिया, मेरी और FM 107 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिल से ईद उल अधा मुबारक।

0: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ईद सुनना और अब हम जानेंगे एक बहुत अहम सुन्नत के बारे में जो है ईद के दिन गुस्ल करना। इस्लाम सफाई और पाकीजगी का दिन है और ईद का दिन तो खास तौर पर सफाई और खूबसूरती का दिन है। इस्लाम में सफाई को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई ईमान का हिस्सा है। ईद के दिन गुस्ल करना एक सुन्नत अमल है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है जिस पर अमल करने में बहुत अजर है। जब एक मुसलमान ईद के दिन गुस्ल करता है तो वो जिस्मानी तौर पर साफ होता है, जहनी तौर पर ताज़ा होता है और इबादत के लिए तैयार होता है। ये अमल हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह के हुजूर जाने से पहले हमें पाकीज़गी इख्तियार करनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन गुस्ल फरमाते थे। वो हमेशा सफाई और खुशबू का ख्याल रखते थे। ये अमल हमें ये सबक देता है कि इबादत से पहले सफाई ज़रूरी है और इज्तिमा में अच्छे अंदाज में जाना चाहिए। इस्लाम में सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं बल्कि इसका अंदाज भी खूबसूरत होना चाहिए। ईद के दिन गुस्ल सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं बल्कि रूहानी ताजगी भी देता है। जब इंसान गुस्ल करता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है, वो खुद को बेहतर महसूस करता है और इबादत में दिल लगता है। ये छोटा सा अमल इंसान के पूरे दिन को बेहतर बना देता है। ईद एक इज्तमाई दिन है, यानी सब लोग एक दूसरे के साथ जमा होते हैं। अगर हर शख्स साफ सुथरा खुशबूदार हो तो माहौल खूबसूरत हो जाता है, मुलाकातें खुशगवार हो जाती हैं और एक मुस्बत फिजा बनती है। इस्लाम में सफाई को ईमान का हिस्सा कहा गया है। ईद के दिन गुस्ल हमें याद दिलाता है कि हम हर वक्त साफ रहें, अपनी इबादत को बेहतर बनाएं और अल्लाह के करीब हों। ईद के दिन गुस्ल करना एक सुन्नत है। ये सफाई और इबादत दोनों के लिए ज़रूरी है और हमें रूहानी और जिस्मानी तौर पर तैयार करता है। तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की ईद सुनना। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईद मुबारक। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक। आज इस खास दिन में आज हम बात करेंगे एक खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग क्रिकेटर्स, स्टार क्रिकेटर्स मैं अगर कहूं तो मैं गलत नहीं हूं, राहुल द्रविड़। जी दोस्तों, राहुल द्रविड़ इंडिया के सबसे अजीम बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उनके प्लेइंग करियर में उनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद होगा, क्योंकि उनकी बैटिंग टेक्निक और पेशेंस बहुत मजबूत थी। फास्ट बॉलर्स उनको आउट करने में काफ़ी परेशान रहते थे बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिफेंस। राहुल द्रविड़ ने अपने इंटरनेशनल करियर में इंडिया को कई मुश्किल मैचेस में संभाला और अपनी काम पर्सनैलिटी से फैंस का दिल जीता। उनकी पैदाइश बैंगलोर में हुआ और उन्होंने 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, जहां उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबको मुतासिर किया। राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में शामिल हैं। उन्होंने दुनिया के लगभग हर मुल्क में रन्स बनाए और फास्ट बॉलर्स का बहुत हिम्मत से सामना किया।

नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लू आम वअंतुम बख़ैर।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप, स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का इस्तकबाल है और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। और आज ईद का दूसरा दिन है, देखिए स्पोर्ट्स भी जारी है, ईद भी है और इसी के साथ एक कॉन्कॉक्शन है जो आप मज़े ले सकते हैं। या दोस्तों स्पोर्ट्स को अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे वो नहीं चलेगा। ईद के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स का एंजॉय उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स राउंड अप में आप जुड़ सकते हैं। और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, ओलंपिक्स, जो भी कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, सब कुछ मिलेगा यहां आपके इस फेवरेट शो में जिसका नाम है स्पोर्ट्स राउंड अप। और हर हफ्ते यानी जुमेरात को 1 से 1:30 तक मैं हाजिर होता हूं आप लोगों को स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के न्यूज़, स्पोर्ट्स के अपडेट्स मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से, सो दैट आप थोड़ा हमारे साथ जुड़ जाएं, FM 107 के साथ जुड़ जाएं। और ये क्विज जो है कतर माफ कीजिएगा वर्ल्ड कप 2026 से मुतालिक है। और वर्ल्ड कप 2026 में आपको पता है कि अगले महीने से शुरू होने जा रहा है 11 जून से। और आज का सवाल है ईरान फुटबॉल के ऊपर, और ईरान फुटबॉल को लेकर एक सवाल बड़ा ही छोटा सा है, आप लोग इसको ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बहुत सारा आपको मेहनत करनी पड़े। तो सवाल यह है कि ईरान का पहला मैच किस टीम के अगेंस्ट में होने जा रहा है, आपको सिर्फ ये बताना है ईरान का मैच किस टीम के अगेंस्ट में होने जा रहा है इन द वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप। और आपको सिर्फ करना है जवाब लिखने हैं, और ये जवाब जो है व्हाट्सएप नंबर है 6622107 पर मुझे आप शेयर कर सकते हैं विथ योर नेम। तो सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप में है और ईरान का पहला मुकाबला किस टीम के अगेंस्ट में होने जा रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉप हाइलाइट्स ऑफ द वीक। जी हाँ दोस्तों, आज एक मैच होने जा रहा है कतर नेशनल फुटबॉल टीम का, एक फ्रेंडली मैच है और ये फ्रेंडली मैच जो है आज डबलिन में अगेंस्ट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के अगेंस्ट में होने जा रहा है। कतर टीम भी मौजूद है वर्ल्ड कप 2026 में जो कि 11 जून से शुरू हो रहा है अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको में। और कतर आज एक फ्रेंडली मैच यानी दोस्ताना मैच में, एक प्रिपेरेटरी मैच है वर्ल्ड कप जाने से पहले, अपने आप को देखना चाहते हैं ये कि कौन से खिलाड़ी सही जगह पर है, सही पोजीशन पर खेल रहे हैं और फिटनेस कहां तक है। सो आज का मैच है कतर वर्सेस आयरलैंड इन डबलिन इन आयरलैंड में। दोहा में 4 जून को यानी अगले हफ्ते से एएफसी एशियन कप सऊदी अरब 2027 के क्वालिफाइंग मैच है। और इस क्वालिफाइंग मैच जो है लुबनान वर्सेस यमन का है, और ये मैच जो है कतर के ही दोहा के ही स्टेडियम में है, हमाद बिन खलीफा स्टेडियम में है। ये मैच अहम मैच है फॉर लेबनान और यमन के लिए, और ये जो है इम्पोर्टेंट मैच इसलिए है कि दोनों टीमों में से कोई भी एक टीम जो है क्वालिफाई कर सकती है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स एएफसी 2027 एएफसी एशियन कप फुटबॉल जो कि सऊदी अरब में होने जा रहा है। इस साल एक और अहम मुकाबला होने जा रहा है ईयर एंड में नवंबर में, जैसे पिछले साल हुआ था नवंबर को फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कतर में ही होने जा रहा है, दोहा में ही होगा। और इसके साथ साथ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के जो ग्रुप्स हैं और मैचअप्स का जो है जो टोटल अनाउंसमेंट हुआ है वो भी कर दिया गया है। और ये ड्रॉ स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में मौजूद फीफा के हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किद हुआ है। दोस्तों काफ़ी कुछ इवेंट्स हैं कतर में, कतर फुटबॉल टीम इज़ बिजी क्योंकि कतर को खेलना है वर्ल्ड कप 2026 में, तो भरपूर इवेंट्स हैं, भरपूर मुकाबले हैं स्पोर्ट्स को लेकर। और आज ईद के दिन में मैं आप लोगों से बड़ा खुश हूं कि इस तरह के स्पोर्ट्स के जो न्यूज़ है, स्पोर्ट्स के जो अपडेट्स हैं मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। देखिए ईद इज़ अ एंटरटेनमेंट, ईद इज़ जश्न, ईद के साथ साथ स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो एंटरटेनमेंट, एक जश्न जो है, और उसमें अगर कतर की टीमें शामिल हों तो क्या कहने। 2025 स्पोर्ट्स एंड यूथ एक्सेलेंस अवार्ड सेरेमनी में अल अरबी स्पोर्ट्स क्लब जो है वो उनको टॉप अवार्ड मिला, पहली पोजीशन हासिल की और जबकि असद दूसरे पोजीशन पर रहे और अर्रयान तीसरे नंबर पर रहे। जापान की नेशनल अंडर 17 टीम, जापान की नेशनल अंडर 17 टीम फुटबॉल टीम और एएफसी अंडर 17 एशिया कप का चैंपियन बन चुकी है। और ये चैंपियन इसलिए बने कि फाइनल जो खेला गया था उसमें चीन को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। जापान इज वेरी पावरफुल टीम, देखिए अंडर 17 मजबूत है, उनकी जो यूथ टीम वो भी मजबूत है और जो यू नो जो सीनियर टीम है जो एशिया कप में भी मौजूद है, दे आर रियली गेनिंग, यू नो दे आर रियली गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वर्ल्ड कप में जापान मौजूद है, ठीक है, तो जापान, ईरान और कई ऐसे एशियन ममालिक। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और है कि अरब के टोटल 8 ममालिक मौजूद हैं और जिसमें जॉर्डन पहली दफ़ा, उज्बेकिस्तान है, अच्छा उज्बेकिस्तान फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कर चुकी है, उज्बेकिस्तान की टीम है, उज्बेकिस्तान की टीम भी बड़ी मजबूत है। और वहीं से अगर देखूं कि साउथ सऊदी अरेबिया और यू नो अरब टीमों के बारे में बात करूं तो कतर इज देयर, इराक इज देयर और उसके साथ साथ जो 3 नॉर्थ अफ्रीकन टीम बल्कि अल्जीरिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया और मोरक्को, ये 4 टीमें भी वहाँ पर होंगी। सो ओवरऑल अरब की रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, अरब टीमों की रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो हमें बड़ा ही फख्र महसूस होता है दोस्तों। अच्छा, आखिरी अपडेट जो है, नॉर्थ कोरिया के क्लब निवा यांग ने एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग का खिताब जीता। तो ये हमारे जो जितने भी अपडेट्स हैं वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है और इससे इसके अलावा मैं जो क्वेश्चन पूछा था, जो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा, वो सवाल ये है, आप लोग थोड़ा सा फ़ोन ऑन कर लीजिए क्योंकि अभी भी तो 1:07 हो रहा है तो इसमें आप लोग स्पोर्ट्स के साथ थोड़ा जुड़ जाइए। हाँ, मुझे पता है ईद का दिन है और खाना पीना आप लोगों ने कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ स्पोर्ट्स का भी मज़ा लीजिए। स्पोर्ट्स का जो ये सवाल है, स्पोर्ट्स राउंडअप के जो सवाल, आज सवाल ये है कि ईरान का पहला मैच वर्ल्ड कप 2026 में किस टीम के अगेंस्ट में होने जा रहा है। तो आपको ये बताना है मुझे, यानी मोहम्मद अमीन को 666-22-107 पर। दोस्तों काफ़ी कुछ इवेंट्स हैं, काफ़ी कुछ इवेंट्स जारी हैं, काफ़ी कुछ इवेंट्स हो चुके हैं और कुछ इवेंट्स जो हैं आने वाले हैं कतर में, वो उनमें से एक इवेंट मैं आप लोगों को बता दूं, फार्मूला 1। ये नेवर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ फार्मूला 1। हालांकि फार्मूला 1 में जाने के लिए नो आप लोगों को मतलब जो टिकट्स हैं वो टिकट्स के अनाउंसमेंट अभी तक हुई नहीं है, और लेकिन उसमें अगर आप लोग बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। एंड एंड ऑफ दिस ईयर नवंबर में होने जा रहा है। मोटो जीपी है, किसी को अगर बाइक रेसिंग पसंद है तो मोटो जीपी में भी आप यू नो हिस्सा नहीं बल्कि आप देखने जा सकते हैं। साथ साथ एक बात और भी बता दूँ कि अगस्त सेप्टेम्बर ये जो दोनों महीने हैं ना, इस दोनों महीनों में कतर स्टार्स लीग जो लोकल लीग है, लोकल फुटबॉल लीग है, कतर स्टार्स लीग शुरू हो जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है फ्रॉम द लोकल स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ मैचेस आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक और इवेंट होने जा रहा है इस साल, वो है जस्ट वर्ल्ड कप के बाद ही बात, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड कप फुटबॉल के बाद बात, तो वो है GCC यानी खलीजी 27। इसका ब्रांड आइडेंटिटी है खलीजी 27 मींस 2026 का 27th एडिशन ऑफ गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि जद्दा में होने जा रहा है। तो दोस्तों एक ब्रेक लेता हूं यहां पर और ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो क्रिकेट के खबरों के साथ आऊंगा और काफ़ी कुछ क्रिकेट की न्यूज़ है, क्रिकेट के अपडेट्स हैं जो आपको मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन सवाल मेरा जो था वो सवाल आप नोट कर लीजिए कि ईरान फुटबॉल टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप में है तो उनका जो टीम का जो मैच होने जा रहा है, फर्स्ट गेम ऑफ ईरान किस टीम के साथ, किस टीम के अगेंस्ट में, बल्कि किस टीम के अगेंस्ट में ईरान अपना मैच खेलेगा, तो आपको ये बताना है। 666-22-107 पर मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर एंड कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी।

अल्लाह की रहमतों और नेमतों से आपका घर हमेशा भरा रहे। इस ईद पर सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि अपनों के साथ मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। FM 107 की जानिब से मैं आपकी अमीता आप सभी को ईद उल अदा की दिली मुबारकबाद देती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर एक बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: इस ईद दुनिया के रंग रिवायत और खुशी

के दूसरे और चौथे दिन दोपहर 3 बजे, जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर, एक उम्मत और ईद में मोहब्बत का पैगाम।

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
0: जी हाँ, वेलकम बैक स्पोर्ट्स राउंड अप में। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और स्पोर्ट्स का ये खास प्रोग्राम ईद के दिन, और अच्छा लगता है ईद के दिन स्पोर्ट्स की बातें करना, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, अभी क्रिकेट के खबरों के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ गया हूँ, और आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान का पहला मुकाबला किस टीम के अगेंस्ट में है। आप लोग टेक्स्ट करिए, टेक्स्ट आ ही रहे हैं, मैं देख ही रहा हूँ, तो आप लोग करिए। और मैं इस जस्ट प्रोग्राम के खत्म होने से पहले आप लोगों का ये जो जितने भी जवाब है उसको शेयर करूंगा आप लोगों के नाम के साथ। तो मूविंग ऑन टू क्रिकेट अपडेट्स, और क्रिकेट में काफी कुछ होने जा रहा है। जी हाँ, दो दिन के बाद पाकिस्तान में 3 मैचों पर मुश्तमिल ओडीआई सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड पाकिस्तान की ये पहली सीरीज है आफ्टर लूजिंग टू बांग्लादेश इन बांग्लादेश इन द टेस्ट सीरीज। तो ये ओडीआई सीरीज जो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ आने वाली इस ओडीआई सीरीज से पहले ही एक झटका लग गया है, जब मिचेल मार्श एंकल इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। दैट्स अ गॉट, ये एक बुरी खबर है फॉर द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। और मार्श की गैर मौजूदगी में विकेटकीपर बैट्समैन जॉश इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। सो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ विशेस टू बोथ द टीम्स पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, टीम के अनाउंसमेंट है, और टीम के अनाउंसमेंट इस तरह किया गया कि सईम अय्यूब और फखर जमान को इंजरी से रिकवरी की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है, जबकि मोहम्मद रिजवान को भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ्स जारी हैं, और इस मैच का, इस आईपीएल का जो फाइनल होने जा रहा है, आईपीएल फाइनल 31 मई को मुनक्किद होगा। और एक और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के हवाले से एक अपडेट्स मैं शेयर करूंगा। कुसल मेंडिस को वेस्ट इंडीज टूर के लिए श्रीलंका की ओडीआई और टी20 टीमों का नया कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, एंड जबकि धनंजय डी सिल्वा टेस्ट टीम के कप्तान बरकरार रखे रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़े से चेंजेस आए हैं कुसल मेंडिस जो हैं वेस्टइंडीज, और वेस्टइंडीज में श्रीलंकन के ओडीआई व्हाइट बॉल गेम, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओडीआई और टी20, ये दोनों स्मॉल फॉर्मेट्स, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट्स हैं के इनके जो कप्तान, न्यू कैप्टन। एंड वहीं धनंजय डी सिल्वा ऑलरेडी टेस्ट टीम के कप्तान थे, तो उनको रख दिया गया है कि नॉट, आई मीन दे आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग ऑन दैट। सो बेस्ट ऑफ लक टू द श्रीलंकन क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज दौरे पर। और अगर बात करूँ कि कल एक मैच हुआ था आईपीएल का, और उसमें सबको पता है, पता चल गया होगा, आई मीन इट्स नॉट एनी मोर अ वेरी ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, हाँ, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी 15 साल का एक नौजवान बल्लेबाज है इंडिया से, और उन्होंने एक मैच में राजस्थान के और खेलते हुए उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ एक रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड ये कि सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाने वाला बैट्समैन, और उन्होंने क्रिस गेल का एक रिकॉर्ड जो था आईपीएल में वो रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और राजस्थान ने हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी, और ये मैच काफ़ी अहम रहा बिकॉज ये आईपीएल प्लेऑफ का मैच है, जैसे मैंने बताया कि 31 तारीख को फाइनल होने जा रहा है, और वी हैव टू वेट फॉर द सेकंड टीम, क्योंकि बैंगलोर ऑलरेडी दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। सो ये जो मैचेस हुए हैं क्रिकेट के साथ, क्रिकेट में जितने भी मैचेस हुए हैं उसके बारे में आप लोगों से शेयर किया, क्रिकेट की खबरें आप लोगों से शेयर किया। अब नाउ मूविंग ऑन टू द रीजनल एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स, इसमें मैं देखता हूँ कि क्या होने जा रहा है।

सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो है 30 मई को है और वो मैच है UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल जिसमें आर्सेनल का सामना डिफाई चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन से होगा। अच्छा पीएसजी से जब भी आई मीन पीएसजी के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो कतर को हमेशा जोड़ता हूं बिकॉज इट्स अ कतर का ही एक तरह से देखा जाए एक क्लब है और कतर इज बेसिकली वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स और कतर ओन्स दिस क्लब। सो पीएसजी क्लब इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कतर पॉइंट ऑफ व्यू। तो पीएसजी अगर इस बार दे विन दिस फाइनल अगेंस्ट आर्सेनल तो मुसलसल दूसरी मर्तबा पीएसजी की फुटबॉल की तारीख में इट विल बी एन यूनिक रिकॉर्ड टू हैव डिफेंडेड द टाइटल सक्सेसफुली। वेस्ट हैम को इतवार के रोज प्रीमियर लीग से रेलिगेशन का सामना करना पड़ा। वेस्ट हैम क्लब वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल क्लब्स ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग और इसके साथ साथ उनका इंग्लैंड के टॉप डिवीजन में 14 साल का सफर खत्म हुआ जबकि टॉटनहम हॉटस्पर ने करीबन आधी सदी बाद मुमकिन रेलिगेशन से बचने में कामयाबी हासिल कर ली एंड दे जस्ट सेव द रेलिगेशन जस्ट बचा लिया अपने आप को। मूविंग ऑन टू कतर स्नूकर। कतर स्नूकर और बिलियर्ड स्टार आली अल ओबैदली ने पिछले महीने फोर्थ गल्फ कप गेम्स में बिलियर्ड और स्नूकर मुकाबले में 15 रेड बॉल स्नूकर सिंगल्स इवेंट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और वहीं फ्रेंच ओपन की बात करूं तो फ्रेंच ओपन में 41 ईयर ओल्ड स्टैन वावरिंका ने फ्रेंच ओपन में अपने यादगार सफर को अलविदा कह दिया और ये स्विस स्टार पहले राउंड में जास्पर डिजोंग के खिलाफ 6-3 3-6 6-3 6-4 सेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा और काफी इमोशनल इनका जो हार मैं कहूँ शिकस्त है और यू नो 41 ईयर 41 साल में तो हर खिलाड़ी सोचता होगा कि भाई मैं कैसे खेलूँ इस 40 साल के एज में। देखिए 40 साल के 41 साल के एज में स्टैन वावरिंका ने कमाल करके दिखाया और फ्रेंच ओपन में फाइनली उन्होंने कह दिया कि नाउ इट्स ओवर बिकॉज हारने के बाद अब क्या मतलब कंटिन्यू करना। चार मर्तबे की चैंपियन वीमेन सिंगल चैंपियन इगा स्वांतेक ने पेरिस में एक और जबरदस्त शुरुआत की। पॉलिश सुपरस्टार है और डोमिनेंट परफॉर्मेंस के साथ 2026 फ्रेंच ओपन के सेकंड राउंड में जगह बना ली एक और रोला ग्रानो टाइटल जीतने की उम्मीदें मजबूत कर दी हैं। और एक अब कल एक और मैच हुआ था और उस मैच में नन अदर देन कौन जोकोविच। जी हाँ दोस्तों जोकोविच मारूफ टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रांस के वैलेंटिन रॉयर को एक सख्त और तवील मैच में शिकस्त दी और ये मुकाबला 3 घंटों से ज्यादा देर तक जारी रहा। बताता चलूं कि जोकोविच के सामने एक रिकॉर्ड कायम करना है। उस रिकॉर्ड को कई बार वो मिस कर चुके हैं पिछले एक साल से मैं नोट कर रहा हूँ। ग्रैंड स्लैम का 25th टाइटल 24 टाइटल तो उनके जेब में है एक रिकॉर्ड है मॉडर्न टेनिस में लेकिन 25th टाइटल जो है अभी तक वो जीत नहीं पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार वो कर लेंगे पहुंचते हैं फाइनल क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच ही जाते हैं लेकिन हार रहे हैं एंड दैट इज व्हाट जोकोविच। अब इंज्योर्ड भी है थोड़ा सा यू नो एज भी है लेकिन जोकोविच जिस तरह से टेनिस खेल रहे हैं देखिए 3 घंटे से ज्यादा मैच खेलना वो भी पेरिस में काफी गर्मी है इन दिनों टेम्परेचर काफी हाई है और यहाँ पे टेनिस खेलना आई मीन आप समझ लीजिए 3 आवर मोर देन 3 आवर्स के टेनिस में आप तो हाफ ही जाएंगे छोड़ दीजिए। तो जोकोविच को आप लेकिन ईजी मत समझिए। और वहीं नंबर वन वर्ल्ड नंबर वन इन द मेन सिंगल्स यानिक सिनर आज क्वान मैनुअल केरुंडोलो का सामना करेंगे। क्वान ने पहले राउंड में बर्तानिया के जैकोब फियनले को हराया था। अगर मैं वीमेंस टेनिस की बात करूं वीमेन सिंगल्स टेनिस में आज मुकाबलों में अरीना साबालेंका नाओमी ओसाका अमांदा अनिसोमोवा और डिफेंडिंग चैंपियन कोको गॉफ आज अपने सेकंड राउंड मैचेस खेलेंगे। वहीं सिंगल्स ड्रॉज में बर्तानिया की आखिरी बाकी रहने वाली खिलाड़ी कैटी बोल्टर का मुकाबला 28 सीड अनस्तासिया पोटापोवा से होगा। काफी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं ये इसको भी आप लोग देख सकते हैं और इसको एंजॉय करें और एंजॉय के साथ साथ ये भी सोचे कि यू नो टेनिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टेनिस खेलना भी आजकल कतर में भी लोग टेनिस खेलते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। और चेस की बात करूं शतरंज में नॉर्वे चेस के दूसरे दिन इंडिया के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश और उनके हमवतन प्रगनंदा को मायूस कुन शिकस्तों का सामना करना पड़ा। हार गए हैं और फ्रांस के आली रेजा फिरोजा लगातार 2 जीत के बाद पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच गए हैं। जर्मनी फुटबॉल टीम से एक खबर है। जर्मन फुटबॉल टीम के हेड कोच कोलियान नागल्समान दोस्तों बता दूं कि कोलियान नागल्समान काफी यंग है। उन्होंने इस बार दावा किया है कि वाजे किया है कि उनकी टीम का मकसद जो है फीफा वर्ल्ड कप जीतना है और एक दिहाई से ज्यादा अरसे की मायूसों का जो यू नो जर्मन फुटबॉल टीम में छाया हुआ है वो

0: खत्म करना है। बेसिकली वो जो एरा था 2014 में जब ब्राजील को 7-1 गोल से हराया था, वो मैच आप लोगों को याद होगा, 7-1 यू नो डिफीट ऑफ ब्राजील फुटबॉल टीम इन ब्राजील 2014 में जर्मनी वर्ल्ड कप जीतने के बाद। अब 12 साल हो गया है, 12 साल में जर्मनी को वर्ल्ड कप उनके टाइटल हाथ नहीं लग रहा है। सो वो अब जो है खुलिया नागल्समन के यू नो कहने के मुताबिक ये लग रहा है कि जर्मन फुटबॉल टीम इस बार काफी मजबूत है और दे विल डेफिनेटली विन दिस टाइटल। अच्छा दोस्तों, एक अब हमारा ये आखिरी वो जो सेगमेंट है उसमें हम आपको बता देते हैं कि फीफा में फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का मैच किसके अगेंस्ट में होने जा रहा है और कई जवाब हैं और सही जवाब है ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो बिल्कुल सही जवाब है। शोएब साहब आपने सही जवाब दिया है और किन्होंने दिया है, साबिर साहब ने भी दिया है। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में मैच होने जा रहा है फॉर ईरान, दे आर इन ग्रुप जी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का स्पोर्ट्स राउंड अप प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है। अगले जुमेरात को दोबारा मुलाकात होती है, तब तक सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। दिस इज मोहम्मद अमीन साइनिंग ऑफ।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

जहां मोहब्बत हो, भाईचारा हो, जरूरतमंदों का ख्याल रखा जाता हो, इंसाफ हो। आइए इस ईद के मौके पर हम सिर्फ जानवर को कुर्बान करने वाले न बने बल्कि अपनी खुदगर्जी को भी कुर्बान करें, अपना गुरूर कुर्बान करें, अपनी नफरतें कुर्बान करें और अपने दिलों में मोहब्बत, हमदर्दी और खुवत को जगा दें। अल्लाह ताला हमें कुर्बानी की हकीकी रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे माशरे में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा फरमाए और हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत, हमदर्दी और खुवत के इन पैगामात के साथ आज के इस हलके से साउंड डिजाइन नदीम अंसारी और मुझे तलहा शफ़ुज़्ज़मान को दीजिए इजाजत और आप सबको ईद उल अज़हा के इस मौके पर दिल की गहराइयों से ईद मुबारक।

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samain, आज ईद का दूसरा दिन है. आइए अल्लाह सुबहानहू व तआला की बारगाह में एक साथ मिलकर हाथ उठाकर दुआ करते हैं. ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं. बादशाही उसी की है, तारीफ उसी के लिए है, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है. समीन, ईद उल अधा का दूसरा दिन हमें अराफा की रोशनी और तौहीद की ताकत देता है. इस कलमे के साथ इंसान अपनी अना, अपनी जिद, अपनी नफरत, अपनी मायूसी सब छोड़ देता है. जब हम कहते हैं लहुल मुल्क, तो हम मान लेते हैं कि अख्तियार अल्लाह सुबहानहु व ताला का है. फिर दिल की घबराहट कम होती है. जब हम कहते हैं लहुल हम्द, तो हम शिकवा छोड़कर शुक्र की जबान अपनाते हैं. और जब हम कहते हैं वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो हमें यकीन आता है कि अल्लाह सुबहानहु व ताला चाहे तो हालात बदल देता है, रिश्ते जोड़ देता है और बंदे को राह दिखाता है. समीन, तौहीद का असर यह है कि दिल अल्लाह सुबहानहु व तआला पर टिक जाए तो दुनिया की लहरें भी खौफ नहीं बनाती. आज के दिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह सुबहानहु व तआला पर भरोसा करना सिर्फ जुबान का कलाम नहीं, बल्कि दिल का यकीन होता है. जब हम अपनी जिंदगी के फैसले अल्लाह सुबहानहु व तआला के हवाले कर देते हैं, तो फिर बेचैनी कम हो जाती है और सुकून बढ़ जाता है. ये एहसास कि अल्लाह सुबहानहु व तआला बेहतर प्लान रखता है, बेहतर

0: चैन करता है इंसान को हर हालत में मुतमईन रखता है। और समईन आरफा की रोशनी हमें ये भी सिखाती है कि माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने का जरिया है। जो बंदा अपनी गलतियों का एतराफ करता है अल्लाह सुबहानहु व तआला उसके दरवाजे बंद नहीं करता बल्कि उसे अपनी रहमत के साए में ले लेता है। इसलिए आज का दिन दुआओं का दिन है, इस्तग़फार का दिन है और अपने रब से जुड़ने का दिन है। तो आइए इस मुबारक दिन पर हम अपने दिलों को साफ करें, लोगों को मुआफ करें और अल्लाह सुबहानहु व तआला से अपना ताल्लुक मजबूत करें। ये वही रास्ता है जो इंसान को असल सुकून देता है और जिंदगी को आसान बनाता है। अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सबको सच्ची तौहीद समझने, उस पर अमल करने और हर लम्हे अपनी जिंदगी को उसकी रोशनी से रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को हसद, बुग्ज और तकब्बुर से पाक करे और हमें अपनी याद से जोड़े रखे। अल्लाह हमारी जिंदगी में हिदायत, सुकून और बरकत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन इसी दुआ के साथ आप सभी को सरवर मिर्जा की जानिब से ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद।
1: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल। सफा के साथ एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से, तो सुनना मत भूलिएगा और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल पर RJ सफा के साथ दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप सुन रहे हैं हदीस इन अ मिनट सीम के साथ। हजरत उमर रजी अल्लाह अनु ने बाजार से रेशम का एक जोड़ा खरीदा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हुए कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे पहन लीजिए ताकि ईद और वफदों के आने के मौके पर जीनत इख्तियार फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लिबास उन लोगों के लिए है जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कुछ अरसे बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रेशम का एक जोड़ा भेजा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो फरमाया था कि ये लिबास उन लोगों के लिए है जिनका आखिरत में कोई भी हिस्सा नहीं, फिर आपने ये मुझे क्यों भेजा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बेच दो और अपनी जरूरियात पूरी कर लो। रिवायत सही बुखारी। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले लोगों में से एक शख्स का हिसाब लिया गया, उसके पास लोगों से नरमी से पेश आने के सिवा कोई नेकी न थी। वो मालदार था और अपने गुलामों को हुक्म देता था कि तंग दस्त से दरगुजर करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम इस बात के ज्यादा हकदार हैं, इसलिए तुम भी इससे दरगुजर करो। रिवायत सही मुस्लिम सही बुखारी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

आपके दोस्तों यारों को और हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा करे ये खास दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, सुकून और तरक्की लेकर आए। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर प्रेयर्स, ब्लेस योर होम विद लव एंड पीस। ये दिन दोस्तों और परिवार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हंसने मुस्कुराने और मीठी सेवैया खाने का है। सभी पुरानी बातों को, गमों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। विश यू अ वेरी जॉयफुल एंड सेफ ईद उल अधा। और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

बात करेंगे खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाइलाइट्स. इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग क्रिकेटर्स, स्टार क्रिकेटर्स मैं अगर कहूं तो मैं गलत नहीं हूं, राहुल द्रविड़. जी दोस्तों, राहुल द्रविड़ इंडिया के सबसे अजीम बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं. उनके करियर में, उनके प्लेइंग करियर में उनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद होगा, क्योंकि उनकी बैटिंग टेक्निक और पेशेंस बहुत मजबूत थी. फास्ट बॉलर्स उनको आउट करने में काफ़ी परेशान रहते थे बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिफेंस. राहुल द्रविड़ ने अपने इंटरनेशनल करियर में इंडिया को कई मुश्किल मैचेस में संभाला और अपनी काम पर्सनालिटी से फैंस का दिल जीता. उनकी पैदाइश बैंगलोर में हुआ और उन्होंने 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, जहां उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबको मुतासिर किया. राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में शामिल हैं. उन्होंने दुनिया के लगभग हर मुल्क में रन्स बनाए और फास्ट बॉलर्स का बहुत हिम्मत से सामना किया. कई ऐसे टेस्ट इनिंग्स हैं जिसको बताने में स्पोर्ट्स हाइलाइट्स काफ़ी छोटा पड़ जाएगा. वन ऑफ द टेस्ट मैच इनिंग्स अगर मैं हम यहाँ पे बताऊँ तो वर्स 2001 एट द ईडन गार्डन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और वो पार्टनरशिप विद वीवीएस लक्ष्मण आज भी एक मिसाल है कि आप अगर अच्छे बल्लेबाज हैं और अगर आपके साथ कामनेस और पेशेंस है तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी टॉप बॉलर्स को आप रोक सकते. और इन द एंड इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उस टेस्ट मैच में हरा कर ऑस्ट्रेलिया का जो 16 सक्सेसिव टेस्ट विक्ट्रीज उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड था, ये उसको रोका. एंड आज भी वो इनिंग्स एक नौजवान क्रिकेटर के लिए एक मिसाल के तौर पर हर एक्सपर्ट्स, हर कोचेस सबको कहता है कि देखिए वो इनिंग्स ऑफ राउंड.

और लक्ष्मण के साथ बहुत मशहूर रही हैं। रिटायरमेंट के बाद राहुल द्रविड़ ने कोच के तौर पर भी बहुत कामयाबी हासिल की। उन्होंने इंडिया के यंग क्रिकेटर्स को गाइड किया और डिसिप्लिन, हार्डवर्क और सिंप्लिसिटी की मिसाल बन गए। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए अल्लाह हाफिज़।

0: इंटरनेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। ईद मुबारक। ईद उल अधा के दिनों में मुर्गन और चिकनाई वाली गिज़ाओं का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है, जिसका असर हमारे दिल की सेहत पर ज्यादा हो जाता है। जैसे कि ज्यादा चिकनाई है, उसमें नमक भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और गोश्त का मुसलसल इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह जब हम ये तीनों चीजें इस्तेमाल कर रहे

0: होते हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है, यानी उसमें इजाफा हो जाता है और इस तरह दिल पर हम इजाफी दबाव डाल देते हैं, खास तौर पर ऐसे अफराद जो पहले किसी ना किसी तरह से किसी भी क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला हैं। इसी तरह जो एल्डरली अफराद हैं या बुजुर्ग अफराद हैं वो ज्यादा मुतासिर होते हैं। डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो भी ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए उन्हें खास एहतियात की जरूरत है और दिल की सेहत का खास ख्याल रखना, और जो ऐसे अफराद जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं उन्हें खास तौर पर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है और उन्हें एहतियात की ज़रूरत होती है। इसलिए गोश्त को फ्राई करने के बजाय आप ग्रिल कीजिए या बेक कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप घी और तेल को कम से कम इस्तेमाल करें। सेहतमंद जिस्म ही ईद की असल खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद और खुशियों भरी ईद अता फरमाए। इस तरफ आपने ख़ास तवज्जो देनी है कि ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो कि दिल के मसाइल का शिकार हैं उन्हें ये ज़रूर देखना है कि वो गोश्त जो खा रहे हैं उसमें ज़्यादा फैट्स, ज़्यादा चर्बी जो है वो ना हो। खाने के बाद 20 मिनट वॉक कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। ईद सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत, खुशी और ख़ानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का एक मौका भी है। अगर किसी शख्स को सीने में दर्द हो, सांस लेने में दुश्वारी हो या उसे स्वेटिंग हो रही हो यानी शदीद पसीना आ रहा हो या फिर चक्कर महसूस हो तो फौरी तौर पर आप डॉक्टर से रुजू कीजिए। अपनी और अपने प्यारों की सेहत का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, सुकून और खुशियों वाली ईद अता फरमाए। अपना बेहद ख्याल रखिए, पानी जो है वो ज्यादा पीजिए, सैलड का इस्तेमाल कीजिए। ईद मुबारक।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।

0: ईद का जश्न ना ऐसा होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउसफुल। अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउसफुल। तो किस्से वाला जो पार्ट है ना, वो आप हमसे शेयर करें, बिकॉज यू आर वेलकम इन आर हाउसफुल ईद। ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ जरूर सुनिए हाउसफुल ईद सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं नासिया FM 107 से एंड वेलकम टू आवर स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड ईद वैल्यूज। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूं काइंडनेस की, और ये कहते हैं कि ईद उल अधा की रूह है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि छोटी छोटी काइंडनेस भी कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, और शायद इसे ही कहते हैं रिपल इफेक्ट। बिल्कुल उस लहर की तरह जो पानी में एक छोटी सी बूंद गिरने से दूर तक फैल जाती है। ईद उल अधा भी असल में इसी काइंडनेस, सेक्रिफाइस और शेयरिंग का पैगाम देती है। जब हम कुर्बानी करते हैं तो सिर्फ एक फर्ज अदा नहीं करते, बल्कि अपने अंदर की सेल्फिशनेस को, अपने अंदर के ईगो को, अपने अंदर की अना को कुर्बान कर देते हैं। ये एक्ट हमें सिखाता है कि अपनी खुशी को भी कई बार दूसरों की खुशियों के साथ जोड़ कर देखो, शायद यही असल इंसानियत है। सोचिए जब आप किसी जरूरतमंद को गोश्त का एक हिस्सा या एक जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हिस्सा देते हैं, तो सिर्फ आप उसे एक मील उसके साथ शेयर नहीं करते, बल्कि उस पल में एक मुस्कुराहट, उस पल में एक एतमाद, उस पल में एक भरोसा भी आप उस तक पहुंचाते हैं। ईद की खुशियां अधूरी हैं अगर हम आसपास अपने लोगों का और ऐसे लोगों का जो जरूरतमंद है उनका ख्याल ना रखें। कई बार एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस लोगों को मजबूर कर देता है बड़े बड़े काइंडनेस एक्ट करने के लिए। कुछ आपने किया जो उस शख्स ने आपसे सीखा, और वो अपनी उसी कैपेसिटी में जितनी भी उसकी है इस्तात, कुछ ना कुछ बेहतर किसी और के लिए करना चाहता है। वो शख्स कल किसी और के लिए अगर अच्छा करता है तो यकीन मानिए इसका सवाब आपको भी मिलेगा। काइंडनेस का ये सिलसिला सिर्फ चैरिटी तक ही महदूद नहीं है, आप एक सिंपल जेस्टर से भी किसी की लाइफ में फर्क पैदा कर सकते हैं। जैसे किसी वर्कर को ईद मुबारक कह देना, किसी कलीग के लिए चाय बना देना, या किसी तन्हा इंसान के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लेना। ये छोटी छोटी चीजें सोसाइटी को ज्यादा कनेक्टेड और कंपैशनेट बनाती हैं। ईद उल अधा हमें और आपको सेक्रिफाइस करना सिखाता है, हमें और आपको बताता है एम्पैथी को अपनी लाइफ में किस तरह से इनकलकेट करना है। दोस्तों ये फेस्टिवल सिर्फ रिचुअल नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है जहां इंसान दूसरे के लिए भी सोचता है, उनकी मदद करता है, अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करता है और अपनी खुशी को कुर्बान करने के लिए तैयार है। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में काइंडनेस का रिपल इफेक्ट और ज्यादा पावरफुल हो गया है। एक पॉजिटिव सा मैसेज, एक इंस्पायरिंग स्टोरी या एक स्मॉल हेल्प भी सोशल मीडिया के जरिए हजारों लोगों तक

0: पहुंचाई या पहुंच सकती है। इस तरह एक छोटी सी गुड डीड एक बड़ा मूवमेंट बन जाती है। अगर हम सिर्फ ईद के दिन ही नहीं बल्कि रोजाना अपनी जिंदगी में काइंडनेस को अपना लें, तो यकीन मानिए सोसाइटी में एक बड़ा रियल पॉजिटिव चेंज लेकर हम आ सकते हैं। हर घर, हर मोहल्ला, हर शहर एक बेहतर जगह बन सकती है, क्योंकि याद रखने वाली बात यह है कि काइंडनेस फ्री होती है, काइंडनेस कंटेजियस होती है और इसका इम्पैक्ट प्राइसलेस होता है। एक छोटी सी मेहरबानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, इस ईद सिर्फ कुर्बानी जानवर की ना दें, बल्कि अपने ईगो, अपनी सेल्फिशनेस, अपने सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड की भी कुर्बानी दें और कोशिश करें कि आप अपनी काइंडनेस से दूसरों को इस तरह से मुतासिर करें कि वो भी मजबूर हो जाएं दूसरों के साथ उसी तरह से एक्ट ऑफ काइंडनेस करने के लिए। क्योंकि जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो उसकी लहर कभी भी रुकती नहीं, टूटती नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी को एक बार वापस से ईद की ढेरों मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: टॉप फन म्यूजिक और सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन क्योंकि आ रहा है शो जश्न ईद
1: ईद मुबारक
2: और होगी आपकी रिक्वेस्ट फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज
0: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब तो मिस मत कीजिए जश्ने ईद ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजी ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स आप सुन रहे हैं ईद सुनना और अब हम जानेंगे एक बहुत अहम सुन्नत के बारे में जो है ईद के दिन गुस्ल करना इस्लाम सफाई और पाकीजगी का दिन है और ईद का दिन तो खास तौर पर सफाई और खूबसूरती का दिन है इस्लाम में सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई ईमान का हिस्सा है ईद के दिन गुस्ल करना एक सुन्नत अमल है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है जिस पर अमल करने में बहुत अजर है जब एक मुसलमान ईद के दिन गुस्ल करता है तो वो जिस्मानी तौर पर साफ होता है जहनी तौर पर ताज़ा होता है और इबादत के लिए तैयार होता है ये अमल हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह के हुजूर जाने से पहले हमें पाकीज़गी इख्तियार करनी चाहिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन गुस्ल फरमाते थे वो हमेशा सफाई और खुशबू का ख्याल रखते थे ये अमल हमें ये सबक देता है कि इबादत से पहले सफाई ज़रूरी है और इज्तिमा में अच्छे अंदाज में जाना चाहिए इस्लाम में सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं बल्कि इसका अंदाज भी खूबसूरत होना चाहिए ईद के दिन गुस्ल सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं बल्कि रूहानी ताजगी भी देता है जब इंसान गुस्ल करता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है वो खुद को बेहतर महसूस करता है और इबादत में दिल लगता है ये छोटा सा अमल इंसान के पूरे दिन को बेहतर बना देता है ईद एक इज्तमाई दिन है यानी सब लोग एक दूसरे के साथ जमा होते हैं अगर हर शख्स साफ सुथरा खुशबूदार हो तो माहौल खूबसूरत हो जाता है मुलाकातें खुशगवार हो जाती हैं और एक मुस्बत फिजा बनती है इस्लाम में सफाई को ईमान का हिस्सा कहा गया है ईद के दिन गुस्ल हमें याद दिलाता है कि हम हर वक्त साफ रहें अपनी इबादत को बेहतर बनाएं और अल्लाह के करीब हों ईद के दिन गुस्ल करना एक सुन्नत है ये सफाई और इबादत दोनों के लिए ज़रूरी है और हमें रूहानी और जिस्मानी तौर पर तैयार करता है तो लिसनर्स ये थी हमारी आज की ईद सुनना आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और खुशी

जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर, एक उम्मत और ईद में मोहब्बत का पैगाम।

0: 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, ये खास शो ईद नामा। वेल, हम सब यार कहीं ना कहीं अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क में ईद मनाने का दिल बहुत ज़्यादा करता है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ दोस्तों के घर जाना, दोस्तों को घर बुलाना, उनके साथ कहीं दूर निकलना या छोटे बच्चों को ईदी देना या उनसे धीरे से प्यार मोहब्बत से वापस मांग लेना है, कह रहे तुम ईदी तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी खुश मिजाजी होती है और बहुत ही दिल को खुश करती है। लेकिन होम कंट्रीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ईद कैसे सेलिब्रेट होती है, उसके अलावा यू नो ईद में क्या खाना होता है, कतर और सऊदी में क्या हिसाब किताब है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ईद कैसी होती है, ईद कल्चर कैसा होता है, पूरे ग्लोब में अगर देखें, पूरी दुनिया में अगर देखें, ईद की डिशेज क्या होती हैं, बिरयानी से लेकर चपली कबाब तक, आए हाय लाजवाब याद आ गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे नॉर्थ अफ्रीका और यू नो तुर्की के बारे में भी। सारी जानकारी आज इसी शो में होगी भाई साहब, कि बाकी दुनिया में भी ईद कैसे मनती है, अपने शहर का तो सब जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास शो को जिसका नाम है ईद नामा। दोस्तों, होम कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बकरीद का जश्न बेहद बड़ा और रौनकदार होता है। ईद से कई हफ्ते पहले ही गली में या फिर कहें बड़ी सड़कों में बकरा मंडीज जो हैं वो सब सजने लगती हैं और लोग बड़े ध्यान से सबसे अच्छा बकरा जो है या ऊंट जो है उसे चुनते हैं, क्योंकि ये कहावत है कि भाई खूबसूरत बकरा होना चाहिए जब भी आप खरीदारी कर रहे हो। बच्चे इन जानवरों से घुल मिल जाते हैं और उन्हें खूब सजाते हैं, प्यार करते हैं, उनको टहलाते हैं, अपने हाथों से पत्ते खिलाते हैं। आपको याद है, आपने भी करा होगा, वैसे सींग पकड़ के चूमा भी होगा। मेरे साथ तो ऐसा होता था, मैं यू नो जब मेरे घर बकरा आता था तो अपने हाथों से पत्ता खिलाना, उसको घुमाने ले जाना, यू नो जब वो गंदगी करे तो अम्मी चिल्लाती थी, फिर खुद ही साफ भी कर रहे हैं। घर में एक ऐसी जगह उसे दे दी जाती थी जहाँ पर ठंडक ना हो, कई बार ठंडक में बकरीद जो है वो पड़ा करती थी, और घर का एक कोना दे दिया जाता था, वहाँ पर वो बैठता था, बोरी रखी जाती थी ताकि गंदगी ज़्यादा ना हो, और अम्मी को बड़ा वो होता था कि यार सारा काम उनको करना पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर अम्मी भी बड़ा यू नो खुश होती थी कि घर में हम लोग इस काबिल हो सके कि घर में एक बकरा हो। तो ये खूबसूरत दिन जो है हम सब कभी नहीं भुला पाएंगे, बड़ा ही बेहतरीन होता है। हालांकि अब हमारे साथ यू नो नहीं हो सकता, ये हम वो नहीं कर सकते जो हम एक वक्त पे किया करते थे अपने मुल्क में, लेकिन यहाँ की ईद भी बिल्कुल अलग होती है। और वैसे भी ईद के दिन मर्द सुबह जल्दी नए कुर्ता पैजामा पहनकर ईदगाह या यू नो मस्जिद जाया करते हैं नमाज के लिए। जो सबसे अच्छी बात लगती है मुझे वो ये ईद के दिन की, कि आदमी बाकी दिन सजे या ना सजे, ईद और बकरीद इन दो दिन नए कुर्तों के साथ आदमी को देख लो भाई साहब सजता है ना, मतलब उसके चेहरे पे अलग चमक होती है नहाने वहाने के बाद लेकिन बहुत खूबसूरत दिन होता है। वहाँ से लौटकर फिर, यानी कि मस्जिद से लौटकर फिर कुर्बानी का पाक अमल जो है वो शुरू होता है। इस ईद का पिन पॉइंट रूल है कि मीट का बराबर बंटवारा हो, गोश्त को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक खुद के परिवार के लिए। इससे सोसाइटी में बराबरी और हमदर्दी आती है। खाने की बात करें तो किचन से दिन भर मसालेदार खुशबू जो है वो आती रहती है। यहाँ मटन है, बिरयानी पकती है, कोरमा है, कलेजी फ्राई, सीख कबाब, बिल्कुल मस्त होते हैं ये सब, मुझे तो याद आ रहे हैं मीठे में फिर शीर खोरमा, कई हमारे दोस्तों को पसंद है, बाकायदा वो हमारे घर पे आते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें, दिल खुश हो जाता है। हर घर में ये जो शीर खोरमा है वो बटती है, हमारे घरों में लोग आते हैं, लोग अपने पड़ोसियों चाहे वो किसी भी यू नो रिलीजन के हों वो घर पे आते हैं, उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, शाम को सभी रिश्तेदार एक जगह जमा होते हैं, बड़े बच्चों को ईदी दी जाती है, गिफ्ट दिए जाते हैं और पूरी रात दावत और हंसी मजाक का माहौल रहता है। ये फेस्टिवल इन कंट्रीज में पूरे मोहल्ले को एक परिवार बना देता है। और अरब वर्ल्ड में, कतर में, सऊदी में कैसी सेलिब्रेट होती हैं ईद या बकरीद, उन पर भी अगर नज़र डालें तो दोस्तों अरब वर्ल्ड जैसे कि कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत में ईद अल अधा, यानी कि यहाँ जिसे ईद अल कबीर भी कहते हैं, एक बेहद ग्रैंड और स्टेट लेवल फेस्टिवल होता है, क्योंकि इसी दौरान हज का मुकद्दस महीना चल रहा होता है, इसलिए यहाँ का स्पिरिचुअल माहौल एक अलग ही लेवल पर होता है। عید کی صبح پورے گلف ریجن میں گونجتی ہوئی تکبیرت سے شروع ہوتی ہے. لوگ اپنا ٹریڈیشنل ڈریس یعنی کہ جو مرد ہیں وہ تھوب وائٹ تھوب پہنتے ہیں اور قطرہ بھی پہنتے ہیں, اور عورتیں خوبصورت عبایاز پہن کر نماز کے لیے بڑے گراؤنڈز یا آئیکونک مسجد میں جاتے ہیں. یہاں قربانی کا سسٹم بہت ماڈرن اور آرگنائزڈ ہے. لوگ سڑکوں پر قربانی نہیں کرتے بلکہ گورنمنٹ اپروڈ آٹومیٹڈ سلاٹر ہاؤسز کا یوز کرتے ہیں. کئی لوگ تو ڈائریکٹ چیریٹی آرگنائزیشنز کو پیسے دے دیتے ہیں جو ان کے نام پر ضرورت مند کنٹریز میں میٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. لوکل لیول پر جو بچے ہوئے میٹ سے ٹریڈیشنل گلف ڈشز بنائی جاتی ہیں جیسے کہ مقبوض اسپائس یعنی کہ رائس جو ہے اور میٹ کا جو ایک ساتھ ہوتا ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلف کی بریانی ہے. اس کے علاوہ غزی یہ بھی ایک یہاں کا خاص اور بڑا ہی ٹیسٹی ڈش ہے جسے ہول روسٹڈ لیمب جو ہے اسے غزی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ حریس, گھر آئے مہمانوں کا سواگت گہوا یعنی کہ عربک کافی سے کی جاتی ہے اور فریش ڈیٹس کھجور سے کیا جاتا ہے. گورنمنٹس اس موقع پر پورے شہر کو لائٹ سے سجاتی ہے. کارنیش اور مالز میں اسپیکٹیکولر فائر ورکس یعنی کہ پٹاخے ہوتے ہیں اور فیملی انٹرٹینمنٹ شوز آرگنائز کیے جاتے ہیں. پرانی ٹریڈیشنز کو زندہ رکھتے ہوئے لوگ مجلس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں. یہ تو ہو گیا گلف کنٹری کا حساب کہ گلف کنٹری میں کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن ویسٹرن کنٹریز کا کیا, یو ایس اے, یو کے, کینیڈا, ان جگہوں پہ کیسے سیلیبریٹ ہوتی ہے؟ ویل دوستوں آپ کو بتائیں کہ ویسٹرن کنٹریز جیسے کہ یو ایس اے, یو کے, کینیڈا اور یوروپ میں بقرعید کا مزہ تھوڑا سا الگ ہے پر بے حد خوبصورت ہے کیونکہ یہاں مسلم پاپولیشنز مائنورٹی میں ہیں, اس لیے یہاں تہوار کمیونٹی کو ایک جٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے. عید کے دن لوگ آفس یا اسکول سے اسپیشل لیو لیتے ہیں. نماز کے لیے بڑی بڑی کنونشن سینٹر یا پھر فٹ بال اسٹیڈیمز یا لوکل پارکس کو رینٹ پر لیا جاتا ہے جہاں ہزاروں الگ الگ دیش کے مسلمز ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ سین ملٹی کلچرلزم کی ایک بہترین مثال ہوتی ہے اور دل بڑا خوش ہوتا ہے جب آپ ایسے ویسٹرن کنٹری میں کافی لمبے وقت تک رہیں اور جب آپ دیکھیں کہ یو نو الگ الگ ملک کے لوگ ایک ساتھ ایک اسٹیڈیم میں یا پارکس میں اکٹھا ہوتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ارے تم تو میرے گھر کے بڑے قریب رہتے ہو یہ کہتے ہیں, اور ایسے میں جب دوستی ہو جاتی ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ کیسے دوسرے ملک کے لوگ ایک ساتھ آ جاتے ہیں. دوستو ویسٹ میں اسٹرکٹ ہیلتھ لاز کی وجہ سے بیک یارڈ یا کھلے میں قربانی دینا الاؤڈ نہیں ہوتا ہے, اس لیے لوگ شہر سے دور لائسنسڈ فارم پر جا کر قربانی دیتے ہیں یا پھر حلال بچر شاپس کے تھرو اپنا حصہ خود بک کر لیتے ہیں, جو کہ حصہ اپنے ملکوں میں بھی اس طرح سے ہم لوگ بک کرتے ہیں. کئی الگ الگ جگہوں پہ حصہ جو ہے یہ لیا جاتا ہے. بہت سے لوگ ڈائریکٹ آن لائن چیریٹیز جیسے کہ اسلامک ریلیف کو پیسہ بھیج کر اپنے ہوم کنٹریز میں غریبوں تک میٹ پہنچاتے ہیں یا پہنچواتے ہیں. کھانے کی ٹیبل پر یہاں گلوبل فیوژن دیکھنے کو ملتا ہے. ایک ہی ٹیبل پر ساؤتھ ایشین بریانی, عرب کی منڈی اور ٹرکش کبابز کے ساتھ ساتھ امریکن سٹائل باربیکیو, لیمب چوبز بھی ملتے ہیں. تو یہ جو الگ الگ لوگ آتے ہیں نا وہ اپنا الگ الگ کھانا لے کر آتے ہیں, اور جب آپ دوسروں کا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کے شہر کا کھانا ہی نہیں باقی ملکوں کا کھانا بھی کتنا لذیذ ہے. اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے شہر کا کھانا چھوڑ کر دوسرے کے شہر کا کھانا کھانے لگتے ہیں اور وہ زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے. ویسے میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کتنا بھی مجھے یو نو آپ کڑھائی پنیر یا کڑھائی شوربہ اور یہ ساری چیزیں کھلا دو, چکن کھلا دو, کڑھائی چکن ہو گیا, مٹن چکن ہو گیا, ہرا چکن ہو گیا, لیکن باربیکیو کا اور جو ہمس کا مزہ ہے گارلک کے ساتھ, اوئے ہوئے بھائی بھلایا نہیں جاتا ہے. میں انڈیا بھی چلا جاتا ہوں مجھے اس کی یاد آنے لگتی ہے. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار صرف آپ کے ملک کا نہیں, آپ کے یو نو کمیونٹی کا نہیں, باقی الگ الگ ملک کا الگ الگ کھانا کتنا لاجواب ہوتا ہے. اس کے علاوہ شام کے وقت اسلامک سینٹرز اور لوکل کمیونٹی ہالز میں بھی اسپیشل عید کارنیوال لگتے ہیں. ان میلوں میں یا کہیں ان کارنیوال میں بچوں کے لیے باؤنسی کاسل, فیس پینٹنگ, حلال فوڈ ٹرکس اور اسلامک بک اسٹالز بھی ہوتے ہیں. یہ ماحول بچوں کو اپنی روٹس اور کلچر سے جوڑے رکھتے ہیں اور اس میں مدد بھی کرتے ہیں. वेल, ईद कल्चर पूरी दुनिया में किस तरह से सेलिब्रेट होता है इस पर भी जरा नजर डालते हैं। अगर हम पूरी दुनिया पर नजर डालें दोस्तों, तो बकरा ईद का कोर मैसेज है एक, और वो है सेक्रीफाइस और चैरिटी। ये मैसेज पूरे दुनिया में एक ही है, पर हर कंट्री अपना एक यूनिक लोकल तड़का इसमें जरूर जोड़ देती है। ग्लोबल लेवल पर ये त्योहार, ये फेस्टिवल सिर्फ एक मजहबी फर्ज नहीं है, बल्कि कल्चर और भाईचारे का एक बड़ा डिस्प्ले बन जाता है। देखिए, ये आम वर्ड जो है वो आपको हर जगह सुनने को मिलता होगा, ब्रदरहुड, भाईचारा, लेकिन ये भाईचारा जो लफ्ज है ये बड़ा भारी। ये आप जब आप रहते हैं कहीं दूसरे मुल्क में, तब आपको इस लफ्ज की अहमियत असल में पता चलती है, लेकिन आप अपने मुल्क में रहेंगे तो ब्रदरहुड या भाईचारा इस लफ्ज को आप उस नजर से नहीं देखते जब आप दूसरे मुल्क में रहते हैं। तो दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो इंडोनेशिया और मलेशिया में इस त्योहार को या इस फेस्टिवल को हरी राया हाजी कहते हैं। यहाँ लोग ट्रेडिशनल बातिक प्रिंट्स या कहें पहनकर नमाज पढ़ते हैं, और कुर्बानी के बाद मीट से स्लो कुक्ड स्पाइसी मीट करी को तैयार करते हैं, जिसको कहते हैं रेंदंग, और केतुपत यानी कि राइस केक भी बनाते हैं जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है। खास तौर पे ये इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है, साउथ ईस्ट एशिया अगर आपको ज़्यादा बेहतर समझना है तो। हरी राया हाजी इसे भी समझिए, क्योंकि इन मुल्क में बकरा ईद को यही कहते हैं, और ट्रेडिशनल बातिक प्रिंट्स पहनकर लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। कुर्बानी के बाद मीट से अलग अलग डिशेस जो हैं वो तैयार की जाती है। लेकिन नॉर्थ अफ्रीका में क्या, नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों में ईद के दिन लैम्ब के हेड और ऑर्गन्स को ग्रिल करने की एक अलग ट्रेडिशन है, जिसे बोलफफ कहते हैं, और लोग अपने चेहरे पर ऑर्गेनिक हैना यानी कि मेहंदी लगाते हैं। आपने हाथों में मेहंदी लगती हुई देखी होगी, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका के जो मोरक्को अल्जीरिया की कुछ कम्युनिटी हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बोलफफ कहते हैं इस ट्रेडिशन को, जहाँ पर हेड और ऑर्गन्स को ग्रिल किया जाता है। और टर्की में इस त्यौहार को कुर्बान बैरमी कहते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। साथ ही में ऑर्गेनिक हैना जो है वो चेहरे पे लगाई जाती है, जहाँ सरकारी छुट्टी भी होती है। इन मुल्कों में बड़े बुजुर्गों के हाथ चूमे जाते हैं और उनसे जो ब्लेसिंग ली जाती है उसका एक नाम है, उसे कहते हैं बैरम लाजमा, बैराम लाजमा। हो सकता है मेरी प्रोनंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हो, लेकिन मोस्टली आसपास की ही बात है। सेंट्रल एशिया यानी कि कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में ट्रेडिशनल हॉर्स रेसेस और लोकल रेसलिंग मैचेस भी होते हैं। हर जगह का पहनावा, जबान, टेस्ट, ये सब अलग हो सकता है, लेकिन जब कुर्बानी का मीट बन जाता है तो गरीब और अमीर के बच्चों की दीवार जो है वो बिल्कुल टूट जाती है। ये ग्लोबल यूनिटी और शेयरिंग की फीलिंग ही बकरीद की या बकरीद को पूरी दुनिया में सबसे अलग और पाक त्योहार या फेस्टिवल बनाती है।
1: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत

0: जहां होगी ईद की मस्ती, कल्चरल स्टोरीज और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स, मजेदार ईद डिशेस का सफर, एक उम्मत और ईद में मोहब्बत का पैगाम। ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: लेकिन फेमस ईद डिशेस के बारे में क्या है, इन मुल्कों में कौन कौन से डिशेस बनते हैं जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है? वेल दोस्तों, बकरा ईद यानी कि ईद उल अधा पर पूरी दुनिया में मीट, खुसूसन मटन और बीफ के लाजवाब पकवान बनाए जाते हैं। हर रीजन का अपना एक यूनिक तरीका होता है मीट को कुक करने का। अगर हम देखें कि कौन कौन से तरीके हैं या फिर कौन कौन से स्पेशल डिशेस हैं, तो साउथ एशिया की तरफ पहले चलते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ पर बिरयानी को बहुत ज़्यादा चाव से खाया जाता है, इतना ज़्यादा कि मेरे जैसा पेट निकल आए। मटन या बड़े का जो गोश्त होता है वो बड़ा ही खुशबूदार बासमती राइस के साथ बनाया जाता है, जिसमें खड़े मसाले हैं, सैफरन यानी कि केसर का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जब आधा 80% जब पक जाता है चावल, तो उसे दम पर लगाया जाता है। ये ईद दावत का किंग है, यानी कि बिरयानी जो है ना, वो दावत का किंग माना जाता है। फिर

हो सकता है क्या? शीर खोरमा ईद का सबसे जरूरी मीठा डिश। ऐसा समझिए शीर खोरमा की बाकी दिनों इतनी इज्जत होती हो या ना होती हो, लेकिन इस दिन, इस अकेले दिन अगर कोई कह सकते हैं राजाओं का राजा है तो वो शीर खोरमा है। बिरयानी किंग है, लेकिन किंग का किंग शीर खोरमा है। ये दूध, सेवइयों से, खजूर से और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ बनती है और उनको धीमी आंच पर पकाया जाता है और इसमें ज्यादा टाइम लगता है। कई बार बिरयानी से ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप अच्छा शीर खोरमा तैयार कर रहे हैं तो इसमें बिरयानी से ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए इसमें देखिए, अगर आपने देखा हो बिरयानी में भी अलग अलग चीजें डलती हैं, खड़े मसाले डल रहे हैं, महंगी चीजें डल रही हैं, गोश्त डल रहा है, है ना, ड्राई फ्रूट्स भी कहीं कहीं होता है, लेकिन शीर खोरमा में ड्राई फ्रूट सबसे पहले, दूध महंगी चीज, खोया महंगी चीज, खजूर, है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं और शीर खोरमा का भी अलग एक रौला होता है भाई साहब। उसके अलावा कलेजी फ्राई, जिनको इनका शौक है उनको इतना शौक है कि बगैर इसके वो रहते ही नहीं है। और ईद की सुबह नमाज के बाद सबसे पहली डिश अक्सर कलेजी होती है। और ये मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कतर, सऊदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कलेजी सबसे पहली चीज है, आते ही हाँ भाई कलेजी लगा दो, ये पहली लाइन होती है। ये बनाया जाता है और इसका बनाने का जो तरीका है वो बड़ा आसान सा होता है। थोड़े मसालों के साथ ये बन जाती है और टेस्टी बड़ी लगती है। तवे पर भी मसालों के साथ इसे चटपटा बनाया जाता है, अगर लोगों को चटपटा पसंद है तो, है ना, तो उसे फ्राई करके आप बड़े लाजवाब तरीके से एंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा चपली कबाब, पाकिस्तान, क्या लाजवाब चीज आपने दी है मेरा भाई। ये पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा फेमस है। मिंस्ड मीट यानी कि कीमा जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है इस खास डिश में और वही इस डिश की मेन चीज भी है, मिंस्ड मीट यानी कि कीमा। और फिर उसको मसाले वगैरह में कई लोग अंडा भी डाल लेते हैं, कई लोग अलग से मसाला डालते हैं, तेल का अच्छा छिड़काव और फिर तवे में दबा दबा के, ओहो चलूं क्या खाने। और कुरकुरे कबाब होते हैं ये तो भाई, और मज़ा आ जाता है क्योंकि कबाब भी देखिए अलग अलग होते हैं। तो शामी कबाब होता है वो अलग है, फिर एक कबाब होता है जिसे सिर्फ कीमा होता है और उसमें थोड़े बहुत मसाले होगा, एक है चपली कबाब, दुनिया भर के मसाले, है ना, और फिर गहरे ऐसे तवे में जिसमें तेल ज्यादा हो और फिर अंडा डाल के चपटा पूरा कर दिया जाए और फिर धीरे से सरका दिया जाए बड़े से चपली कबाब को, वो है जो कुरकुरा मजा आता है ना, टमाटर का यूज होता है, फिर दिल खुश होता है चपली कबाब खाने में। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। अब बात करते हैं अरब वर्ल्ड यानी कि मिडिल ईस्ट के बारे में। गुजी, ये लफ्ज़ तो आपने सुना ही होगा, अभी कुछ देर पहले हमने इसके बारे में बात भी करी थी। ये गल्फ रीजन की एक ग्रैंड डिश है। इसमें एक पूरा पूरा लैम, साबुत बकरा जो है वो स्लो रोस्ट किया जाता है। हालांकि इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई ग्राउंड के अंदर रोस्ट करता है, कोई ग्राउंड के बाहर रोस्ट करता है, कोई पूरी तरह से बंद कर देता है, कोई खुले में रोस्ट करता है, अलग अलग तरीका है, जिस तरह का आपको टेस्ट चाहिए उसके हिसाब से तय होता है। और फिर उसके अंदर नट्स जो हैं, रेजिन्स हैं, किशमिश हैं, मसाले हैं, स्पाइस है, राइस है, ये सब जो है ऊपर से डाला भी जाता है। कभी कभार आप इसको भी कुक करते हैं और कई कई बार पूरे बकरे को रोस्ट करने के बाद आप चावल के ऊपर रखते हैं, फिर जब सारे लोग एक साथ बैठते हैं उस गोल सी प्लेट या गोल सी बड़ी थाली के अगल बगल, फिर सारे मिलकर खाते हैं, इससे जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड देन अरब वर्ल्ड में एक और डिश है जिसका नाम है माबूल। ये स्पेशल शॉर्ट ब्रेड कुकीज होती हैं जिन्हें ईद के लिए ही बनाया जाता है। इनके अंदर खजूर, वॉलनट्स, पिस्ताचियो की स्टफिंग जो है वो की जाती है। तो किंग का किंग माबूल, किंग गोजी। और फिर मनसब के बारे में कैसे भूल सकते हैं, जॉर्डन और सऊदी के कुछ हिस्सों में फेमस। इसमें मटन को एक स्पेशल ड्राइड योगर्ट जो सॉस में पकाया जाता है और राइस के साथ भी परोसा जाता है। ये काफी हद तक गूजी जैसा होता है लेकिन थोड़ा अलग है ना, हर मुल्क का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ही फर्क जो है वो हो जाता है, लेकिन बड़ा ही लाजवाब। फिर साउथ एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के अगर हम बारे में बात करें तो रेंदांग का जो डिश है उसे कोई नहीं बोल सकता। इस डिश को दुनिया के सबसे टेस्टी खानों में गिना जाता है। आपने बहुत कम ट्राई किया होगा, द थिंग इज कि ट्राई तो मैंने भी कभी नहीं किया लेकिन सिर्फ सुना है, कभी मौका लगा तो जरूर।
तो गोश्त को कोकोनट मिल्क और लेमन ग्रास, ग्लेंगल और टर्मरिक जैसे मसालों के साथ घंटों तक पकाया जाता है। अच्छा, घंटों तक क्यों? क्योंकि एक तो गोश्त वो वाला गोश्त होता है जो आसानी से पक जाता है, एक गोश्त होता है जिसमें भाई चार सीटी में तो कुछ होगा नहीं, चार सीटी में तो सिर्फ अंगड़ाई लेता है वो, कम से कम 10 सीटी चाहिए। तो अब यहाँ कुकर का तो हिसाब है नहीं, इसको स्लो

आंच में धीमे धीमे पकाना है, तो करीब कभी कभार डेढ़ घंटा दो घंटा बहुत आसानी से लग जाता है तेज आंच में भी। तो बड़े का जो गोश्त होता है वो टाइम तो लेता है दोस्त, घंटों तक पकाया जाता है और फिर उसके बाद जूस जब सूख ना जाए और मीट जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको पकाते रहो। और फिर दूसरा डिश केटूपट, ये भी एक बड़ी यू नो इंटरेस्टिंग डिश है। ये राइस केक्स होते हैं जिन्हें कोकोनट लीव्स के अंदर वीव करके उबाला जाता है, इसे रेंडांग के साथ सर्व किया जाता है। देखो ये रेंडांग तो वो हो गया कि जो बड़े गोश्त के साथ कोकोनट मिल्क और लेमन ग्रास ये सारी चीज़ें धीमी आंच में देर तक, लेकिन कुछ मीठा तो चाहिए ना, तो राइस केक वगैरह कोकोनट लीव्स के अंदर वीव करके इसे सर्व किया जाता है। एक तरह से चटनी भी मान लीजिए, ये भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये बड़ी ही टेस्टी होती है मैंने जो सुना है भाई, है ना। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, आप टकरा जाते हैं ना जब दूसरे मुल्क में होते हैं तो आपको पता चल जाता है भाई कैसी चीज़ें चल रही कैसी नहीं। उसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका और टर्की के बारे में हम बात कैसे ना करें यार। जैसे मोरक्को में मैंने बताया था बोलफफ, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिश है। बकरा ईद के दिन मोरक्को में सबसे पहले लैम्ब लिवर को फैट यानी कि चर्बी में लपेट कर स्कीवर पर या ग्रिल जो है वो किया जाता है। तो इसकी तो वीडियो आपने कई बार देखी होगी, अगर आप शौक रखते हैं चैनल्स का या फिर आप अगर सोशल मीडिया पे हैं लंबी वीडियोस खाने की देखते हैं, क्योंकि आजकल तो रील पे आ ही जाता है, हमारी उम्र वही पहुंच चुकी है कि दो घंटा खाली बैठे रहो तो भूख हो जाती है ना, भूख लगने लगती है, और हमारे सोशल मीडिया को पता है कि इसको कब खाने की चीज दिखानी है, और ये भी पता है कि दूसरे मुल्क की दिखाएंगे तो ज्यादा देर तक देखेगा ये। तो बुलफफ जो है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिश है। बकरा ईद के दिन मोरक्को में सबसे पहले लैम्ब लिवर को, ये आपने वीडियो में भी देखा होगा, लैम्ब लिवर को फैट यानी कि चर्बी में, वाइट चर्बी में लपेट दिया जाता है और फिर ग्रिल करने के लिए रख दिया जाता है। इससे गोश्त जलता नहीं है, अंदर अंदर भाप से वो पकता रहता है, और फिर जो चर्बी है वो चर्बी तो टाइम ही लेती है, उसके अंदर का जो तेल है मेन वो निकल जाता है, लेकिन फिर चर्बी का जो टेस्ट होता है वो लाजवाब, उफ भूख ही लगने लग गई। खैर इस पर जीरा और पेपरिका पाउडर स्प्रिंकल करते हैं ताकि और भी ज्यादा टेस्टी लगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं टर्की के कुर्बन कवोरमसी डिश के बारे में। ये एक सिंपल पर बेहद ही स्वादिष्ट या कहें टेस्टी डिश है। कुर्बानी के फ्रेश मीट को उसकी अपनी ही चर्बी यानी कि फैट में बिना पानी के सिर्फ नमक और थोड़े से अनियन के साथ स्लो कुक किया जाता है। ये वो आला है कि जैसे हमारे अपने मुल्क में कुर्बानी के बाद सबसे पहले कलेजी खाई जाती है, तो वैसे तुर्की में कुर्बान या कहे कुर्बन कवरमसी खाई जाती है। और फिर टैगिन मोरक्को और अल्जीरिया में मीट को वेजिटेबल्स, सूखे आलू बुखारा और एप्रिकॉट्स के साथ एक मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर स्टू किया जाता है, और ये भी बड़ा ही लाजवाब बड़ा ही टेस्टी होता है। और मोरक्को की ये वाली चीज़ जो बता रहे ना, मोरक्को और अल्जीरिया में मीट को वेजिटेबल्स या आलू बुखारा इन सब के साथ, ये वाली तो वीडियो मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले मैंने देखी थी, आई थी मेरे पास बड़ी मज़ेदार होती है। उम्मीद है कभी ऐसा मौका मिले कोई ऐसा दोस्त बन जाए, मैं तो दोस्त इसीलिए बना रहा हूँ आजकल। बाकी अब बात करते हैं दोस्तों पूरे दुनिया में कैसे ये दिलों को जोड़ती है बकरा ईद, क्योंकि अभी तक जितना भी आपने सुना, कुछ देर बाद आपके रील पर ये खाने की चीज़ें आएंगी और कुछ लोग फोटोज़ भी अपलोड करेंगे। ये दिन ही ऐसा है बकरा ईद का कि जब तक फोटोज ना देखो, जब तक फोटोज अपलोड ना करो, अपनों को विश ना करो, और इन सब चीजों को करने के बाद जब तक सोशल मीडिया पे रील ना आ जाए बकरीद की, या फिर सोशल मीडिया पे खानों की रील ना आ जाए, कैसे चलेगा। तो बकरा ईद जो है ये सिर्फ एक मजहबी त्योहार या फेस्टिवल या कुर्बानी का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक ऐसा पाक मौका है जो पूरी दुनिया के लोगों को एक धागे में पिरो देता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस जमीन पर हजारों तरह की जबानें बोली जाती हैं, हर कंट्री का अपना अलग पहनावा है, और हर खाते पीते घराने का टेस्ट अलग है, लेकिन जब ईद का दिन आता है तो ये सारी दीवारें पल भर में टूट जाती हैं। एक ही दिन एक ही वक्त पर पूरी दुनिया के मुस्लिम्स, चाहे वो इंडिया की किसी छोटी सी गली में हो, सऊदी अरेबिया के बड़े मैदानों में हो, या अमेरिका के किसी मॉडर्न स्टेडियम में हो, एक साथ कतार में खड़े होते हैं और खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ये सीन अपने आप में ही दिलों को एकता या कहें यूनिटी का सबसे बड़ा सबूत देता है। इस ईद का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कुर्बानी का गोश्त बांटने की ट्रेडिशन। इसमें एक गहरा इंसानी मैसेज भी छुपा है दोस्तों। जब मीट को तीन बराबर हिस्सों में बांटा जाता है

0: तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के लिए होता है, माइंड यू, एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के लिए होता है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या जिनको अच्छा खाना नसीब नहीं होता। यह रूल सोसाइटी से अमीर गरीब का फर्क मिटा देने का है। जब एक अमीर इंसान अपने हाथ से किसी जरूरतमंद को खाना देता है तो वहां सिर्फ पैसा या मीट नहीं बदलता बल्कि दिलों का कनेक्शन बनता है। ये फेस्टिवल हमें सिखाता है कि हमारी खुशियां तभी पूरी होती हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा आज के डिजिटल दौर में ईद दिलों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। बॉर्डर चाहे कितना भी दूर हो, लोग वीडियो कॉल्स और मैसेजेस के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक तरफ जहां घरों में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, वहां दूसरी तरफ दूर बैठे रिश्तेदार भी इस जश्न का हिस्सा बनते हैं। ईद पर लोग पुरानी नाराजगियां भूल जाते हैं और उसको भूल कर एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगर आपकी किसी से नाराजगी हो तो भूल जाइए और गले लगाइए, क्योंकि यही तो वो महीना है, यही तो वो दिन है जब हम किसी से जो दूरी बनाकर रखे हुए हैं एक साथ आ सकते हैं। यही मौका है कि हम एक बार फिर से साथ आ पाए, जिनसे राइवलरी है, जिनसे चिढ़ है, जिनसे गुस्सा है, दिलों से ये बातें निकाल दें कि हम किसी के काबिल नहीं या कोई हमारे काबिल नहीं, और एक मुसलमान भाई की तरह साथ में खड़े हों। ये माफी और मोहब्बत का मौसम होता है जब पूरी दुनिया में एक साथ लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। हर रोते हुए को हंसाते रहें और इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर और खूबसूरत जगह बनाएं। हम सभी का आपस का रिश्ता है हमेशा, खुदा करे ऐसे ही मजबूत रहे, आपका दस्तरखान हमेशा बना रहे और आपका घर हंसी खुशी से गूंजता रहे। एक बार फिर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही दोस्तों, बकरीद के इस पूरे सफर में नजर डालने के बाद ये साफ हो जाता है कि ये त्योहार, ये दिन, ये फेस्टिवल सिर्फ एक दिन की इबादत या दावत तक महदूद नहीं है। ये एक ऐसी ग्लोबल चेन है जो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स को एक गहराई से जोड़ती है। हमने देखा कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के मोहल्लों में रौनक लगती है, अरब देशों में मॉडर्न और ग्रैंड तरीके से इसकी तैयारियां होती हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में माइनॉरिटी में होने के बावजूद लोग बड़े कन्वेंशन सेंटर में एक साथ जमा होकर अपनी पहचान को जिंदा रखते हैं। हर जगह का पहनावा अलग है, लैंग्वेज अलग है और दस्तरखान अलग है, लेकिन ये जो डिशेज हैं जैसे कि साउथ एशिया की बिरयानी, मिडिल ईस्ट की खुजी और साउथ एशिया का रंदांग, इनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है। मगर इस सब के बीच जो चीज बिल्कुल नहीं बदलती वो है इस त्योहार की रूह, जो है सेक्रीफाइस, शेयरिंग और टुगेदरनेस। ये त्योहार, ये फेस्टिवल हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। आज के इस मॉडर्न दौर में जहां लोग अपनी पर्सनल जिंदगियों और डिजिटल स्क्रीन्स में बिजी हो चुके हैं, ईद एक नेचुरल ब्रेक की तरह है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपने से बाहर निकलें और दूसरों के बारे में भी सोचें। कुर्बानी का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि इंसान अपने अंदर के लालच, ईगो और सेल्फिशनेस को खत्म करे। जब हम मीट का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंद में बांटते हैं तो हम एक बेहतर और बराबर सोसाइटी यानी कि इक्वल सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। ये फीलिंग दुनिया के हर कोने में एक जैसी होती है, चाहे वो कोई अमीर मुल्क हो या कोई छोटा मुल्क हो। तो दोस्तों, ये था शो ईद नामा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी FM 107 पे। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरजे महावश, एफएम 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे। आमीन।

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ईद की धुन ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हर ख्वाहिश हो मंजूरे खुदा, मिले हर कदम पर रजाए खुदा, फना हो लफ्ज़े गम यही है दुआ, बरसती रहे सदा रहमते खुदा। ईद मुबारक आप सभी को, तहे दिल से ईद मुबारक। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी फरमीता और खासम खास ईद के मौके पर आपके लिए शो लेकर आए हैं ईद की धुन। कल तो सिर्फ शुरुआत थी, बट द रियल पार्टी स्टार्ट्स टुडे। आज वो दिन है जनाब जब गेस्ट का आना जाना नॉनस्टॉप हमारे घर में चालू होगा। किचन से बिरयानी और कोरमे की खुशबू पूरे घर में फैल रही होगी और बच्चे अपनी ईदी काउंट करने में बिजी होंगे। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम जो भी कुछ कर रहे होंगे ईद के इस खासम खास मौके पर, इस सेलिब्रेशन में चार चांद लगेंगे, क्योंकि हम ईद की धुन में आपके लिए लेकर आएंगे आपके फेवरेट हिट पॉपुलर सॉन्ग्स। क्योंकि कहते हैं ना कि म्यूजिक के बिना सेलिब्रेशन फीका फीका लगता है, तो यहाँ कुछ भी फीका नहीं होगा। चाहे आप मुशर्रफ डाउन टाउन से निकल रहे हो या वहां पर कोई कैफे में बैठ

सुख वाकिफ में ईद वाइब्स एंजॉय कर रहे हो या सी लाइन पर भी जा चुके हो, कहीं भी हो, ईद की धुन ये स्पेशल शो आप सबके लिए है। तो आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। 666-22107 इज आवर नंबर, 666-22107। इस नंबर पर आप बताइए कि ईद कैसे मना रहे हैं और कितनी ईदी मिली है और आज का मेन्यू क्या था, कुछ तो बता दो यार, कम ऑन। और ईद विश करनी है तो भी आप हमें 666-22107 पर मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर ईद के धुन के सारे हिट गाने अब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा गाना आने वाला है? जब भी ईद का जिक्र होता है ना तो भाई जान यानी कि हमारे सलमान खान का नाम सबसे पहले आता है। एंड 2002 की फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे, ये फिल्म का ये गाना उफ, मतलब कहते हैं ना लाजमी है जनाब, लाजमी है। वेल इस आइकॉनिक ट्रैक को कंपोज किया था साजिद वाजिद ने और इसे गाया था लेजेंडरी सोनू निगम ने। और क्या आपको पता है हमारे सोनू निगम कितने कमाल के बंदे हैं? सोनू निगम इज फेमस फॉर हिज हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स, क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वो अनमैच्ड होती है। और जब भी वो कोई गाना गाते हैं तो कहते हैं ना, एक तो वो रिकॉर्ड बनाता है और जब कोई टूटे दिल का गाना गाता है तो भी सोनू निगम का नाम अव्वल आता है। यस, और फन फैक्ट क्या है पता है कि साजिद वाजिद जो है ना वो एक्चुअली उन्होंने ईद एंथम से फिल्मी दुनिया में ट्रेंड शुरू किया था और वो ट्रेंड शुरू हुआ था सलमान खान के साथ। और उसके बाद फिर ये ट्रेंड चलते रहा, क्योंकि जब भी हम ईद की बात करते हैं तो वो सारे कमाल के गाने याद आते हैं फिल्मी दुनिया के। और उन कमाल के गानों में कौन होता है? हमारे भाईजान, दैट इज सलमान खान। तो सबसे पहले ईद के नाम ये गाना होगा मुबारक ईद मुबारक, तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से। और उसके बाद साजिद वाजिद की धुन और सोनू निगम का मैजिक, प्योर नॉस्टैल्जिया है कि नहीं। बट मूविंग ऑन, ईद पार्टी हो और सलमान खान का एक और गाना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? 2015 में सीधा जाते हैं, बजरंगी भाईजान इज द मूवी। क्या आपको पता है कि इसे मिक्का सिंह ने गाया है? ये अगला गाना जो कि प्रीतम ने बनाया है। ये गाना फिल्म के एंड में आता है एंड इट्स एक्चुअली पार्टी सॉन्ग। और मतलब जब ये गाना रिलीज हुआ था तो उस टाइम पर तो इंडिया में ये नेशनल एंथम की तरह झूम गया था कि हर ईद की पार्टी में, चाहे वो लंच हो डिनर हो, ये गाना लाजमी बजना ही बजना है। तो बस किस चीज का इंतजार है, लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग आज की पार्टी। सो ये दो बैक टू बैक कमाल के ईद स्पेशल सॉन्ग्स आ रहे हैं ईद की धुन शो में। इंजॉय कीजिए अपने पूरे दिल से और हाँ, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं हमसे जुड़ना ना भूले। 666-22107 पर, आई रिपीट 666-22107। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी फरमीत आईद की धुन. हमारे स्पेशल शो में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. तो कैसे लग रहे हैं आपको ये हिटेड गाने? हाँ, आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉयिंग. और जो धमाकेदार गाने अभी हमने एंजॉय किए, ये तो ईद की शाम को लाजवाब बना देते हैं. वैसे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, देन 666-22-107 इज आवर नंबर, 666-22-107. और अभी हमें मैसेज आया है अलवकरा से जीशान का, जो कह रहे हैं कि ईद मुबारक अमीता. जीशान, आपको भी तहे दिल से ईद मुबारक. और कहते हैं कि मेरे घर पे तो बिरयानी की ना बिल्कुल देख खुल चुकी है, अब पूरे मोहल्ले में खुशबू फैली है. और एक्चुअली मेरी मॉम अभी हैदराबाद में है, सो आई एम रियली मिसिंग हर. और कतर की वाइब ने एक्चुअली दिल खुश किया है, बट यस आई एम मिसिंग माय मॉम. जीशान, आई शुड रियली से कि माँ के बिना हर सेलिब्रेशन अधूरा ही लगता है, लेकिन आप अच्छे थॉट्स रखिए और इस सेलिब्रेशन को पूरा कीजिए. उन्हें कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, उनसे कनेक्टेड रहिए. आई एम श्योर आपने ज़रूर कनेक्ट किया होगा, लेकिन ये जो मिसिंग फैक्टर है ना, ये नहीं हटेगा. तो मैं कहूँगी कि बस अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे जो उनके उनकी यादें हैं, जो मेमोरीज आपने इंडिया में बनाई होंगी, वो सब याद कीजिए. एंड स्पीक टू हर उतने ही चीयरफुल अंदाज में, है कि नहीं? सो यस, सेलिब्रेट ईद और सेलिब्रेट योर मॉम उनकी सारी खूबसूरत यादों के साथ, है कि नहीं जीशान? ओके, अनदर मैसेज इज फ्रॉम आरिफ, दैट इज फ्रॉम मदीनात खलीफा. ओके, सो आरिफ क्या कह रहे हैं? अच्छा ये कह रहे हैं कि अमिता प्लीज टेल एवरीवन टू स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज टुडे. आहा, तो कह रहे हैं कि देखो भाई, हर घर में शीर खुरमा बनता ही बनता है और मटन बिरयानी और इस तरह की चीजें बहुत बनी होंगी. तो ये चार दिन जो है ना, ये आप अपनी डाइट वाइट सब भूल जाइए, बिंदास खाइए, बिंदास एंजॉय कीजिए. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. सही मैसेज है आरिफ. वेल, राहुल फ्रॉम मंसूरा कह रहे हैं कि हैप्पी ईद टू ऑल माई फ्रेंड्स. और मंसूरा में हम सब बैचलर फ्रेंड्स ने मिलकर दावत रखी है, सो घर से दूर है पर एफएम 107 के साथ हमें लगता है कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं. दैट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट राहुल, एंड थैंक यू सो मच हमें मैसेज करने के लिए. एंड आई एम वेरी श्योर कि मंसूरा में जो आप सब बैचलर फ्रेंड्स रहते हैं, यू गाइज आर इंजॉइंग, सो फुल ऑन एंजॉय करें. एंड डेफिनेटली हिटेड गाने भी हम आपको सुनाते रहेंगे और ईद की धुन आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हो. वेल, यहाँ पर अकबर का मैसेज है अलखोर से. अकबर कहते हैं कि ईद मुबारक एफएम 107 की एंटायर टीम को, थैंक यू सो मच. यहाँ अलखोर में हमने मजबूस और खीर का कॉम्बो बनाया है, अ देसी टच विद अ कतरी ट्विस्ट, एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन. वाह अकबर, क्या बात है, कॉम्बिनेशन एकदम किलर बना लिया. हाँ, कमाल है कमाल है. चले खूब इंजॉय करें और हमें मैसेज करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. चले जनाब, ईद की धुन हमारा खासम खास शो

चल रहा है FM 107 पर, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और अब आगे बढ़ते हैं, जानते कौन सा गाना है जो ग्लोबल चार्ट्स पर हिट कर गया, ट्रेंड बना चुका और अब यहाँ पर हमारा मूड बनाने के लिए आ चुका है। Yes, Shreya Ghoshal ki awaaz and what a beautiful collaboration Latin and Spanish beats ke saath, hai ki nahi? Well, jab bhi hum ye baiso gaana sunte hain to humko bada maza aata hai, humko lagta hai yaar kya andaaz mein is gaane ko banaya gaya hai. Well, is track ke bare mein jab hum baat karte hain to is track ko Ganesh Vaghela ne produce kiya hai aur this was trending like worldwide, ye kaafi famous hua tha. श्रेया की बात करें सो इज करेंटली लीडिंग द वेव ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक और ये बहुत सारे अलग अलग मुल्कों के सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और जब हम इन्हें डिफरेंट लैंग्वेज के सिंगर्स के साथ देखते हैं ना परफॉर्म करते हुए, हम इनके गाने सुनते हैं तो हमें लिटरली लगता है कि वाह यार क्या कमाल की पर्सनैलिटी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पंजाबी टच के साथ, एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा सॉन्ग है मेरे हस्बैंड की बेबी फिल्म से। इस फिल्म में अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत, भूमि पेडनेकर की ट्रिपल मस्ती है एंड एक वारी इट्स अ परफेक्ट रोमांटिक डांस ट्रैक और रोचक कोहली ने इसे कंपोज किया है। एंड यू नो रोचक कोहली की जब मैं बात करूं तो रेडियो की दुनिया में ये वो शख्सियत है जिनके साथ मैंने भी काम किया हुआ है, सो इट्स एक्चुअली अ वेरी प्राउड मोमेंट क्योंकि रोचक कोहली वो शख्स हैं जो कि पहले अपने पर्सनलाइज वे में गाने कंपोज किया करते थे एंड जब पहली बार उनका गाना पानी दा रंग सामने आया तो एवरीबॉडी वाज लाइक वेरी वेरी प्राउड और उसके बाद इनका फिल्मी सफर शुरू हो गया। सो यस इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो कि मैं बता सकूं कि मैंने इनके साथ काम किया हुआ है इन द रेडियो इंडस्ट्री। So yes, this is our Rochak Kohli, a very talented man. और बड़ी catchy melody के साथ ये अगला गाना जो कि ईद vibe को और भी special बनाएगा एक बारी। मेरे husband की बीवी film से। So हम सुनेंगे पहले बैसो, उसके बाद एक बारी। I'm sure you're gonna just love it. तो इन गानों को enjoy करें और हमसे जुड़े 6622107 पर 6622107। सुनते रहिए FM 107 पर ईद की धुन अपनी अमिता के साथ। स्टे ट्यून्ड।

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का उन FM 107 पर. ईद की धुन आप सुन रहे हैं. मैं हूँ आपकी परमिता. 666-22-107 इज आवर नंबर. आप हमें ईद विशेस भेज सकते हैं या फिर किसी को विश करना है या अपने दिल की बात करनी है. आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं. चलिए इससे पहले कि अब अगले ट्रैक्स की तरफ हम आगे बढ़े, थोड़े मैसेजेस की तरफ रुख कर लेते हैं. तो हमें महक का मैसेज आया है उमसलाल से, जो कि कहती है कि अमिता, मेरी बेटी ने आज पहली बार ईद की सिवैयां बनाने में मेरी हेल्प की है एंड इट वॉज सो मेसी बट इज सो स्वीट. दैट इज लवली महक. मतलब आपके मैसेज के जरिए मैं सारी मदर्स को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ. एंड आई जस्ट वांट टू से कि आप सब बहुत ही कमाल की वो कहते हैं ना शख्सियत है हमारी जिंदगी में, जिनके बिना हमारा लाइफ में एक कदम चलना भी मतलब इट्स इम्पॉसिबल. सो ऑल द मॉम्स हैट्स ऑफ टू यू. और वो सारे बच्चे जो अपनी मम्मा की हेल्प कर रहे हैं, मैं कहूंगी ये आपका राइट है, उनकी हेल्प ना करें, उनके साथ हमेशा खड़े रहें और जब जब मौका मिले जो जो चीजें और जो जो काम आप उनके लिए कर सकते हैं जस्ट गो अहेड एंड डू इट. इसके बाद मुझे अगला मैसेज है फरहान का फ्रॉम लुसेल. कह रहे हैं ईद मुबारक. अरे भाई आपको भी ईद मुबारक फरहान जी टू योर एंटायर फैमिली. और आगे लिखते हैं कि मेरे छोटे भाई ने मुझसे इतनी ईदी ली है कि अब मेरा वॉलेट लाइट वेट हो गया है बट इस स्माइल बाप रे बाप, मतलब मेरा दिल एकदम खुश हो गया एंड रियली मेड इट वर्थ. हाँ मानना पड़ेगा फरहान जी आपका छोटा भाई बहुत लकी है. उनका नाम क्या है वो भी हमें बताते. तो छोटे भाई ने इनसे ईदी ले ली, पूरा वॉलेट खाली करा लिया. मैं कहूंगी ये तो बनता है है कि नहीं. अच्छा अबू हमूर से हमारे साथ कौन जुड़ा है, इनका नाम एकदम क्लियर नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से मोहम्मद लिखा हुआ है. सो मोहम्मद कह रहे हैं कि अमिता मैंने अपने घर में सबको वादा किया है कि मैं अपने कमरे की सफाई हर दिन करूँ.

0: नहीं, क्योंकि मैं अक्सर काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं चीजें कर नहीं पाता और मैं अपने घर में किसी की हेल्प भी नहीं कर पाता. सो इस ईद से मैंने ये स्टेप लिया है, दैट इज रियली यूनिक. मैं आपको बताना चाहती हूँ मोहम्मद, ज्यादातर हम ईद में बातें करते हैं सेलिब्रेशंस की, यू नो, ईदी की, गिफ्ट्स की, लेकिन ऐसे प्रोमिसेस बहुत कम सुनने में आते हैं. बिकॉज घर की सफाई करना इज वन ऑफ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. लेकिन अगर आपने ये प्रॉमिस किया है कि अपना कमरा ही साफ कर लोगे, सो दैट्स अ बिग वन. सो यस गाइस, आप सब हमसे जुड़ सकते हैं 666-22-107 पर. 666-22-107 इज आवर नंबर. और ईद की धुन में अब कौन सी धुन बजेगी, आइए जाने.
1: ओ बिल्लू तेरी आंख कतल करे लाख कतल, जदम हूं करे करे लाख कतल.
0: सो यस, गेट रेडी गुरु रंधावा के साथ, जो कि हर किसी का दिल जीत रहे हैं अपने इस कतल सॉन्ग से. एंड दिस सॉन्ग एक्चुअली जितने भी सोशल मीडिया की रील्स है ना, उसे डोमिनेट कर रहा है. वेल, इट्स अ सिग्नेचर अर्बन पंजाबी स्टाइल सॉन्ग, जहां पर कमाल के बीट्स है और इनका कोलैबोरेशन है वी म्यूजिक के साथ. एंड व्हेन यू लिसन दिस सॉन्ग, तो आपको लगता है कि वाह, कुछ तो वाइब है. गुरु रंधावा का कत्ल आप सुनेंगे और उसके बाद कौन सा गाना होगा जिसे सुनकर आप फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम द मूवी हाउसफुल 5. मुझे लगता है कि आज अगर आप तैयार होके निकलेंगे तो ये गाना खास तौर से आपको डेडिकेटेड है. Well, that's massive, है कि नहीं? कयामत बड़ा ही हाई ऑक्टेन परफॉर्मिंग नंबर है, जिसको रिक्रिएट किया हमारे हिट मशीन तनिष्क बागची ने. एंड तनिष्क जब बात करते हैं, तो जब ये पुराने गानों को नए अंदाज में पेश करते हैं, तो somehow ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरती से पुराने टच को बिना खोए इन्होंने नए को ऐड किया है. सो 2000 की एनर्जी को हम 2026 के प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ सुन सकते हैं. और ट्रेंड ये है कि जेन जी लिसनर्स आर जस्ट लविंग दिस रेट्रो कूल बीट्स. और वो कहते हैं ना कि इट्स लाउड बट इट्स प्राउड. और ये है हाउसफुल स्टाइल का कमाल का सॉन्ग कयामत. तो पहले हम कत्ल को एंजॉय करेंगे, फिर कयामत तक पहुंच जाएंगे. तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें एफएम 107 पर, दिल से देसी.
2: एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: की खुशबू, कुर्बानी का जज्बा और खुशियों का जहां. ये ईद हमें सेक्रिफाइस, पेशेंस और शेयरिंग का पैगाम देती है. अल्लाह करे कि ये दिन आपके लिए खुशियां, बरकत और सुकून लेकर आए. अपने घर वालों, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियां बांटना ना भूलें. दुआ है कि अल्लाह आपकी हर कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को कामयाबी और रहमत से भर दे. मैं हूँ नासिया, मेरी और एफएम 107 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिल से ईद उल अधा मुबारक.
5: ईद मुबारक, ईद मुबारक.
6: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन एफएम 107,
7: एफएम 107,
6: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं ईद की धुन ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी फरमीता। ईद की धुन में क्या हाल चाल है, आप सभी का इस्तकबाल है। आई एम श्योर कि ईद की धुन ये हमारा खासम खास शो ईद स्पेशल, यू आर लविंग इट। सो इस वक्त हमारे साथ कौन जुड़ा है, यहाँ पर रूहान का मैसेज आया हुआ है जो कि अलसद से इन्होंने हमें मैसेज किया है। कहते हैं कि मैंने आज पहली बार पठानी पहना है और मैं बिल्कुल सलमान खान फील कर रहा हूँ। रूहान, that's up to you। वैसे मुझे लगता है कि जब

में पहनता है ना, सो वो फील सलमान खान वाला आता ही है, क्योंकि अक्सर हमने फिल्मों में ईद के मौके पर उनको ही ट्रेंड करते हुए देखा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एहसास होता ही है. आई एम श्योर कि आप फुल ऑन एंजॉय कर रहे हो. सो रुहान, इफ यू मेक एनी सोशल मीडिया स्टोरीज तो FM 107 को और अपनी अमिता को टैग करना ना भूले. इसके बाद हमें मैसेज आया है कौथर का फ्रॉम नजमा, और कहती है कि हैप्पी ईद आप सभी को. मेरी मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया है, विच मीन्स कि मेरी मदर इन लॉ लव्स मी अ लॉट, सो फीलिंग ब्लेस्ड. दैट इज रियली स्वीट. हाँ, कभी कभी ऐसे मैसेजेस एकदम चेहरे पे ना मुस्कुराहट बढ़ा देते हैं. सो यस कौथर, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग अस. And we just pray कि आपकी जो मेहंदी का रंग है वो ऐसे ही गहरा रहे, and not just your mother-in-law but the entire family should love you, है कि नहीं? चले इसी बात के साथ अगला मैसेज किसका है? इमरान from मैसईद. क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि अमिता मुझे ना ईद के दौरान हमेशा कैंपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, बट अभी मैं कर नहीं पाया हूँ, and I'm just thinking कि कुछ प्लान बने तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ. इमरान, गुड गुड, इट्स नाइस थिंग. अपने दोस्तों के साथ भी कभी कभी ऐसे मौके इंजॉय करने में कुछ अलग ही बात होती है, और मुझे लगता है कि जब जब मौके मिले ना सेलिब्रेशन के अपने अपनों के साथ, नेवर एवर मिस इट. सो गो अहेड, एंजॉय योरसेल्फ. एंड ऑन दिस नोट, आप क्या कर रहे हैं? 666-22-107 पर आप अमिता को मैसेज करें, एंड डेफिनेटली यू कैन टेल कि आप ईद में क्या करने वाले हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या कोई ईद के मैसेजेस हैं जो आप देना चाह रहे हैं. यू कैन डेफिनेटली मैसेज अस 666-22-107 पर. और अब फ्रॉम वन सीक्वल टू अनदर, पति पत्नी और वो दो फिल्म से कौन सा गाना आप सुनने वाले हैं? यस, फीचरिंग आयुष्मान खुराना, अल्टीमेट सॉन्ग है. इसे कंपोज किया है सचेत परंपरा ने, एंड वो कहते हैं ना कि ये सारे सोशल मीडिया रील्स और शॉर्ट्स में ये गाना वायरल गया है. एंड सचेत परंपरा, आई जस्ट लव दिस डुओ. मतलब इनको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पर हुक स्टेप्स आएंगे, कहाँ पर मेलेडी आएगी, कहाँ पर मतलब वो दिल आ जाएगा लोगों का इस गाने को सुनकर. दे आर जस्ट अमेजिंग. और इसके क्वर्की लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने, जो कि पंजाबी टच में और भी ज्यादा चार चांद लगाते हैं. सो यस गाइज, इंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए आयुष्मान खुराना की आवाज में. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, दिल वाले चोर. उसके बाद कौन सा गाना जिसे आप इंजॉय करेंगे? That is Pan India का trending song South Energy का. आइए जरा सुन ले. हाँ जी, तो time for South meets North Energy. Yes, तो यहाँ पर पेड़ी फिल्म का ये ट्रैक चिकरी चिकरी बड़ा कमाल का गाना है. इट्स अ प्योर मास एंटरटेनर जिसे नकाश अजीज ने गाया. इट्स अ हाई एनर्जी सॉन्ग, और पहले जिन्होंने साड़ी के फॉल सा गाना गाया था, एंड दैट आल्सो बिकेम अ मैसिव ट्रेंड. पहले इस गाने का म्यूजिक दिया है थमन एस ने, एंड लिटरली किंग ऑफ साउथ ड्रम बीट्स इनको कहा जाता है. मतलब जो कमाल का गाना बनाते हैं, और उसके बाद चिकरी चिकरी में हमारे रामचरण ने कमाल का परफॉर्मेंस किया. मतलब उनका वो जो पैरों का स्टाइल होता है ना, मैं सोच रही थी कि मैं ट्राई करूंगी तो न जाने कितने बार गिर जाऊंगी. हैट्स ऑफ टू हिम, इतने स्मूथली उन्होंने परफॉर्म किया. सो यस, ये दो कमाल के गाने, एक तो दिल वाले चोर एंड देन चिकरी चिकरी, दोनों ही आपकी राहों में आएंगे, एंड आई एम श्योर यू गोना जस्ट लव इट. तो एंजॉय कीजिए फुल ऑन, और हाँ, हमसे जुड़िए 666-22-107 पर. ईद की धुन शो का नाम है, तो इस धुन में खो जाइए FM 107 पर, दिल से देसी.

हमने कहा था 666-22-107 इज आवर नंबर, इस पर आप हमें मैसेज करना ना भूले। वेल अभी हमें सायरा का मैसेज आया, अगर आप से कहती है कि अमिता मैंने अभी अभी शॉपिंग कंप्लीट की है और दूसरे दिन भी मुझे कुछ कुछ चीजें लेने घर से बाहर निकलना ही पड़ा, काफी थक गई हूँ, लेकिन ड्राइव करते हुए मैं गावा एंजॉय कर रही हूँ एंड जो गाने ईद की धुन शो में बज रहे हैं, आई एम रियली लविंग इट। सो सायरा, रियली आई अप्रिशिएट, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मैसेज किया एंड ड्राइव सेफ। ठीक है, अच्छे से आप जाए घर और फुल ऑन एंजॉय करें, थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिएगा, बिकॉज आई नो कि जो लेडीज होती हैं उनके लिए बहुत काम होता है ईद में, क्योंकि पहली चीज खाना पीना सब अपनी जगह है, बट घर का प्रेजेंटेशन, फिर जब लोग घर में आते हैं तब उनकी खातिरदारी करना, एंड दिस सो मच। सो हैट्स ऑफ टू यू सायरा, प्लीज आराम से जाए घर, थोड़ा आराम कीजिएगा एंड देन एंजॉय योर डे। उसके बाद मुझे आफ्ताब का मैसेज है अल रयान से, और आफ्ताब कह रहे हैं भाई ईद मुबारक आप सभी को। आफ्ताब आपको भी ईद मुबारक, और कहते हैं कि हम सब दोस्त एजुकेशन सिटी स्टेडियम के पास क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, कहते हैं कि ईद मैचेस हमारा ट्रेडिशन है और अक्सर दूसरे दिन हम सारे दोस्त इकट्ठे होकर कोई भी जगह चुनते हैं और वहां जाके हम मस्त तरीके से मैच खेलते हैं। दैट इज सो नाइस आफ्ताब, एंड आई थिंक ये जो दोस्तों वाली पार्टी होती है ना, ये बड़ी कमाल की होती है, और ये जो कुछ यूनिक चीजें हैं ना जो आप करते आ रहे हो, और अगर आप वो करते रहते हो ना तो वो आपकी बॉन्ड को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। सो आफ्ताब, यू आर द लकी वन, एंजॉय योर डे। अच्छा, उसके बाद हमें नाडिया का मैसेज आया है, कहती है अमिता मैं तो फुल ऑन इंजॉय कर रही हूँ घर पे, बस रेडियो चल रहा है एंड इस वक्त मेरे मम्मी पापा और बाकी सब थोड़ा ड्राइव पे गए हुए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए घर पे रेस्ट करना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि मैं रेस्ट करती हूँ फिर उसके बाद बाहर जाऊंगी, तो कह रही है कि बस अपनी बालकनी से मैं स्काईलाइन देख रही हूँ। दोहा लुक सो पीसफुल येट फेस्टिव टुडे, सो ईद मुबारक आप सभी को। क्या बात है नाडिया, इज सच अ सिंपल एंड स्वीट मैसेज जो आपने हमें दिया और ये जता दिया कि देखो लाइफ कितनी खूबसूरत है। हाँ, सो यस नाडिया, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने हमें मैसेज किया, एंड आज मतलब सच में मैसेजेस की भरमार है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जैनब का मैसेज आया है कटारा साइड से, कहती है कि कटारा की कल्चरल वाइब आज टॉप नॉच पर है अमिता, और हम यहाँ पर अभी ड्राइव करते हुए जस्ट पहुंचे हैं एंड फैमिली के साथ माहौल बहुत प्यारा है, जस्ट वॉन्ट टू विश एवरीबडी ईद मुबारक एंड वी लव द सॉन्ग। ओके जैनब, थैंक यू सो मच दैट यू एंजॉयड आवर सॉन्ग्स। और फिलहाल कटारा की गलियों में आप जाने वाली हैं तो आई एम वेरी सर्टेन कि ईद का माहौल बहुत खूबसूरत होगा, सो डू कैप्चर सम ब्यूटीफुल वाइब्स और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें और हमें टैग करना ना भूलें। ऑलराइट, देयर सम मोर मैसेजेस, आइए जरा इनकी तरफ भी बढ़ते हैं। ईशा फ्रॉम सलवा रोड, सलवा रोड मतलब मेरे ख्याल से ड्राइव कर रही है, और उन्होंने लिखा है कि अमिता ईद मुबारक आपको, और एक चीज मैं मिस कर रही हूँ, ईद मिलन पार्टीज जो हमारे चाइल्डहुड में होती थी, जब मेरी मम्मा उन पार्टीज को होस्ट करती थी और मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स उसे इंजॉय करने आते थे। ओ ईशा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, होता है होता है, बचपन की यादें तो हमेशा आती ही रहती हैं, और मेरे ख्याल से ये यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं जो आगे हमको बताती हैं कि हमें और भी ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड होकर ब्यूटिफुल मेमोरीज बनानी है कि नहीं, क्योंकि वो बचपन अगर यादों में ना जाए तो फिर आगे की जिंदगी कैसे और खुशनुमा हो सकती है कि नहीं। सईशा, डू मिस योर बचपन, लेकिन एट द सेम टाइम आगे भी मेमोरीज बनाए, फुल ऑन एंजॉय करें। देन वी हैव वन मोर मैसेज, दैट इज ऑफ आदित्य। ओके, बरवा सिटी से कहते हैं कि अमिता मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ईद मनाने जा रहा हूँ, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। सो ओके आदित्य, एंजॉय योरसेल्फ और एंजॉय करें मूवी, और हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो इसी बात के साथ अब हम ईद की धुन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब हमारा शो बिल्कुल अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने वाला है। सो कौन सी धुन है जो भी आप एंजॉय करेंगे? जनाब, ये एक प्योर रोमांटिक एंथम है और इसमें आपको पुराने गाने, जो फिल्मी गाने, उसकी मिठास और मॉडर्न अकूस्टिक गिटार का मिक्स मिलेगा, जो कि परफेक्ट है शाम की ड्राइव के लिए। एंड डेफिनेटली हमारे कुछ लिसनर्स कटारा साइड जा रहे हैं, सो आई शुड से कि आपको बड़ा मजा आएगा ये सुनकर, एंड इट्स परफेक्ट फॉर द ओकेजन, सो एंजॉय दिस सॉन्ग इन द फुल वॉल्यूम। उसके बाद कौन सा गाना है जो और भी ज्यादा खूबसूरत आपको लगने वाला है? दे दे प्यार दे 2 फिल्म का

गाना है। And I should say it was the most awaited sequel हाँ अपने time पे। Shock is the song and this is one of the song जो बड़ा trend किया था, बड़ा ज़्यादा trend किया था। और मुझे लगता है कि जब आप बकलावा खा रहे हो या अपनी family के साथ time बिता रहे हो, ये वो गाना है जो mood को बिल्कुल सही बना देगा। So yes, enjoy these songs और आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ FM 107 पर, क्योंकि ईद की धुन की धुनों को अभी भी एंजॉय करना बाकी है।

वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने फुल ऑन गानों को एंजॉय किया होगा. सो अब क्या करना है, बस ये याद रखना है 6622107 6622107 इज आवर नंबर. इस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, रابطہ कायम कर सकते हैं ईद के चारों दिन. आज दूसरा दिन हो चुका है, दो दिन और बाकी है. इसके जरिए आप हमसे जुड़ते रहिए और अपनी ईद की खुशियां हमारे साथ शेयर करते रहिए, बांटते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि खुशियां शेयर करने से और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि नहीं. और इसी के साथ हमारे एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूलें. ईद की सारी वाइब आपको वहां मिलेगी और अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं. ठीक है, जाते जाते कह दूं हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: FM 107 टाइम चेक।
4: अरे भाई साहब, आपसे कह रहा हूँ। हाँ हेलो, सफेद गाड़ी काली गाड़ी भाई साहब, आपसे व्हाट्सएप निकालिए, मैसेज कीजिए। ये अपना ये क्या नाम है इसका, ये कबीर अभी वो शुरू करने वाला। हाँ, ये किसका बच्चा रो रहा है भाई?

की बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद जिनकी मुबारकबाद मैं कल देना भूल गया था, जिनसे मुबारकबाद लेना भूल गया था। शुरुआत तो अभी कर चुका हूँ लेकिन एक एक एक छोटा सा छोटा सा सवाल, एक मैसेज आया है मेरे पास। पहला मैसेज है, इन्होंने लिखा है हाय हाउ क्यूट। क्या किसने क्या कोई मैंने कोई क्यूट हरकत कर दी? मुझे ही नहीं पता है। वेल अस्सलाम वालेकुम, इंट्रोडक्शन अगेन। भाई बताओ मुझे हाउ क्यूट क्यों बोला, मुझे जानना है। आई एम रियली क्यूरियस, आपने मेरे अंदर जो है जिज्ञासा जगा दी है। किस चीज़ को लेके था ये? जिंगल को लेके था, अमिता के कहने पे था, मेरे आने पे था। तीन तीन ऑप्शन है आपके पास। अच्छा तो 5:02 फिलहाल आपको बताइए, आज भी अपने नाम जीतने वाले, हर घंटे एक विनर जीतेगा कुमार एंड ट्रेवलर्स रेस्टोरेंट की तरफ से 500 का ₹3 का वाउचर। एक मैसेज आया है, क्या लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, जॉइंड यू आफ्टर लंच। और मैंने बताया ए फॉर अमिता जी के लिए। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, मैंने

0: मैं तो यार मैं डर गया, मैंने कहा आपने मुझे क्यूट बोल दिया, दो मिनट की मेरी सांस रुक गई। थैंक यू भाई मियां कैसर साहब। अच्छा इनके बाद जो एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं, आफ्टर लंच 15 मिनट्स, ओके। तो ये जैसे आपको पता है हर रोज़ का रिचुअल है, ऑफकोर्स एक पहले आर में भी सवाल होगा, दूसरे घंटे भी सवाल होगा और एक एक विनर को मौका मिलेगा। 500 रियल का वाउचर है कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से, बहुत शानदार मिशलन स्टार रेस्टोरेंट है भाई, बहुत ही बढ़िया कति कैंट, मैं तो पता नहीं था मुझे, इसके बाद पता लगा मुझे, कहा अच्छा ये सभी है। तो यस वो कॉन्टेस्ट शुरू होगा बाद में, बट मीनवाइल आपको बताइए शाम की शुरुआत इस शो की कैसे होती है। तो हाउसफुल ईद की शुरुआत भी दुआओं के साथ होगी, शाम के अधिकार 11 मिनट और 2 सेकंड, एंड उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो आपने तो पता ही इधर भी जाना नहीं है भाई, बेस्ट जगह पर है आप, मतलब क्या फालतू में चेंज वेंज है। स्टे ट्यून्ड, और हाँ व्हाट्सएप 666-22-107, स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

0: बोले कि अरे ये तो मैंने, मेरा इनाम था, तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं, मसला बढ़ जाएगा। नसीम साहब लिखते हैं गुड मॉर्निंग खोजी। हाँ जी खोजी आ गया है, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है भाई साहब, बढ़िया करके मौज करा देंगे। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या आप कहानी सुनाने वाले? नहीं भाई कोई कहानी नहीं है, एक तो मेरी शक्ल पे आ जाता है क्या, मतलब ये आया तो कहानी ही सुनाएगा। मैं कहानी सुनाऊंगा अभी नहीं, 31 तारीख को सुबह सुनाऊंगा और उसके बाद फिर शाम को कहानी आएंगी। ऑफ कोर्स उसमें थ्रिलर्स भी आएंगी, आपने ऐसे लिखा है, साइकोलॉजिकल हॉरर भी आएगा, सब आएगा भाई भर भर के, लेकिन वो एक तारीख से आएगा, अभी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। आज क्या हुई है, 28 हो गई है, बस 3 दिन की बात और है, क्या दिक्कत है, 31 को तो है स्टोरी सुबह सुबह, सो डोंट वरी। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको और आपके चाहने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार आपको। मलिक साहब नंबर तो बड़ा कैंट लिया है भाई आपने, बहुत ही बढ़िया नंबर है। एक मैसेज है कतारा, ओके मुझे लगा कि आपने कुछ बताया, ये इन्होंने बीचेस के नाम लिखे, ओके अब्दुल नवीद साहब का मैसेज था। देन अस्सलाम वालेकुम कबीर साहब, क्या आलम है जी, बढ़िया, पूरी टीम को सलाम, ईद मुबारक, मोहम्मद कलीम, सब सुनने वालों को भी ईद मुबारक, जज़ाकअल्लाह भाई आपको भी ईद मुबारक। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आपका और सरवर भाई का वीडियो देखा था बीच वाला, वहाँ पर आप लोगों ने कोई शो किया था? जी भाई हमने शो किया था, अरे अभी भी यूट्यूब पर है वो, हम एक हमने पूरा वीडियो डाला था, क्या था वो, सुहाना सफ़र, तो उसमें सरवर भाई और हम सब पूरी टीम जो थे वो बीच पे गए थे, अलग अलग बीचेस पे, और वहाँ पे जाके हमने जो है काफ़ी कुछ बनाया था, मतलब सरवर भाई ने बनाया था, ऑफकोर्स हमने तो सिर्फ खाया था, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देखिएगा, इट्स एन अमेजिंग वीडियो और बहुत बहुत बहुत दिल से बनाया था हमने और बहुत मेहनत भी करी थी। रात के 12 बजे निकले थे भाई हम वहाँ से, मुझे अभी भी याद है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, क्या है मैसेज, देखो देखो कौन आया, कहानी वाला कबीर आया। यही दिक्कत हो गई है नसीम साहब, मुझसे कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करना चाहता, सबको लगता है पहले मैं इससे कहानी सुन लूं उसके बाद इससे बात करूंगा, तो ये ठीक है, अच्छी बात भी है, आई डोंट माइंड दैट। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, क्या लिखा है इन्होंने, ये क्या लिखा है, कबीर भाई आपकी फ़ोटो आज पहली मर्तबा देखी है, मुझे पहले लगता था कि आप क्या, मैं क्या, आप और फजील भाई की आवाज़ मैच करती है, अरे नहीं भाई। कैसे, मतलब मैं कोई वो नहीं कह रहा, फजील अगर सुन रहा तो फजील भाई, ये मैं आपकी अपनी बुराई नहीं करवा रहा हूँ, पर मेरी और फजील की आवाज़ मैच नहीं करती है भाई, बहुत अलग है हम दोनों की आवाज़, बहुत अलग है, स्टाइल ऑफ डिलीवरी भी अलग है, स्टाइल भी अलग है भाई का, क्यों हमारी यूनिकनेस पे आप अपना जंबा जूस गिरा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, अगर गलती से हमारे बॉस ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। 5:25 हो रहे हैं और मैं सवाल दोहरा देता हूँ, अवेश भाई कह रहे हैं कभी कभी नहीं, कभी कभी मिलती है, कब कब मिलती है? ये तो मुझे मत करो यार, टेंशन वाली बात है, कॉल आ रही है, बताओ, कह रहे हैं आवाज़ मिलती है, बताइए, हद हो गई। अस्सलाम वालेकुम, एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम। तेज तर्रार हो रहे हो गाबा। क्या चल रहा है भाई,
1: और क्या हाल है भाई, के ठीक है?
0: बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया, तुसी दसो किवें?
1: सबसे पहले तो यार आपको, आपकी पूरी 107 FM की फैमिली को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत प्यार आपको भी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या चल रहा है गाबा जी?
1: भाई साहब आज आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है मेरी।
0: हाँ, वो
1: बस एक्चुअली रीजन हाँ। क्या हुआ, टाइम मिस मैच हो गया अपना।
0: भाई जी टाइम तो आपका मेरे कभी मिला ही नहीं, इतने साल हो गए कभी मिला ही नहीं। मैं तो कहूँ, मैंने कहा यार ये बंदा अलग ही है, ये दोपहर में साउंड करता है, सुबह तो कभी मैंने सुना नहीं और कभी शाम में कहा आप आए नहीं, तो मैं तो यही दोनों टाइम के बीच में रहता हूँ, तो मेरा जगल तो ऐसे ही होता रहता है, तो इसलिए आपको शायद कभी मुलाकात हुई नहीं आपसे।
1: जी अनफॉर्चुनेटली कबीर भाई इसको यही कह सकते हैं, बस भाई टाइम की मिसमैचिंग है।
0: तो आज ये हादसा कैसे हो गया गाबा जी, ये बताओ।
1: हमने सोचा भाई हम भी रेस्टोरेंट पे जाके डिनर या ब्रेकफास्ट कर लेंगे।
0: लालच खींच लाया गाबा को, लालच खींच लाया। मैं भाई कहूं, मैंने कहा यार गाबा जी आज हमारे शो में
1: 100% जेन्युइन बात जनाब,
0: जेन्युइन, एकदम जेन्युइन बात है, नहीं अच्छी बात है,
1: जेन्युइन जेन्युइन भाई, आप कभी गलत बोल ही नहीं सकते।
0: नहीं भाजी, ये सत्य जो होता है ना वो बड़ा ही सही होता है, मुंह पे बोल देना जी अच्छा लगता है, ये मुझे खरा खड़ा सोना लगता है, इसमें ना कोई वो नहीं है कि अरे ऐसा क्यों बोल दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आपने क्लियर कट बोला, भाई मैं सीधी बात है वाउचर के लिए आया हूँ और कुछ नहीं चाहिए तुमसे।
1: मान गए भाई आपके टैलेंट को
0: ना जी, वो तो क्लियर है।

0: इसी बात के तो पैसे हैं कामा जी, इसी बात के तो पैसे हैं। और बताओ भाई, क्या प्लान चलान चल रहा है, क्या ईद पे क्या किया, कहीं गए पार्टी शर्टी हो गई?
1: भाई कल गए थे, पार्टी वगैरह की थी यारों दोस्तों के साथ में।
0: अच्छा,
1: पार्टी तो शाम को ही की थी जी, तो आज भी शाम को जाने का प्लान है सर।
0: अरे बढ़िया भाई बढ़िया, चलो बढ़िया गाबा जी। तो गिना दो,
1: कतारा जाने का,
0: आज कतारा की तरफ जा रहे हो, कल जाना चाहिए था, कल तो वहाँ पे फायर वर्क से अच्छे खासे।
1: एक्चुअली सर पता क्या है, बच्चा छोटा है दो साल का।
0: अच्छा, ओके,
1: तो
0: ओके,
1: उसकी वजह से फिर थोड़ा सा हो जाता
0: फिर
1: है,
0: ठीक है भाई।
1: चलो जाते हैं ना, फिर तो ठीक है, मगर थोड़ा सा अपने को ही अनकंफर्टेबल फील होता है
0: ना जी। फिर तो ठीक किया, कोई गल नहीं। तो दसो फिर चार बीच दे नाम दसो,
1: चार या पांच?
0: पांच दसो। हाँ भाई मैं भी भूल गया यार भाई।
1: एक तो कबीर भाई, कबीर भाई एक हो गया वेस्ट बे बीच।
0: अच्छा जी ठीक है,
1: उसके साथ में है 974,
0: ठीक है जी।
1: उसके बाद में आ जाता है कटारा।
0: ओके
1: एक है अपना सिमसिमा बीच,
0: ठीक है,
1: एक है मिसाइद वाला।
0: ठीक है ठीक है जी, हो गए ठीक है गाबा जी। रजिस्टर हमने ऑन करके आपका लिख दिया है नाम, ठीक है गाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई को। और भूले भटके जाया करो कभी कभी, है ना?
1: मेरे भाई का कोई और सवाल हो मेरे लायक?
0: ना जी कोई और सवाल नहीं गाबा जी,
1: मना मजा आवेगा भाई जवाब देने में।
0: ना जी सब क्लियर है मेरा भाई, मैं तो ये कह रहा था, मैंने कहा वैसे ही बजा करो कभी कभी दूसरे टाइम में भी, जब ना हो कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट, तब भी बातचीत होगी, कुछ ना कुछ खुल के बात करेंगे।
1: चल भाई अब तो घनी दोस्ती होगी तेरे साथ।
0: हाँ जी भाई, जो है घनी दोस्ती भाई, बाकी सबने तो समझ नहीं ना आई, बादशाह भाई एकदम आग ला देंगे, धुआं उठा देंगे भाई गब्बा।
1: भाई उठा देंगे भाई, तना मेरा नहीं है भाई, मना मेरा मगर तेरा भाई,
0: तुमने मेरा है ना गब्बा, बस ठीक है
1: जी। बाकी मजा आया कबीर भाई, पहली बार बात हुई आपके साथ में यार।
0: डन है भाई,
1: मैंने सुना है आपको कई बार, बट मैंने रेगुलर नहीं सुना भाई, अनफॉर्चुनेटली टाइम का मिस।
0: अरे रेगुलर सुना करो, दवा डॉक्टर भी ये कहते हैं खाने से पहले खाने के बाद सुना करो, बहुत जरूरी है भाई।
1: एक्चुअली क्या करूं, मेरा सारा टाइम सर्वर भाई ले जाते हैं खींच के।
0: मैं सर्वर भाई से बात करता हूं, थोड़ा टाइम खींच के छोड़ देंगे वो गुलेल की तरह। ठीक है ठीक है
1: मेरा भाई, मजा आया भाई,
0: मजा आया भाई, इधर भी भाई एकदम बढ़िया।
1: थैंक यू सर,
0: ओके ओके भाई, टेक केयर, ओके भाई। तो ये देखिए इत्तफाक कैसे होते हैं, अब्बा जी इससे पहले मेरी कभी बात नहीं हुई, पर आज होली नसीम साहब को कहना है कि कबीर भाई हम मिल चुके हैं, मिल चुके हैं नसीम साहब। अच्छा अच्छी बात है, मिलके अच्छा लगा होगा आपको उम्मीद, और नहीं हुआ लगा तो बहुत सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, ये खटके की आवाज कहाँ से आई एकदम से, धड़ धड़म धुम खोल उठा देगी साथी।
2: वो मैंने रेडियो बंद किया है, गुलाम उस्ताद बात कर रहा।
0: अच्छा गुलाम उस्ताद, मैंने कहा गुलाम साहब ये क्या हुआ, मुझे पता है वो जो लैंडलाइन उठाने वाली आवाज होती है ना, वो वाली आवाज आई, तो मैंने कहा अरे ये गुलाम भाई बताइए कैसे हैं आप।
2: मैं ये कहूंगा कि हो मुबारक ऐसी हजारों ईदें, मसरतों की हर घड़ी आपको मुबारक हो।
0: अरे जज़ाकअल्लाह खैर, आपको भी ईद उल अज़हा की बहुत बहुत दिल मुबारकबाद।
2: अल्लाह ताला कुर्बान के मौके पर हमारी जानिब से तमाम आलमे इस्लाम को घर घर ये सारी खुशियाँ, उन सब की नेक तमन्नाएं जो ख्वाहिशात अल्लाह ताला उन सब की पूरी करे,
0: आमीन रब्बुल आलमीन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपके लिए भी सेम दुआ है, अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे गुलाम भाई।
2: बहुत शुक्रिया।
0: और बताइए गुलाम भाई क्या चल रहा है ईद पे, क्या किया आपने?
2: कल तो ईद के दिन बस ऐसे ही है ना, घर में भी मेहमान आते रहे, हम भी किसी घर में।
0: तो मेन्यू में क्या कोरमा था कि क्या था, मेन्यू बताइए जरा मुझे।
2: नहीं, कलेजी, मुझे कलेजी।
0: भाई साहब कलेजी सूती जा रही है, क्या बात है गुलाम भाई। वैसे आप हैं कहाँ से?
2: मुझे पसंद है जी, सुबह में बस यही होता है कि जब कलेजी बनेगी तो फिर मैं दोपहर की रोटी खाऊंगा जी।
0: ये क्या बात,
2: कलेजी तकरीबन पौने तीन तक बन गई थी।
0: अच्छा बन गई थी, तो आप मतलब आप कहाँ से वैसे गुलाम भाई?
2: मैं पाकिस्तान से हूँ, सुबह पंजाब से हूँ, मेरे शहर का नाम है गुजरांवाला।
0: हाँ अच्छा, गुजरांवाला से, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया। मैं पता है, मैं कल बात कर रहा था, जैसे अपने कलेजी की बात करी ना, मैंने कहा वो हमारी तरफ ना दिल के भी तिक्के बनते हैं, पर लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तुम दिल के तिक्के खाते हो? हमने कहा भाई होते हैं, आप क्या होते हैं उस तरफ, पाकिस्तान में होते हैं उस तरफ, जिस तरफ आप रहते हैं?
2: दिल के टिक्कों का तो मुझे नहीं पता,
0: नहीं पता ना। अरे भाई साहब मुझे लगा था गुलाम भाई
2: पंजाब में, असल में हम तो यहाँ दोहा में ही रहते हैं ना, तो बचपन से इधर ही हैं।
0: अच्छा,
2: तो वो पता नहीं बड़ी अजीब अजीब डिशे भी हैं वहाँ पे, तो हमारे पंजाब के अंदर ये चिड़े भी खाते हैं।
0: अरे यार आपने दिल के दिक्कत को अजीब से कह दिया, मुझे बुरा लगा गुलाम भाई।
2: मुझे नहीं पता खाते ही होंगे लोग वहाँ पे, तो गुजरा वाले के तो वो तो पहलवानों का शहर कहलाते हैं हमारा। हाँ, शहर
0: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बढ़िया। तो गुलाम भाई बताइए जरा पांच बीचेस के नाम गिना दीजिए मेरा भाई, क्या क्या हुआ?
2: अच्छा ये मैंने वैसे जो बीचेस देखे मैं उनके नाम बता दूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये मैंने देखा फवेरत बीच देखा हुआ मैंने,
0: ठीक है।
2: कतारा भी देखा हुआ है।
0: ठीक है जी।
2: और अलवाकरा तो हम कई दफा जा चुके हैं। जी, इसके अलावा एक सी लाइन बीच में भी जा चुके हैं।
0: ठीक है।
2: और समेत मामले।
0: ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप कितने, आप यहीं पे पैदा हुए ना, मतलब पैदाइशी आप कहीं की है?
2: नहीं, मैं तो पाकिस्तान पैदा, बच्चे यहाँ पैदा हुए।
0: अच्छा, बच्चे यहाँ पैदा हुए। तो कितने साल हो गए आपको कतर में?
2: बहुत साल हो गए।
0: अब तो टाइम हो गिनना छोड़ दिया
2: मैंने। हाफ
0: सेंचुरी
2: तक तो लगा।
0: अरे माशाल्लाह, हाफ सेंचुरी, क्या बात है गुलाम साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माशाल्लाह।
2: और इसी साल हुए,
0: इसी साल हुए। चलो मुबारकबाद।
2: अप्रैल 76 में आए थे हम लोग।
0: उफ, बाप रे, अच्छा माशाल्लाह गुलाम साहब।
2: अब्बा तो पहले आ गए थे, तो उसके बाद फिर अब्बा ने हम लोग को ला लिया। हम तो बहुत छोटे थे, तो यहाँ दोहा में ही बचपन गुजरा, तो पुराने दोहा की बहुत यादें हैं। तो वो तो एक दोहा तो गांव की तरह था ना पहले।
0: हाँ, ऑफ कोर्स। नहीं, पर मुझे अच्छा लगा गुलाम भाई आपसे बात करके।
2: जिंदगी के हर शोबे में जो माशाल्लाह जो कतर ने तरक्की की है, और यहाँ पे जो सहूलियात मिल रही है माशाल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। एक बहुत बड़ी नेमत।

0: को भाई ये मेरा फोन क्यों बजे जा रहा है, क्या परेशानी है? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम भाई, माफी चाहते भाई, अल्लाह की कसम भाई, मेरा मेरा हाथ में चाय थी, गाड़ी साइड में चाय ना मुंह निकली, इन्होंने आगे कांच पटक।
0: अरे यार क्या करे यार,
1: ये भाई ये तो पूछो कौन सी वाली बात पे मेरे पास,
0: कौन सी वाली बात बताओ
1: भाई, मेरा मजाक मत बन।
0: पता है मुझे आज क्लियर हुआ है कि लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। के सीरियस बात तो करेगा नहीं, ये सीरियस बात करेगा नहीं तो ठीक है, पर क्या मैं गलत थोड़ी बोला, भारी तो हूँ मैं भी,
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल बाहर हूँ, तो क्या मैं कबीर भाई को क्या
0: मैं कह रहा हूँ भाई मान नहीं रहे वो, अब मैं कंफ्यूज क्या हुआ ना जब जब अहमद ने बोला ना कि मेरा नंबर बताओ, मैं नंबर बताओ मैं
1: नंबर बताओ भाई, बंदा बेचारा सो के उठ के आया है, नंबर बताओ,
0: मैं टेंशन में आ गया कौन सा नंबर है
1: भाई, बोल भी रहा है वो मैं सो के उठ के आया हूँ।
0: भाई मेरे शो में आपको पूरा जग कहना पड़ेगा प्लीज बता दूं, क्योंकि मैं थोड़ा गड़बड़ हूं तो प्लीज थोड़ा जी, जी, जग जी।
1: नहीं कबीर भाई माहौल बनाते हो भाई, कसम से जब भी आते हो माहौल बनाते हो बस। मेरा कसम से मेरी अभी गाड़ी गंदी हो गई, अभी को साफ करनी पड़ेगी।
0: क्यों भाई कबूतरों से परेशान है गाड़ी?
1: अरे भाई चाय ना, चाय पिया था और मैं सामने दम मुंह से निकली चाय सीधा सामने का, कसम इतनी जोर से आता हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा, वैसे वैसे मेरी गाड़ी के साथ तो परेशानी है, एक कबूतर है उसकी, कबूतर की पूरी फैमिली को बड़ी मोहब्बत है मेरी गाड़ी से, आई डोंट नो
1: कुछ। हाँ तो भाई अल्लाह की तरफ से नेमत है तुम्हारे को।
0: ये जो नेमत बार बार साफ करनी पड़ती है ना वो मैं ही जानता हूँ। हाँ ये बहुत मेहनत का काम है। एक भाई ने मैसेज किया, आप जो लाइन पर है कह रहे हैं बीच वन बीच टू बीच थ्री बीच फोर बीच फाइव,
1: भाई आज तो
0: क्या किया जाए,
1: आज तो तुम्हारा वो कबीर भाई क्या क्या बना रहे लोग। हाँ। एक पहले एक मैं कॉलर का सुना, मैं वो मैसेज में आपको बोला था क्या,
0: हाउ क्यूट भाई, तो कौन सा वाला
1: कबीर भाई क्या दिख रहे फजील भाई कैसे?
0: हाँ क्या मैंने कहे ये तो यार
1: नहीं गलती तुम्हारी नहीं है भाई, गलती एक्चुअली क्या है ना ये टाइमिंग जो चेंज किया ना उसकी गलती है,
0: ये एआई की गलती है भाई, लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एआई से मुझे लग रहा है।
1: अच्छा 1 2 3 4 5 बीच नंबर,
0: ये जो 1 2 का 4 हो रहा है ना, और ये जो जस्सात भाई ने लिखा है ना बीच 1 2 बीच 3, भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपकी गाड़ी की स्टेयरिंग नोच के ले जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं, ये कैसा रिप्लाई है
1: नंबर प्लेट चेंज।
0: तो बताओ आसिफ भाई क्या बीचेस कौन कौन से यहाँ पे घूम लिए भाई?
1: भाई मैं अभी तक तो सिर्फ 3 बीच पे गया हूँ मैं।
0: अच्छा कौन कौन?
1: बेलिन बीच पे गया हूँ मैं, वकरा बीच पे गया हूँ मैं, और कतर बीच पे गया हूँ।
0: अच्छा
1: कतारा बीच,
0: और किधर जाने का प्लान है?
1: नाम दो नाम तो मेरे को याद नहीं भाई।
0: कोई गल नहीं भाई, 3 नाम ले लेंगे, इतनी मासूमियत से आपने जवाब दिया बनता है भाई।
1: अरे भाई एक अलखोर है ना, एक अलखोर बीच है भाई।
0: हाँ हाँ इतने दूर गए थे
1: बीच है, याद आया। अरे कॉर्नेस बीच 5 हो गए ना भाई।
0: हाँ हो गए, क्या बात है, वेरी नाइस, क्या बात है
1: भाई। कबीर भाई शाहिद कपूर हमारे।
0: एक तो कह रहे हैं आपकी आवाज ही मिलती है फजील भाई से। अरे भैया यार क्या बात है यार,
1: वही वही ये गलती हो गई भाई, फजील भाई को समझ के फोन लगा दिया, बोले फजील भाई सलाम वालेकुम फजील भाई।
0: ये जिस दिन होगा उस दिन बता रहा हूँ, फड्डे होंगे उस दिन, आदमी बेचारा शरीफ होके बैठा हुआ है।
1: ऐसा भी हो सकता है भाई, कोई सरवर भाई जैसा भी तुम बोले, सरवर भाई को ये बोल दो वो बोल दो, कोई तुम्हारे को बोल दिया और फजील भाई क्या हालचाल।
0: फिर मैं भी खेल खेलूंगा, डोंट वरी, हमारे पास
1: आएगा भाई, आएगा, मैं बैठा उस शो में, अभी कोई ना कोई आएगा, अल्लाह का बंदा बोलेगा फजील भाई
0: मुझे
1: खराब हो गई तुम्हारी,
0: क्योंकि आसिफ भाई ने मेंशन किया, तो जितने लोगों को अभी तक लगता है कि मैं ही काकी हूँ, प्लीज ये अपने ये वहम हटा दें अपने दिमाग से, प्लीज मैं काकी नहीं हूँ। थैंक यू, ठीक है आसिफ भाई, आपका नाम रजिस्टर कर लिया मैंने मेरे भाई। वैसे तो आप जीत चुके हैं, तो आपका बस जवाब ही है ठीक है मेरे भाई, ख्याल रखिये, नसीम साहब बिल्कुल आपका नाम आपने जो लिखा मैंने पढ़ लिया। एक ओएस भाई मैसेज किया, जी भाई आपकी एंट्री हो चुकी है। एक मैसेज आया यूसुफ भाई, यूसुफ भाई आपको भी शुक्रिया, एक कॉल आ रही है साथ में, अस्सलाम वालेकुम। लेट मी गेस योर नेम, अमीन
2: जी।
0: यस अमीन, टेल मी बीचेस के नाम गिनाओ मुझे।
2: जैसे बहुत बीचेस है,
0: 5 गिना दो, बस 5 गिना दो।
2: ठीक है, अलखोर, सुमेश्मा,
0: ओके,

0: और कथारा,
1: ओके,
0: सीलेर,
1: ठीक है,
0: मशेद,
1: ओके. और अमीन, कल क्या, कल कितनी कितनी कमाई हुई, ईदी कहाँ तक पहुंची, दिन खत्म होने तक
0: पहुंची है अभी? और
1: अभी भी चल रहा है मामला? अच्छा, माशाल्लाह. 500 क्रॉस हुआ कि नहीं?
0: नहीं,
1: 500 के आसपास है, 500.
0: जी.
1: अच्छा, चलो मैं दुआ करता हूँ क्रॉस हो, अच्छी बात है भाई. अमीन के लिए दुआ करें, उसकी अभी ईदी का मीटर चल रहा है, चलता रहना चाहिए. ठीक है अमीन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. हाँ, थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू वेरी मच.
1: ओके, और अमीन इस्लाम के बाद एक मैसेज है, मेरी एंट्री एड हो गई. जी, सबकी एंट्री, आपका मैसेज भी खोला मैंने, बिलाल अंसारी साहब, आपने इतने खूबसूरत तरीके से बाकायदा बीचेस के नाम के आगे छाते लगा के दिया है, आपका नाम सबसे पहले. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नदीम वासी बात कर
1: रहा हूं. नदीम साहब, नदीम साहब किधर हैं, कैसे हैं, क्या चल रहा है?
2: अरे कुछ नहीं चल रहा भाई, बस गोश्त का इंतजार, खाना पकाना, पीना, ये अभी इंतजार करना चाहिए ना,
1: इंतजार करना चाहिए
2: और के लिए.
1: अच्छा,
2: और आना चाहिए.
1: तो कल क्या पाए सूते गए, नहारी गए, क्या कल क्या रहा माहौल?
2: नहीं, सादा मटन और चिकन बस.
1: सादा मटन क्या होता है, कुछ तो मटन का बनाया होगा ना?
2: हाँ, नहीं मैंने मतलब नहारी टाइप नहीं, मटन का जो ग्रेवी और कढ़ाई टाइप इस तरह के.
1: अच्छा,
2: नहारी थोड़ी मुश्किल काम हो जाता है ना वो तो.
1: हाँ, वो थोड़ी थोड़ी मेहनत का काम.
2: मैं इतना कारीगर नहीं.
1: अच्छा, ठीक है ठीक है. नदी मैं बताइए बीच के नाम गिनाइए फिर.
2: बीचे जी, अलखोर बीच, शमशमा, कतारा बीच, सी लाइन, वाकरा बीच, ये अपना दोहा कॉर्निश.
1: आपका फेवरेट कौन सा है वैसे?
2: वैसे फेवरेट मुझे दोहा कॉर्निश सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे करीब है, मैं वॉकिंग डिस्टेंस से चला जाता हूँ, तो यही सबसे अच्छा लगता है.
1: यही अच्छा लगता है. ओके, ठीक है ठीक है, फेयर इनफ. ठीक है नदीम भाई, आपका भी जॉब मैंने ले लिया, थैंक यू सो मच. ओके जी, अल्लाह हाफिज. और नदीम अब्बास के बाद मैसेज किया है जुल्करैन साहब, वालेकुम अस्सलाम. देन एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम. अमन भाई भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया. एक और मैसेज है मसईद, ओके, एक मैसेज है, कैसे हैं भाई, ठीक है, इस टाइम ही आ जाओ. इसी टाइम आएंगे भाई, क्या टेंशन है, इसी टाइम आया करेंगे इनफैक्ट. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, की हाल है, कलेजी भुनी और पराठे.
1: अरे क्या बात हो गई. महंगा भी मेन्यू में और भी कुछ पड़ा जाएगा. अरे भुने हुए दाल, दाल मखनी, बटर चिकन, आगे का मेन्यू तो बताओ.
3: तो लल्ली निहारी.
1: लेट हो गया बताने में, इतने में तो आदमी को पहले ही पेट भर जाएगा मेन्यू सुन के. क्या नाम है आपका?
3: जी मैं सैयद फैजल बात कर रहा हूँ.
1: जी सैयद फैजल भाई, कैसे हैं मेरा भाई, ईद कैसे रही आपकी, ईद मुबारक.
3: अभी तो मैं चारों दिन आपको कॉल करके परेशान करूंगा कबीर भाई.
1: भाई चार दिन से
3: मिला है मुझे,
1: चार दिन से पेट नहीं भरता साहब, थोड़ा और करिए कॉल, ऐसी क्या बात हो गई, उसके बाद भी
3: आप मौका दीजिए, हम आपको चांद पे पहुंचाएंगे.
1: नहीं भाई, इतने चाहिए, ये पता नहीं प्यार था कि धमकी थी, चांद पे पहुंचा दूंगा. अरे
3: क्योंकि आज तो आपने बोली दिया कि मैं बाहर से बात कर रहा हूँ.
1: हाँ तो ठीक है, चांद में. अच्छा ठीक है ठीक है, पर जुड़े रहिएगा शो में, उसके बाद भी, ईद के बाद भी इंशाल्लाह, एक तारीख से वैसे भी शाम में हूँ मैं. तो बताइए फैजल साहब, कौन कौन से बीचेस हैं आपकी नज़र में ये पांच?
3: जी मैंने तो मैसेज किया, लेकिन आपने शायद मेरा मैसेज देखा नहीं.
1: मैंने मैसेज तो देखे हैं, एक्चुअली में इसमें नंबर होगा आपका, इसमें नाम नहीं आता ना, और अगर मैंने मैसेज देखा तो आपके जो, देखो हम क्या करते हैं, आपको सिंपल प्रोसेस बताऊं, जब कोई मैसेज करता है तो उसमें नाम तो आता नहीं है, तो हम नंबर साइड में लिखने के लिए लोग रखे हैं, वो नाम वो लिखते हैं, और जैसे कि वो होता है रेफरल ड्रॉ निकलता है.

0: कजनों के साथ अक्सर कर लेता हूँ।
1: अच्छा सही जा रहे हो, सही जा रहे हो भाई। ये स्कैम फिट है, ओके रिपोर्ट है इसकी। ठीक है। और बताइए भाई, आज का प्लान है ईद का?
0: आज का तो अभी कुछ प्लान नहीं है, बस जा रहे हैं थोड़ी देर रूम, उसके बाद प्लान बनेगा इंशाल्लाह बीच पे जाने का। Okay. अलखोर निकलने वाले हैं।
1: अच्छा इंशाल्लाह, ठीक है मेरा भाई, एंजॉय करें बर्गे।
0: क्योंकि क्योंकि मटन जो है वो मैरिनेट होके रखा हुआ है बेचारा इंतजार में कि कब ले जाओगे।
1: क्या बनने वाली है उसकी, सीखे उतरने वाली है?

0: भी की हुई है भाई।
1: अरे जालिम जालिम हो तुम जालिम, ठीक है और
0: आप
1: मत।
0: बिल्कुल आ सकते हो, आपके लिए खुली है, हम जा रहे हैं अलखोर पिच पे
1: हाँ।
0: शाम में 7 बजे के बाद।
1: क्या बात है मेरे भाई, ठीक है एंजॉय करो मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी एंड इंशाल्लाह आपका जॉब मेरे पास आ चुका है, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए भी, थैंक यू।
0: चले ठीक
1: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और फैजल साहब के बाद मैसेज किया है ये अमन भाई ने, अमन भाई भी क्या कह रहे हैं, अमन भाई कह रहे हैं एक सेकंड, मेरा नाम भी डालिए। हाँ जी आपका नाम है, कोई गाल नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ जिन्होंने भी मैसेज किया आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। एक मैसेज है, नो टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, आई वर्क ऑन ईट डे ऑल्सो, बीजेस का नाम पता करे क्या फ़ायदा, जब जा ना सके। ये आप मुझे इमोशनल कर रहे हैं अभी, ये बेचारे जा नहीं पा रहे तो फैसल साहब मुझे नाम बता रहे हैं। अरे इंटरनेट का थोड़ा इस्तेमाल कर लो, है मत जाओ फैसल भाई, मत जाओ, मैं तो मना कर रहा हूँ आपको, पर नाम बता दो। ऐसी बातें मत करो। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, ईद मुबारक।
1: ईद मुबारक मेरे भाई को, क्या हाल है अमन भाई के?
2: जी मैं ठीक ठाक हूँ, मैं निकला था सुबह से अंदर ही था, इतना हेडेक हो रहा था, मैं सोचा चलो लुलू में जाके कुछ ब्रेड वगैरह लेके था, आपके बाद सुनी हेडेक ही खत्म हो गया।
1: अरे रे रे ये, अरे डॉक्टर खुद सब्सक्राइब कर रहे हैं आजकल ये चीज, आपको क्या बताएं।
2: अच्छा आप इस टाइम पे आ रहे हो?
1: अभी ईद तक इस टाइम पे, फिर सुबह एक दिन शो है 31 को और उसके बाद कंप्लीट शाम में।
2: हाँ जी आपने पहले बताया था, अपडेट किया था
1: मुझे। जी जी तो यही है,
2: स्टोरी तो नहीं निकली ना मेरे हाथ से कहीं?
1: ना जी आज स्टोरी है ही नहीं, कोई गल नहीं वीर जी, कोई स्टोरी नहीं है, 3 दिन कोई स्टोरी नहीं है, उसके बाद सवेरे है फिर उसके बाद फिर शाम में।
2: जी ओके ओके, मैंने आपको बीचेस नेम लिख के दिए 5।
1: हाँ जी पढ़ लिए मैंने, आपका फेवरेट बीच कौन सा है वैसे?
2: मैंने वकरा फैमिली बीच में गया था मैं फैमिली के साथ।
1: अच्छा अच्छा, और अकेले के लिए कहाँ, अकेले के लिए कौन से बीच पे जाते हो अमन भाई, बता दो, डरो नहीं।
2: अकेले वकरा में ही है, वो साथ में है बैचलर बीच।
1: बैचलर बीच वहाँ क्या करने
2: गया था मैं? फ्राइडे बीच में गया था।
1: अच्छा
2: वेस्ट बे फ्राइडे,
1: ये बैचलर बीच पे क्या करने गए थे आप? अब आप कहेंगे लहरों के पास बस बैठने के लिए गया था, यही ना?
2: नहीं नहीं ऐसे ऐसे मैं नहीं बोल रहा थी, एलर्जिक हूँ मैं।
1: ओ भाई साहब बात ही खत्म, एलर्जिक हूँ जी
2: लहरों के बीच में तन्हाई में, ये चीजें मुझे एलर्जी देती हैं।
1: ओफ देखो तो सही। अच्छा ठीक है मन भाई,
2: एक्चुअली मैं गया था वेस्ट बे बीच में, मेरे फ्रेंड्स ने इनवाइट किया था, फिलिपिनो ग्रुप था।
1: अच्छा
2: वहाँ पे मुझे इनवाइट किया था उन्होंने, मेरे साथ ही काम करते हैं।
1: क्या बात है, आपको इनविटेशन आ रही, बहुत बढ़िया यार ये तो।
2: अच्छा जी
1: वेरी नाइस वेरी नाइस।
2: जब हमारी वीडियो देखते ना के साथ बैठे हुए कि वो मुझे पहले में बोलते हैं आप तो सेलिब्रिटी हो, मैंने कहा नहीं मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, जो साथ में बैठे हैं वो सेलिब्रिटी हैं।
1: कमाल है वीर जी, मतलब मैं ये तो अलग ही कल्चरल एक्सचेंज चल रहा है, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया है, ऐसी रही है अखलाक अच्छे रखिए, चलता रहेगा। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, थैंक यू, और
2: थैंक यू सो मच कबीर भाई, थैंक यू।
1: ओके मेरे भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो इनके बाद है ये आसिफ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपके साथ हूँ इसमें। वैसे अस्सलाम वालेकुम सर, देखो सर्वर मत बोलो कबीर भाई, ठीक है। आई एम फ्रॉम शानिया, माय नेम इज़ अमीना खातून, जवाब है। अच्छा ठीक है जवाब दे दिया आपने। एक और कॉल आ रही है, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम,
3: हमारे प्यारे भाई है ये कबीर भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: अरे भाई साहब पहले से ही बात करते हुए आ रहे थे क्या? मैं कहा ये क्या हुआ?
3: सुन रहे भाई लाइव सुन रहे, बड़े भाई को लाइव सुन रहे भाई,
1: क्या हाल है भाई के?
3: बड़े भाई को लाइव सुनना खुशकिस्मती है भाई,
1: भाई के लिए आ रहे ये तो भाई सेहत के लिए भी अच्छा भाई, एकदम दिमाग चौकस चलता क्या?
3: क्या बात कर रहे हैं कबीर भाई, बिल्कुल हैदराबादी सबके तरफ से दिल से ईद उल अज़हा मुबारक।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तमाम हैदराबादी लोगों जो सुन रहे हैं सबको स्पेशल ईद मुबारक, क्योंकि भाई ने बोल दिया है, अब हैदराबाद मेंशन कर दिया तो बोलना पड़ेगा।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे से अल्फाज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू भाई थैंक यू।
3: और कबीर भाई कैसी है मिजाज वगैरह, क्या है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बस आप जैसे बुजुर्ग लोगों की ईदी का वेट कर रहा हूँ भाई, सब तो बढ़िया चल रहा है बाकी।
3: जो इंसान जब इंसान आपके जो है ना अच्छे बुरे में साथ देने के लिए तैयार है, तो ईदी के क्या मायने रखे?
1: आप टोपी मत बनाओ, टोपी मत बनाओ यार, ये सीधी सीधी बात है। अच्छा तो
3: आपका फौरन का नंबर डाल दीजिए भाई जो हमसे
1: हो। अरे अरे अरे भाई अरे, अब ये बात को या तो इमोशनल कर देते हो, टोपी बना देते हो, बीच का रखो भाई, अभी एकदम से इमोशनल कर दिया आपने।
3: ये मोहब्बत से कुछ भी निकल सकते अल्फाज,
1: अरे मेरा भाई
3: कहना पड़ता
1: गलत लाइन में हो कुछ, आपको होना चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर।
3: नहीं नहीं भाई, मैं आपका अभी सुन रहा था, आप बोल रहे थे भाई के बारे, भाई से कुछ बोल रहे थे, कि आप इक्कीस से 31 तक रहेंगे, फिर उसके बाद जो है शाम के शो में रहेंगे
1: जी भाई।
3: तो जरा दिल को तकलीफ हो गई, मैं बोला बात कर लेंगे भाई से 31।

0: तकलीफ क्यों
1: मैम का? मैं आप तो शाम में आते हैं, शाम में अपने को टाइम मिलता नहीं मिलता नहीं मालूम है।
0: अरे
1: तो
0: रे रे
1: तो रहते नहीं आप, तो इसीलिए बोल के मैं बोला चलो अभी बात कर लेंगे भाई से, बोल के कॉल कर लिया आपको
0: भाई। लेकिन वो थोड़ा आवारा गर्दी करें, शाम में निकलते निकलते सुन लेंगे गलती से, और तो क्या है।
1: नहीं आपको सुन सकते, कभी मौके पर ऐसा रहेगा कि फोन नहीं कर सकेंगे तो इसीलिए बोल के। मगर क्या है वो दिन, वो दिन और वो जो है ना लम्हे बहुत मिस करेंगे आपको।
0: हाय हाय हाय वो दिन वो लम्हे
1: मेरा भाई। जरूर जरूर सो मिस करेंगे, क्योंकि आपका जो अंदाजा रहता ना कबीर भाई स्टोरी के बारे, अरे ठहर रहे वो जो स्टोरी,
0: अरे ठहर रहे
1: नहीं नहीं गाड़ी गुजर रहा था मैं,
0: ये अच्छा था बीजू ने। अरे ठहर रहे अच्छा ठीक है।
1: नहीं आपका जो बोलने का अंदाजा रहता ना कबीर मम्मी द्वारा, कबीर फैमिली आप किसी को चीज पहुंचाने की कोई हमें वो ही नहीं है, आप सुनते रहिए रेडियो एफएम कबीर द्वारा कबीर। लास्ट में जो शेर की डगार की आवाज आती नहीं,
0: शेर की डगार। अरे नहीं भाई आपकी मोहब्बत है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल किया।
1: लव फ्रॉम हैदराबाद कबीर भाई,
0: लॉट्स ऑफ लव भाई को, क्या
1: हैप्पी ईद,
0: ख्याल रखिए, आप भी ख्याल रखिए,
1: खिदमत के लायक है, भाई का नंबर सेव करो, कॉल करो,
0: डन है भाई एकदम, क्या बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू,
1: ओके मेरे
0: भाई, अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम। अरे ठहर रहे ये मेरे दिमाग में रह जाएगा इस पूरी कॉल में। अच्छा तो 5:55 हो रहे हैं, ये तो किसी साबुन का नाम लग रहा है, 5:55 आज ही खरीदिए। एक कॉल आ रही है, रुकिए जरा। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी, आपका नाम? ये दोबारा, ये दोबारा आपका नाम?
2: मैं याबुल बशीर बात कर रहा हूँ
0: जी। भाईजान बताइए कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सब सुनाए कैसे?
0: बस बढ़िया एकदम। ईद कैसी जा रही है आपकी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह में तो आपको मालूम है हम लोग का यही ईद का जो दो ईद आते हैं इसी में हम लोग खुशी मनाते हैं, और हम लोग क्यों बाहर का मुल्क में रहते हैं तो यही ईद की वजह से ही हम लोग को जो है ना खुशी बन जाता है।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरे भाई। और दावत वावत हुई कुछ? कुछ बढ़िया दावत करी मिलजुल के? नहीं
2: छोटी मोटी मिल जाते हैं।
0: अरे छोटी मोटी ठीक है, बड़ी बड़ी दावत क्या दिक्कत है, छोटी मोटी दावत है अच्छी चीज होती है।
2: बड़ी दावत का मतलब है जब उधर 100,000 आदमी का ये बन जाता है तो उसमें तो दावत अलग बात है, और बाकी जो है ना छोटी मोटी घर में जो हम लोग जाते हैं ये तो है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बढ़िया है।
0: अच्छा मैं जल्दी से बता दीजिए फिर 5 बीचेस के नाम बता दीजिए मेरा भाई, कौन कौन से बीचेस हैं?
2: उमसैद बीच, पत्रा बीच,
0: ठीक है,
2: कतरा बीच,
0: ठीक है,
2: सिमाइस्मा, इनलैंड बीच, अलखोर बीच,
0: ठीक है, ओके डन हो गया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए, जजाकल्लाह। और अगर आप जीतेंगे तो कॉल आ जाएगी, ठीक है, ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो 5:57 हो रहे हैं, कुछ और मैसेजेस हैं मेरे पास, आप फिक्र ना करें, आपके मैसेज पे अगर ये नहीं आया है, टिक नहीं आया है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ बताने हैं बीचेस के नाम, 5 बीचेस के नाम अगर आप बता देंगे तो बस इतना है कि आपका नाम कम से कम आ जाएगा उसमें, ओके। एक लास्ट कॉल की जगह है हमारे पास, गुंजाइश, अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम बढ़िया, आपका नाम?
3: मुनव्वर हुसैन।
0: मुनव्वर भाई कैसे हैं? मुनव्वर भाई ईद मुबारक भाई को।
3: ठीक है, ईद मुबारक, ईद मुबारक
0: जी भाई, कैसी आ रही है ईद?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रही है।
0: बढ़िया जा रही है, ठीक है, कहाँ जा रही है
3: आपकी, कैसी जा रही है?
0: मेरी बड़ी जा रही है, मैंने कहा ऐसी वैसी जा रही है, मैंने कहा ऐसी वैसी कहाँ जा रही है, ठीक है। मुनव्वर भाई तो फिर बताते भाई 5 बीचेस के नाम गिना दीजिए।
3: एक बीच है कतारा, दूसरा वाकरा,
0: ठीक है,
3: बाप बीच,
0: ठीक है,
3: लाइन, और एक अजरबैजान करके कुछ जैसा बीच है, पता नहीं, हम एक बार गया था,
0: सही जगह गए हो, ठीक है। और
3: ये सुमाल बीच,
0: ठीक है, ओके डन है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए भाईजान, जज़ाकअल्लाह, ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो भाई को भी दोबारा थैंक यू सो मच। और ये तीसरी मरतबा एक भाई ने मुझे मैसेज किया है, पता नहीं कि उन्होंने मुझे कहाँ देख लिया, भाई किसी शादी में किसी और को दिख के आए, वो कह रहे मैंने आपको ही देखा है शादी में। अरे मैं कौन सी शादी में दिख गया तुमको, टेंशन दे रखी है, मैं मेरा कोई बहरूपिया घूम रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा। एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आप शाम में ही फिक्स हो गए हैं? नहीं अभी तो फिक्स, मैं कोई खम्मा हूँ फिक्स हो गया हूँ? आप क्या शाम में फिक्स हो गए हैं? ये आपके सर पे क्या लाइट लगाई जाएगी क्या, ब्लू कलर की? मैं शाम में फिक्स हो गया हूँ या हो गए लिया हूँ तो, बट एक दिन अभी सुबह बाकी है, 31 तारीख की सुबह, उसके बाद फिर इवनिंग में फिक्स हो गया हूँ। फिक्स हो गया, ओके। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, FM 107 Qatar। कुछ देर में नाम अनाउंस करने वाला हूँ मैं विनर का, सो आई नीड सम टाइम ऑल्सो, क्योंकि हमें ये हमारे रैंडमाइजर में सारे के सारे

नंबर्स रन इन करने पड़ेंगे, देन आई विल गेट अ नेम आउट ऑफ इट. सो प्लीज इंतजार कीजिएगा उसका एंड पार्टिसिपेट करते रहिए. लास्ट चांस फॉर यू टू पार्टिसिपेट, सिंपल आपको ये बताना है कि 5 बीचेस के नाम कतर में. दैट्स इट, कुछ और बताने की कोई लोड नहीं है. सो 666-22107 जवाब देके स्पेस छोड़ के अपना नाम, या अपना नाम लिख के स्पेस देके जवाब दीजिए, विच एवर वे यू फील लाइक. बट साथ में और भी बातें कर लीजिए. ईद कैसी जा रही है आपकी, पहला दिन कैसा गया, क्या किया, दावतें निपट गई कि दावतें हैं, क्योंकि आज भी बहुत घरों में कुर्बानियाँ हैं, तो जिनकी कुर्बानी बच गई थी कल नहीं कराई, आज कराई है, तो वो ज़रा बताएं. एंड मैं बस एक छोटे से इस ब्रेक के बता रहा हूँ, जाना आपने है ही नहीं. बेस्ट जगह पर हुआ, कहाँ जाओगे, रुको.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: FM 107 टाइम चेक।
0: मॉर्निंग में तो था कुछ राइम करने के लिए, अभी तो नहीं है। 6:01 हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर FM 107 पे। एंड अभी मैं विनर का नाम अनाउंस करने वाला हूँ। कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरों की तरफ से 500 कथरी रियाल का वाउचर है। जो ये जीतेगा उसका नाम कुछ देर में अनाउंस होने वाला है। और अभी के लिए ईद की वाइब बनी रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो अभी आपकी देखिए वॉल्यूम भी बढ़ेगी गाड़ी में, आप अचानक से वॉल्यूम बढ़ा देंगे एंड लिटरली इस वाइब में मेरे साथ रहेंगे। 666-22107 लास्ट चांस, बता दीजिएगा ईद के इस कॉन्टेस्ट में कतर की 5 बीचेस। आपका नाम, स्पेस देके जवाब एंड देन तैयार हैं। 6:02, मैं दोहा वाला कबीर, मेरी आवाज को बोल के गए वो शेर की डकार। कोई नहीं, ये भी तारीफ ही है, एज लॉन्ग एज उसमें शेर है। सुखविंदर पाजी विशाल अदलानी का म्यूजिक

0: عيد مبارك عيد مبارك. हाँ जी, तो 6 बज गए, 7 मिनट हो गए हैं दो हवाला कबीर एफएम 107 पे, और डैन ट्रैंड के बाद अब वक्त है बताने का कि कौन है विनर। तो सबसे पहले जो विनर है उनको मैं कॉल लगाने जा रहा हूँ। नंबर मेरे पास आ चुका है, इस नंबर की लास्ट में क्या भाई, एक सेकंड, नंबर की लास्ट, ओके। सो अब लेट मी कॉल द विनर एंड हमारे रैंडमाइजर के बाद फाइनली जो मुझे नंबर मिला है ये कॉल, अगर इन्होंने नहीं उठाई तो इनका इनाम गया, और अगर ये पहले जीते हुए हैं या जीती हुई हैं तो भी इनाम गया, क्योंकि एक ही इनाम मिल सकता है पूरे ईद के किसी भी शोज में। सो देखते हैं कि क्या होता है। कॉल तो चली गई है। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम?
1: अस्मा खतुन।
0: अच्छा, तो क्या क्या नाम बताया आपने?
1: अस्मा खतुन।
0: अच्छा, तो अस्मा जी, आप ने पार्टिसिपेट किया था आज?
1: जी।
0: आपने किया था पार्टिसिपेट या फिर किसी और ने किया था पार्टिसिपेट आपके घर से?
1: मैंने भी किया था।
0: अच्छा, और आप में से कोई पहले जीत चुका है क्या किसी भी शो में?
1: नहीं,
0: के?
1: नहीं।
0: आर यू श्योर? मुझे लगा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुकी हूँ। अब मेरी बात अमीन, अच्छा ये अमीन का नंबर है ना, ये अमीन से बात होती मेरी। हाँ, नंबर पे। हाँ, तो कहाँ पर है वो? अरे उसको फोन पे लाइए, वो उसकी मेहनत है, उसने पार्टिसिपेट करके जीता है, वो किधर है? इधर हो। अरे अमीन कॉन्ग्रेचुलेशंस, थोड़ा खुश हो जाओ। अरे जीत गए। हाँ जीत गए तुम। यस। अरे थोड़ा और खुश, थोड़ा और खुशी। यस, जोर से यस।
1: अच्छा आपका दावत मिलेगी।
0: अरे अच्छा, जीता दे तभी दावत मिलेगी, वैसे भी पूछना चाहिए था ना। पर कॉन्ग्रेचुलेशन,
1: आपने जीता है तो आपको भी दावत मिलेगी।
0: अरे तुम्हारी किस्मत है, तुमने पार्टिसिपेट मुझे पता है काफी वक्त से किया था, आज तुम्हारा नाम फाइनली निकल आया। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कुमार एंड ट्रेवल रेस्टोरेंट की तरफ से तुम्हें 500 कथी रियाल का फूड वाउचर है, एंड ऑल्सो हमारी टीम तुमसे कॉन्टेक्ट करेगी, तो सब्र रखना एंड ईद मुबारक। ठीक है, ख्याल रखो अपना। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो हमारे पहले विनर बन चुके हैं अमीनुल इस्लाम, यकीन नहीं हुआ उसे। तो पहले आपकी एक्साइटमेंट सब कुछ सब मैटर करती है। आई नो लॉट ऑफ पीपल डोंट एक्चुअली एक्सपेक्ट कि हमें जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन मिलता भाई, ऐसी बात नहीं है। एक मैसेज, इस्लाम ईद मुबारक मेरे प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, आपको भी ईद मुबारक। ये राव मुस्तफ़ा भाई ने मैसेज किया, जजाकल्ला। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम।

उम्मीद मुबारक भाई जान। वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, मुबारक ही मुबारक। एक दो मैसेज, थैंक यू सो मच। अब अगला सवाल जो आने वाला है उसके बाद दूसरे विनर की बारी आएगी, सो डोंट वरी। दूसरे विनर तक पहुंचने से पहले सवाल भी तो आएगा। सवाल आसान होगा, मुश्किल होगा, कैसा होगा मुझे नहीं पता, कबीर बताएंगे, मुझे कुछ नहीं पता है। साफ सीधी बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपका नाम नहीं दिख रहा मुझे, पर चलेगा। अफगान चले अभी असरार साहब के बाद। जलेबी और दही का कॉम्बिनेशन आए हाय हाय हाय। मैं कहा जी मिठे में आज ही खाया जाए। 6:10 मिनट।

हाँ जी, गुड इवनिंग, ये दोबारा का अफगान जलेबी। देखो आई नो कुछ मैसेज मेरे पास आने लगते हैं जब उनका नाम नहीं आता है ना, आई नो कि बहुत बुरी फीलिंग आती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपके साथ चीटिंग कर रहा है। मुझे ही गवारा नहीं करेगा ये, मेरा काम है, मेरा जमीर जो है एकदम सो जाएगा अगर मैं चीटिंग करने लग जाऊंगा। सो डोंट वरी, ये जो पूरा गेम होता है, कॉन्टेस्ट होता है, इट इज़ बेस्ड अराउंड लक। और ये भाई सब सरकारी रेडियो स्टेशन, आप समझ रहे हैं, एक चीटिंग मतलब मेरे को ही भारी पड़ेगी, आपको नहीं। तो डोंट वरी, इट इज़ फेयर एंड स्क्वायर, एंड जो भी जीत रहा है उसका उसकी किस्मत है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मैं डिसाइडर नहीं हूँ कि मैं नाम पिक करके निकाल दूँ और जिता दूँ। देर आर मल्टीपल पीपल जो डिसाइड कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के, एंड जैसे कि आप बाहर देखते हैं जब रेफल ड्रॉ निकलता है, बिल्कुल वैसे ही है, पर्ची निकालने जैसे ही, और इसलिए एक शख्स की पर्ची निकलती है और वो जीत जाता है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अब्दुल करीम भाई जो हैं वो मुझे मैसेज करके कह रहे हैं, क्या यार कभी हमें भी कॉल कर लिया करो, हमारे किस्म में कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे हाथ में नहीं है गुरु जी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो बुरा मन ना माना करें, आपका भाई हूं यार, मेरा बस चले तो सबको जिता दूंगा, है ना। अब अगला सवाल है, तो ये

सवाल पर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बता दूं सवाल, सो एफएम 107 पर मैं दूहा वाला कबीर, एंड ये सवाल एक्चुअली में एक रिडल है, बहुत छोटी सी पहेली है, ये आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मेरे पास शहर है मगर लोग नहीं, दरिया है मगर पानी नहीं, जंगल है मगर दरख्त नहीं, मैं क्या हूं? पहेली दोबारा से सुनिएगा, ठीक है? बेस करके सुना रहा हूं आपको, आवाज को गौर से सुनिए। मेरे पास शहर है मगर लोग नहीं, दरिया है मगर पानी नहीं, जंगल है मगर दरख्त नहीं, क्या है ये? 666-22-107 पर आपको बताना है, 666-22-107 पर। देखो आसान भी है और थोड़ा सा सर्च भी करना पड़ सकता है, इट्स अप टू यू, जितना आसान बना सकता था उतना मैंने बना दिया है, ठीक है? आई डोंट थिंक इतना कुछ मुश्किल है, मतलब बहुत ही आसान है, ठीक है? बाकी मैसेज करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। मैं दोहा वाला कबीर, अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक और आवाज। हाँ जी, 6:15 जिंदा बंदा।

0: देखो जी बड़ा ही आसान।
1: अपना रुकना चलने दे।
0: तो जिंदा बंदा को ब्रेक लगाते हैं, मैं आपको बता दूं कि दूसरा सवाल क्या है जल्दी से, क्योंकि फिर अजान का वक्त हो जाएगा। एफएम 107 पर मैं दुहा वाला कबीर आपसे जो दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, ये ध्यान से सुनिए क्योंकि एक पहेली है ये। ठीक है, शुरू करूं? ओके। मेरे पास शहर है मगर लोग नहीं, दरिया है मगर पानी नहीं, जंगल है मगर दरख्त नहीं। एक और बार हा? मेरे पास शहर है मगर लोग नहीं, दरिया है मगर पानी नहीं, जंगल है मगर दरख्त नहीं। ये है जी पहेली, इसको सुलझा लीजिए। बाकी जी कोई गल नहीं, मिलते हैं फिर कुछ देर में। एक मैसेज, सर मैं कॉल नहीं कर सकता लेकिन मैंने एसएमएस से बता दिया। अरे कॉल करना इज नॉट नेसेसरी, मैं बताऊं आपको, कॉल नहीं भी करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम।

से गाड़ी में चौकड़ी मार के बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ मैसेज पे रिप्लाई कर दो, वो काफी है। सो 666-22-107 पर आप आराम से बता दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है, मेरे पास शहर है मगर लोग नहीं, दरिया है मगर पानी नहीं, जंगल है मगर दरख्त नहीं, ये आपने बता देना है। और कुछ देर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मगरिब के बाद, तो जाना आपने है ही नहीं, मैं दुहा वाला कबीर आपके साथ, एंड मैसेज करते रहिएगा, पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, स्टे ट्यून्ड।

0: या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हाउसफुल ईद ओनली ऑन एफएम 107। देखिए चलिए काम करते हैं, मैंने तो वैसे बता दिया पहले आपको जी दूसरे सवाल के लिए, बिकॉज यू विल गेट टू विन 500 का 3 रियाल का कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट का वाउचर। लेकिन मैं सवाल दोहरा दूं क्योंकि कुछ लोगों से पहली छूट गई है। देन आई हैव समथिंग फॉर द पठान जनता जो मेरी पठान भाई हैं। तो सवाल गौर से सुनिए, पहली है ये, मेरे पास शहर है मगर लोग नहीं, दरिया है मगर पानी नहीं, जंगल है मगर दरख्त नहीं। 666-22107 इस पे नाम और आंसर। शाउट आउट टू ऑल द पठान भाई जितने मुझे सुन रहे हैं, इत्तफाकन ये प्लेलिस्ट में सामने ही आया तो मैंने कहा क्यों हटाऊं। ये लो भाई, इसके बाद मिलते हैं 6:25।

0: प्लीज फिर देखो कुछ गाने समझ में ना भी आए वाइब होती है, ये गाना मेरे लिए वैसे ही है। मुझे इतना पता है कि मैं जब भी किसी को पछता बोलते सुनता हूँ मुझे लगता है बाप रे यार कितनी डिफिकल्ट है, मगर इतनी फ्लो वाली लैंग्वेज है ना, एकदम मिठास एकदम फ्लो में जाती है, दैट इज अ ब्यूटीफुल। चलो कोई बात नहीं, वाइब के लिए गाना क्यों ना चलाई जाए। सो शाउट आउट टू ऑल माय पठान ब्रदर्स आउट देयर। बाकी तो एक कॉल आ रही है, एक सेकंड रुको भाई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो अरे अरे अरे हेलो हेलो हेलो हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम अंकल।
0: वालेकुम अस्सलाम स्वीटहार्ट, तुम्हारा नाम क्या है?
1: हानिया सबरजवान अल्लाह।
0: अच्छा हानिया, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बात हो रही है।
1: बकरीद मुबारक।
0: बकरीद मुबारक हानिया को। क्या प्लान है हानिया के? दावत करी, दावत में गई नहीं गई?
1: जी
0: दावत हुई घर पे
1: जी।
0: अच्छा चलो माशाल्लाह। चलो हानिया जल्दी से मुझे बता दो सवाल का जवाब क्या है।
1: नक्शा।
0: अच्छा किसने किसने हेल्प करी जल्दी सच्ची सच्ची बताना।
1: नहीं
0: किसी ने हेल्प नहीं करी। पक्का?
1: पक्का।
0: चलो ठीक है भाई, हानिया कह रही तो सच कह रही होगी। ठीक है हानिया,
1: मैं

0: चलो दुआ करो, अच्छे से दुआ करो, अगर नाम आ गया तो इंशाल्लाह फिर आप जीतेंगे, ठीक है?
1: ठीक है,
0: ओके, चलो अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह
0: ओके, माशाल्लाह कितनी प्यारी आवाज़ हानिया की। तो हानिया ने बोला मुझे जिता दो, पर हानिया बेटा ऐसे काम नहीं चलता ना, क्या करें। ओके तो एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई,
0: कैसे मेरा भाई, आपका नाम?
2: ठीक है इब्राहिम।
0: जी इब्राहिम भाई बताइए,
2: क्या हाल चाल? खैर ईद मुबारक।
0: बढ़िया भाई, मुबारक, कैसी जा रही ईद?
2: ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बस ड्यूटी पे जा रही है।
0: ड्यूटी पे जा रही ईद? अच्छा,
2: पूरा पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पूरा उम्र ही जा रही है।
0: अरे रे रे, चलिए भाई काम रहना चाहिए, जरूरी भी है, काम में बंदा रहे ज्यादा सही।
2: गुनेगार के लिए काम भी चाहिए ना, गुनेगार पेट बनेगा नहीं तो क्या होगा।
0: अरे अरे, इतना गहरा मत बनाइए बात को। और बताइए, दावत वावत करी नहीं करी थोड़ी बहुत?
2: अरे यार, आपको दावत देना है लेकिन आप आते नहीं है, अभी अलोग आप लोग।
0: आपने करी दावत, ये बताइए पहले आप।
2: तो करनी है ना अगर आना है।
0: अरे नहीं, मतलब अपने लिए कुछ करा नहीं क्या? पहले दिन कुछ खाया पिया नहीं हुआ, क्या हुआ?
2: बहुत अल्हम्दुलिल्लाह यार, फैमिली है इधर पूरा सब कुछ
0: ना, तो फिर तो क्या टेंशन है, तो टेंशन ही खत्म। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब बढ़िया। तो ये बताइए कि सवाल का जवाब क्या है मेरे भाई?
2: वो सवाल का जवाब व्हाट्सएप पे दिया था, अभी देता हूँ मैप होगा।
0: अच्छा ठीक है, ओके, जजाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, और ऑल द बेस्ट।
2: क्लू तो दादा ठीक होगा कि नहीं है?
0: मैं क्लू कैसे दे दूं भाई? अभी कुछ नहीं दे सकता क्लू, कॉल पे तो बिल्कुल भी क्लू नहीं दे सकता, बट ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो क्लू श्लू तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें छुपा के रखनी पड़ती हैं, दिक्कत हो सकती है भाई। मैं एक कतर की कुछ खबरें पढ़ दूँ, उसके बाद फिर आपके मैसेज भी पढ़ दूंगा। तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से खबर आई है कि दे हैव अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ ऑपरेशनल मेजर्स, और ये जो कोशिशें की जाएंगी इससे ये इसलिए की जाएंगी ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो अराइवल है पैसेंजर्स का, जो भी एयरपोर्ट पर आएंगे ईद उल अदा के बीच में, छुट्टियों के बीच में, या पर हज सीजन की वजह से, उनका ख्याल रखा जा सके। तो स्पेशली जो गाइडलाइंस हैं वो दी गई हैं, जिसको फॉलो करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। इसमें सबसे पहली जो बात है वो बैगेज को लेके है, दूसरा ग्राउंड ट्रांसपोर्ट कर, और जब आप जाएं भी एयरपोर्ट पे, इनकेस यू ट्रैवलिंग इन दिनों में, तीन चार दिनों में, या कोई आ रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बता दीजिएगा। सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर है, बिकॉज मैं पढ़ूंगा, याद ना रहे या गलत समझ में आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। सो प्लीज़, देर आर स्पेशल मेजर्स टेकन एट हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उनको आप स्ट्रांगली फॉलो कीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद जो है मौसम का जो हाल है वो ऐसा है कि 30 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहेगा और हाईएस्ट टेम्परेचर 46-47 तक जाता रहेगा। राइट नाउ इट इज़ 39, तो गर्मी तो है भाई। अब तो मतलब ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा हो जाएगा मौसम, झूठ लगेगा, तो अभी तो नहीं होगा, ऐसा ही चलेगा मौसम। इन केस यू हेट समर्स, कुछ नहीं कर सकते। ईद उल अदा की टाइमिंग्स जो हैं वो भी आ गई हैं, जो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर्स की तरफ हैं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता थी, बट आज मैं फॉलो करके गया, सो यू नो आई फेल्ट लाइक इन्फॉर्म्ड। सो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने भी अनाउंस किया है जो वर्किंग आवर्स हैं, सर्विस अरेंजमेंट्स हैं, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर्स हैं ईद उल अदा की छुट्टी में कैसे ऑपरेट कर रहे होंगे। सो इसमें सब चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन है। कतर नेशनल ब्लड डोनेशन सेंटर जो है वो ब्लड डोनर्स को रिसीव करेगा ये ट्यूजडे सैटरडे से, टू सैटरडे सुबह 9 से रात के 9। उसके बाद मिनिस्ट्री ने इसके आगे बताया 21 हेल्थ सेंटर्स जो हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं, वो ऑपरेशनल रहेंगे। इनकेस कोई डाउट है आपको, ऑपरेशनल रहेंगे ईद उल अदा के मौके पर। इसके अलावा जो अर्जेंट केयर सर्विसेज हैं वो भी जारी रहेंगी, एंड दे आर लाइक अवेलेबल राउंड द क्लॉक। सो 15 हेल्थ सेंटर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने ये डायरेक्टिव्स दिए हैं। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, बट देन यू कैन गेट थिंग्स डन इन द इमरजेंसी सर्विसेज। और अगर आपको कोई भी हेल्थ सेक्टर्स या फिर कॉन्टैक्ट करना है तो 16,000 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये सर्विस 24 घंटे अवेलेबल है, क्योंकि आई नो रहता है, खुदा ना खासा जरूरत पड़े ईद उल अदा की छुट्टियों में तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। एनीवे, मेरा जो आप शाम में आ गए, जी बहन हम शाम में आ गए बहन, क्या करें, आप सब बहन ने मैसेज किया है सुबह से, हम 31 तारीख को एक शो है, उसके बाद मॉर्निंग से हटके सीधा इवनिंग की तरफ आ जाएंगे। ऑलराइट, तो मैं ये पहेली जरा एक बारी फिर बता दूं। तो ये है आखिरी सवाल आज के कॉन्टेस्ट का, ध्यान से सुनिएगा इस पहेली को। मेरे पास शहर है मगर लोग नहीं, दरिया है मगर पानी नहीं, जंगल है मगर दरख्त नहीं। ये है, और आपको इसके बेसिस पे बता देना है, आप बता देंगे तो आप में से कोई एक लकी विनर बनेगा।

देखिए फिर कोई फायदा नहीं है, आप बोले मुझे जिताओ, कैसे नहीं जिता रहे, मैं जीता नहीं हूँ, इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज अल्टीमेटली आप जानते हैं इट इज़ लाइक अ रेफल ड्रॉ, तो वैसे ही नाम निकलने वाला है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, वरना मेरे रिश्तेदार दूर के भर भर के जीत रहे होते, तो वो हो नहीं सकता। 666-22-107 जाना नहीं आपने, बस कुछ देर में आपसे वापस मुलाकात होगी। और ये व्हाट्सएप पर जो कॉल कर रहे हैं भाई, क्यों व्हाट्सएप, ओहो एक तो भैया नंबर इस पर काटते मेरे को बहुत तकलीफ होती है, पर क्या करें लोग मानते ही नहीं है। ठीक है कोई गाल नहीं, देखो फिर आवाज़ आ रही है आपको, देखो सुनो कोई गाल नहीं। 666-22-107 अपना नाम लिखिएगा और उसके बाद स्पेस देखिए, सीधा जवाब लिख सकते हैं आप। तो की मुलाकात आपके गाड़ी के वूफर भाई साहब पूरे हला देंगे बढ़िया करके, न्यूक्लिया का म्यूजिक मिर्जा। अभी देखना अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा ली, मान लीजिए 21-22 पे कर रखी है, वूफर ऐसे बाजेंगे भाई मौज आ जाएगी।

0: की वो यादें जो घर से दूर भी दिल के करीब हैं। एक खास शो जहां आपकी मुलाकात होगी उन लोगों से जो अपने मुल्क से दूर रहकर भी ईद को अपने अंदाज में महसूस करते हैं। उनकी कहानी, उनकी मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में आंसू। आरजे नाजिया के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम कतर से सलाम। ईद के पहले और तीसरे दिन रात 10 बजे से ओनली ऑन FM 107। कतर से सलाम, क्योंकि दूरियां फासलों की होती हैं, दिलों की नहीं।
1: अल्लाह की रहमतों और नेमतों से आपका घर हमेशा भरा रहे। इस ईद पर सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि अपनों के साथ मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। FM 107 की जानिब से मैं आपकी अमीता आप सभी को ईद उल अदा की दिली मुबारकबाद देती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107, दिल से।

0: और अब वक्त आ गया है कि उस शख्स का नाम बता दिया जाए, उसे कॉल कर ली जाए जो जीतने वाला या वाली है आज का ये दूसरा कॉन्टेस्ट। तो सिंपल है, मैंने आपको एक पहेली दी थी, पहेली को सॉल्व करना था, पहेली बहुत सिंपल थी और किसी ने भी सही गलत जवाब नहीं दिया, एक दो गलत जवाब है पर इतना तो चलता है। तो जो पहेली थी वो इस तरह थी कि मेरे पास शहर है मगर लोग नहीं, दरिया है मगर पानी नहीं, जंगल है मगर दरख्त नहीं। अब ऑब्वियसली नक्शा मैप इज द राइट आंसर, आप ग्लोब भी बोल दे तब भी चल जाता, मैं मान लेता, कोई गल नहीं। किसी ने डेजर्ट लिखा है, आई डोंट नो क्यों लिखा है आपने डेजर्ट, पर राइट आंसर है मैप, नक्शा, कुछ भी। तो ये आप बता देती तो सही जवाब हो जाता। जो उन्होंने सही जवाब दिए हैं, गिनती बहुत बढ़िया है, उनमें से एक शख्स जो है जिनका नाम हमारे इस ड्रॉ में निकल के सामने आया है, वो नाम मेरे पास पकड़ा दिया गया है और मैं सीधा उन्हें कॉल करने के लिए जा रहा हूँ। अब ये जीतेंगी या जीतेंगे ये पता लग जाएगा जब कॉल उठ जाएगी। अभी 6:44 एंड हमारे सेकेंड नर जिन्हें मिलेगा कुमार रेस्टोरेंट इंटरवल रेस्टोरेंट की तरफ से 500 का थ्री रियल का वाउचर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: आपका नाम मेरे भाई?
1: सर हमजा खालिद।
0: हमजा खालिद नाम है आपका। हमजा भाई कहाँ से हैं आप?
1: मैं तो पाकिस्तान से सर।
0: अच्छा पाकिस्तान से, मैं कबीर बात कर रहा हूँ FM 107 से।
1: जी कबीर भाई कैसे हैं, ईद मुबारक।
0: मैं जी बढ़िया भाजी, ईद मुबारक। आपने पहचाना ही नहीं बिल्कुल, मतलब नंबर वाई ने सेव ही नहीं किया होगा किसी का।
1: सुनाई कबीर भाई कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ईद मुबारक भाई आपको, ईद मुबारक। बहुत
1: खैर मुबारक
0: भाई। आपको क्या उम्मीद है, आपका नाम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, कितनी उम्मीद चल रही है दिल में?
1: कबीर भी अगर अभी आपकी तरफ निकाल आ गया तो मुझे लगता है
0: क्या क्या क्या क्या क्या क्या
1: आपकी अभी निकाल आई है ना, तो मुझे यही अंदाज हो रहा है की मैं विनर हूँ आई थिंक।
0: तो उम्मीद थी कुछ, आपने बांधी थी उम्मीद या फिर मैसेज करके छोड़
1: दिया? मैं तो बस पार्टिसिपेट कर रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नहीं जीता।
0: तो फिर ठीक है हमजा भाई, तो आप जीत चुके हैं मेरे भाई, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, मुबारक हो
1: कबीर भाई, खैर मुबारक, थैंक यू सो मच।
0: तो भाई आप जीते हैं कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से 500 का थ्री रियल का वाउचर हमजा भाई, और इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और ईद की बहुत बहुत बधाई। ईद कैसी जा रही है वैसे तो बताएं हमजा भाई?
1: शुक्र अल्लाह का कबीर भाई बहुत अच्छी अच्छी जा रही है,
0: बहुत अच्छी जा रही है। दावत
1: वावत
0: हुई?
1: हां फ्रेंड्स की तरफ हुई थी कल।
0: अच्छा, और आज का कैसी है?
1: फिलहाल तो अपनी आज का बस हमारी ड्यूटी स्टार्ट,
0: आज ड्यूटी स्टार्ट, ठीक है
1: आज ड्यूटी है बस।
0: अच्छा ठीक है, ठीक है हमजा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और खुश रहिए इस तरीके से।
1: थैंक यू सो मच, जजाकअल्लाह,
0: अल्लाह हाफिज। तो देखो भाई का सीन तो हो गया है सेट एकदम, ठीक है, और ये जीत चुके हैं। ऐसे ही अभी आप दो दिन और जीतेंगे कुमार एंड ट्रेवलर रेस्टोरेंट की तरफ से 500 का थ्री रियल के वाउचर्स। हर शो में दो लोग लेकर जाएंगे, आज दो लोग लेके जा चुके हैं, एक है हमारे अमीनुल इस्लाम और दूसरे हैं हमजा भाई। तो दोनों आज जीत चुके हैं, हमजा भाई जीत के गए, अब हमजा भाई जीत के गए हैं तो गाना भी कुछ ऐसे चलाना पड़ेगा हमजा भाई की वजह से। एक सेकंड रुको, ओरिजिनल वाला चलाता हूँ मैं, ओरिजिनल किधर गया, एक सेकंड, डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग, ओरिजिनल वाला तो ये रहा, नहीं चलो ये वाला चला देते हैं, ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। हमजा भाई हमजा भाई के लिए गाना बॉम्बे रॉकर्स। क्या भाई वैसे जवाब क्या था? जवाब है भाई मैप नक्शा, आसिफ भाई मैप नक्शा या ग्लोब या आप जो लिख रहे थे वो भी सही है ना। तो 6:47 और गुड इवनिंग।

हाँ जी वीर जी, तो टाइम तो हो गया जी, 6:50 होने जा रहे हैं अभी। आप कुछ देर में सुनेंगे न्यूज बुलेटिन, और ईद का दूसरा दिन भी हो लिया, अभी 2 दिन और बाकी हैं। 2 दिन में आपके साथ और रहूंगा शाम में, और हर 2 दिन, मतलब हर 2 दिन क्या होता है, आने वाले 2 दिन भी आप इनामात जीतने वाले, और ऑलमोस्ट हर शो में इनामात हैं। जिस शो में है आपको पता लगता रहेगा और आप जीते चले जाएंगे। बट प्लीज ट्राई योर लक, एटलीस्ट प्ले। ये मत सोचिएगा कि अरे ये जानबूझ के जिताते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इट इज ऑल ऑन योर लक। पार्टिसिपेट करेंगे, चांसेस बढ़ेंगे, आप जीत सकते हैं। वेरी सिंपल इज दैट। सोशल हैंडल्स FM107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। सो प्लीज गेट इन टच विद अस। और इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह कल शामी 5 बजे दोबारा से मिलेंगे। मगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे भी ढूंढ सकते हैं दोहा वाला कबीर के नाम से। एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मां सलामा।

0: What chumka?
1: Qatar ka pehla desi radio station FM 107 Dil se desi.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे महावश FM 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे, आमीन।
1: ईद उल अधा, इसार, कुर्बानी और अल्लाह की रजा के लिए अपने जज्बों को निछावर करने का पैगाम है। मेरे यानी इस्माइल खान और उर्दू रेडियो कतर की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी इबादात, कुर्बानियां और दुआएं कबूल फरमाए और हमारे घरों को अमन, खुशियों और बरकतों से भर दे।
2: ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज ईद का दिन है और इसी ईद के दिन में आप सभी लिसनर्स को तहे दिल से मुबारकबाद। ये एक स्पेशल शो है, इस ईद के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये फिट एंड फेस्टिव, आप समझ रहे हैं इस बात को, फिट रहिए और साथ ही साथ आप जश्न भी मनाइए। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा खास प्रोग्राम है जो ईद की खुशियों को सेहतमंद और पॉजिटिव लाइफस्टाइल के साथ जोड़ता है। इस शो का मकसद लोगों को ईद के फेस्टिव माहौल में भी एक्टिव, फिट और मेंटली फ्रेश रहने की तरगीब देना है। इसमें फिटनेस टिप्स, हेल्दी हैबिट्स, स्ट्रेस रिलीफ आइडियाज और ईद सेलिब्रेशंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश किया जाता है ताकि हर कोई ईद को एनर्जी और खुशी के साथ एंजॉय कर सके। आप ये प्रोग्राम FM 107 की जानिब सुन रहे हैं और हमारा सोशल मीडिया नंबर जो आपको पता होगा, व्हाट्सएप नंबर जो है 666-22-107 है और इस पे अगर आपको कुछ भी, आप लोगों का कुछ भी ओपिनियन है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर। तो आगे बढ़ते हैं ऑन आवर सेकेंड सेगमेंट जो है हेल्दी ईट बाइट। जी हाँ दोस्तों, ईद के मौके पे हर कोई हर किसी किस्म का खाना पसंद करता है, खा लेता है विदाउट एनी चेक। स्मार्ट ईटिंग टिप्स जो है मैं आपसे शेयर करूंगा और स्मार्ट ईटिंग टिप्स में एक फ़ायदा है, ईद के दिन सुबह उठना, फिर नमाज में जाना, फिर वापस आके कुछ खाना, दोस्तों से मिलना या भारी कुछ यू नो मॉर्निंग बाइट्स आप ले लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है। ईद खुशियों, मिलने जुलने और लजीज खानों का त्यौहार है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इस दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए और स्मार्ट चॉइसेस के साथ आप ईद को एंजॉय भी कर सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। ये थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि हम लोग खाते हैं, खाने पर कोई मीटर यानी स्केल या रूल यू नो हम लोग अप्लाई नहीं करते, यू नो मीटर टेप, खाए जाते हैं कितना खाना है ये किसी को नहीं पता। तो द पोर्शन कंट्रोल इज वेरी एसेंशियल। अक्सर हम जज्बाती होकर ज्यादा खा लेते हैं जो बाद में हेवीनेस और थकान का सबब जो है बन जाता है, इसलिए छोटी प्लेट्स यूज करें और हर चीज थोड़ी मकदार में लें और इससे आप हर डिश का टेस्ट भी एंजॉय करेंगे और ओवर ईटिंग से भी बच जाएंगे, दैट इज गारंटेड। इसके साथ साथ हाइड्रेशन को ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ओवरऑल बॉडी के लिए हाइड्रेशन तो मस्ट है। मीठी ड्रिंक्स और चाय कॉफी के बजाय पानी ज्यादा पीने की आदत डालें। इस दौरान होता क्या है कि हर कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स उठा लेता है, यू नो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो लोग कहते हैं कि भाई ये अच्छा है, थोड़ा सा तेल ऑयली फूड के बाद

लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन दोस्तों दिस इज नॉट हेल्दी एट ऑल। और बच्चों को तो बिल्कुल मना कर दीजिएगा। पानी ना सिर्फ आपको फ्रेश रखता है बल्कि डाइजेशन में भी मदद करता है। हर दावत के दरमियान पानी पीना ना भूलें। लोग अक्सर उठा लेते हैं नो बॉटल चलते चलते, भाई चलो भाई एक कोल्ड ड्रिंक्स दे दो या कोई जूस दे दो या कोई यू नो बच्चों के लिए आजकल बहुत सारे कलर ड्रिंक्स बाजार में बहुत है, तो यार नुकसानदायक है। दैट इज आई वुड रिकमेंड कि ऐसे आप लोग ना करें, बिकॉज पानी से ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक हो ही नहीं सकता। अगर पानी में अगर आपको थोड़ा सा चटपटा इस तरह का चाहिए तो ओके, यू कैन गो फॉर अ लेमन वाटर, यू कैन गो फॉर एनीथिंग दैट इज हेल्दी नॉट अनहेल्दी। सुबह की बात करूं मैं, ब्रेकफास्ट हम लोग अक्सर हम लोग देखते हैं कि ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता जो है हम लोग स्किप कर जाते हैं। कोई चाय पी लेता है, कोई यू नो बिना नाश्ते के निकल पड़ता है। ऐसा आप लोग अगर करेंगे तो दैट सिस्टम ग्रेजुअली तो नहीं बट धीरे धीरे यू नो व्हेन यू ग्रो ओल्ड, अब जब उम्र दराज होंगे तो आपको वो इफेक्ट्स पता चलेगा। सो ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। बहुत लोग ईद के दिन सुबह नाश्ता नहीं करते हैं और सीधा हैवी लंच या ब्रंच ले लेते हैं। फिटनेस टिप्स उल्टा सीधा इधर उधर का सोशल मीडिया में देख कर आजकल लोग तो खुद ही न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं, तो इसी को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से मैं एक गुजारिश ये है कि ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। थोड़ा खाएं आप, ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशियंट, थोड़ा खाएं, लेकिन उसके बाद नमाज के लिए जाइए। ये आदत अनहेल्दी है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट को स्किप किया है। लाइट और हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसे फ्रूट्स या अंडा आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है और दिन भर एनर्जी देता है। अंडा प्रोटीन इंटेक, आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रोटीन इंटेक इज वेरी वेरी एसेंशियल। नॉट ओनली जस्ट कि आप गोश्त से ये प्रोटीन ले, आप अंडों से भी ले सकते हैं। डेली 2 बॉइल्ड एग इन द मॉर्निंग और इसके साथ अगर एक केला ले लें और एक बनाना ले लें, दैट इज क्वाइट अ फिलिंग ब्रेकफास्ट, क्वाइट अ फिलिंग। आप देखना कि पूरे दिन में आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब लंच तक आप वेट कर सकते हैं। मिठाई, लोग बहुत मिठाई पसंद करते हैं। मिठाई इज नॉर्मल नेचुरल, जस्ट लाइक कि बच्चों को टॉफी दे दे बच्चे खुश हो जाते हैं, तो आपको भी अगर किसी आप किसी घर पे हैं और आपके सामने अगर प्लेट में अगर मिठाई आ जाए खाने के बाद, तो आप तो कहेंगे कि वाह क्या बात है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी टिप है दोस्तों कि स्वीट्स यानी मिठाई को माइंडफुली इंजॉय करें, यानी कि टपाटप टपाटप मिठाई ईद का हिस्सा है, ये आई एक्सेप्ट दिस, आई एक्नॉलेजी, सबको पता है, लेकिन हद से ज़्यादा लेना ज़रूरी नहीं। अपनी फेवरेट स्वीट चूज करें और उसे आहिस्ता आहिस्ता इंजॉय करें। इस तरह आप अपनी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई करेंगे और कैलोरीज भी कंट्रोल में रहेंगी। मोटापा जो आप कहते हैं ना कि अराउंड द वेस्ट जो है टायर्स ट्यूब एंड टायर्स बन जाते हैं, तो मिठाई इज अ स्लो किलर। शुगर यानी चीनी, चाय के साथ चीनी लेना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ स्लो पॉइजन। आप चीनी के बगैर आप उसमें शहद भी ले सकते हैं, हनी एंड बट गो फॉर द प्योरेस्ट हनी, ये बाजार में मिलते हैं सुक वाकी में बहुत तरह इस तरह के यू नो देयर आर देसी हनी जिसको हम कहते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ईद स्मार्ट ईटिंग को अपनाएं और खुशियों के साथ सेहत को भी सेलिब्रेट करें। हेल्दी हैबिट्स के साथ ईद और भी खूबसूरत बन जाती है। देखिए आप अगर बीमार पड़ जाएंगे ईद के दिन, और ईद उल अज़हा जो है ये बकरीद है और इसमें यू नो 4 डेज यू नो 5-6 दिन जो छुट्टियां हैं, इसमें अगर आप बीमार पड़ जाएं, एक तो गोश्त ही गोश्त यू नो कुर्बानी का गोश्त जो है वो आपके घर पे या आप किसी के घर पे जाएंगे, दैट इज़ देयर, एंड इसके साथ साथ खाना पीना दावतें तमाम चीज़ें हैं जो कि यू नो कैलेंडर में नहीं है। आपको बुलावा आ जाता है कभी आपके पड़ोस से, कभी आपके दोस्त से, कभी आपके अहबाब से, तो यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है यू नो प्लानिंग करके खाना। अब लोग अब कहेंगे कि यार ये खाने के टाइम ये प्लानिंग शानिंग क्या है, नहीं दोस्तों प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, प्लानिंग हर जगह पे इम्पॉर्टेंट है। पहले के ज़माने में लोग कुछ और थे, पहले के ज़माने में लोग चलते थे, पहले के ज़माने में लोग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पैदल ही चल जाते थे, क्या धूप क्या गर्मी क्या बारिश क्या ठंड। आज वी हैव बिकम अ काउच पोटैटो, यानी हम जहाँ बैठ जाते हैं वहीं बैठ

रह जाते हैं और वहीं पे चबाते रहते हैं खाना पीना. ये जो है ना, दिस इज वी डोंट डू वर्कआउट. आप मतलब आप एक यू नो डू अ सर्वे, आपको पता चलेगा कि वर्कआउट्स बहुत कम है. लोग जिम जाते हैं, जिम में जाते हैं, कुछ कहते हैं कि दिखावा भी है, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस है. लोग आजकल बहुत सारे चीज़ें करते हैं लेकिन वो शौकिया है. यू नो बहुत रेयर इस तरह के लोग आपको दिखेगा कि जो शौक, जो पैशन के लिए करो. बाकी आई डोंट नो, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट. इसलिए मैं कहता हूँ जो खाना पीना खाते हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा पोषण, उसको सोच समझ के, थोड़ा मेजर करके, प्लानिंग करके. प्लानिंग, अगेन द वर्ड प्लानिंग, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ. अब दोस्तों, अब जो हम बात करेंगे वो है फिट मूव्स की. यहाँ दोस्तों फिट मूव्स. ईद के दिन अक्सर हम ज्यादा खाना, मीठी चीजें और रिलैक्स रूटीन एंजॉय करते हैं. बड़ा बिंदास, कुछ नहीं करना, खाओ पियो लेटो. ये एक वर्ड है, ये एक फ्रेज है जो हमारे देसी लोगों को बहुत पसंद है. अरे क्या करना है, लेट जाओ. लेकिन थोड़े से मूवमेंट ऐड करके आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं. सिंपल एक्सरसाइजेस और फन एक्टिविटीज के जरिए आप ईद को और भी एनर्जेटिक बना सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक मशवरा देना चाहूंगा दोस्तों, कि दोपहर के खाने के बाद कोई एक्सरसाइज नहीं, ठीक है? दोपहर के बाद नोबडी डज एन एक्सरसाइज. उस टाइम आराम की जरूरत होती है और 15 मिनट्स ऑफ कूल नैप, जिसको कहते हैं कि आफ्टरनून सिएस्टा अंग्रेजी में, और अगर हम अपने देसी लैंग्वेज में बोलें पेलुला. तो ये कर लीजिएगा तो आप देखेंगे, इन अनदर वर्ड हम कह सकते हैं कि पावर नैप. पावर नैप का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक घंटा दो घंटे तक आप पड़े रहें. नो, आप 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट तक खींच सकते हैं. रात के खाने के बाद अ लाइट एक्सरसाइज, जिसके बारे में बता रहा हूँ, मूवमेंट. दिस मूवमेंट, चलना फिरना, ये बहुत ज़रूरी है. फौरन लोग करते क्या है, हमारे देश के लोग जो हैं वो करते हैं खाना खा के सीधा बिस्तर पर. यू नो बच्चों को भी कहते हैं कि भाई सीधा बिस्तर, भैया बच्चा हाथ में रिमोट लेके बैठ जाते हैं टीवी देखने के लिए. दिस इज डेंजरस. और आजकल थोड़ा बहुत पिछले 10 साल में मैंने नोट किया है कि देर आर चेंजेस हैपनिंग अराउंड, एंड बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया फॉलोइंग, और सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिकम मोर इनटू द थिंग ऑफ फिटनेस. थोड़ा आई मीन परसेंटेज इज वेरी लेस, स्टिल आई वुड से कि अभी बहुत काम बाकी है. तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है स्ट्रेचिंग. ये मॉर्निंग में आप कर लीजिएगा, सुबह उठकर 5 से 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें. आजकल ताइची बड़ा फेमस हो रहा है. ताइची भी यू नो स्कूलों में, आपको याद है स्कूलों में जब आप जाते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो पीई टीचर आपको कहते थे कि ये स्ट्रेच योर आर्म्स, हाथ को सीधा करें, बैक करें, ऊपर करें, स्ट्रेच करें. तो दोज आर ताइची. बेसिकली ताइची एक यू नो चाइनीज फॉर्मेट है, चाइनीज स्टाइल है ऑफ कीपिंग योर बॉडी फिट, माइंड एंड बॉडी फिट. तो ये स्ट्रेचिंग जो है हम सबको पता है, लेकिन करना किसी को नहीं है. लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे, योर मसल्स विल गेट एक्टिव. इससे बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है और दिन की शुरुआत फ्रेश फील के साथ होती है. इसके बाद आप कुछ स्क्वाट्स और मार्चिंग इन प्लेस ट्राई कर सकते हैं. ये सिंपल मूवमेंट्स हैं जो घर पर आसानी से किए जा सकते हैं और मसल्स को एक्टिव रखते हैं. हम लोग बहुत थक जाते हैं, द रीजन बीइंग दैट वी आर नॉट ईटिंग हेल्दी. आज ईद का दिन है और ईद के दिन में लोग अक्सर यही करेंगे कि खाना खा लेंगे. मैं कितना ही बोलूं और FM 107 की जानिब कितने ही हेल्दी टिप्स दिया जाए, लोग अक्सर यही करेंगे, अरे भाई छोड़ो, अब जो है तो है. हमारे दादा परदादा ने यू नो प्लेट भर भर के खाना उन्होंने खाए थे. दोबारा मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि दोज टाइम्स वर डिफरेंट. एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी फ्रेश और लोग काम करते थे, मेहनत करते थे. आज लोग एसी में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं. तो हाफ ऑफ आवर मसल्स इज इनएक्टिव, डेड एकदम. देखा जाए तो डेड तो नहीं कहूँगा, मतलब आई वुड से कि लेथार्जिक. तो मसल्स हैव बिकम लेथार्जिक, इसीलिए आपकी बॉडी जो है, माइंड जो है, टायर्ड फील करती है. एंड दैट इज द रीजन Why everybody, आजकल हर कोई फिटनेस एक्सपर्ट्स या स्पोर्ट्स जो करते हैं वो कहते हैं कि 15 मिनट का तो सुबह मॉर्निंग में आपको कर ही लेना है. चले 15 मिनट आज तो घटा दिया गया है. ताइची कहता है, ताइची एक्सरसाइज जो है वो उसका कहना है कि 7 मिनट आप कर सकते हैं.

0: सात मिनट कोई दे नहीं सकता है क्या? दे सकता है, लेकिन वही है कि आप फोर्सफुली अपने आप को फोर्स करें, ले जाएं ऑन दैट मैट अंदर आपके जो लिविंग रूम ड्राइंग रूम में जो मैट है उस पर करें आप, अब देखिएगा फर्क पड़ेगा। और ईद के दौरान ये काफी एसेंशियल है। अगर पॉसिबल हो तो फैमिली के साथ इवनिंग वॉक का एक रूटीन बना लीजिए, इससे क्या होता है बॉन्डिंग भी होती है और फिटनेस भी मेंटेन रहती है। मैं रात वाली जो बात मैं कर रहा हूँ, रात के खाने के बाद वाई हम लोगों को वॉकिंग करने का एक मशवरा या सलाह दी जाती है, बिकॉज डाइजेशन को इम्प्रूव करना होता है। खाएंगे तो आप भाई आज चाप, आज तो ये, आज तो करी और ये रोटी चावल बिरयानी ये सब आप खा लेंगे, लेकिन रात में अगर आप वॉकिंग ना करेंगे तो वो पता चलेगा कि ये फैट एक्यूमुलेट हो रहा है आपके अराउंड द वेस्ट, एंड आपको चलते फिरते आपको लगेगा कि अरे अगल बगल में मेरे टायर्स हैं ट्रक के टायर्स। तो 15 मिनट कम से कम आप रात को वॉक कर लीजिए, थोड़ा आपको बेहतर महसूस होगा और स्लगिश जो लेजी फील होने से आप बच जाएंगे। करके देखिएगा, फायदा देगा आपको। और इसी के साथ से एक बात और कि ईद हॉलीडेज को एक्टिव बनाने के लिए कुछ सिंपल गेम्स भी इंक्लूड करें, जैसे कि म्यूजिकल चेयर्स, लाइट क्रिकेट मैच, बैडमिंटन या फ्रिस्बी। बैडमिंटन कोर्ट्स बहुत हैं दोहा में, आप लोग बुक कर लीजिए, व्हाई नॉट, क्यों नहीं जा सकते हैं आप लोग, दोस्त यारों से तो मिलते ही हैं, तो उनको ही भी इंक्लूड कर लीजिए एंड गो फॉर अ वन आवर बैडमिंटन। बैडमिंटन से ज्यादा फिटनेस एक्सरसाइज हो ही नहीं सकता। हाँ देयर आर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, है काफी कुछ है, अभी तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, स्क्वॉश भी है, देयर आर पैडल स्पोर्ट भी है, स्विमिंग भी है, लेकिन आप वो बोलेंगे कि स्विमिंग करने का मतलब है कि अरे फिर सब कुछ गीला हो गया, फिर तौलिया लाओ और ये साफ करो ये करो, तो आप बैडमिंटन कोर्ट में चले जाएं और इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज पूरे बॉडी के, अपर बॉडी लोअर बॉडी, लिम मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, आर्म मूवमेंट, नेक मूवमेंट, सब कुछ हो जाएगा। तो आप बच्चों को लेके जाएं और वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, ट्रेनिंग करिए, दैट गिव्स यू अ कंप्लीट रिगरस ट्रेनिंग जहाँ आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं होगी। ये आप करके देखिए, बच्चों के साथ खेलना ना सिर्फ फन होता है बल्कि ये एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी भी है। घर के अंदर आप स्किपिंग या मिनी डांस सेशन भी कर सकते हैं। डांस का मतलब नहीं है कि नाचना, डांस का मतलब यह है कि थोड़ा यू मूव योर बॉडी, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रेचिंग करें, आप अपना हिप्स को मूव करें, आप अपना नी को मूव करें, आप अपना यू नो थाइस को स्ट्रेच करवाइए, तो दोज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट टू फाइनली पूरे बॉडी की ओवरऑल जो ज्योमेट्री है उसको ठीक करने के लिए। दीज आर स्मॉल स्टेप्स जो है काफ़ी कुछ फायदेमंद है और आप लोगों के लिए आई थिंक इट विल ग्रेटली हेल्प यू ड्यूरिंग दीज ईद हॉलीडेज। आप छोटी छोटी चैलेंजेस भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि कौन ज़्यादा स्टेप्स कंप्लीट करेगा या फैमिली फिटनेस चैलेंज, ठीक है, इससे सब लोग मोटिवेट रहते हैं और हेल्दी कॉम्पिटिशन भी बनता है। तो दोस्तों इस ईद में सिर्फ खाना और आराम ही नहीं बल्कि थोड़ी सी मूवमेंट भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए, रिक्वेस्ट के साथ। फिट रहकर ही आप ईद की खुशियों को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आके इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं फिट एंड फेस्टिव शो विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
0: वेलकम बैक टू फिट एंड फेस्टिव शो। ईद का ये स्पेशल शो है और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और आप लोगों से काफ़ी कुछ हमने शेयर किया है कि ईद के दिन, ईद के दौरान, ईद के छुट्टियों में क्या क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। दीज आर द फैक्टर्स दैट विल कीप यू फिट एंड फेस्टिव मोमेंट पे कंप्लीट, एक यू विल बी एनर्जाइज एंड यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स ऑफ सेलिब्रेशन। तो माइंड एंड मूड रीसेट करना ये एक इम्पॉर्टेंट, आजकल हर लोग हर जो यू नो कहते हैं कि भाई हम थक गए हैं, हमारा दिमाग बड़ा थका हुआ है, मूड जो है हमारे मूड को कुछ हो गया है, हम बोर फील कर रहे हैं। आजकल बच्चों भी कह रहे हैं, बच्चे लोग आजकल ये भी कहते हैं कि मूड मेरा क्या होगा। अरे भाई 13 साल 11 साल के बच्चे आजकल ये कह रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक वेलनेस एडवाइस, चलिए एडवाइस नहीं एक सजेशन देना चाहूँगा। ईद का वक्त सिर्फ जश्न और खुशियों का नहीं बल्कि अपने जहन और मूड को रिफ्रेश करने का भी बेहतरीन मौका होता है। बिजी रूटीन, मेहमान नवाजी और सोशल एक्टिविटीज के दरमियान

0: अपनी मेंटल वेलनेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग सेल्फिश हो जाइए। सेल्फिश इसलिए हो जाइए कि आप अपने आप को हेल्दी रखना है। ये इसी सोच को दिमाग में रख के कहिए कि आई एम सेल्फिश, मुझे वहां नहीं जाना है इस वक्त, बिकॉज उस वक्त मुझे कुछ फिटनेस टिप्स FM 107 की जानिब जो हमें दिया गया है उसको मैं फॉलो करना है। एंड यही आपका जो सीक्रेट ऑफ नो आई वुड से द सक्सेस टू हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, यही सक्सेस है। जब तक आप अपने आपको सेल्फिश नहीं बनाएंगे कि अरे दोस्त ने बुलाया, अरे वो फलाने ने बुलाया, अरे हमारे वहाँ दावत है, कट डाउन। ऐसे भी ईद की बात हम कर रहे हैं, नॉर्मल डेज में भी लोग वीकेंड में लोग थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं। जुमेरात शाम से फ़ोन आना, मैसेजेस आना, हाँ भाई कब मिल रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो है, ये जो मिलने मिलाने के वाला प्रोग्राम जो है, ये 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, एडवांस में बुकिंग, हवाई वहाँ मिलते हैं। सो दिस गैदरिंग्स आर गुड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गैदरिंग्स अच्छी बात नहीं है। अपने देश के लोग मिलते हैं, पड़ोस अपने ही मोहल्ले के, वो जब आप मिलते हैं तो अच्छा लगता है। आप अगर पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं, आप लोग मिलते हैं, पुरानी बातें आप लोग शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसके साथ साथ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जब भी बोलते हैं ना एक्सरसाइज, जो लोग सोचते हैं एक्सरसाइज मतलब अरे वो सब उठाओ जी वेट उठाओ, नहीं, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज का मतलब ये है जस्ट फिटनेस रूटीन, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, बेसिक चीजें, नॉट लिफ्टिंग 110 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, वो जो आर्म बाइसेप्स ट्राइसेप्स को ठीक करना होता है जिम में खड़े होके और शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को सल्लू भाई जैसे बनाने के, नहीं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिटनेस का मतलब है वेलनेस, माइंड वेलनेस, माइंडफुलनेस, एंड सेकेंडली इट्स योर बॉडी, मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा ठीक करने के लिए बेसिक रूटीन है जो आपको जरूरत है, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू पे सो मच मनी फीस टू गोइंग टू द जिम और फलाना ढिमकाना ये सब करें, नहीं ऐसा कुछ मत करें। तो मिलने के लिए भी आप जो दोस्तों से मिलते हैं उसी टाइम को थोड़ा कट आउट करके, आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप अपना मूड को रिसेट कर सकते हैं, माइंड को रिसेट कर सकते हैं। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोना नहीं, गोल्ड नहीं, स्लीप, नींद, नॉट दैट सोना, मैं येलो मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि यार स्लीप मतलब सोना मतलब नींद मतलब सोने की तरह ही है, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लोग कहते हैं अरे नींद नहीं आ रही है, भाई नींद कैसे आपके पास पहुँच गए, मतलब बस से उतर के लिफ्ट में चढ़ के, इट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस यू ट्रेन योरसेल्फ टू स्लीप ऑन टाइम। आप वक्त के साथ वक्त बनाइए कि मुझे 8 बजे तक, 8:30 बजे तक सब कुछ कंप्लीट करके आई वुड नीड टू हिट द बेड, अब देन प्रिपेयर योर माइंड अकॉर्डिंगली कि मुझे नींद आ रही है। इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ एक्सरसाइज, ये आपको ही करना है। डोंट गो फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट, अदर ट्रिक्स, नींद इज समथिंग जो आपकी बॉडी में आपको ही आपके लिए मेहनत करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है स्लीप रूटीन को मेंटेन करना, जैसे कि 8 बजे सोना है रात को, 9 बजे सोना है, तो मेंटेन दैट रूटीन। ईद के दिनों में अक्सर रात देर तक जागना और सुबह देर से उठना आम बात है, ये देसी लोग, लेकिन कोशिश करें कि अपनी नींद का रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। 6 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद आपके मूड को फ्रेश रखती है और एनर्जी लेवल हाई करती है। तो ये आप लोगों को तो पता है, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, एंड आई वुड से कि ये जो मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं, साथ साथ हॉर्मोन्स की बात करते हैं, ये तो नॉर्मल बायोलॉजिकल आवर बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, दिस ऑल रिलेटेड टू हॉर्मोन्स, दिस ऑल रिलेटेड टू लॉट ऑफ फैक्टर्स। हमारी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है, तो इस केमिकल फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, और इसी गाइडलाइंस में स्लीप यानी नींद वन ऑफ द फैक्टर्स है। नींद को कंट्रोल करना, काबू करना, नींद को भगाना नहीं, नींद को आराम से, जैसे आप मेहमान नवाजी करते हैं दोस्त यार अहबाब के लिए, वैसे ही नींद को बुलाइए, नींद आपके पास आराम से दे विल सर्व यू. इट्स अ स्ट्रेस रिलीफ, यू नो दिस इज अ स्ट्रेस रिलीफ की भी बात है. नींद से स्ट्रेस रिलीफ भी गायब हो जाती है और इससे स्ट्रेस जो है हम लोग यू नो वी वांट टू डिस्ट्रेस आवर माइंड, डिस्ट्रेस आवर बॉडी, तो नींद इज वन ऑफ द एलिमेंट टू डिस्ट्रेस दैट. ईद पर तैयारी, कुकिंग और गैदरिंग्स कभी कभी थकान और स्ट्रेस का सबब बन सकती हैं. इसलिए दिन में कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालें. हल्की सी वॉक, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना या बस थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना आपके स्ट्रेस को कम कर देगा. यकीनन करके देखिए. वी गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस अपने डेली लाइफ में, यू नो काम ऑफिस में हर तरह के काम है, घर जाते हैं तो देयर इज डोमेस्टिक आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चों के स्कूल हैं, तमाम चीज़ें हैं दिमाग में घूमते था. बट माइंड इज लाइक एन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो कि आपको ही दे चलाते रहता है. तो उसी माइंड को कभी कभार ऐसा ना हो कि भाई वो बर्न आउट हो जाए, ओवर स्ट्रेस हो जाए एंड देन सब कुछ गड़बड़ा जाए. इसीलिए माइंड को रेस्ट देना ही ऑल्सो इज अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर डेली रूटीन. इसके साथ एक और बात यह है कि ब्रीदिंग को रीसेट करें. यानी बहुत इफेक्टिव तरीका है कि ब्रीदिंग रीसेट करना. जब भी आपको स्ट्रेस या फटीग फील हो, 2-3 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें. आहिस्ता से गहरी सांस लें, कुछ सेकंड्स होल्ड करें और फिर धीरे से छोड़ दें. यह सिंपल टेक्निक आपके माइंड को काम रखती है और फोकस को इम्प्रूव करती है. अच्छा, ये जितने भी बातें हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं प्लीज करके देखिएगा. ये तो मैं तो सिर्फ ये होता है कि भाई अरे तो बस यू नो ज्ञान सजेशंस, यू नो दिस आर द थिंग्स, या आई नो दिस आर टिप्स. आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोगों के लिए है. आप लोग अगर इसको कहेंगे कि नहीं करना है तो नहीं करना है. बट योर बॉडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर हेल्दी फैमिली. हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड इज इम्पॉर्टेंट. ईद के दिन अपनों के साथ वक्त गुजारना, हंसी मजाक और पॉजिटिव वाइब्स भी आपके मूड को नेचुरली अपलिफ्ट करते हैं. नेगेटिव सोच से दूर रहकर ग्रेटिट्यूड को अपनाएं. ग्रेटिट्यूड, यू नो आप किसी के लिए कुछ करें, किसी के लिए कुछ मदद करें, कुछ भी करें, फील दैट ग्रेटिट्यूड, दैट इटसेल्फ इज सो कामिंग ऑन योर माइंड. आपको अच्छा लगेगा और अल्लाह के लिए करेंगे आप, अल्लाह के लिए करेंगे. बस बंदों से आपका कोई रिश्ता नहीं है. बंदों के लिए आपने कोई काम किया, उस बंदे ने आपको मुड़कर नहीं देखा, भूल जाइए. आपने काम किया, अच्छा काम किया, अल्लाह के राह पे आपने कुछ किया, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कुड डू ड्यूरिंग दिस ईद हॉलीडेज. इस ईद सिर्फ जिस्म ही नहीं अपने माइंड और मूड को भी रिसेट करें. खुश रहना और रिलैक्स रहना ही असली सेलिब्रेशन है. दोस्तों ये बातें बहुत ही पुरानी हैं, आम बातें हैं कि फिट रहना, माइंड को रिसेट करना. और आज के दौर में तो एवरीबॉडी हैज़ अ मोबाइल फोन्स ऑन देयर हैंड और सबको पता है कि कैसे चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, बच्चों को कहाँ मना कर सकते हैं, कहाँ नहीं मना कर सकते हैं, यू नो फैमिली में किस तरह के हेल्दी एटमोसफियर बिल्ड करना है. दीज आर पार्ट ऑफ यू नो द वेलनेस, माइंडफुलनेस. ये जो चीज़ें हैं आजकल आपको सुनने में मिलेगा. इवन कतर गवर्नमेंट दे गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द वेलनेस एस्पेक्ट. कतर गवर्नमेंट, कतर के जो यू नो डिफरेंट हेल्थ सेक्टर्स हैं, दे ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द नीड टू हैव अ गुड माइंड एंड अ बॉडी एंड अ हेल्दी लाइफ. ये एक बहुत बड़ी बात है. हम तो अपने यू नो जितने भी ममालिक के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर के लोग जो देसी लोग, क्या कितने भी एक्सपैट्स जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें इस बात की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि जो रियासत कतर की जानी जितने तरह के प्रोग्राम्स है फॉर दी हेल्दी माइंडफुलनेस, हेल्दी वेलनेस, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, यू नो ज़ईफ जो ओल्ड एज हैं उनको लेकर जिस तरह के प्रोग्राम्स, हेल्दी गाइडलाइंस शेयर करते हैं, आप लोगों को मिलता होगा, आप लोग देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे. इसी बात पे हम लोग यू नो हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट क्रिएट सच अ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर ऑल यू लिसनर्स ड्यूरिंग दिस ईद हॉलीडेज. और ये एक मौका है जहाँ पे हम अपने बॉडी को थोड़ा तो ध्यान दे दें. भाई कब तक ठंडा पीते रहेंगे और गोश्त के दौरान गोश्त खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं, रोटी चबा रहे हैं. जरा इस कभी कभार मैं भी सोचता हूँ कि सोचिए जरा इस चीज़ को, जब आप कोरमा रोटी या चावल रोटी खा रहे हैं और उसी के बीच में यू आर गल्पिंग, यानी आप पिए रहे हैं ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक्स. इमेजिन करिए कि तेल, कोरमा में तेल, रोटी और उसके साथ कोई एक लिक्विड जो कि हेल्दी नहीं है. सोचिए वो आपके पेट में जो आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें जाकर ये क्या क्या क्या फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में क्या बन रहा है, आप कभी सोच सकते हैं? तब सोचेंगे ना, जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे आप थोड़ा डर जाएंगे. एंड ये डर ही बेसिकली आपको इस रास्ते पे ले आने पे मजबूर करेगा कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड आवर माइंड. तो दोस्तों इस ईद खुशियों के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, स्टे एक्टिव. चाहे हल्की वॉक हो, फैमिली गेम्स हो या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, हर मूवमेंट आपको फ्रेश और एनर्जेटिक रखती है. फेस्टिव मूड को एंजॉय करें लेकिन बैलेंस के साथ, ताकि आप ईद के हर लम्हे को पूरी तरह महसूस कर सके. अपनों के साथ वक्त गुजारें और पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं. और एक दफा फिर आप सबको एक सेहतमंद, खुशगवार और यादगार ईद मुबारक. दिस इज मोहम्मद अमीन साइनिंग ऑफ अलोंग विद साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी. अगले एक और एपिसोड में हम मिलेंगे बहुत जल्द ही. तब तक के लिए खुश रहिए एंड एंजॉय योर ईद. अस्सलाम वालेकुम.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।

दिन चारों दिन सुबह होगी और भी खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवश खान 7 से 9 बजे सुबह। मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियाँ, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ हर ईद की सुबह मनाएं खुशियाँ FM।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: FM 107 टाइम चेक।
0: हाला हाला अस्सलाम वालेकुम। FM 107 पे फजील नाजी आपके साथ, ये शो जश्न टाइम फॉर टाइम चेक। FM 107 की स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 8:01।
4: आप सुन रहे हैं जश्न विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: अस्सलाम वालेकुम साथियों। देखिए मैं मानती हूँ ये बात कि ईद उल अदा का दिन होता है किचन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का, फ्रिज में टेट्रिस चैंपियनशिप का और हर किसी के एक्सपर्ट या एक्सपेरिमेंटल शेफ बनने का। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, ये ईद सिर्फ खाने की नहीं होती बल्कि शेयर करने की और केयर करने की भी होती है। तो भाई मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, अमन और बरकत से भर डाले। FM 107 की तमाम टीम की जानिब से और सफा की भी जानिब से आप सभी को ईद उल अदा की ढेर सारी मुबारकबाद। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: राइट गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी वेरी गुड इवनिंग कहना चाहिए, अभी नाइट तो नहीं हुई, इवनिंग ही कहेंगे आपको। फजील और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं शो में जिसका नाम है जश्न ईद, और पूरे दो घंटे आपके साथ यहां पर हम जो है वो जश्न ईद ये शो लेकर आए हैं। और बेसिकली दो विनर्स भी हम लेकर आएंगे, मतलब दो मौका है दो लोगों के पास कि वो जीत सकते हैं गिफ्ट वाउचर।
2: बिल्कुल, ये गिफ्ट वाउचर आपके लिए है और आप उम्मीद है कि रेडी होंगे और तैयारी कर लीजिए। एक सवाल बड़ा आसान सा जो आपसे पूछा जाता है और फिर इन आसान सवालों का आपको जवाब देना होता है। और जवाब भी क्या, मतलब ये सवाल ऐसे हैं जो आप रोजमर्रा में आपसे किए जाते हैं या फिर आपने कहीं सुने होते हैं, उसके जवाब आपके पास ऑलरेडी तैयार रहते हैं, बस आपके जहन में रहते हैं। आपको हमें कॉल करके या फिर हमारे व्हाट्सएप पे देना होता है। बड़ा सिंपल सा वो क्वेश्चन होता है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम अपना जो टॉपिक है उसे रिवील करने से पहले आपका हालचाल तो ले लें, क्या आप हमें बताइए आपका हालचाल क्या है, कैसी रही आज की आपकी ईद, सेकंड डे कैसा गया, क्या आप भी हम लोगों की तरह हैं जिनका डे वर्किंग है या फिर आप भरपूर तरीके से अपनी ईद एंजॉय कर रहे हैं। डू लेट अस नो ऑन द नंबर 666-221-07 या फिर आप डायरेक्टली हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर है 4434377।
2: बिल्कुल। और वैसे मेरा एक दोस्त है, वो उसका वर्किंग था।
1: अच्छा।
2: और हमारी एक जगह दावत थी। तो अच्छा, ये तो दो तरह की दावत, एक तो दोपहर वाली दावत, एक है शाम वाली दावत। तो दोपहर वाली दावत में तो ठीक है, हमारा तो चल जा रहा है। मेरा दोस्त था वो भी काम छोड़कर आया था आधे घंटे के लिए, दावत की और फिर चला गया। आप देखिए ये होता है,
1: देखिए आप है ना।
2: और हमारी शाम वाली ना, अगर कहीं दावत है तो ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं,
1: ये तो वाकई।
2: तो ऐसा भी नहीं है कि 7 बजे जाके जल्दी दिखा के चले आए।
1: सर हम पता है कहाँ रहते हैं वजीर, कॉर्नर में रहते हैं, हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन।
2: और 10 बजे अगर जाओ ना तब तक महफिल का एकदम ऐसा हो जाता है कि बस चल रहे भैया, अच्छा लगा आप लोगों से, देखिए नींद तो आ ही रही है, अब क्या करें।
1: ये बात तो है वाकई।
2: 10 बजे तक हम खा रहे होते हैं, हम चार्ज होते हैं, बाकी सबका जो है चार्ज खत्म हो चुका।
1: सही बात है, उनकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे फजील हमारे साथ एक कॉलर कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो
3: हेलो,
1: हाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन है हमारे साथ? सॉरी आई डिडंट गेट यू।
3: अहमद अहमद
1: अहमद अहमद,
2: कैसे अहमद, कैसी रही ईद?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी चल रही है, और साथ में अभी हम बाहर ही आए हैं।
2: अरे वाह, कहाँ कहाँ बाहर घूमने?
3: कटारे ही आए हम।
1: क्या
2: तो
1: बात है?
2: कितनी दावतें करी अभी तक, 2 दिन में, 2 या फिर और से ज्यादा?
3: 2 दिन में तो 2 ही किए, पहले दिन में तो पहले दिन हो गई थी, दूसरे वाले में।
2: तो कहाँ कहाँ गए आपने, अपने दोस्त के घर या फिर अपने फैमिली मेंबर यानी कि अपने पापा मम्मी के दोस्त के घर? कहाँ गए?
3: गैदरिंग के साथ।
2: ओके
1: नाइस,
2: चले ठीक है, बहुत सही, इंजॉय करें कटारा में। एक सवाल आपसे पूछते हैं, ठीक है? थोड़ा आपके लिए मतलब इतने बच्चों वाला सवाल नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी कुछ ना, हाँ कुछ ना कुछ तो आपके जहन में होगा। सवाल ये कि आपके लिए सैक्रिफाइस क्या है? ईद
1: सैक्रिफाइस का असल मतलब आपके लिए क्या है?
3: ईद का मतलब
1: नहीं नहीं, सैक्रिफाइस कुर्बानी,
3: कुर्बानी का यानी मतलब होता है कि यानी टीचिंग द रूल्स, जो हमारे रूल्स थे रूल्स है ना कुर्बानी के, कि ये अल्लाह की बात है ऐसे ऐसे, तो फॉलोइंग द रूल्स ऑफ इस्लाम, बाद में यानी फ्री मिलता है फ्री का।
1: मतलब यहाँ पर अहमद ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी खुशी है या अपनी जरूरत है या अपनी पसंद है उसको अल्लाह की रजा के लिए या फिर किसी दूसरे की खुशी के लिए अगर आप कुर्बान कर रहे हैं, सो दैट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ कुर्बानी, राइट?
2: चले ठीक है, आप एंजॉय करें कटारा में।
1: थैंक यू सो मच अहमद, हमने आपके यहाँ पे नाम लिख लिया, लास्ट तक हमें जरूर सुनिएगा। ओके
2: ओके, सो 8:09 हमारे स्टूडियो की घड़ी में।
1: और
2: दोस्तों आज का सवाल हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सवाल ये है कि एक तो ये है कि आपके लिए ईद उल अधा मतलब ऑब्वियसली सैक्रिफाइस आपके लिए कैसे मायने रखता है वो। तो हर शख्स जो है उसके ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा कि उनको सैक्रिफाइस करना है, अब कोई चीज़ छोड़नी है, कोई चीज़ जाने देनी है। तो वैसे ही उनके लाइफ में सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, है ना, एक तो ये है कि जो दीन में बताया गया है कि भाई सेक्रीफाइस करो, ठीक है, एक
1: अल्लाह
2: है
1: की रजा के लिए,
2: हाँ, एक है कि आप भी तो इससे सीखते होंगे ना दुनियावी तौर पे, तो दुनियावी तौर पे भी और दीनी तौर पे भी आप निजी आपका सेक्रीफाइस से मतलब क्या है,
1: या फिर ये भी कह सकते हैं कि क्या कभी आपने, मगर हम जनरलाइज करें अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए तो हमें सेक्रीफाइस करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा इसे बहुत ज्यादा अगर जनरलाइज करके देखा जाए इस टॉपिक को जस्ट सिंपली, तो क्या आपने कभी किसी दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे की बात मानने के लिए, या फिर दूसरे की जरूरत के लिए, या फिर किसी और इंस्टेंस में अपनी खुशी की कुर्बानी दी है,
2: तो
1: अपनी
2: तो
1: पसंदीदा चीज छोड़ दी है,
2: मैं
1: खुद को साइड में किया है कभी नहीं, कितनी बार किया होगा, नहीं मतलब बहुत ही,
2: मुझे लगता है ये वाला तो इन जनरल मुझे लगता है सबने ही किया होगा, हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमें अपनी चारपाई अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, हमारे घर में बच्चे आते हैं
1: बड़ी कुर्बानी,
2: हमें अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है जब बच्चे पैदा होते हैं, फिर उसके बाद यू नो जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फिर हमको अगर ऐसा है कि हम जो यू नो लिमिटेड नहीं कमा पा रहे तो बच्चे के लिए कुछ और भी कमाने के लिए सोचना पड़ता है, बच्चे को पालना, तो ऐसे तो बहुत कुर्बानी हो जाती
1: है। नहीं मैं कहती हूँ अब तक की सबसे बड़ी क्या कुर्बानी रही होगी, मतलब एक बहुत पसंदीदा चीज थी एंड यू आर लाइक विलिंग, यू वांटेड टू हैव इट बट तुमने कुर्बान किया कि नहीं यू हैव टू सैक्रिफाइस,
2: ये तो नहीं कहेंगे लेकिन मैंने खुशी खुशी किया था, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारी बहुत अजीज चीज थी, ये बड़ी सिंपल सी चीज थी, जब छोटे से थे तो बचपन में ऐसी जगह सोते थे रात में जहां पर कूलर की डायरेक्ट हवा आती थी क्योंकि गर्मी बहुत होती थी ना हमारी तरफ, तो ऐसी जगह जहां पर अब मेहमान आ गए एक बार और वो मेहमान हमारे बड़े अजीज थे तो मैं उनको बहुत ज्यादा मानता था, पता नहीं क्यों, एक होता है कि खर्च तो नहीं करते थे वो लेकिन फिर भी
1: उम्मीद थी कि उम्मीद कभी ना कभी खर्च करेंगे,
2: लेकिन फिर भी मतलब ऐसा नहीं कि खर्च करने वाले से मेरी मेहमान नवाजी वाली चीज हो रही है, बट वो बचपन में छोटे से थे बहुत, मेरे ख्याल में 10-12 साल के होंगे, तो मैंने उनको अपनी जगह दे दी थी, मेरे लिए ये सैक्रिफाइस था कि अरे यार मेरी जगह जा रही है, और मेरे को बहन पे ऊपर गुस्सा आ रहा था,
1: अच्छा सैक्रिफाइस करने के बाद क्या गुस्सा आता है या बहुत ही खुशू के साथ सैक्रिफाइस किया,
2: शुरुआत में मुझे गुस्सा आता था, मतलब बचपन में तो आपका यही होता ना, फिर इंसान तो बाद में बनता है, असलियत बचपन में होती है इंसान की,
1: ऑनेस्टी होती है। वेल हमारे साथ फजील एक कॉलर यहाँ पे कनेक्ट हो गए,
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम,
4: हेलो हेलो वालेकुम सलाम,
2: कौन बात कर रहा है,
4: अली,
2: ओके अली कैसे हैं अली,
4: गुड हाउ आर यू,
2: आई एम गुड, अली तो आपके लिए सैक्रिफाइस का मतलब क्या है,
1: क्या कभी अपने भाई बहन की खुशी के लिए आपने सैक्रिफाइस की, चॉकलेट उसे दे दी, आपका बहुत दिल था एंड इट्स लाइक योर फेवरेट, फिर भी आपने कहा नहीं नहीं नहीं मैं अपने छोटे भाई के लिए अपनी छोटी बहन के लिए मैं ये चीज कुर्बान करने को तैयार हूँ, हैव यू डन दिस, कभी किया आपने,
4: यस आई डिड मेनी टाइम्स,
2: मेनी टाइम्स, और भाई ने किया आपके लिए या फैमिली मेंबर ने किया,
1: अच्छा और किस तरह का सैक्रिफाइस किया होगा आपने अपने भाई बहन के लिए या फिर अपनी अम्मा के लिए, फिर अम्मा के लिए तो अभी अम्मा,
4: happiness
1: what exactly it is, मतलब जैसे समझाइए अगर हमें थोड़ा सा,
4: फॉर खुशी,
1: अम्मा कह रही बताओ खुशी, उनकी खुशी के लिए मतलब आपका दिल था खेलने के लिए बट मम्मा की खुशी के लिए, मम्मा कह रही कि पढ़ना है सो यू डिड कि आपने पढ़ाई की है ना, दिस इज व्हाट यू से, अम्मा की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को साइड में रखा, नाइस अली दैट्स नाइस, चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको सैक्रिफाइस के ट्रू मीनिंग जो है वो पता है,
2: एग्जैक्टली ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े रहे और उम्मीद है कि आज हो सकता है अगर आप लकी हुए तो आप जीतेंगे, ठीक है,
1: जरूर इंशाल्लाह, लास्ट तक सुनिएगा हमें, ओके
4: ओके,
1: थैंक यू अली,
2: आपने क्या कुछ सैक्रिफाइस किया, मतलब ऑब्वियसली किया ही होगा क्योंकि बगैर इंसान के सैक्रिफाइस के बगैर उसकी जिंदगी चलती ही नहीं है, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप ये वाले हैं कि नहीं मैं कभी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, या तो आप जाने अनजाने या फिर आप बड़े ही होश और हवास में रह के कभी ना कभी आप सैक्रिफाइस लाइफ में कुछ ना कुछ आप करते हैं, आपने क्या किया,
1: हाँ मैंने सैक्रिफाइस किया क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के लिए आई वांटेड टू मूव फ्रॉम वन सिटी टू द अदर, बट क्योंकि मेरी जो दादी थी अम्मा का तो मैंने बताया हुआ है लिसनर्स को उनका इंतकाल हो चुका था, तो मेरी दादी ही मेरे साथ रहती थी, मतलब वो मेरा ख्याल रखती थी और मैं उनका रखती थी, इट्स लाइक टू वेज, हाँ तो जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी मुझे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से एडमिशन मिल गया था, सब कुछ था, मुझे जाना था,

0: और मैं कब से मैं उसकी रिसर्च कर रही थी कि ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, यू नो टॉप की यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं पढ़ूंगी करूँगी. बट उसी दौरान ऐसे सिनेरियोज हुए कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई एंड शी वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन. तो अब घर में लोग तो ज़्यादा थे नहीं कि मतलब कौन उनका ख्याल करेगा. सो मुझे कहा गया कि देखो पढ़ाई तो तुम्हें करनी है, तो ज़रूरी नहीं कि तुम दूसरे शहर जाओ वहाँ से करो, तुम ये डिग्री तो यहाँ से भी ले सकते हो. इफ़ वॉट मतलब उनको तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हें यहीं रहना चाहिए. तो मुझे लगता है वो मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा मतलब शायद छोटा है हाँ, लेकिन वो मैंने सेक्रीफाइस किया क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए बहुत टाइम से मैं लगी हुई थी, मेहनत कर रही थी और मैंने किसी तरह से मुझे सीट मिली थी और बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी थी, बट आई कुडंट मेक इट. दादी की तबीयत और उस चीज का, लेकिन हाँ मुझे उसमें रिग्रेट्स नहीं है. वक्त ही थोड़ा सा आपको बुरा लगता है, बताना है कंपेयर्ड कि उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है.
1: एग्जैक्टली पाला पोसा तो उन्होंने ही है.
0: हाँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं
1: उन्हीं का काम है,
0: उन्हीं का काम है. तो मुझे लगा कि नहीं आज वो बेड रिडन है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको मेरी जरूरत है, तो मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ कि मैं चली जाऊँ उन्हें छोड़ के. तो वो एक सेक्रीफाइस था.
1: एक बार मैंने भी सेक्रीफाइस किया था लेकिन अब भी मानती नहीं है उसको. दरअसल मैं जो हूँ आराम कर रहा था बेड पे, तो अप्पी ने कहा पानी दे दो, तो मेरा मूड था नहीं, हम उठे नहीं. अम्मी ने चीखा मेरे ऊपर कि तुमसे बड़ी बहन है पानी मांग रही है, तो मेरा मूड खराब हुआ, तो मैं अपने आराम को सैक्रिफाइस करके
0: पानी पिलाने वाह क्या सैक्रिफाइस किया.
1: तो मेरे को लगता है, लेकिन अप्पी नहीं मानती इस बात को, कहती है कि ये तो सवाब का काम है, तुम्हारा ही फायदा है.
0: कि मौके पे नहीं याद दिलाओगे कितनी बड़ी कुर्बानी दी है तुमने. बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग लेवल की कुर्बानी दी होगी हर तरह से.
1: मेरी अप्पी ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी जब भी मैंने कहा पानी पिला
0: दी होगी. हो सकता है कि तुमने उसे एक्नॉलेज नहीं किया.
1: अप्पी ने पानी नहीं पिलाया.
0: पूछा जाए तो वो बताएगा देखो मैंने ना मुझे मौका मिल रहा था कि मैं ऐसा कर लेती, बट देन ये हुआ कि नहीं फजील को अच्छे से सेटल होना है तो ये पैसे फजील के ऊपर खर्च किए जाए, तो मैंने ये सैक्रिफाइस किया कि चलो ठीक है मैं अब सब अपनी जो ख्वाहिश है उसको सबसाइड करती हूँ, फजील को आगे रखते हैं. होगा, हो सकता है हिडन कुछ हो, मे बी अगर कभी बात हो हमारी.
1: सॉफ्ट कॉर्नर रहता है नाजिया का हमेशा लड़कियों के लिए. तो मैं आई एक्सेप्टेड द डिफीट अगेन. ओके कॉलर की तरफ बढ़ते हैं.
0: हमारे साथ कॉलर यहाँ पे. हेलो हेलो
1: आवाज
0: अभी ऑडिबल
1: आ रही है.
2: अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: सारे बच्चे ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह
1: बच्चों की ईद.
0: आज बहुत सारी कॉल्स हमें आ भी रही हैं. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू. ईद मुबारक. कौन है हमारे साथ?
3: मेरा नाम अनस है.
0: अनस, सो अनस कैसे हैं आप और कैसी जा रही है आपकी ईद? सो फार अच्छी
3: जी.
0: अच्छी जा रही है ईद. दो दिन हुए ईद के. अच्छे से अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं आप? कहाँ हैं?
3: अभी मैं गाड़ी में हूँ.
1: गाड़ी में. तो आपने कोई सैक्रिफाइस करी अभी अपने लाइफ में या फिर आप क्या सीखते हैं सैक्रिफाइस से?
3: मेरी छोटी बहन है, जब मैं टीवी देखता हूँ तो वो रोती है तो मैं उसकी टीवी लगा देता हूँ.
0: ये वाला सैक्रिफाइस
1: तो मुझे याद आया, मैंने भी ऐसे वाले करे.
0: ये तो मैंने भी किया अपने भाई के लिए
1: कि भाई रो रहा है. तो आपको गुस्सा आता है या आपको खुशी होती है कि मैंने जिम्मेदारी सीख ली है कंधे पे उठाना?
3: ऐसा फील होता है बस वो खुश रहे.
0: भाई कितना अच्छा भाई है.
1: अरे वाह, ये भाई वाला सही है. मेरा वाला भाई जो है होता था वो, अगर मेरा भाई होता तो अलग लड़ाई हो रही होती. शायद मैं आज नाजिया के सामने बगैर गर्दन के बैठा होता फिर.
0: कितना डिफरेंस है आप दोनों में एज में? अम्मा बता रही है पीछे से. कितने साल का फर्क है दोनों भाई बहन में?
3: आठ साल का फर्क है.
0: इसीलिए ये बड़े भैया बन चुके हैं.
1: तो आपको गुस्सा आता है? आपको गुस्सा आता है कभी कभी कि अरे मेरी चीज चल रही थी, मेरा कार्टून चल रहा था या मेरा कोई सीरियल चल रहा था या कोई मेरी फेवरेट चीज चल रही थी एपिसोड?
3: बहुत जरूरी, मैं कोई मूवी देख रहा था ऐसा कोई एपिसोड फिर गया.

0: तो आप कभी कभी लड़ी भी होंगे, कभी कभी ऐसा होगा? नहीं,
1: कभी ऐसा नहीं हुआ अनस कि आप रो पड़े कि मुझे भी देखना है।
0: हाँ
2: नहीं, ये कभी नहीं हुआ।
0: अच्छा, तो घर पे ज्यादा ज्यादा बात किसकी सुनी जाती है? सच सच बताइएगा आज अम्मी अब्बू के सामने इसी बात पे कि भाई की सुनी जाती है, आपकी सुनी जाती है?
2: मेरी बड़ी बहन की।
0: आपकी बड़ी बहन की ज्यादा सुनी जाती है?
2: जी
0: हाँ भाई, ये देखिए फैमिली मेंबर जो भी सुन रहा है, आपको ये पार्शियलिटी दिख रही है? ये हमारे साथ भी हुआ, हमारी बड़ी बहन की बहुत सुनी जाती है, बच्चों के अंदर बहुत गुस्सा भरता है, और मेरे अंदर मेरी बहन के लिए बहुत गुस्सा है।
1: अब बड़ी बहन से भी तो पूछना चाहिए, तो उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया। ये सवाल भी बनता है।
0: वो तो अच्छी बात है, मेरी बहन की शादी हो गई फिर चली गई।
1: सुनेगी तुमको किसी दिन, नहीं तो मैं सोचू मैं रिकॉर्डिंग
0: सुनेगी तो सुनाएगी। अच्छी बात है कि आप सैक्रिफाइस करते हैं, उसका रीजन भी है कि हमसे करवाया भी जाता है, तो अब हम कहीं नहीं जा सकते बेटा, हम लोग को करना ही पड़ेगा, ठीक है? कीप डूइंग इट। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी बहन भी अच्छा काम कर रही है, और आप अपने छोटे भाई के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
2: मेरी बड़ी बहन से बात करेंगी?
0: हाँ बिल्कुल,
1: क्यों नहीं करेंगे।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका?
2: हफ्सा।
0: हफ्सा, आप बताइए कि आप
1: ऐसा क्या कर रही हैं जो आपकी बात सुनी जा रही है और बाकियों की नहीं सुनी जा रही?
0: और क्या आप भी सैक्रिफाइस करती हैं?
2: जी, मैं अपनी दोस्त के लिए सैक्रिफाइस करती हूँ, हर हफ्ते में दो दिन।
0: हर हफ्ते में दो दिन? अच्छा। अपने दोस्त के लिए क्या?
2: PE lesson.
0: अच्छा, लेकिन भाई के लिए क्या करती हैं आप? भाई के लिए करती हैं सैक्रिफाइस जो अनस है?
2: भाई के लिए कभी
0: कभार टीवी
1: सैक्रिफाइस
2: करना पड़ता है।
0: टीवी, ओके।
1: टीवी बहुत इम्पोर्टेंट है,
0: टीवी घर में इम्पोर्टेंट
1: है, सैक्रिफाइस जो है उसी गिर्द गिर्द कर रहा है।
0: सही है,
1: that's nice.
0: ओके,
1: चलिए, बट थैंक यू सो मच हफ्सा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली को खुश रखे, एंड ईद मुबारक हम दोनों की तरफ से। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़, बाय। ओके फजील, दो वी आर गेटिंग बैक टू बैक कॉल्स, बट आई थिंक एक छोटा सा इशारा है हमें कि हम ब्रेक ले लेते हैं,
0: ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम मजीद इस सवाल को कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, नकाश अजीज वाला ये ब्रेक है, देव नेगी और मेलोडी की आवाज में, FM 107, दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: इस ईद दुनिया के रंग, रिवायत और

लबैक की सदा, लबैक की सदा, एक रूहानी और दिल को छू लेने वाला खास प्रोग्राम है जो हज, इबादत और अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह अपने आप को हवाले करने के जज्बे को उजागर करता है। इस खास पेशकश में ईमान अफरोज गुफ्तगु, दिल को जगा देने वाले रूहानी पैगाम और ऐसी याद दहानियां शामिल हैं जो कुर्बानी, मोहब्बत इलाही और इत्तेहाद के असल मायने को रोशन करती हैं। ईद उल अज़हा के इस बाबरकत मौके पर सुनिए लबैक की सदा, लबैक की सदा, ईद के चौथे दिन दोपहर 1 बजे से सीम के साथ, ओनली ऑन FM 107।

0: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: राइट गाइज, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो जश्न ईद, फजील और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं एंड इट्स 8:35 ऑन द क्लॉक। और आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो है सेक्रीफाइस, कुर्बानी। तो आपके लिए सेक्रीफाइस का असल मतलब क्या है? पार्टिसिपेट करने के लिए नंबर है 4434377। और जितने लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब के नाम हम लिखते जा रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड कोई दो लकी विनर्स आज जीतेंगे गिफ्ट वाउचर एंड दैट टू वर्थ कतरियाल 1000 मार्बल मेडिकल सेंटर की तरफ से।
2: बिल्कुल, तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस जबरदस्त शो के लिए जिसका नाम है जश्न ईद, जहां पर हम जश्न मनाएंगे और आपके जश्न से मुताल्लिक कुछ सवाल करेंगे, जहां पर आप जीत सकते हैं 1000 कतरी रियाल का वाउचर। और ये वाउचर है मेडिकल का
1: जी,
2: है ना?
1: यस।
2: तो मार्बल मेडिकल की तरफ से ये आप वाउचर जीत सकते हैं।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: राइट गाइस, और हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप?
1: ओ वालेकुम अस्सलाम, ये तो इसना है आफ्टर सो लॉन्ग।
4: इसरा जी,
1: कैसी
4: जी,
1: है इसरा आप?
4: मैं ठीक हूँ नाजिया, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक, एंड हाउ इज योर ईद गोइंग, कैसी जा रही है अभी तक?
4: अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक जा रही है, बच्चों के साथ बिजी, यही सेक्रीफाइस हो रहे हैं, हम तो कहीं जा नहीं सकते, बस जहाँ ये बोले इनके पीछे ही हम लग जाते हैं।
1: ये सही कहा,
4: हम तो कुछ यही हम माँ यही सेक्रीफाइस कर रही होती हैं। अपनी चॉइस सबको छोड़ छाड़ के जहाँ बच्चे खुश वहाँ हम खुश हैं।
2: अरे वाह, बहुत ही उम्दा। तो आपके लिए कुर्बानी का असल मतलब क्या है? एक तो वो है जो दीनी तौर पे हमें बताया गया है, एक आपके लिए है या आपने कभी किया हो जैसे कि अभी तक हमने पूछा, या फिर ये कि आपके लिए क्या है असल कुर्बानी का मतलब?
4: अच्छा, मैं पता है ऐसे इंसान हूँ कि अगर मुझे के नाम है कोई इंसान बोल दे जो चीज मुझे भी पसंद ना हो और मुझे किसी चीज की खुश, मतलब कि वो बंदा खुश है, तो मैं कहती हूँ मतलब वो बंदा खुश हो जाए ये मेरी कुर्बानी, चलो मैं दुखी हो जाए आप खुश हो जाए।
2: अच्छा,
4: तो मैं कहती हूँ कि जो बंदा दूसरे को खुश रख सकता है ना और अपने को कुर्बान कर सकता है, ये कुर्बानी, ये सेक्रीफाइस होता है कि आप दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। चले आप लाइक अल्लाह आपको इसका

0: जड़ दे देगा, बट आप दूसरे बंदे को खुश कर रहे हैं।
1: तो ऐसा होता है घर में कभी कभी कि आपने जो है खाना बनाने के लिए सोचा कि आज मैं अपने मनपसंद का खाना बनाऊंगा, लेकिन आपके हस्बैंड ने कहा ना ये तो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो आप कुर्बानी देती हैं फिर उस पे?
0: 100%
1: देना पड़ता है, ये कहा है उन्होंने,
2: वरना दो डिशेस बनानी पड़ेंगी।
0: नहीं, ऊपर से आपको तो पता ना हमारे हस्बैंड हमारे मजाजी खुदा हैं, उनकी तो बात सुननी सुननी हमने।
1: यहाँ पर बोल रही है वहाँ पर मालूम है डंडा चलता है, जो कह रही हूँ जो बना रही हूँ चुपचाप खा लो, ठीक है
0: खा लो आराम से।
1: कल की रोटी बनी हुई है, मैं गरम कर दे रही घी लगा के, हम अभी नहीं बनाएंगे, आटा गूंदना बहुत ज्यादा झंझट वाला काम होता है, तुम लोग तो पता नहीं क्या समझ रखा।
0: नहीं नहीं, मैं आपको यही तो बोल रही हूँ, मैं वो इंसान हूँ, मैं कहते हैं कि आप खुश हो जाएं, चले हमारे घर मुझे इस चीज का अजर मिल जाए।
1: माशाल्लाह,
2: देखा माशाल्लाह,
1: अपनी जन्नत तैयार कर रही है। इसमें भी
2: इतनी अच्छी फीमेल्स होती हैं,
1: इस सैक्रिफाइस में जन्नत की वो है लालच है।
2: चल मैं कह रही हूँ जो भी अच्छा काम तो कर रही है लगातार सैक्रिफाइस कर रही है, माशाल्लाह
0: माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अच्छा आपके लिए कभी कोई सैक्रिफाइस करता है, कोई विलिंग है घर में, कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो है कि
1: जो आपका इमीडिएट ब्लड ना हो, मैं उस पे पूछ रही हूं, जैसे आपके पेरेंट्स ना हो मतलब?
2: ओके,
0: नहीं मेरे हस्बैंड सैक्रिफाइस करते कि उनको पता है कि जब मेरी बीवी को चाहिए तो ऑफकोर्स देखे हम दो पहिए हैं और हमने एक साथ चलना है, कभी वो ठीक तो कभी मैं ठीक, तो ये वो हमें सैक्रिफाइस कभी करते हैं तो कभी मैं सैक्रिफाइस करती हूँ। देखें अगर हम दोनों, वो कहते हैं एक को आग बनना पड़ता है एक को पानी बनना पड़ता है, जो पानी आग को खत्म करें तो कभी मैं सैक्रिफाइस कर लेते कभी वो सैक्रिफाइस कर लेते, तो यही हमारी यही खुशी है कि इससे तो ये रिश्ता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मियां बीवी का। तो यही बस एक चीज है मेरे हस्बैंड करते हैं मेरे लिए, बस बच्चे तो करते नहीं आजकल के, तो बच्चे आप छोड़ ही दें, आप तो छोड़ ही दें बच्चों को ना, ये हमारे AI बच्चे हैं, कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम लोग
2: बच्चों से, हम उम्मीद कम रख रहे हैं, बट द गुड पार्ट इज कि आपके हस्बैंड आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। चलिए दैट्स रियली नाइस, और अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी ऐसे सलामत रखे, खुश आप दोनों को खुश रखे, एंड बहुत अच्छी बात है कि हमें जो है ना सैक्रिफाइस करना आना चाहिए, हम इतने रिजिड इतने स्टबर्न नहीं हो कि सिर्फ खुदगर्ज हो जाएं, सेल्फिश हो जाएं कि सिर्फ अपना सोच
0: रहे सेल्फिश हो जाएं, और के नाम में आपको क्या पता आपकी वजह से बहुत लोग खुश हो जाएं,
2: राइट,
0: और अल्लाह को वो आपकी एक चीज पसंद आ जाए और अल्लाह आपकी उसी चीज में राजी हो जाए, आप अपने खुश रख लेंगे बाकी आपसे दुखी होंगे, फिर आपको पता है एक आंसू कहाँ तक जाता है, आपको नीचे तक गिरा सकता है,
2: बिल्कुल
0: आप लाइक अगर नहीं मैं कहती हूँ
1: मैं इसके बाद जज्बाती होके मैं ही रोने लग जाऊंगा, आंखों में थोड़े थोड़े भर आए
0: नहीं ऐसी करने पर मैं कहती हूँ कि क्या नाम है आपको कुछ चीजों में सैक्रिफाइस करना पड़ता है,
1: और आप ये मत बोले कि कर अब खुशी से कर लेती हूँ, ऐसा करना पड़ता बार बार, ऐसा लग रहा है सर पे करो कि नहीं कर रही
0: हूँ,
1: सही बताएं मेरे जिंदगी में माशाल्लाह ये तो मेरी किस्मत ही है, मोस्टली ऐसा हुआ है कि सैक्रिफाइस करने वाले मिले, मैंने सैक्रिफाइस इसे किया नहीं है सर, डायरेक्ट नहीं किया, कभी ऐसा हो जाता है बस
0: के सैक्रिफाइस करने में डाले, अभी
1: करने वालों में डाले कि करने में डाले
2: नहीं, अल्लाह ताला मैं भी कहूंगी कि इसका अजर बहुत ज्यादा है,
1: या तो मैं बहुत अच्छा हूँ अल्लाह मुझसे इतना ज्यादा खुश है कि सारे ऐसे दोस्त यार और रिलेटिव्स दिए, ये माननी भी नहीं तैयार कि तुम अच्छे आदमी हो,
0: नहीं नहीं जो सैक्रिफाइस करते हैं वो अच्छे होते हैं,
1: देख लो मतलब मैं तो ये कह ही रहा हूँ वो तो अच्छे होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि मैं इतना अच्छा आदमी हूँ कि अल्लाह ने कहा कि इसको इतने ऐसे लोग दो जो इसके लिए सैक्रिफाइस करें, ऐसा मैं ये कह रहा हूँ।
2: मुझे याद है फजील तुमने बहुत सैक्रिफाइस किया, तुम्हारी स्टोरी मुझे पता है राइट फ्रॉम के तुम्हें बाइक लेनी एक साइकिल लेनी थी एंड यू इंसिस्टेड सो मच, और तुमने कितना सैक्रिफाइस किया, कितने काम किए, कितनी चीजें की, और बहुत टाइम के बाद तुम्हें मिली थी, आई रिमेंबर देयर वाज अ स्टोरी।
1: 18 के पहले वाला सैक्रिफाइस नहीं है, वो तो मजबूरी है 18 के पहले तो मजबूरी है, क्योंकि फिर जब कमाने के पहले कह सकते हैं, कमाने के बाद फिर मैंने नहीं किया, मैं तो देखो खाना तो मिल रहा है अब्बा से पहले जो होता है ना कि अब्बा से जो सामने से फाइट होती है वो इस बात की होती है कि खाना तो यही आदमी देगा आखिर में अगर कह देंगे कि इसको गोड्रेम बंद कर दो खाना नहीं मिलेगा फिर तो
0: खाना नहीं मिलेगा ये है नहीं बाप एक ऐसी हस्ती है कि वो कहते कि
1: हंसने वाले
0: कहते कि नहीं हंसती नहीं कि वो ऐसी है कि वो खुद के नाम में खाना नहीं खाएंगे पर वो आगो खाना जरूर खाएंगे, वो ऐसी हस्ती
2: ऐसी हस्ती है
1: जब मूड सही हो, मेरे वाले सिनेरियो में ऐसा है कि जब मूड अब्बा का सही है, लेकिन फिर ऐसी हस्ती है अगर
2: तो मैं कहती हूँ ऐसा क्यों करते हो काम जिससे उनका मूड बिगड़ जाता है,
1: मर्द होना मैं क्या करूंगा, आदमी आदमी
0: मेरे अब
2: तो खुद ही मान रहे
0: नहीं है नहीं, मेरे अब्बू अभी इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे अच्छा, बहुत अच्छा। फील होता है कि नाम है कि मेरे अब्बू ने इतना सब कुछ मिले, तो मैं वही मैं उनकी ही उससे चलती हूँ कि हाँ मेरे अब्बू ने चीज डाली है कि आप दूसरों को खुश रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर।
1: बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छा, और अच्छा भी होता है जैसे जैसे जैसे आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बड़े हो रहे होते हैं ना, आपको एहसास होता है कि असल में उस दौर में जब हमने समझा ही नहीं अपने फैमिली मेंबर को उन्होंने क्या किया है, जब आप खुद उनकी एज में पहुंच जाते हैं या इतने समझदार इतने काबिल हो जाते हैं, तब एहसास होता है कि असल में उन्होंने क्या किया है, तब रिस्पेक्ट ज्यादा हो जाती है।
2: देखो बहुत बड़ी होती है, वो दो दो पैसे बचाते हैं कि ये पैसे हमारे बच्चों के आगे एजुकेशन के लिए इनके फ्यूचर में लग जाएंगे, काम आ जाएंगे,
1: और ये
2: कितने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं,
1: और ये बच्चों को तब समझ में आता है जब उनके बच्चे हो जाते
2: हैं, जब वो खुद पेरेंट्स बनते हैं तब समझ में आता है।
0: अच्छा, जब मेरी शादी नहीं होती मैं ये कहती थी कि अब वो मुझे ये चाहिए, वो अब हर चीज लेके देते थे, पर मैं कहती कि मेरे अब्बू ने कभी अपनी नहीं लेने नहीं लिया, पर अब जब मैं इस दौर पे तो मैं कहती कि मेरे अब्बू ने मेरे कितना कुछ किया, मेरे जब बच्चे मांगते ना मुझसे कि मुझे ये चाहिए, तो मैं सोचती कि यार अपने लिए मैं कुछ नहीं करती, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करती हूँ। लाइक वो जब आप पे जब आती है आप उस चीज को तब समझते हो, और वही होता है।
1: और इसमें एक प्लस पॉइंट मैं और भी कहता हूँ, वो ये कि उन्होंने उस दौर में हमारी वो ख्वाहिशें पूरी करी हैं जिस दौर में हम अभी अपने बच्चों की इतनी ख्वाहिशें नहीं कर पा रहे, जबकि परचेजिंग पावर हमारी ज्यादा बेहतर है।
2: सही बात है, रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे सब कुछ है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही। एंड थैंक यू सो मच इसरा, बहुत टाइम के बाद आपसे बात हुई, रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू,
0: थैंक यू सो मच नाजिया,
2: टेक केयर, ईद मुबारक वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़। तो बहुत ही कमाल धमाल का हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों सेक्रीफाइस को लेकर। अगर आपको भी कुछ ऐड करना है तो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर 4434377, या फिर आप हमें मैसेज कीजिए 6662107 पर। एक और कॉलर हमारे साथ यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है हबीबी?
3: इकबाल में बाली भजन भाई
1: जान। माशाल्लाह इकबाल साहब, कैसे हैं? मैं एकदम जगाशक। इकबाल साहब, आज एक सवाल किया है कि आपने या आपकी जिंदगी में कुर्बानी का मतलब क्या है?
3: कुर्बानी का मतलब?
1: हाँ,
3: इस तक तो मैं किया नहीं हूँ।
1: नहीं मतलब ऐसा
2: जानवर की कुर्बानी नहीं, वैसे ही पूछ रहे हैं, आपने अपनी ख्वाहिश की, अपनी खुशी की, अपनी पसंद की, अपनी नींद की, अपने पैसे की, अपने माल की, दौलत की, किसी चीज की ऐसी बड़ी कुर्बानी दी कभी? कुछ ऐसा इंसिडेंट कोई है वाकया जो आप शेयर करना चाहें?
3: मैंने एक दोस्त का बहुत बड़ा हेल्प किया था मैं।
2: अच्छा?
3: उसका जैसे ऐसा सिचुएशन आया तो उसका फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं था, तो मेरे को बोला सर फेस्टिवल टाइम है, मेरे कुछ अमाउंट चाहिए। मैं उससे पूछा क्यों, तो बोला मेरा ये फेस्टिवल टाइम है, मेरे को उस टाइम फैमिली वाले को कुछ देना है और मेरे पास है नहीं। जब वो गार्जियन लेवल का था
1: तो फिर वो जैसे पैसे से आपने हेल्प करी तो फिर वो पैसे वापस मिले?
3: नहीं, वो मेरे को दिए।
1: अच्छा, डायरेक्ट आपने मतलब ऐसा कि आपने आग बंद करके कि आपको ऑब्वियसली वापस नहीं मिलेगी, वो उधार ही नहीं थी है ना?
3: नहीं, वो देने के लिए बोला, मैं बोला दोस्ती यारी में नहीं चाहिए,
1: क्या बात है, बहुत
2: ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत ही उम्दा।
1: तो कहाँ कहाँ पार्टी मन रही है आज, ईद का कहाँ सीन चल रहा है आपका?
3: बस कर रही हम लोग का पार्टी मनाए, चार आदमी मिलकर एक बकरा लिए थे और खत्म भी हो गया।
1: अच्छा,
2: चार लोग इतनी जल्दी बकरा खा गए हम?
1: नहीं, वो तो गोश्त बड़ा हल्का भी होता है ना, आप एक किलो बकरा खा लें और एक किलो भैंस, मतलब ऑब्वियसली बड़ा जानवर रख दें तो फिर आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे, एक किलो गोश्त बकरे का जल्दी खत्म हो जाएगा।
2: फिर भी एक किलो
1: हल्का होता है, वो गोश्त डेंस नहीं होता।
3: अच्छा,
1: कह रहे भाई हम तो, हाँ ऑब्वियसली आप काम जब ज्यादा करें ना, आप जब काम करते हैं तो फिर हो जाता, आप क्रिकेट खेलने के बाद जैसे हम भी है कि खिला दो खाना फिर तो 6 रोटी जो है गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलता, और जब नहीं करो तो उसके बाद तो फिर आप तो घर पे बैठे रहते तो आपकी एनर्जी सेव रहती है। तो ये है कि शिकार करने के बाद जो है शेर ज्यादा खाना खाता है।
3: हाँ,
1: शेर नहीं लेकर आती तो कम खाता है।
2: खुददारी भी कुछ चीज है भाई। शेर भी तो खुददार है।
1: ओके,
2: चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपका जवाब भी, थैंक यू।
1: क्या कह रहे हैं?
2: आपको
1: हेलो,
4: वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
4: ईद मुबारक फजील भाई,
1: आपको भी, आपको भी ईद मुबारक। कौन बात कर रहा है?
4: चाले नाजिया बेन, अरे आसिफ बात कर रहा हूँ मैं।
2: आसिफ जी,
1: मैं नाम भूल जाता हूँ, मतलब आवाज पहचान।
2: मुंबई वाले, मुंबई वाले आसिफ जी।
4: नहीं, मैं पुराना कस्टमर हूँ।

0: पुराना कस्टमर
1: नहीं, वो हमारे हमारे नहीं है, सिम वालों के ये पुराने कस्टमर है। ये इतना इस्तेमाल करते थे अपना सिम कि इन्होंने कॉलिंग मतलब जो मिनट्स होते हैं वो खत्म कर दिए थे, पैसे खत्म हो गए थे। तो फिर ये उल्टा हम लोगों को करना पड़ता था, तो मैंने कहा भाई हमारे पास थे हम कर ले रहे लैंडलाइन से।
0: तो ये बताइए आपकी ईद कैसी जा रही है, कैसी गुजर रही है?
2: ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी,
0: बहुत अच्छी। क्या कुछ किया आपने? बहुत
2: कुछ नहीं बे, नमाज पढ़ के आया, बाद में रूम पे सोया, सो के पूरा दिन निकाला।
1: अरे वाह, ये है असली कुर्बानी, तो ये है
0: ये कुर्बानी किस चीज की है? सो के पूरा दिन निकाला,
1: जागने की कुर्बानी है ना ये।
2: ये जो जो मतलब अभी मैडम लोग कहीं जाएंगे तो ही मैं जाऊंगा, वैसे तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता।
0: अच्छा, ये तो है। तो मतलब ये भी आपकी कुर्बानी है कि जहाँ वो जाएंगे वहीं जाऊंगा, अपनी पसंद से तो जाऊंगा।
1: इससे पता चलता है कि दावत नहीं है उनकी कहीं।
0: अच्छा, कभी कोई बड़ी कुर्बानी दी आपने यू नो किसी के लिए, माल की, अपनी खुशी की, पैसे की, नींद की? अच्छा, क्या था एग्जैक्टली?
2: मैंने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दिया हूँ।
0: अच्छा, और किसके लिए? और भाई बहनों के लिए,
2: फैमिली के लिए?
1: नहीं, अरे बंक मारना थोड़ी होता है कुर्बानी मेरा भाई, कैसी बात कर रहे हैं
2: भाई। मतलब पढ़ाई वो वाली बंक नहीं, मतलब मैं जिस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे कुछ ऐसे मतलब हालात है, घर के हालात हो गए।
1: अच्छा,
2: तो उसकी वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ के फिर मैं काम में लग गया, तो आज तक मैं काम में ही लगा।
1: तो आप, आपको पढ़ाई का शौक था?
2: बहुत शौक था भाई, मेरे को भी फजल भाई के ऐसी, मेरे को फजल भाई के ऐसा बनना था भाई बड़ा होके, मगर क्या करूं।
1: मैं वही तो कह रहा हूं कि आपको पढ़ाई का शौक था तो अच्छी, मुझे नहीं था ना
2: भाई, मेरे को पढ़ाई का बहुत शौक था क्योंकि उस टाइम पे।
0: तो भाई अभी क्यों नहीं आप पढ़ पा नहीं सकते क्या? अभी तो डिस्टेंस से कितने तरीके से पढ़ाई
2: हो सकता है?
1: अभी कर कॉल करते ना ये ऑन एयर, तो फिर उसमें टाइम निकल जाता है पढ़ने का,
2: टाइम निकल जाता है पढ़ाई का हो जाती है।
0: ओहो, बहुत ही स्वीट है, बड़े ऑनेस्ट रिप्लाई आपने दिए। बट मैं कहूँगी अगर आपको ख्वाहिश आपकी है तो आराम से, अभी तो इतने सारे तरीके हैं, इतने मीडियम्स हैं, इतने सोर्सेज हैं, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं डिस्टेंस के थ्रू, यहीं से बैठ के डिग्री।
2: अभी मैं सोचता हूँ

0: हंसी हंसी जो आपके
1: हंसी,
0: शो में
1: हंसी,
0: चलती ना,
1: हंसी जो चलाते हैं,
2: हंसी जो चलती है। अच्छा ये वाली जी, ये वाली वाह खुश देखो भाई
1: और ये कभी मत सोचिए। देखिए सबसे बड़ी चीज मैं कहती हूँ ना कि इंसान क्या इतनी बड़ी दुनिया में खुद को जो है वो बड़ा दिखना चाहता है, जबकि आप अपनी छोटी सी दुनिया में सबसे बड़े हैं। ये हम क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं? आप अपने बच्चों के लिए बड़े हो सकते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है आप अपने पेरेंट्स के लिए बड़े हैं, जो आसपास लोग हैं जो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ के लिए मैटर करते हैं उनके लिए आप कितने बड़े हैं। तो आपकी छोटी सी दुनिया में आप सबसे बड़े हैं ऑलरेडी, बड़ी दुनिया में अपने आप को मत खोजिए।
2: बहुत बड़ा बनना है इसका। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल आसिफ भाई, आपका कोई दोस्त तो होगा, जैसे आप, चलिए हम मानते हैं कि एफएम 107 पे आप कॉल करते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा ना जब बात करते हैं आरजे से लोगों से, या फिर कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ बैठकर आप घंटों बैठ सकते हैं कोई बात ना हो, कमरे में बैठकर भी या फिर कहीं घूमते हुए, लेकिन एक सुकून और खुशी रहती है ना
0: जी। आज से 6 साल पहले थे ऐसे दोस्त,
2: ऐसे दोस्त थे। तो अगर उस तरह की खुशी आपको अपनी लाइफ में मिल रही कम कमाई के बाद, बहुत बड़ा ना बनने के बाद, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी बहुत अच्छी है, बजाय इसके कि आप जो है एकदम पैसे वाले हो जाए नाजिया की तरह, हालांकि नाजिया तो खुश है लेकिन नाजिया की तरह हो जाए और मेरी तरह परेशान रहे आप, है ना। तो टेंशन वाली जिंदगी से बेहतर है कम पैसों में सुकून, दिली सुकून, है ना, और खुशी वाली कि हाँ मेरे पास मुकम्मल इतनी चीजें हैं कि मैं अपनी लाइफ बेहतर जिंदगी से गुजार सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
2: वो ज्यादा बेहतर है। बाकी ये ना सोचे कि यार मेरे जिंदगी में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये नहीं सोचे।
0: नहीं नहीं भाई, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ अपनी जिंदगी से, मेरे को तो कोई मतलब इशू नहीं है। मैं मतलब कैसा है, मतलब फजील भाई 2 रुपया कमाऊंगा ना तो मैं 1 रुपया खाऊंगा, 1 रुपया सेफ मतलब भेज दूंगा।
2: क्या बात है,
0: सेफ नहीं करूंगा बाकी मैं।
2: लेकिन मेरा भाई सच बताए 1 रुपए में तो मेलेड भी नहीं आ रही है।
0: अरे भाई
2: भाई भाई पूरा नहीं रहेगा, यही खत्म हमारी बात हमारी आपकी यहीं तक है, ठीक है
0: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल फजील भाई,
2: जहाँ तक आप समझे हमें वहीं तक समझाना है बस, इसके बाद कहीं ठीक है।
0: फजील भाई आप वैसे इंडिया में किधर से हो भाई?
2: यूपी।
0: यूपी
2: हाँ
0: भाई, तुम बड़े ही डेंजर प्लेयर हो भाई।
1: डेंजर प्लेयर
2: भाई, प्लेयर तो
1: ये ओपनर है, ओपनर है,
2: प्लेयर तो आप भी हैं
0: बस। अगर यूपी से अगर बीएच होता था तो मैं बोलता वैभव सूर्यवंशी का भाई है भाई अपना।
2: ओके मेरा भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके।
0: भाई वैसे भाई एक सवाल मेरा नाजिया बहन से, नाजिया बहन
1: हाँ जी,
0: अब तो रात हो गई है बहन, कहाँ हम दोपहर में बैठते थे
1: बात करते थे नाजिया बहन। हाँ ये अभी बहुत जल्दी मैं सुबह आने वाली हूँ 6 बजे।
0: जी जी जी, कैसे चल रहा है बहन नाजिया बहन? कुछ सीरियलों के नाम बताओ अच्छे अच्छे जरा। जंजीर है,
2: अरे
1: जंजीर आपने देख ली?
2: जंजीर है क्या?
0: नहीं अभी तो मैं स्टार्ट ही नहीं किया, मैं तो सोडाई में चल रहा हूँ।
2: तो जब आपको देखना नहीं होता तो काहे के लिए नाजिया का जो है पूरी पूरी एपिसोड दिखवा रहे हैं क्या? अरे ये सोच रही है कि आसिफ को
1: बंद कर, आगे मैं देखूंगा।
2: पता नाजिया क्या करती हैं, मैं देखता हूँ ये मोबाइल में लगी रहती है, मैं क्या देख रही हैं, कह रही है अरे वो आसिफ को बताना होता है ना एपिसोड।
0: फजील भाई ओके भाई, दूसरा कॉलर भी इंतजार कर रहा होगा, उसकी भी मजे ले लो थोड़ी बहुत।
2: नहीं मेरा भाई क्या मजे, थोड़े अपने भाई लोग हैं हल्की हल्की, यही यही जो हम लोग के बीच हो रहा ना, ये जो खुशी है ना मुझे बस इतनी चाहिए, इसके अलावा मुझे वो नहीं चाहिए कि थोड़ा थोड़ा चाहिए, लेकिन इसके अलावा और बहुत ज्यादा बड़ा आदमी बन जाऊं, ये वाली कार आ जाए, नहीं।
1: और फजील ने कहा मुझे लिसनर से बात करने के लिए ये सैक्रिफाइस, मैं दावतें सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ, ये फजील की कुर्बानी।
2: चलो अब नाजिया की बात नहीं काटते, मान लेते
0: नाजिया बहन
1: जी जी जी,
0: आपको फजील भाई आपको भी आपकी फैमिली को भी दोनों को फैमिली को भी ईद मुबारक, मेरी तरफ से बहुत
1: आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू
2: मेरा भाई,
1: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
2: और मैं सोच रहा था आसिफ भाई, और मैं सोच रहा था कि मतलब आसिफ भाई सोच रहे थे कि मैं प्लेयर हूँ, अभी अभी बात करूँ उनको पता नाजिया भी प्लेयर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब एक
1: मैं हमेशा 12th
2: इम्पैक्ट प्लेयर है भाई ये। ओके तो अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे एफएम 107 पे, या फिर कॉल ले सकते हैं क्या?
1: ले सकते हैं, कॉल्स तो हमें आ रही हैं,
2: तो
1: 3-4 मिनट हाँ एक ले लेते हैं,
2: एक ले ही लेते हैं फिर।
1: चलो हेलो,
2: हेलो
3: सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं शकील अहमद बोल रहा हूँ।
2: कैसे हैं शकील भाई? ऐसा लग रहा है हाथ धोते धोते बात कर रहे हैं, कान में ऐसे होता ना एक कंधे से और फिर कान से दबाए हुए रहते हैं मोबाइल और हाथ धोते, हाँ क्या हाल है? इधर ऐसा लग भी रहा है। नहीं या तो कमरा बहुत खाली है, किचन से बात कर रहा, ठीक है।

0: किचन तक ठीक था। ओके बहुत अच्छा लगा भाई आप कॉल कर रहे हैं। तो शकील साहब आपकी ईद कैसी जा रही है, कहीं घूमने फिरने गए कटारा या कहीं पर भी?
1: कटारा नहीं है, कॉलेज है, अभी तो ड्यूटी चल रही है सुबह 6 बजे से।
0: अच्छा,
2: ओ
1: ड्यूटी करके आके 2 घंटा सो के फिर 4 बजे 4:30 बजे से।
0: क्या बात है। उसके अलावा कहीं खुद से या दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करने कहीं गए या कहीं दावत करी?
1: पार्टी करने नहीं गए, कल दोस्त है उनके घर कुर्बानी हुई थी तो उनके साथ कुर्बानी करने गए थे वहाँ।
0: प्याज कट गई लग रहा है
1: वहाँ पे, गर्मी ज्यादा थी इसलिए सर्दी पकड़ ली।
0: तो भाई आज एक सवाल करा हमने, और सवाल ये है कि आपके लिए कुर्बानी क्या है, आपके लिए कुर्बानी का मतलब क्या है?
1: कुर्बानी देखिए जिंदगी का तो जुज है, कुर्बानी जिंदगी जिंदगी कुर्बानी मांगती है। हाँ। कुर्बानी जिंदगी मांगती है।
0: ओहो, इतनी भारी बात है, किचन से ही डायरेक्ट लाइव।
1: क्योंकि माँ बाप के लिए, बीवी बच्चे के लिए, अल्लाह के लिए
2: सारी कुर्बानी अकेले यही दे रहे हैं।
1: इसलिए और हम लोग जितनी कुर्बानी दे रहे हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं।
0: नहीं, हम समझ सकते हैं बिल्कुल।
2: बहुत बड़ी कुर्बानी है कि आप अपनी फैमिली को छोड़, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है ना या रहती है?
1: नहीं
2: है। हाँ, ये कितना बड़ा सेक्रीफाइस है।
1: दुखी भी रहते हैं, सुखी भी रहते हैं, दुख सुख तो जिंदगी है, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और कुर्बानी बहुत बड़ी चीज है। अगर जिंदगी की कुर्बानी है तो आप भी खुश हैं, आपके साथ जो वो भी खुश रहे।
2: सही, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और वाकई आपने जैसे कहा कि आप बड़ी कुर्बानी दे ही रहे, और आपके जितने भी लोग हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं वो उनके लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बड़ा पोर्शन जो है अपनी फैमिली से दूर रहकर बिताते हैं।
0: सही,
1: बड़ी कुर्बानी अल्लाह ताला सबको कुर्बानी ज्यादा
0: सबको। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जुड़ने के लिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।
0: तो अब हम कुछ मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और एक बड़ा इत्तेफाक है आज, पहली बार मुझे लग रहा है एफएम 107 पे हुआ होगा ये इत्तेफाक है कि करीब 8 से 9-10 या तो परिवार है ये। अच्छा। या फिर सब ने टेलीपैथी की है।
2: अच्छा।
0: कि एक दिमाग से दूसरी दिमाग तक ये बात पहुंची है कि अच्छा। सबको पहले लफ्ज अपनी से शुरू करना है, ठीक है। और ये मैसेज सबसे पहले आया है 8:09 पे, अपनी पसंदीदा चीज की कुर्बानी करना अल्लाह की रजा में, शमीमा, ठीक है, ठीक ये मैसेज आया है। उसके बाद फिर से मैसेज, अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करना अल्लाह की रजा में, शोएब अहमद, ठीक है। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, सैक्रिफाइस मींस अपना टाइम भी किसी के लिए देना, फरीना। फिर उसके बाद सेम लाइन, अपनी पसंदीदा चीज को अपनों के लिए छोड़ देना, शोएब। ये मुझे लगा कोई एक परिवार है, कोई एक फैमिली है जो 7-सीटर में बैठी है,
2: सबके सबके हैं।
0: हाँ। फिर उसके बाद सैक्रिफाइस फॉर मी मींस नीड सैक्रिफाइस करके रिलेटिव्स, नींद सैक्रिफाइस करके रिलेटिव्स के घर जाना, ईद वाले दिन दावत खाने, बस माँ। वाह भाई, अगेन वही वाला मैसेज जो मैं कह रहा हूँ कि यू नो पूरी फैमिली बैठी है, अपनी मनपसंद चीज को दूसरों के लिए कुर्बान कर देना, रईस।
2: ओके।
0: फिर उसके बाद एक और मैसेज है, अगेन सेम लाइन से शुरू होती है, और पहली लाइन, अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करना अल्लाह की रजा में, निदा। फिर से अपनी अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करना, हीरा। और अच्छा, आखिर में ही नाम आ रहा है हर जगह, अपनी पसंदीदा अहमद तारिक, ठीक है, अल्लाह की रजा में। मुझे लग रहा है कि सबने डिसाइड करा है, चलो यही जवाब देते हैं। मैं प्लीज आप लोगों से,
2: हाँ, पता नहीं,
0: मुझे लग रहा पहली बार ये लाइफ में हुआ है एफएम 107 जब से मैं काम कर रहा
2: हूं, नोटिस दिस थिंग, मतलब बहुत ही अच्छा इत्तेफाक।
0: हाँ। और फिर अगेन ये है रुखसाना, अपनी पसंदीदा। अब ये एक और चीज है, कहीं कहीं चीज, कहीं कहीं अपनी अपनी पसंदीदा चीज को, और किसी किसी ने को हटा दिया है या की लिख दिया है, तो यानी कि सबने अपनी मर्जी से टाइप किया है, लेकिन आखिर में डैश देन रुखसाना डैश देन निदा डैश, ये ऐसा है, ठीक है। अब ये
2: नाइस,
0: ये किस तरह की कोइंसिडेंस है भाई, किस तरह का कोइंसिडेंस है?
2: आप लोगों का क्या आपस में कोई रिलेशन है, किसी तरह कोई ताल्लुक है, या फिर सबके सब अलग हैं और ये वाकई इत्तेफाक हुआ है?
0: या तो कोई, या तो ये कोई एक बंदा है
2: जो सबको जवाब लिखवा रहा है
0: और अलग अलग नंबर से। अगेन सुमैया, अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करना अल्लाह की रजा में।

0: ठीक है,
1: एक्चुअल डेफिनेशन भी यही है कि अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना,
0: बिल्कुल
1: छोड़ देना।
0: उसके अलावा उस्मान ने लिखा है, अम्मी अब्बू से दूर रहकर परदेस में रहना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है मेरे लिए, बस मुझे उनकी खुशी चाहिए, ये उन्होंने लिखा है।
1: तो अच्छा, कई बार फजील क्या होता है, कुर्बानी और मजबूरी में लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मजबूरी ये है कि आपके पास दूसरी कोई चॉइस है ही नहीं।
0: क्या बात, बिल्कुल।
1: कुर्बानी ये है कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं,
0: सही,
1: खुशी से दे रहे हैं,
0: सही,
1: अब
0: सही।
1: उसमें चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ आपकी खुशी भी इन्वॉल्व है,
0: करेक्ट,
1: और चॉइसेस भी हैं आपके पास।
0: एग्री।
1: तो ये कई बार लोग जो है ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मजबूरी, अरे हमारी तो मजबूरी, हमारे पास है ही नहीं, हमने कुर्बानी दी, दैट इज नॉट कुर्बानी। अब आपकी नीयत का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग दारोमदार है दोस्तों। हो सकता है आपकी मजबूरी को ही आप अच्छी नीयत से अगर उस चीज को कहते हैं तो वो वाकई आपके लिए अज्र का बायस बन सकती है।
0: बिल्कुल, ये बहुत एक्चुअली में कभी कभार होता है ना, आपके पास लफ्ज नहीं होते हैं तो कोई और आपकी बात कह देता है, और ये नाजिया ने अभी कही बात कि मजबूरी में और सेक्रीफाइस में फर्क होता है चॉइस का, है ना। तो बहुत ही उम्दा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और Correct. जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। FM 107 पे सुनते रहे FM 107,
1: दिल से तेजी।
0: बिल्कुल।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: जी जश्न ईद ये शो टाइम फॉर द टाइम चेक FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 9:03 दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन FM।

0: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो जश्नीत फजील और नाजिया, हम दोनों आपके साथ हैं 9:19 ऑन द क्लॉक और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। आज हम आपसे पूछ ही रहे हैं कि हमें आप बताइए कि सेक्रीफाइस का असल मतलब आपके लिए क्या है। तो यहाँ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो,
2: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है?
3: इलियास।
2: कैसे हैं साहब?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
2: तो लियाज भाई, आज का सवाल है, उसका जवाब देना है आपको कि आपके लिए असल में सैक्रिफाइस का मतलब क्या है।
3: क्या?
2: अरे आपके लिए सैक्रिफाइस का मतलब असल में क्या है आपके लिए? वैसे एक तो दुनियावी तौर पे और दीनी तौर पे तो बहुत सी चीजें लिखी हैं, हमें पता है, लेकिन आपके लिए असल में क्या है?
1: What is sacrifice to you?
3: What नहीं समझा।
2: कुर्बानी का मतलब आपके लिए क्या है?
3: हाँ, कुर्बानी का मतलब मुझे कि अल्लाह का, तो पहला एक नंबर तो अल्लाह का राजी खुशी करना है। दो नंबर है कि सबका खुशी करना है, जो है दोस्त को और सबको मिलकर एक साथ जमा करना है।
1: सही।
2: तो कहीं दावत वगैरह करी आपने
3: जी?
2: आज कहीं दावत वगैरह चल रही है?
3: नहीं समझा।
2: दावत आपने कहीं करी है आज?
3: नहीं, क्या
2: नहीं किया आपने? किसी को दावत दी?
3: नहीं।
1: अच्छा, आप उर्दू हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज बोलते हैं? डू यू स्पीक सम अदर लैंग्वेज?
3: अदर लैंग्वेज बात करते हैं।
1: हाँ,
2: okay, इसीलिए
1: उर्दू
2: क्लियर नहीं होती। ओके, चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू,
1: ईद मुबारक आपको। थैंक यू फॉर योर कॉल।
3: ड्रॉ कब हो रहा है? कितना बजे ड्रॉ होगा?
2: क्या
1: ड्रॉ हम लोग करेंगे लास्ट में, ऐसे 9:48 के आसपास। ठीक है,
3: अच्छा
1: ओके, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हेलो,
4: अस्सलाम
2: वालेकुम। अस्सलाम, कौन बात कर रहा है?
4: मोहम्मद।
2: कैसे हैं मोहम्मद?
4: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद, जल्दी में कहीं दावत में जा रहे हैं क्या?
4: नहीं।
2: ओके, तो आज का सवाल है कि सैक्रिफाइस आपके लिए सैक्रिफाइस क्या है? आपने कभी किसी के लिए सैक्रिफाइस करा? आप तो बच्चे हैं, छोटे हैं मुझे लगता है, तो आपके लिए इतना कठिन सवाल नहीं करेंगे कि लाइफ का ऐसा सवाल कर लिया। नेटवर्क तो बहुत सही है आपका, फिर
1: समझ नहीं आया हमको, वापस से बताइए।
2: शायद डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से।
1: हाँ, दूसरे कॉलर हमारे साथ हैं। दूसरे कॉल के साथ। हेलो
2: हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है?
5: असल भाई सैयद बोल रहा हूँ, क्या हाल है?
1: वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप?
5: ईद उल्फ़ा बहुत बहुत मुबारक।
2: आपको भी बहुत मुबारक। क्या हाल चाल भाई, कैसा चल रहा?
5: बेहतरीन फसील भाई, बेहतरीन। तौफीक भाई ने शादी में आया था, मैं इतनी कोशिश करा, मिलूंगा, आप निकल लिए भाई।
2: भाई मैं, हाँ मतलब, हाँ शिरकत करने गए थे हम लोग, तो क्या है कि खैर वो सब बातें बाद में करेंगे लेकिन हम मुलाकात नहीं हो पाई वहाँ।
5: दिली आरज़ू थी कि आपसे मुलाकात हो जाए, तो तौफीक को बोला भाई मिलाओ भाई, अरे कॉल करिए अभी निकल गए होंगे, बोल के बोले।
2: तो बिरयानी
5: तो बहुत अच्छी थी
2: माशाल्लाह। आज का सुनाइए, क्या खिदमत कर सकते हैं? अरे मेरा भाई, क्या बात है, उस पर आते हैं। आज हमने सवाल किया है कि जो सैक्रिफाइस है वो सैक्रिफाइस दीन में अलग है, दुनिया में हम यू नो सुनते आए हैं, लेकिन आपके लिए असल में सैक्रिफाइस क्या है? सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? कुर्बानी का मतलब आपके लिए क्या है?
5: मतलब वो उससे जोड़ के बोलूं जो एक्चुअली ईद उल अदा क्यों
2: नहीं एक्चुअली मत बताइए एक्चुअल वाला तो सबको पता है मुझे लगता है कि इंसान होता ना जैसे मेरे लिए ये है कि मेरी जितनी भी अजीज चीज है मुझे कुर्बानी से एक बात समझ में आती है वो ये कि किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज से मेरा दिल नहीं लगेगा जब मेरा जैसे हमने अपने अपने साथ बकरा रखते हैं और मेरे घर में ये रिवाज रहा है कि 10-20 दिन 15 दिन पहले आ जाया करता था अब तो खैर 2-4 दिन कर दिया है कम करके तो हम उसको पत्ते खिलाते थे घुमाने फिराने ले जाते थे उससे बड़ा दिल लग गया था लेकिन फिर आखिर में उसको कुर्बान कर दिया तो धीरे धीरे ये चीज मेरे दिल में बैठ गई कि हाँ किसी भी चीज से दिल नहीं लगाना है क्योंकि और खास तौर पे मटेरियलिस्टिक चीज से दिल जो वो बिल्कुल नहीं लगा रहा है वरना आपका दिल हर छोटी चीज पे टूटेगा कभी कोई चीज खराब हो गई कोई चीज यू नो बर्बाद हो गई किसी को देना है तो हर बात पर अगर आप यही सोचते रहेंगे कि ये मेरी इतनी अच्छी चीज है हमें कुर्बान करनी है तो आपका दिल थोड़ा खट्टा हो जाएगा आपको ये लगेगा कि आप जिंदगी में हर चीज सिर्फ सैक्रिफाइस कर रहे हैं लेकिन जब आपका कनेक्शन उस चीज से कट जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट पार्ट हो जाता है तो मेरे लिए मायने ये है कि किसी मटेरियलिस्टिक चीज से दिल नहीं लगाना है तो आपके लिए असल में सैक्रिफाइस का मतलब क्या है
5: सैक्रिफाइस
2: का
5: मैडम को मालूम है मेरी मतलब
1: आप हमेशा बहुत ही अच्छे नोट पे स्टार्ट करते हैं तो बताइए क्या टॉपिक तो है
5: सैक्रिफाइस का मतलब सीरियसली देखे तो देखिए मैडम सैक्रिफाइस वो है जो अपने को पसंद जो चीज है वो अपन छोड़ रहे जैसा छोटे चीजों में भी सारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये चीज मिलेगी समझ रहे आप सैक्रिफाइस हर चीज में सैक्रिफाइस हो सकता है भाई अपने को ये चीज पसंद है तो वो अपने दिल में लगी भी रहती है कि अब वो किसी को देना तकलीफ होती है समझ रहे आप तो वही तो सैक्रिफाइस है सैक्रिफाइस हर किस्म से होता है जैसा कोई मटेरियलिस्टिक चीज की जैसा बात हुई एग्जाम्पल सिबलिंग्स है ठीक है ना भाई अब सिबलिंग है कोई अपनी चीज अगर कोई बहन मंग रही अपनी कोई भाई मंग रहा तो ठीक है अपने को पसंद है बट अपन थोड़ा दिल बड़ा करके उसको दे दे रहे समझ रहे हैं जैसा कोई अब मैं इससे पहले भी बोला था एक रोटी है खाने की अगर कोई गरीब मांगने आया तो भाई देखिए मेरे को भी भूख लग रही मैं सैक्रिफाइस करके भाई उसको भूख लग रही पहले उसको दे दूंगा या आधी आधी कर लूंगा ताकि उसका भी पेट भर जाए और मेरा भी पेट भर जाए तो अपनी चीज को जो देने में तकलीफ होती है आई थिंक वही सैक्रिफाइस है और रिवॉर्ड मिलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से
1: बहुत सही बिल्कुल सही कहा आपने यानी कुर्बानी जो है वो कहीं ना कहीं इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और जब हम अपनी पसंदीदा चीज किसी भी चीज के लिए जो हमारी पसंदीदा है अल्लाह के लिए देते हैं तो ये हमारी ईमान की भी निशानी होती है तो दैट्स ट्रू बिल्कुल आपने सही कहा और हमें और आपको समझ में भी आता है कि दुनिया बड़ी वक्ती है यहाँ पर चीजों के पीछे रिश्तों के पीछे या किसी से बहुत ज्यादा दिल नहीं लगाना है हर चीज अल्लाह के लिए
2: करेक्ट करेक्ट बहुत बहुत शुक्रिया भाई जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच
5: कुछ आप लोगों का बिरयानी का कुछ प्रोग्राम है दोनों का क्या है
2: हमें समझ नहीं हमें बुलाना है या आप हमें बुला रहे हैं क्लियर तो कर
5: अरे भाई मैं दस्तर लेके भगोना लेके घूम रहा हूँ कोई उनको मालूम है नाजिया मैडम को सरप्राइज भाई कौन है वो
1: नंबर तो मैं लिखे हुए बहुत टाइम से सर्वर भी लिखवाते रहते हैं नंबर नोट कर लीजिए लिख लीजिए मैं जाऊँ
2: पहुँच कोई नहीं रहा
1: पहुँच नहीं रहा बेचारे कह रहे मैं लिए घूम रहा हूँ देख पूरी
2: आज तो फिर मैं आपसे कॉल करता हूँ फिर खत्म हो गई बात बिरयानी की या मटन मेरी क्या
1: है मतलब कोई बुला रहे तो आप ये भी पूछेंगे क्या बनाया आपने
2: हाँ मतलब वो होना चाहिए ना चिकन की या मटन की उसके हिसाब से फिर इंसान खाली पेट
1: वेज है
2: नहीं खाली पेट होके उस तरह से जाता हूँ मैं
1: अच्छा
2: हाँ ना तो ये भी
1: पूछ के जाते कि आपने क्या क्या बनाया उस हिसाब से
2: हाँ जैसे कोई मुझे दावत पे बुलाता मैं और कैसी दावत है कि मतलब अच्छा तो चिकन की है तो वो कहता नहीं नहीं मटन की अच्छा मटन की है तो फिर उस हिसाब से तैयारी करके जाते हैं ना कि सुबह से भूखे रहना है या कि अगर चिकन की है मैं चिकन की बिरयानी को थोड़ी मेरी मेरे जिंदगी में चिकन की बिरयानी की वैल्यू थोड़ी कम है
1: अच्छा
2: हाँ बड़े की बिरयानी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है
1: देख लीजिए अब आप कौन सी देख लेके घूम रहे हैं सोचिए
2: तो वही है कि बस चल ठीक है
5: अच्छा देसी सुनिए देसी मुर्गी लाए तो भी कम है वैल्यू
2: ना मतलब मुर्गी की बिरयानी नहीं मुझे मुर्गे के सालन अच्छे लगते हैं
1: देख बदल
2: तो मुझे लगता है कि बिरयानी जो है असल बिरयानी जो है वो बड़े की
1: ये आपको असली मिले सर्वर तो फिर भी तैयार हो गए थे हाँ मिलते हैं चलिए कुछ भी होगा मिलेगी बिरयानी इन्होंने सही चॉइसेस रखेंगे नहीं ये तो सही नहीं लग रही ऐसा तो ऐसा कर लिया
2: मैं सर्वर का देखो मैं नहीं ले सकता सर्वर की बात नहीं कह सकता क्योंकि सर्वर को खाना चाहिए मतलब उनको आप खाने के बाद सौफ होती है आपने खाया सौफ और है ना तो उनको वो भी दे तो वो भी खा लेंगे उनका अलग है मेरा ये है खाना,
1: अच्छा
2: ये अच्छा खाना है, मटन खाना है, बिरयानी है, क्या है, उनका है खाना
1: कुछ भी मिल
2: हाँ,
1: के, नहीं तो आपने करेला देखे
2: नहीं, नहीं खाते। एक बार हम उनके साथ गए खाना खाने तो उसने एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो उन्होंने पहले गार्लिक ला के रखा, बारबेक्यू आ रहा था तो इनने कहा रोटी ले, हमने कहा रहे तो अभी तो आए नहीं है रोटी से, तो इनने गार्लिक के साथ चापना शुरू कर दिया। मैं कह रहे अच्छा ये कुछ लोगों में होता है कि वो खाते, तो मैंने भी शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उनसे अलग अलग चीज मंगाना शुरू कर दी और वो खाली ही शुरू कर दिया उसने खाना,
1: कि चटनी लाओ,
2: हाँ,
1: लाओ,
2: और सही में चटनी से खा रहा है। अच्छा। और वो वाली चटनी होती है जो रोटी में लगा के, आप जब ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां पर बारबेक्यू करते हैं तो वो चटनी वाले भी रोटी देते हैं
1: रेड रंग की,
2: तो वो उससे ही खाना शुरू कर दी। तो मैं कहा भाई, फिर मुझे ये समझ में आया कि भूखा होना और खाने में फर्क है। तो मैं अगर भूखा हूं तो मैं वो खा सकता हूं, लेकिन सर्वर भूखा नहीं भी है तो भी वो खा सकता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर सॉस भी है तो वो खा लेगा, है ना। तो
1: कसम खाता है लास्ट में
2: है नहीं है मैं
1: इतना
2: भी नहीं। तो लेकिन ये है कि सर्वर की जो बेस्ट बात है वो ये कि खाना और खिलाने दोनों में आगे।
1: हाँ ये तो हाँ।
5: माशाल्लाह।
1: लेकिन ये बात अलग है, इनविटेशन हम में से किसी को अभी तक नहीं मिला, ये अलग कहानी।
2: मैं उसके साथ बैठता हूँ अपनी प्लेट अलग कर लेता हूँ, वो कहता 50-50 करेंगे, मैं कह नहीं भाई 75-25 करना तो बोलो।
1: वैसे ये सर्वर का डायलॉग है, जैसे कुछ हो रहा है मैं कम खाती हूँ, मैं मना करती हूँ, मना मत करिए, रख लीजिए प्लेट में, मैं खा लूंगा, मैं ले लूंगा, मना क्यों करती रहती है हर चीज को, नहीं नहीं मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी,
2: हमारे गुनाहों भी ले लो भाई तुम। उस पर वो यूटर्न ले लेते हैं उस पर।
1: सही बात
5: है,
2: भाई
5: बहुत खुशी हुई बात करके, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करिए ईद उल अज़हा सब लोग, सारी टीम माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई अल्लाह ताला ने मुलाकात मतलब बात करा दिया आज, अल्हम्दुलिल्लाह बात हो गई आप दोनों से, बहुत दिन से मैडम से बात नहीं हुई थी,
1: हाँ जी, हाँ
5: तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई बात। तो रमजान की बात याद आ जाएगी, आपके डिशवॉशर की बात याद है मेरे को, अभी तक रमजान शरीफ में बात हुई थी,
1: आज तक देख लीजिए मैं खुद ही धो रही हूँ अपने हाथ से बर्तन, डिशवॉशर नहीं मिला मुझे,
2: भाई को अभी तक याद भी
1: है।
5: मैं तो पूरा नहीं तो मैं तो तैयार था, पूरा दिला दूंगा, बोला मैं तो शेयर नहीं करूंगा, चलिए चल के ले लीजिए, आप बोले चलिए थैंक यू बहुत बहुत।
1: हाँ आप ही ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन लोग देखो यहाँ कुर्बानी देखो, नहीं तैयार पैसों की,
2: अपने हाथ से इतना बर्तन धो रही है की अब मालूम है इनके हाथ में वो इतना रूखा हो गया की मॉइस्चराइजर भी काम नहीं कर रहा है।
1: अगर हम टच कर दें तो उनका स्क्रबर का काम हम खुद ही कर रहे हैं हाथ से, जरूरत नहीं है,
2: पता है अब साबुन भी अपने हाथ में लगाती है तो झाग आ जाता अपने आप।
5: चलिए दूसरों को भी मौका देते हैं, मान कर रहा मैं, और एक बात, एक बात याद आ गई बोलूंगा, देखिए सैक्रिफाइस और एक पीस ऑफ हार्ट भी है ना, सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं मगर उसको दिल का सुकून मिलेगा, जैसा मैडम ने बताया थे अल्लाह सुभान व तआला के करीब कर दिए चीज, तो दिल का सुकून भी तो मिलता है कि भाई अपने को जो पसंद जो चीज थी वो दूसरों को दिया, तो वो माँ बाप के रिश्ते में होता है, शौहर बीवी के रिश्ते में होता है, भाई भाई के, बहन बहन के और अजनबी के भी रिश्ते में होता है। अब अपने हिंदी पिक्चरों में खुद दुनिया का बता, साथी पिक्चर देखिए आप दोनों उठा के, एक दोस्त दूसरे दोस्त को सैक्रिफाइस करता है, साजन पिक्चर में बताया और आईना पिक्चर में बताया, ये सब बताते हैं कि सैक्रिफाइस दूसरे को देना,
2: क्या बात है, आपने दीन की बात करते करते जो मूवी की दुनिया में एंट्री ली है ना सरकते हुए, क्या बात है। कुछ तो बात थी, वो अलग ही लेवल का आदमी था। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू,
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आई एम
5: वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू बोथ ऑफ यू, इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो मुलाकात होगी, जाएंगे कर लूंगा दोहा में,
2: नंबर सेव कर लिया है मैं, बिरयानी छोड़ूंगा नहीं,
1: मटन की इनको पसंद है, देख बदल लिया आप कुछ भी कहिए,
5: बिल्कुल हाजिर हाजिर हाजिर,
2: इंशाल्लाह,
1: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक,
2: ईद मुबारक। अच्छा लोगों को लगता होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, कहीं कहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मटन वाले में मैं शायद पहुंच जाऊंगा इनके पास, वो कहेंगे हाँ आपको चेहरा तो देखा नहीं है,
1: खा गया, अब मुझे फजील बन के जाना,
2: अब मुझे डर है कोई और ना पहुंचे, हाँ भाई सलाम वालेकुम, आप कौन है कि फजील, ओके मटन कहाँ है यारे,
1: ओके अच्छा आपको देखा कम है तो ये चिकन है आपके लिए,
2: कहीं ना कहीं तो देख ही लेगा।
1: एक और कॉलर फजील हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं,
2: हाँ बिल्कुल, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कौन,
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू,
4: कैसे हैं आप,
1: हम लोग खैरियत से हैं, आप कैसी हैं और आपका नाम,
4: आमना खातून, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
2: आमना लग रहा है बहुत काम कराया घर में, बहुत ऐसा लग रहा है कि थक के जैसे सोफे में बैठते हैं ना, सोफे में बैठ के एक आवाज आती है, एक तो होती है सोफे की आवाज अगर है तो, वरना एक और आवाज आती है अल्लाह थक गया भैया,
1: एग्जैक्टली होती है, बिल्कुल सही कहा,
2: जब आप बहुत देर तक किचन में रहे,
4: ये तो हर लेडीज ऐसा होता है कुर्बानी के,
2: नहीं नहीं लेडी के लेडा भी आजकल होने हम
4: नहीं, वो तो बहुत नसीब वाली होती हैं जिनके मियां उनका हाथ बटा
2: नहीं देते। मैं मियां की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके मियां यहाँ रह रहे हैं, बेगम कहीं और रह रही, तो मर्द भी यही बोल रहे होते हैं कि अल्लाह थक गए भैया काम करते करते। पता है आपको, मेरा एक दोस्त है, उसके अच्छा। घर में कुछ 11 लोग रहते हैं, ठीक है, हाँ मतलब साथ में 11 लोग रहते हैं, और होता क्या है, खाना बनाने का टर्न लगता है कि अगर तुमने आज खाना बनाना है तो तुम आज खाना भी बनाओगे, जो बर्तन है वो बर्तन भी धोगे, तो 11 लोग का खाना, 11 लोग का बर्तन, तो सोचिए कितना टाइम लगता है प्याज काटने से लेकर टमाटर तक और मसाला डालने से लेकर चावल बनाने तक, दोनों दो आइटम बनते हैं ना, तो वो ये सारा काम करता है और फिर ये करने के बाद बर्तन भी धोना होता है। तो मुझे तो लगता है जमान से यही आवाज आती है, अल्लाह तेरा शुक्र बैठने के बाद।
1: सही बात है। तो फिर टर्न 11 दिन बाद आता है।
2: 11 दिन बाद आता है, तो मैंने कहा तब ठीक है भाई 11 दिन बाद आ रहा है,
1: लेकिन अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो उतना बेचारों के वो आवाज जो बैठने वाली आ रही है थक के चूरों के, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल।
2: हाँ, लेवल क्या कम होगी, बस ये है कि 11 दिन बाद वही आवाज आएगी बस।
1: नहीं, मेरा मतलब एक आदमी चॉपिंग कर ले, खाना बना ले, बर्तन धो ले, मिलके 5 लोगों की ड्यूटी लगा लो,
2: तो फिर वो डेली रहेगी, और वो शायद मेरे ख्याल में काम का भी होता है ना उन लोगों में, कि कोई सुबह जा रहा है कोई शाम जा रहा है, अपने वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने शायद ये शिफ्ट वगैरह लगाई होगी, कि कोई सुबह खाना बना के चला जा रहा है, कोई शाम को खाना बना रहा है, जिस तरह से अवेलेबिलिटी है। तो भाई औरतें ही नहीं कर रही, मैं ये बस बताना चाह रहा था कि हम भी नमक डालते डालते थक जाते हैं, अल्लाह
1: कितना नमक खा रहे।
2: तो ये है,
4: नहीं मेरे मियाँ कहते हैं सबसे बड़ा मुश्किल काम है खाना बनाना।
1: अल्लाह तेरा शुक्र है, उनको एहसास है माशाल्लाह, ये बड़ी बात है।
2: ये उन मियाँ को एहसास है जिनकी औरतें सही में काम कर रही हैं इतनी देर तक लग लग के, और मियाँ को खल रहा है कि अरे यार इतना ज्यादा काम माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा।
4: चाय भी नहीं बनानी आती है, वो एक बार मैं हॉस्पिटल में थी तो चाय बना रहे थे, तो वहीं पे शक्कर और नमक भी रखा हुआ था, उन्होंने
1: कश्मीरी चाय,
4: पूरा नमक का ही।
2: तो मुझे लग रहा है कि कल वाली ही बात हो गई कि तुम काम मत करो, बढ़ा दोगे तुम। ये कभी कभार होता है ना, कहें कि अरे बेगम आप बैठिए हम चाय बना रहने दो, आप दूध भी खराब करेंगे, नमक उल्टा डाल देंगे, शक्कर डलेगी नहीं, चाय पत्ती की जगह पता चला आपने जो है कुछ और डाल दिया, हाँ
4: पूरा किचन फिर बिखेर के रख देंगे, उससे ज्यादा मुझे करना पड़ेगा।
2: आप अलग सवाल करेंगे कि ये दूध का इतना ज्यादा चाय पत्ती डालने
1: के बाद से उड़ जाएंगे खैरियत के, मैं ठीक हूँ, मैं किचन चली जाऊँ, मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं।
2: सोचे किसी दिन हस्बैंड ने बना भी दिया चाय, तो यही सोच रही कि ये दूध जो है वो कलर क्यों नहीं पकड़ रहा है, इतनी चाय पत्ती डाली, उन्होंने कहा काली मिर्च डाली है, बाद में पता चला।
1: लेकिन
2: माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड अगर ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि
1: बड़ी बात है, बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि कभी आपके लिए सैक्रिफाइस
4: तो है लेकिन जी
2: हाँ दर्द भी आ रहा है, नेमत तो है लेकिन दर्द सुनिए, हाँ बताइए
1: बताइए बताइए।
4: नहीं नेमत तो है लेकिन उनको ये भी बोलना चाहिए ना, बीमार रहो फिर भी चलो किचन में काम कर लो, तो ये मुश्किल है ना, वो भी आना चाहिए, कहते नहीं भाई हम होटल से खा लेंगे वो सबर है, लेकिन खाना बनाना बहुत बड़ी बात है, ये नहीं हो सकता।
1: शुक्र है होटल से खाना कह रहे हैं, मैं प्रेफर कर सकता हूँ लेकिन खाना मैं बनाऊंगा नहीं।
2: अच्छा आप लोगों में प्रेफरेंस चलती है, मेरे वाले में
1: बीमार है, अगर
2: नहीं मेरे वाले में ये कि आज हम होटल में ही खाएंगे, और ये हर तीसरे दिन मेरे कान में बात पड़ती है।
1: हमारे घर ऐसा नहीं होता है,
2: हमारे घर करवाया जाता है ऐसा।
4: नहीं मेरे घर पे नहीं होता है
2: माशाल्लाह, अल्लाह सबको ऐसा।
1: तो इसका मतलब आप खाना भी अच्छा बनाते हैं, जो ख्वाहिश ही नहीं हो रही है होटल जाने की, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, थोड़ा कम अच्छा बनाइए प्लीज।
2: अच्छा देखो नाजिया कैसे खा रही है कि थोड़ा कम अच्छा बने, कभी नमक डाल
4: होटल से नहीं खाती हूँ, बहुत कम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 16 साल हो गया, लेकिन मैं मुश्किलन कितना गिना दूं गिनती में आ जाएगा।
2: नहीं तो अरे क्या बात,
1: 16 साल में 6 बार,
2: नहीं तो नाजिया ने आइडिया दे तो दिया,
4: गिनती भी आ जाएगा कितने बार, उतना ही होगा।
2: तो नाजिया ने आपको आइडिया दे दिया है, कल से चाय पत्ती में, फिर अब सही में इलायची ही पड़ेगी,
1: इसमें काली मिर्च पड़ेगी।
2: वो फिर अभी देखो यही होता है मर्दों को, जब
1: ये भी तो कह सकती है कि धीरे धीरे अरे मैं तो भूल गई अच्छा खाना बनाना, अभी याद ही नहीं आता।
2: हाँ कुछ तो बहाना करना पड़ेगा,
1: कुछ तो करिए, मतलब किस तरह से बना रही करी, ये तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है।
2: आपको पता है
1: मेहनत आप जो कर रही है, अपने आराम का जो सैक्रिफाइस कर रही है ना, ये सबसे बड़ा सैक्रिफाइस।
2: देखिए मैं आमिना जी आपको एक और चीज, आपने वो औरतें देखी है या वो मर्द देखे जो दूसरे के घर में बिगाड़ करते हैं, वो हम ही लोग हैं। अम्मी कहती ना बुरे लोगों से दूर रहो, बुरे लोग हम ही हैं।
4: नहीं, कुर्बानी देना ये एक बहुत बड़ी एक बहुत इंसान को ये होना चाहिए कि कुर्बानी, ये तो पहले नंबर तो है सुन्नत इब्राहिमी है, हम उससे फॉलो कर रहे हैं, और बाकी अपने आप में कुर्बानी देना ये बहुत बड़ी बात है, जल्दी किसी को होता ही नहीं है कुर्बानी देना,
2: सही
4: है। बहुत बड़ा नेक सबर तो करना, पैसे कहते हैं सबर करो, सबर में खैर है, सबर में सच में खैर है, लेकिन जल्दी कोई ऐसा चीज रहता है उसमें सबर होती नहीं है जल्दी से कि हो जाए। इसमें हमने यहाँ पे मैं बहुत कुर्बानी दी हूँ।
2: नहीं ये बिल्कुल, और

0: मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत चीजों में से एक है, इसलिए भी क्योंकि ये आपकी बॉन्डिंग जो है ना, फैमिली की बॉन्डिंग बहुत मजबूत करती है। जब आप एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, आपको एहसास होता है कि घर में किस चीज की असल में जरूरत है, और जब ये दोनों लोग समझ रहे होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि मर्द अपनी बात नहीं बताते जो उनके हाल चल रहे होते हैं, लेकिन फीमेल जो है वो समझ लेती है। जैसे मेरी अम्मी का है, हाँ मेरी अम्मी का है, वो चेहरा देख के समझ जाती है कि कुछ सोच रहे हैं क्या आप,
1: कुछ परेशानी
0: आप कुछ को, तो ये कितनी प्यारी चीज है जब आप एक दूसरे के चेहरे से, हाँ जब आप ये कर लेते हैं ना, और फिर उस समझदारी से आप जब घर रन करते हैं तो दोनों में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये आपने अचीव कर लिया।
2: मैं आवाज से ही पहचान लेती हूँ। और फिर मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था, मैं जा नहीं पाई थी, वो बहुत बड़ा कुर्बानी मेरी जिंदगी में, सबसे बड़ा कुर्बानी तो वही हुआ मेरे साथ।
0: एग्जैक्टली, ये भी क्योंकि आप समझ रही थी कि क्या यू नो हर यू नो
1: ये बड़ी
0: सिचुएशन ऐसी कभी कभार आ जाती है, हर लाइफ में एक छोटी सी चीज ऐसी आ जाती है कि आप, मिसाल के तौर पे कई बार ऐसा भी होता है, मैंने देखा भी है कि अभी हम आए हैं अपने मुल्क से यहाँ पर, और फिर बहुत कोई करीबी है, उनकी तबीयत खराब हो गई या इंतकाल हो गया, हम नहीं जा पाए, तो ये भी एक तरह से कुर्बानी, और हमें बड़ा खलता है कि हम नहीं जा पाए।
1: सबसे ज्यादा मैंने देखा था कोविड के टाइम में, बेचारे बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जो है वो गुजर गए, और अनफॉर्चुनेटली मतलब
0: नहीं जा पाए,
1: हाँ कोई नहीं जा सका।
0: तो खैर बिल्कुल, अल्लाह जज़ाए खैर दे।
2: हमारे यहाँ हमारे मायके में बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह खानदान है, हमारे बड़े अब्बू के 8 बहुएं हैं, और सब लोग इकट्ठा होते हैं सब, हाँ हम तीन सब लोग सब, पहले अभी तक तो इकट्ठा ही रहते थे, अभी जाके अलग अलग हैं, तो उसमें पूरे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने से मुंह पे तारीफ नहीं कर रही हूँ अपने आप से, मेरे भाई लोग सब यही कहते हैं कि कुर्बानी देना सीखना हो जिससे इससे सीख लो।
0: लेकिन थोड़ा नाजिया ये बात कहती भी है कि सीधा तना जो है ना सबसे पहले काटा जाता है क्योंकि ये जब तो एहसास ये हो जाए ना लोगों को कि हाँ इससे कह दो ये कर देंगी, या इससे कह दो ये, इनसे हो जाता है काम, तो फिर ना सबसे पहले हमारी तरफ नजर होगी।
2: ऐसी बात नहीं है, वो सामने वाले ये सोचते हैं ना ये बेवकूफ है, इसीलिए ये कर लेती है, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ, ये सब्र करती हूँ ना, तो इसका मुझे अजर मिलेगा इंशाल्लाह, दुनिया में नहीं मिलेगा तो आखिरत में मिलेगा, यही कुर्बानी का नाम है।
0: सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके अंदर नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा हुआ और आपने बात करी, मुझे लगता है आपके इन बातों से इंशाल्लाह लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा।
1: डेफिनेटली बहुत अच्छी बात, आप लाइफ एग्जांपल
2: हैं। हम लोग हैं, नहीं हम तीन बहनें खुद के, हमारे दो भाई हैं तीन बहनें अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी खुद की दो बहनें वो लोग कहती हैं भाई तेरे जैसे कुर्बानी देने में हम लोग को बस की नहीं है।
0: क्या बात है, माशाल्लाह।
2: अम्मी रहती थी तो हमेशा मिसाल देती थी, तो हमारे भाई बहन सब लोग जब मेरा फोन जाता अम्मी कहते अम्मी तुम्हारी बेटी का फोन आया है आप बात कर लो, तो हम कहे आप लोग नहीं भाई बहन, आप लोग नहीं अम्मी की बेटी हो और बेटा हो, तो कहते थे नहीं अम्मी सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लेती है।
0: माँ तो जानती है ना। सही में, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जो बच्चा सबसे ज्यादा कुर्बानी दे रहा होता है वो सबसे अजीज भी होता है, वो पेरेंट्स के लिए अजीज नहीं होता, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए भी बहुत अजीज होता है।
2: जी बिल्कुल जी बाजी, मैं पहले अम्मी के घर पे भी देती थी और यहाँ ससुराल में तो सबसे ज्यादा,
0: ससुराल में हाँ
1: बहुत ज्यादा।
0: हाँ दूसरे घर में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर इंसान ना पूरी तरह से अलग हो जाता है कि आप अब, क्योंकि दूसरे घर का नियम कानून भी अलग होता है तो उसमें एडजस्ट करना।
1: लेकिन एक चीज है, कुर्बानी का सबसे अच्छा एहसास ये है कि आपको अफसोस नहीं होता।
0: अब ये तो वो वाला बताएगा जिसको, जो कुर्बानी कर रहा है, मुझे तो कई बार हुआ है अफसोस कि मैंने कुर्बानी
1: दी। आपको भी हुआ है हर बार जब आप करती
2: हैं? नहीं मुझे, हम नहीं, मुझे अफसोस होता है, लेकिन सामने वाला खुश होता है ना, तो मुझे सुकून मिलता है कि चलो उसको तो सुकून मिला सामने वाले को।
1: वेरी नाइस, ये बस आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही। और इस तरह से जो सेक्रीफाइस है वो आपको जिम्मेदारी का, केयर का, मोहब्बत का, इन सारी चीजों का एक लेसन भी देती है।
2: और रही बात, सब लोग कहते हैं ना जो अपना चीज रहता है किसी को देना, ये भी कुर्बानी, ये तो मेरे लिए एकदम इजी हो गया है।
1: अरे हाँ,
2: ये बहुत ज्यादा
0: माशाल्लाह,
1: बहुत अच्छी बात है।
0: बस अपना नुकसान ना हो इन सब में, है ना, सैक्रिफाइस करते करते कभी बार
2: नुकसान तो होता है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं सबर करती हूँ ना, तो उसमें कहती हूँ अल्लाह ताला हो सकता है इसमें खैर रखा हो।
0: वही मैंने आपसे
2: तो
0: बिल्कुल, मैंने यही आपसे कहा ना कि सब नहीं कर पाते, मैं तो नहीं कर पाऊँ जहाँ मेरा नुकसान होता
1: है। हिकमत से भी तो सैक्रिफाइस कर सकती हैं चीजें,
2: लेकिन मैं यही सोचती हूँ कैसे बीबी हाजरा रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने कितना सबर किया था औलाद को लेके तन्हाई में, तो उनको कितना अजर मिला आगे चल के, तो उनके हम लोग उनका वो मिसाल दे रहे हैं, लेकिन उनके हम लोग पैर के वो भी नहीं है धूल भी, लेकिन हो सकता है अल्लाह।

0: ताला दुनिया आखिर में कुछ तो दे दे आजा
1: सही सही
2: चलिए आपकी नियत बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं आपने बहुत सारे लिसनर्स को हम सबको इंस्पायर किया अपनी कन्वर्सेशन से अल्लाह ताला आपको इसी तरह से रखे और इस दुनिया को जरूरत है आप जैसे लोगों की जो वाकई कुर्बानी कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़ी चीज लाने के लिए ना कुछ लोगों को कुर्बानी देनी ही पड़ती है हालांकि बहुत टफ है हर कोई तैयार नहीं होता देने के लिए लेकिन कुछ लोग हैं अल्लाह के चोजन होते हैं लोग और वो कुर्बानी देते हैं
0: इसमें बहुत है हाँ ये तो है सामने वाला ये कहता है ना थोड़ा सा ये दे दो यही कुर्बानी ये नहीं कुर्बानी है कुर्बानी देना हर बस की बात नहीं है
1: सही तो अच्छा आमना जी क्योंकि हमारे स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 9:44 तो अब हम आपसे दो नंबर चूज करने को कहेंगे ठीक है आप वो दो नंबर हमें बताएंगी और वो अलग अलग नंबर हो सकता है उस पे आपका नाम भी हो सकता है किसी का नाम भी हो है ना पहले कॉलर का नाम हो सकता है आखिरी कॉलर का नाम हो सकता है किसी भी कॉलर का नाम हो सकता है और आज दोस्तों हम सिर्फ कॉलिंग पे नहीं आज हम मोबाइल के जो हमारे मैसेजेस हैं उनके भी नाम हमने ले लिए ठीक है उनके भी नाम हमने लिख लिए तो अब जिनके भी नाम रेंडम होंगे
2: लेके 11 तक के बीच कोई दो नंबर इनसे पिक करवा लेते हैं
1: लेकिन ये तो आपने लिखने वाले बताए
2: तो इसमें से एक ले लेंगे
1: इसमें हाँ इसमें से व्हाट्सएप टोटल हम नंबर कर देंगे
2: अच्छा,
1: है ना तो हमारे पास लिस्ट जो है वो तैयार है और ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ वो है 1 से लेकर 73 तक क्योंकि हमारे मैसेज व्हाट्सएप पे भी आए तो 73 के बीच कोई भी नंबर आप जो है चुन सकती हैं
2: दो नंबर
1: ठीक है और वो नंबर चुनिए अभी नाम मत बताइएगा नाजिया ठीक है हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद हम उन नाम को बताएंगे
2: नंबर पिक कर दीजिए
0: 170
1: ओके
0: और एक आप 17 रख लें
1: 17 7 से बड़ा वो है लगाओ 7 दोनों में ओके तो आमना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये दो नंबर बताए इन दो नंबर में जिनका भी नाम होगा वो ही होंगे आज के विनर जश्न ईद के इस खास शो के ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच
2: अल्लाह हाफिज़
1: मुझे याद है शायद एक साल पहले या फिर हमने जब भी ये प्रोग्राम किया था जब हम और नाजिया थे या फिर हम और कोई और थे कबीर थे आई गेस या महावश मुझे याद नहीं तो एक बार ऐसा हुआ था या दो तीन बार ऐसा हो चुका है कि जो शख्स नंबर बोल रहा है या नाम उसी का नाम आया है अगर जैसे 17 इन्होंने अगर बोला या 70 बोला है तो उसमें उन्हीं का नाम आ गया है ये भी इत्तेफाक जो है वो होता है तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये बहुत छोटा सा ब्रेक है एफएम 107 पे ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आज नाम डिस्क्लोज करेंगे कि कौन है आज का विनर सुनते रहें एफएम 107 दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
4: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
5: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107 लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ
4: आप सुन रहे हैं जश्न ईद विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: वादा करा था कि छोटा सा ब्रेक लेंगे दोस्त अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जश्न ईद ये शो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को उम्मीद है कि कटारा से लेकर दोहा पोर्ट तक और उसके अलावा बीचेस से लेकर वगैरह तक पूरे एंजॉयमेंट आप कर रहे होंगे कतर में और अब वक्त आ गया है कि जश्न ईद के इस खास शो में 1000 कतरी रियाल का जो वाउचर है मेडिकल मार्बल मेडिकल की तरफ से वो आपको जीतने का मौका मिले और जो हमने सवाल किया था वो ये कि सैक्रिफाइस का मतलब आपके लिए क्या है दो नंबर पिक किए आमिना ने और ये जो दो नाम है वो बताएंगी नाजिया दो नंबर थे 17 और 70 यानी कि 1770 ये दो जगह पे किनका किनका नाम लिखा है
2: तो एक नंबर जो 17 है वो है इसरा का तो इसरा आज हमारी विनर बनती है एंड ऑफ कोर्स जब हमने रैंडमली सारे नंबर्स को शफल किया तो नंबर 70 इज आसिफ
1: होए होए
2: क्या बात है
1: मुबारक मेरा भाई आसिफ कितने दिनों के बाद ये जो मेहनत काम लाई है रंग लाई है तो ये तो बहुत ही उम्दा बात हो गई कि इतने दिन से आप कॉल करते थे कॉल करने में आपका खर्चा हो रहा था, फिर उसके बाद बैलेंस खत्म हो गया, फिर हमने आपको कॉल करना शुरू करा, लेकिन फिर इन्होंने भरवा लिया लग रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आज ये जो खर्चा कर रहे थे आप हम लोग से मोहब्बत के लिए या बात करने के लिए, फाइनली वो रंग लाई और आप जीत चुके हैं 1000 कतरी रियाल का ये वाउचर जो कि है मेडिकल मार्बल की तरफ से। तो आप कोई भी है ना पाउड आउट करवाते हैं, कुछ लोग अलग अलग काम करवाते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनवाते हैं
2: मार्बल सेंटर में जाएंगे?
1: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मतलब कुछ भी करा ले मेडिकल में जाके,
2: कुछ भी करा, कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, एंड दैट टू वर्थ लाइक 1000 और आप दो भी ले सकते हो 500 के।
1: तो आप तुम्हारे ऊपर है भाई, देखो
2: अच्छा भाई मुबारक हो इसरा को।
1: मैनिक्योर पेडिक्योर तो नहीं होता ना वहाँ पे?
2: नहीं
1: हाइड्रा फेशियल होता है,
2: इसरा तो करा सकती
1: है। चले मेरा भाई बताओ, फिर मैं साथ में चल सकता तुम्हें।
2: ऑल राइट, सो यस दोस्तों, फिलहाल आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, इसरा और आसिफ आज के हमारे इस गेम के विनर्स हैं, तो आप दोनों को मुबारकबाद। इंशाल्लाह कल वापस हम इसी शो में हम दोनों आपसे मिलेंगे 8:00 बजे। शो का

है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लू आम वांतुम बखैर।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सलाम हो इब्राहिम अलैहिस सलाम पर, जब अल्लाह ताला ने उनके इखलास, इताद और कुर्बानी के जज्बे के बदले एक अजीम कुर्बानी अता फरमाई, जो सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमदर्दी, खुशियां बांटने और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत पैगाम बन जाती है। तलहा अशरफुज़्ज़मान से समाद कीजिए ईद उल अधा का खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी और रहमत।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन किराम, ईद उल

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, मैं हूँ तलहा अशरफुज़्ज़मान और आप सुन रहे हैं ईद उल अज़हा का खुसूसी प्रोग्राम पैगाम ईद। सामिने किराम, ईद उल अज़हा सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं, ये इंसानियत, हमदर्दी, मोहब्बत और इज्तमाई तआवुन का अजीम पैगाम है। कुर्बानी का ताल्लुक सिर्फ जानवर ज़बह करने से नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने, गरीबों के चेहरों पर खुशी लाने और माशरे

भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और इस खूबसूरत मौके को दिल से सेलिब्रेट करें. Stay blessed, stay happy and keep smiling always. Wish you a very joyful and safe Eid ul Adha. और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.

करेंगे खास स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ऑन स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग क्रिकेटर्स, स्टार क्रिकेटर्स मैं अगर कहूं तो मैं गलत नहीं हूं, राहुल द्रविड। जी दोस्तों, राहुल द्रविड इंडिया के सबसे अजीम बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उनके करियर में, उनके प्लेइंग करियर में उनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद होगा, क्योंकि उनकी बैटिंग टेक्निक और पेशेंस बहुत मजबूत थी। फास्ट बॉलर्स उनको आउट करने में काफी परेशान रहते थे बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिफेंस। राहुल द्रविड़ ने अपने इंटरनेशनल करियर में इंडिया को कई मुश्किल मैचेस में संभाला और अपनी काम पर्सनालिटी से फैंस का दिल जीता। उनकी पैदाइश बैंगलोर में हुआ और उन्होंने 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, जहां उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबको मुतासिर किया। राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में शामिल हैं। उन्होंने दुनिया के लगभग हर मुल्क में रन्स बनाए और फास्ट बॉलर्स का बहुत हिम्मत से सामना किया। कई ऐसे टेस्ट इनिंग्स हैं जिसको बताने में स्पोर्ट्स हाइलाइट्स काफ़ी छोटा पड़ जाएगा। तो वन ऑफ द टेस्ट मैच इनिंग्स अगर मैं हम यहाँ पे बताऊँ तो वर्स 2001 एट द ईडन गार्डन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और वो पार्टनरशिप विद वीवीएस लक्ष्मण आज भी एक मिसाल है कि आप अगर अच्छे बल्लेबाज हैं और अगर आपके साथ कामनेस और पेशेंस है तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी टॉप बॉलर्स को आप रोक सकते। और इन द एंड इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उस टेस्ट मैच में हरा कर ऑस्ट्रेलिया का जो 16 सक्सेसिव टेस्ट विक्ट्रीज उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड था ये, उसको रोका। एंड आज भी वो इनिंग्स एक नौजवान क्रिकेटर के लिए एक मिसाल के तौर पर हर एक्सपर्ट्स, हर कोचेस सबको कहता है कि देखिए विनिंग्स ऑफ राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण। उनकी पार्टनरशिप सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और लक्ष्मण के साथ बहुत मशहूर रही हैं। रिटायरमेंट के बाद राहुल द्रविड़ ने कोच के तौर पर भी बहुत कामयाबी हासिल की। उन्होंने इंडिया के यंग क्रिकेटर्स

की खुशबू, कुर्बानी का जज्बा और खुशियों का जहां। ये ईद हमें सेक्रिफाइस, पेशेंस और शेयरिंग का पैगाम देती है। अल्लाह करे कि ये दिन आपके लिए खुशियाँ, बरकत और सुकून लेकर आए। अपने घर वालों, दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियाँ बांटना ना भूलें। दुआ है कि अल्लाह आपकी हर कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को कामयाबी और रहमत से भर दे। मैं हूँ नाजिया, मेरी और FM 107 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिल से ईद उल अधा मुबारक।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू आवर स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड ईद वैल्यूज। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं काइंडनेस की, और ये कहते हैं कि ईद उल अधा की रूह है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि छोटी छोटी काइंडनेस भी कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, और शायद इसे ही कहते हैं रिपल इफेक्ट। बिल्कुल उस लहर की तरह जो पानी में एक छोटी सी बूंद गिरने से दूर तक फैल जाती है। ईद उल अधा भी असल में इसी काइंडनेस, सेक्रिफाइस और शेयरिंग का पैगाम देती है। जब हम कुर्बानी करते हैं तो सिर्फ एक फर्ज अदा नहीं करते, बल्कि अपने अंदर की सेल्फिशनेस को, अपने अंदर के ईगो को, अपने अंदर की अना को कुर्बान कर देते हैं। ये एक्ट हमें सिखाता है कि अपनी खुशी को भी कई बार दूसरों की खुशियों के साथ जोड़ कर देखो। शायद यही असल इंसानियत है। सोचिए, जब आप किसी जरूरतमंद को गोश्त का एक हिस्सा या एक जब आप डिस्ट्रीब्यूट

0: है तो वो हिस्सा देते हैं तो सिर्फ आप उसे एक मील उसके साथ शेयर नहीं करते बल्कि उस पल में एक मुस्कुराहट उस पल में एक एतमाद उस पल में एक भरोसा भी आप उस तक पहुंचाते हैं ईद की खुशियां अधूरी हैं अगर हम आसपास अपने लोगों का और ऐसे लोगों का जो जरूरतमंद है उनका ख्याल ना रखें कई बार एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस लोगों को मजबूर कर देता है बड़े बड़े काइंडनेस एक्ट करने के लिए कुछ आपने किया जो उस शख्स ने आपसे सीखा और वो अपनी उसी कैपेसिटी में जितनी भी उसकी है इस्ताद कुछ ना कुछ बेहतर किसी और के लिए करना चाहता है वो शख्स कल किसी और के लिए अगर अच्छा करता है तो यकीन मानिए इसका सवाब आपको भी मिलेगा काइंडनेस का ये सिलसिला सिर्फ चैरिटी तक ही महदूद नहीं है आप एक सिंपल जेस्चर से भी किसी की लाइफ में फर्क पैदा कर सकते हैं जैसे किसी वर्कर को ईद मुबारक कह देना किसी कलीग के लिए चाय बना देना या किसी तन्हा इंसान के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लेना ये छोटी छोटी चीजें सोसाइटी को ज्यादा कनेक्टेड और कंपैशनेट बनाती हैं ईद उल अधा हमें और आपको सेक्रीफाइस करना सिखाता है हमें और आपको बताता है एम्पैथी को अपनी लाइफ में किस तरह से इनकलकेट करना है दोस्तों ये फेस्टिवल सिर्फ रिचुअल नहीं है बल्कि ये एक माइंडसेट है जहां इंसान दूसरे के लिए भी सोचता है उनकी मदद करता है अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करता है और अपनी खुशी को कुर्बान करने के लिए तैयार है आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में काइंडनेस का रिपल इफेक्ट और ज्यादा पावरफुल हो गया है एक पॉजिटिव सा मैसेज एक इंस्पायरिंग स्टोरी या एक स्मॉल हेल्प भी सोशल मीडिया के जरिए हजारों लोगों तक पहुंचाई या पहुंच सकती है इस तरह एक छोटी सी गुड डीड एक बड़ा मूवमेंट बन जाती है अगर हम सिर्फ ईद के दिन ही नहीं बल्कि रोजाना अपनी जिंदगी में काइंडनेस को अपना लें तो यकीन मानिए सोसाइटी में एक बड़ा रियल पॉजिटिव चेंज लेकर हम आ सकते हैं हर घर हर मोहल्ला हर शहर एक बेहतर जगह बन सकती है क्योंकि याद रखने वाली बात यह है कि काइंडनेस फ्री होती है काइंडनेस कंटेजियस होती है और इसका इम्पैक्ट प्राइसलेस होता है एक छोटी सी मेहरबानी किसी की जिंदगी बदल सकती है दोस्तों इस ईद सिर्फ कुर्बानी जानवर की ना दें बल्कि अपने ईगो अपनी सेल्फिशनेस अपने सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड की भी कुर्बानी दें और कोशिश करें कि आप अपनी काइंडनेस से दूसरों को इस तरह से मुतासिर करें कि वो भी मजबूर हो जाएं दूसरों के साथ उसी तरह से एक्ट ऑफ काइंडनेस करने के लिए क्योंकि जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो उसकी लहर कभी भी रुकती नहीं टूटती नहीं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए आप सभी को एक बार वापस से ईद की ढेरों मुबारकबाद सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आप सभी सुनने वालों को ईद उल अधा की दिली मुबारकबाद अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा बनाए रखे

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: ईद की महकती हुई सुबह, घर घर से उठती हुई खुशबू और दस्तरखान पे सजती मोहब्बत की कहानी, जहां हर बाइट में है अपनों का प्यार और हर स्वाद में ईद की पुकार। ईद की मिठास, घर की रसोई का जादू और हर डिश में छुपी खुशियों की कहानियों। सुनिए प्रोग्राम ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज तीसरा दिन ईद का, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छी ईद मना रहे होंगे और अभी तक की ईद बहुत अच्छी सबकी गुजरी होगी इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल सरवर मिर्जा आपके साथ जुड़ गया है FM 107 पर लेकर आपका खुसूसी प्रोग्राम ईद किचन्स, और जहाँ आज के खूबसूरत ईद स्पेशल प्रोग्राम में हम सबको दिल से मुबारकबाद देने के साथ साथ बात करने वाले हैं दो

ऐसी डिशेस की जो सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि पूरी महफिल का मूड चेंज कर देती है भाई। और वो क्या है, मटन की कलेजी और मीठा सा लजीज शाही टुकड़ा। भाई जरा सोचिए, किचन में हल्की सी गर्माहट है, कलेजी जब पैन में गिरती है तो एक खास सी खुशबू उभरती है जो दिल को इंस्टेंटली भूख का एहसास दिलाती है, और दूसरी वहीं पे मीठी सी चाशनी में डूबी हुई वो शाही टुकड़े की ब्रेड, ओए ओए ओए भाई, जो ईद के दिन डेजर्ट का स्टार होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम कंप्लीट जर्नी करेंगे नमकीन से मीठे तक, और हर लम्हे में हम धीमी स्पीड में एंजॉय भी करेंगे, हल्की आंच पे रख के आहिस्ता आहिस्ता, वो शीरी वो लज्जम वो गट्टम गट्टा गट। तो जनाब, ईद का दिन हमेशा से ही फ्लेवर्स का दिन होता है जहां हर घर में अलग अलग डिशेस बनती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑलमोस्ट हर किचन का हिस्सा होती हैं, और उसमें कलेजी जो एक क्विक और फ्लेवरफुल डिश होती है, और ईद के दिन तो खासम खास भाई, अक्सर ईद की सुबह इसको सबसे पहले बनाया जाता है क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत सेटिस्फाइंग होती है। इसी के साथ साथ शाही टुकड़ा जो दूध मलाई और मीठी चाशनी से बना होता है, तो भाई दोनों ही मील एक कंप्लीट सेलिब्रेशन बन जाती है, एक बेहतरीन कॉम्बो बना के देती है हमें ईद का। तो आज हम इसी कॉम्बिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे अंदाज में कि आप आसानी से फॉलो भी कर सकें और उसे महसूस भी कर सकें। भाई अगर हम कलेजी की बात करें पहले, तो ये एक ऐसी डिश है जिसमें स्पीड और टेक्निक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ज्यादा पकाना भी नहीं होता और कम पकाना भी नहीं होता, सही बैलेंस ही उसका परफेक्ट टेक्सचर देता है। और इसी तरह शाही टुकड़ा एक ऐसी डेजर्ट है जिसमें पेशेंस और लेयरिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई ब्रेड को फ्राई करना, चाशनी बनाना, फिर रबड़ी या दूध का मिक्सचर तैयार करना, ये सारे स्टेप्स मिलकर एक रॉयल डेजर्ट बनाते हैं। तो आज हम इन दोनों डिशेस के हर स्टेप को डिटेल के साथ समझने वाले हैं ताकि एक घर के अंदर इजिली कहना चाहिए अच्छी डिश बन जाए और सब उसका लाभ भी उठाएं। तो भाई कुकिंग एक ऐसी चीज है जहां आप अपनी फीलिंग्स को भी मिक्स करते हैं। जब आप कलेजी बनाते हैं तो उसका सिजलिंग साउंड और उसकी खुशबू आपको एक एनर्जी देती है, और जब आप शाही टुकड़ा तैयार करते हैं तो उसकी मिठास और प्रेजेंटेशन आपके मूड को सॉफ्ट और रिलैक्स बना देती है। तो भाई ये दोनों डिशेस एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करती हैं, एक साइड स्पाइसी और सेवरी और दूसरी साइड मीठी और क्रीमी। तो इसी बैलेंस का नाम है ईद, और जो ओरिजिनल रायका भी होता है ईद का। तो आज हम इसी बैलेंस को फील करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए भाई, सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा शेफ वही है जो फूड सेफ्टी का ख्याल रखे, कुछ सिंपल से फूड सेफ्टी स्टेप्स जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी किचन सेफ्टी की बात हमेशा सोच लेनी चाहिए या कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट शेफ्स ही हमेशा सेफ शेफ्स होते हैं। सबसे पहले क्लीन योर हैंड्स, हमेशा फूड हैंडल करने से पहले हैंड वॉश करें, जर्म्स को बाय बाय करें। नंबर दो, शार्प नाइफ्स यूज कीजिए। एक शार्प नाइफ ब्लंट नाइफ से ज्यादा सेफ होती है, क्यों? क्योंकि ब्लंट नाइफ स्लिप कर सकती है और कट्स लग सकते हैं। नंबर थ्री, कटिंग बोर्ड स्टडी रखें। नीचे कोई डंप क्लॉथ वगैरह रख सकते हैं आप, या फिर ऐसा चॉपिंग बोर्ड यूज करें जिसके नीचे कोई रबर वगैरह लगी हुई हो ताकि स्लिप होने का डर ना हो। नंबर फोर, इंग्रेडिएंट्स रेडी रखें। सब चीजें पहले कट और वॉश कर लें ताकि कुकिंग स्मूथ हो। और याद रखिए, आज हम हीट यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अटेंशन अब भी की इंग्रेडिएंट्स हैं। कुकिंग हमेशा फन होनी चाहिए, रश्ड नहीं। टाइम लीजिए और प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई इंग्रेडिएंट्स की और प्रिपरेशंस की क्या सूरत हाल रखनी है। आप अगर घर पर हैं तो इसी वक्त अपने किचन में आप तशरीफ ले जा सकते हैं, नोट्स बनाना चाहें तो बनाइए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप रिलैक्स रहें और इस प्रोसेस को इंजॉय करें। मैं हर चीज को सिंपल और आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिना किसी कंफ्यूजन के आप फॉलो करते रहिए स्टेप बाय स्टेप। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम ईद के इस टेस्टी और ब्यूटीफुल सफर के असल पार्ट में एंटर कर रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम कलेजी के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। आपको फ्रेश मटन कलेजी चाहिए होगी जो अच्छी तरह

साफ की हुई हो, है ना। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कलेजी के ऊपर एक स्किन होती है, यूजुअली हमें वो हटानी होती है, तो उसको हटाना बेहद जरूरी है, वरना कलेजी सही से पक नहीं पाती, स्मेल नहीं जा पाती। इससे भी पहले आपको कलेजी साफ करना आना चाहिए, और उसको साफ करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं। आप दूध में इसको, पहले तो आप इसको सिरके में डुबो दीजिए, नमक और सिरके के साथ थोड़ा सा, आप सिरका नहीं है तो नींबू डाल दीजिए, पानी में भिगो दीजिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये पूरा इसका जो खून वगैरह है वो निकल जाएगा। अब आती है बारी, इसको आप निकालिए, स्ट्रेन कीजिए और थोड़ी देर दूध में डाल दीजिए, बिल्कुल। तो कलेजी का जितना कसैला पना है और जितनी भी हीक है वो दूध जो है उसको निकाल देता है पूरे तरीके से। बस यहाँ पे आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए, धोना नहीं है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा जो दूध इसमें लगा रहेगा वो मजा देगा हमारी हंडिया के अंदर भी, सही हो गया। यहाँ पर मैं मिकदार नहीं बता रहा हूं, आपके ऊपर है, आप जितनी भी चीजें सेट कर रहे हैं अपने हिसाब से कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। हर बार मैं बताता आया हूं इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इस बार शो को इसी तरह रखा है कि इंग्रेडिएंट्स के अलावा भी कुछ बातें हम कर सके, ठीक है। तो इसके अलावा प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन पेस्ट है, नमक है, हल्दी है और थोड़ी सी लाल मिर्च। भाई नॉर्मल चीजें हैं जिसका हम रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं और जिनको हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं, जो हर किचन में मिल जाती हैं। कुछ लोग इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू भी ऐड करते हैं, मैं करता हूं फाइनल टच के लिए, तो वो जरूरी भी है। वहीं शाही टुकड़े के लिए आपको ब्रेड स्लाइस चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, इलायची, थोड़ी सी मलाई और कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए होते हैं, बस हो गया। ये तमाम चीजें सिंपल हैं और आसानी से मार्केट में भी मिल जाती हैं, आपके घर के अंदर होंगी होगी। ईद का माहौल है भाई, ईद का टाइम है, तो ये सारी चीजें तो आपने पहले से ही मंगा के रख ली होंगी, लेकिन इसका सही कॉम्बिनेशन ही आपकी डिश को परफेक्ट बनाता है, ये बात हमेशा याद रखिए। अब हम कलेजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले कलेजी को छोटे पीसेस में कट करें और अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि कोई स्मेल वगैरह ना रहे, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया है। अब एक पैन में ऑयल गरम करें और उसमें स्लाइस्ड प्याज डालकर हल्का गोल्डन होने दें। इस स्टेज पे आपको इसको भून लेना है और इसके बाद किचन में एक प्यारी सी खुशबू आप देखेंगे फैलने लगी भाई। जब प्याज तैयार हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए और थोड़ी देर उसको और भून लीजिए। आपको दिख जाएगा कि ये गोल्डन ब्राउन जब होना शुरू हो जाए, तो भाई जब ये भुन जाए तो आप समझ लीजिए कि ये रेडी हो गया है। यहां तक आपका प्रोसेस सिंपल और स्मूथ होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इस पैन में कलेजी डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी अगर आप चाहे ना भूनने के वक्त, तो वो हम करते ही है, तो छोटी सिंपल चीजें मैं अवॉइड ही कर रहा हूं बताना, क्योंकि प्रोग्राम में दूसरी चीजें भी ऐड करनी है जितना टाइम हमारे पास है, ठीक है। तो भाई जैसे ही कलेजी पैन में आप ऐड कर देते हैं, उसका कलर चेंज होने लगता है और एक स्ट्रॉन्ग सा अरोमा आने लगता है। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप इसे ज्यादा देर तक ना पकाएं। कलेजी अगर ओवर कुक हो जाती है तो वो हार्ड हो जाती है, ये भी याद रखिए, और टेस्ट भी उसका इफेक्ट होता है, इसलिए मीडियम हीट पर इसे अच्छी तरह स्टिर करते रहें और इसमें नमक, हल्दी और मिर्च ऐड कर दें। थोड़ी देर में ही ये टेंडर और जूसी हो जाती है और ये स्टेज ही आपकी कलेजी को परफेक्ट बनाती है। जब कलेजी ऑलमोस्ट रेडी हो जाए तो आप इसमें स्लाइस्ड हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करें, आखिर में हल्का सा नींबू स्क्वीज करके दें, जो इसके टेस्ट को और एनहेंस करेगा। ये छोटी सी चीज पूरी डिश का फ्लेवर लिफ्ट कर देती है। आप देखेंगे कि कलेजी का टेक्सचर सॉफ्ट है और उसकी खुशबू बहुत ही इनवाइटिंग है। ये एक क्विक डिश है, लेकिन अगर सही तरीके से बनाई जाए तो ये किसी भी हैवी डिश को कॉम्पिटिशन में ला सकती है भाई। ये ईद ब्रेकफास्ट या लंच के लिए परफेक्ट चॉइस होती है। अब हम शाही टुकड़े की तरफ आ जाते हैं। एक रॉयल डेजर्ट माना जाता है भाई हमारे यहाँ। तो सबसे पहले ब्रेड स्लाइसेस को ट्रायंगल शेप में काट लें और ऑयल या घी में गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लें। वैसे हमारे यहाँ तो रेक्टेंगल शेप में भी काटे जाते हैं शादी वगैरह में, अगर आपने याद हो, यूपी की बात कर रहा हूं मैं। तो जनाब ये फ्राइड ब्रेड ही इस डिश का बेस होती है। जब ब्रेड क्रिस्पी हो जाए तो उसे अलग रख दें। अब एक अलग पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी बनाएं और इस चाशनी में हल्का सा इलायची पाउडर ऐड करें ताकि एक मीठी सी खुशबू आए, और ये चाशनी शाही टुकड़े का ही असली मिठास का जरिया बनती है। अब दूध को एक पैन में उबालकर थोड़ा थिक कर लें और उसमें चीनी और इलायची ऐड करें। ये आपकी रबड़ी टाइप मिक्सचर बन जाती है जो शाही टुकड़े को क्रीमी बनाती है। अब फ्राइड ब्रेड को हल्का सा चाशनी में डिप करें और फिर उसके ऊपर ये दूध वाला मिक्सचर डाल दें। ऊपर से थोड़ी सी मलाई और चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम और पिस्ता डाल दें। ये लेयरिंग इस डेजर्ट को शाही बना देती है। हर लेयर में टेस्ट और रिचनेस बढ़ जाती है।

चलिए जनाब, अब जब कलेजी और शाही टुकड़ा दोनों रेडी हो गए हैं तो आपके पास एक कंप्लीट ईद प्लेटर है। एक साइड स्पाइसी गरम और फ्लेवरफुल कलेजी और दूसरी तरफ मीठी सॉफ्ट और क्रीमी शाही टुकड़े की मिठाई। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस मील को स्पेशल बनाता है। आप इसे प्यार से सर्व करें और अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता बल्कि खुशी शेयर करने के जरिया भी बनता है। आज का ये कॉम्बिनेशन आपके ईद टेबल को जरूर स्पेशल बनाने वाला है। तो चलिए, अब जब हमारी कलेजी और शाही टुकड़ा रेडी हो चुका है तो बात करते हैं कि इस टेस्टी मील को हम हेल्दी तरीके से कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अक्सर ईद पर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं और फिर हैवीनेस फील होती है, लेकिन अगर थोड़ी प्लानिंग कर ली जाए तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के एंजॉय भी कर सकते हैं। भाई, कलेजी एक ऐसी डिश है जो न्यूट्रिएंट्स से भरी होती है, लेकिन इसका टेस्ट और टेक्सचर तभी परफेक्ट रहता है जब इसे सही तरीके से पकाया जाए। इसलिए जरूरी है कि हम इसे ओवरकुक ना करें और मीडियम हीट पर लाइटली कुक करें ताकि ये सॉफ्ट और जूसी रहे। इसी तरह शाही टुकड़े को भी बैलेंस के साथ खाना चाहिए। हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पसंद की चीजें अवॉइड करें। यहाँ पे मैं बात करने का यही जरिया निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट बनाया है खाने को भी, ताकि इन चीजों पे भी हम बात कर सकें। बल्कि इसका मतलब होता है कि आप स्मार्ट तरीके से खा लीजिए चीज और उसको आप इंजॉय भी कीजिए। जब आप कलेजी बना रहे होते हैं तो सबसे जरूरी बात होती है कि कुकिंग टाइम क्या लगा है। कलेजी बहुत डेलिकेट होती है और ज्यादा देर पकाने से टफ हो जाती है, सख्त हो जाती है, जैसे मैंने बताया। इसीलिए शॉर्ट कुकिंग ही बेस्ट होती है, मगर उसको करना कैसे है मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप चाहें तो उसे पहले हल्का सा क्लीन करके थोड़ी देर, जैसे मैंने बताया, विनेगर या दूध वगैरह का इस्तेमाल करके उसको आप अच्छे से नॉर्मल कर लीजिए। ये छोटी सी टिप आपकी कुकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है और आपकी डिश ज्यादा एंजॉयबल बन जाती है। वहीं एक और इंपॉर्टेंट बात है पोर्शन कंट्रोल की। कलेजी और शाही टुकड़ा दोनों ही रिच डिशेज हैं, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी लेना जरूरी नहीं होती। आप अगर थोड़ी सी कलेजी प्लेट में लें और उसके साथ थोड़ा सैलेड ऐड करें तो आपका मील बैलेंस हो जाता है। इसी तरह शाही टुकड़े को भी आप डेजर्ट के तौर पर छोटी क्वांटिटी में लेना ही बेस्ट तरीका होगा। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो उसको टेस्ट तो कीजिए भाई, ईद है, हर बाइट को धीरे धीरे एंजॉय कीजिए ताकि आपको टेस्ट भी पूरा महसूस हो और आप ओवर ईट भी ना करें। ये सिंपल हैबिट आपको ईद के दिन भी लाइट और फ्रेश फील करवाती रहेगी। जनाब, हाइड्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम स्पाइसी कलेजी और मीठा शाही टुकड़ा खा रहे होते हैं तो बॉडी को पानी की जरूरत होती है, इसलिए आप अपनी मील्स के साथ पानी, नींबू पानी या हल्की सी लस्सी जरूर इंक्लूड करें और ये आपके डाइजेशन को भी सपोर्ट करती है और हैवीनेस को भी कम करती है। अक्सर हम पानी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक सिंपल हैबिट है जो आपकी ईद को बहुत कम्फर्टेबल बना सकती है। भाई, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, आपको फ्रेश और टिक भी लगता रहेगा, ये एनर्जाइज करता रहेगा आपको। अब अगर घर में हम शाही टुकड़े को थोड़ा हेल्दी बनाना चाहें तो उसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं, व्हाई नॉट। जैसे कि आप ब्रेड को डीप फ्राई करने के बजाय शैलो फ्राई करें या बेक भी कर सकते हैं। इसी तरह शुगर सिरप को थोड़ा हल्का रखें या सिर्फ रबड़ी के साथ सर्व करें। ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट है आपके डेजर्ट को थोड़ा हल्का बना देती है, लेकिन टेस्ट फिर भी मेंटेन रहता है। कुकिंग का असल मजा ही ये है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस करें और अपने लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार करें। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस। आप ईद के दिन हर चीज एंजॉय करें भाई, लेकिन मॉडरेशन के साथ। अगर आप कहीं परहेज वगैरह कर रहे हैं, कलेजी का एक परफेक्ट बाइट और शाही टुकड़े का एक मीठा टेस्ट आपको पूरा सेटिस्फाई कर देता है। ज्यादा खाने के बजाय क्वालिटी पर फोकस करें, हर बाइट को फील करें और उसे एंजॉय करें। इसी तरह आप ना सिर्फ अपने टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं बल्कि अपनी हेल्थ को भी ख्याल में रख सकते हैं, और यही असल में एक स्मार्ट और हेल्दी ईद सेलिब्रेशन है जहां टेस्ट और हेल्थ दोनों साथ साथ चलती हैं। चलिए भाई, एक इसमें हमने सेगमेंट रखा है ग्लोबल ईद प्लेट। ईद सिर्फ एक मुल्क तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है और हर जगह इसका अपना खास फूड कल्चर होता है। अगर हम कलेजी की बात करें तो ये साउथ एशिया में बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसी तरह मिडिल ईस्ट में भी लिवर डिशेज बनाई जाती हैं, एंजॉय करी जाती हैं बहुत ज्यादा। यहाँ कलेजी को ज्यादा सिंपल तरीके से लेमन और हर्ब्स के साथ सर्व किया जाता है।

कल्चर का अपना अंदाज होता है, लेकिन एक चीज कॉमन होती है, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और सिंपल कुकिंग। और यही वजह है कि हर जगह कलेजी अपने यूनिक टेस्ट के साथ पसंद की जाती है। भाई अगर हम थोड़ा और गहरा सोचें तो कलेजी की कुकिंग हर जगह एक ही प्रिंसिपल फॉलो करती है, इसे ज्यादा पकाना नहीं होता, जो हमारे यहाँ बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर हम बर्रेसगीर में देखें, गलाए जा रहे हैं, कुकर में सीटी लगाए जा रहे हैं, नहीं भाई, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या मिडिल ईस्ट में या यूरोप में, हर जगह शेफ इस बात का ख्याल रखते हैं कि लिवर सॉफ्ट और जूसी होना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल कुकिंग रूल है जो हर कल्चर में फॉलो होता है। इसी से पता चलता है कि कुकिंग के कुछ रूल्स हमेशा सेम रहते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में ईद एंजॉय कर रहे हो। अब अगर हम शाही टुकड़े की बात करें तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ग्लोबल कनेक्शन रखता है। मिडिल ईस्ट में आपको उम अली जैसा डेजर्ट मिलता है जो ब्रेड और मिल्क से बनाया जाता है, एक डो तैयार करके। यूरोप में ब्रेड पुडिंग भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। ये सब डेजर्ट एक बेसिक आइडिया शेयर करते हैं, ब्रेड को स्वीट और क्रीमी फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये सिमिलैरिटी ये बताती है कि फूड का कंसेप्ट यूनिवर्सल होता है, बस उसे हर कल्चर अपने तरीके से प्रेजेंट करता है। तो जनाब, आजकल मॉडर्न फूड कल्चर में लोग ट्रेडिशनल डिशेस को फ्यूजन टच भी देते हैं। आप रेस्टोरेंट्स में शाही टुकड़ा एक न्यू वर्जन में देख सकते हैं, जहां आइसक्रीम, चॉकलेट सॉस या नट्स का एक्स्ट्रा यूज किया जा रहा है। लेकिन असली मजा हमेशा ट्रेडिशनल टेस्ट में ही होता है। मैं नहीं कह रहा कि वो बुरा है, आजकल जेन ज़ी बुरा मान जाएंगे भाई मुझे सुन के। जब ब्रेड परफेक्टली क्रिस्प हो, चाशनी बैलेंस्ड हो और रबड़ी क्रीमी हो, ओए होए होए, तभी उसका असली फ्लेवर सामने आता है। ये ऑथेंटिसिटी ही उसे स्पेशल बनाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल रेसिपी का अपना एक अलग ही चार्म होता है। तो वहीं जनाब, अगर आप अपनी ईद टेबल को थोड़ा ग्लोबल टच देना चाहते हैं तो आप सिंपल चेंजेस कर सकते हैं। भाई कलेजी के साथ आप लेमन वेजेस और फ्रेश हर्ब्स सर्व कर सकते हैं, जो मिडिल ईस्ट स्टाइल का फील देती है। इसी तरह शाही टुकड़े को आप एलिगेंट प्लेट में सर्व कर सकते हैं और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और हल्का सा सेफ्रॉन वगैरह भी डाल सकते हैं। भाई प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो आपके सिंपल खाने को भी स्पेशल बना देती है। जब खाना अच्छा दिखता है तो उसका टेस्ट भी और ज्यादा इंजॉयबल लगता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कलेजी और शाही टुकड़ा सिर्फ डिशेज ही नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल कनेक्शन का हिस्सा है। दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स अपने अपने तरीके से इन्हें बनाते हैं, लेकिन उनका कोर कंसेप्ट सेम रहता है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स और परफेक्ट टेक्निक। ईद का दिन भी इसीलिए स्पेशल होता है क्योंकि ये हमें सिर्फ अपनों के साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के साथ जोड़ता है। भाई फूड इस कनेक्शन को और मजबूत बनाता है और आज का ये सफर भी इसी कनेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए है। तो दोस्तों, अब आते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, प्रोग्राम के आखिरी भाग की तरफ, जहां पर हम क्लोजिंग भी करेंगे, प्लेटर भी सजाएंगे और आपसे अलविदा भी लेंगे। सबसे पहले हमने बात करी मटन कलेजी की, वो सिजलिंग खुशबू महसूस की जो किचन को एक जिंदा एनर्जी देती है, और साथ ही शाही टुकड़े की मीठी और क्रीमी मिठास का भी लुत्फ उठाया। ये दोनों डिशेस एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती हैं, एक तरफ गरम स्पाइसी और क्विक कलेजी और दूसरी तरफ हल्का सा ठंडा या गरम सर्व किया गया सॉफ्ट और मीठा डेजर्ट। भाई ये कॉम्बिनेशन सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है जो आपकी ईद के दिन को स्पेशल बनाता है। आज का प्रोग्राम भी इसी एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाने के लिए लाया गया है। बात करें प्रेजेंटेशन की तो इसका भी एक अपना ही जादू होता है। जब आप कलेजी सर्व करें तो उसे हल्का सा फ्राई करें, ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्च के स्लाइसेस डाल दें जो उसे फ्रेश और कलरफुल बनाते हैं, और साथ में भाई नींबू के स्लाइसेस जो हैं वो रख दें जो एक एक्स्ट्रा टैंगी टच देते हैं। दूसरी तरफ शाही टुकड़े को एक अच्छी प्लेट में अरेंज करें, ऊपर से बादाम, पिस्ता और हल्का सा सेफ्रॉन डाल दें। जब ये दोनों चीजें एक साथ टेबल पर आती है तो सिर्फ देखकर ही नहीं दिल खुश हो जाता है। भाई अच्छी प्रेजेंटेशन टेस्ट के एक्सपीरियंस को और भी इनहेंस कर देती है, हमेशा याद रखिए। तो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, उसका यही मतलब है। तो साहब, ईद का असल मजा तब ही आता है जब हम अपनों के साथ मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। भाई जब फैमिली एक टेबल

पर बैठी हो, बच्चे हंस रहे हो और हर किसी के चेहरे पर स्माइल हो, खुशी हो, हंसी हो, तो गाना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक याद बन जाता है। हमेशा याद रखिए, ईद अपनों के साथ ही सेलिब्रेट कीजिए, इसी तरह के खुशी के दूसरे दिन भी दूसरों को माफ कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपनों के साथ मिलकर आगे बढ़िए। कलीजी की हर बाइट और शाही टुकड़े का हर स्पून आपके लिए एक मेमोरी क्रिएट करता है। आप अपने दोस्तों को इनवाइट करें, अपने प्यारों के साथ बैठें और इस मील का मजा लें और इसे एक छोटी सी सेलिब्रेशन बना दें। ये मोमेंट्स ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, हमेशा याद रखिए। तो साहब, आज के प्रोग्राम से हमने ये भी सीखा कि कुकिंग सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना ही नहीं होती बल्कि एक फील होती है। कलीजी बनाते वक्त टाइमिंग का ख्याल रखना और शाही टुकड़ा बनाते वक्त पेशेंस और लेयरिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक परफेक्ट रिजल्ट देती हैं। जब आप इन चीजों को समझते जाते हैं तो आप कुकिंग को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक एंजॉयबल एक्टिविटी बना लेते हैं। इसीलिए जब भी आप किचन में जाएं, स्ट्रेस के साथ नहीं बल्कि सुकून और खुशी के साथ कुकिंग करें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन डिशेज में थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी ऐड कर सकते हैं। कलीजी में आप अलग मसालों का बैलेंस ट्राई कर सकते हैं या उसे थोड़ा ड्राई या ग्रेवी स्टाइल में भी बना सकते हैं, व्हाई नॉट। इसी तरह शाही टुकड़ा में भी आप चॉकलेट ड्रिजल या आइसक्रीम के साथ एक मॉडर्न ट्विस्ट भी दे सकते हैं। ये क्रिएटिविटी ही कुकिंग को एक्साइटिंग बनाती है, लेकिन साथ ही ट्रेडिशनल टेस्ट को मेंटेन करना भी जरूरी होता है क्योंकि वही असल फ्लेवर होता है जो हमें अपनी रूट से जोड़ता है। तो जनाब, आज के दिन का एक और इम्पोर्टेंट पहलू है शुक्र अदा करना। जब हम अपने टेबल पर इतने टेस्टी डिशेस देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सब अल्लाह सुभानहु ताला की नेमत है। कलेजी का हर बाइट और शाही टुकड़े का हर मीठा टेस्ट हमें ये एहसास दिलाता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसलिए हर मील के साथ शुक्र का जज्बा रखना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा एहसास आपकी खुशी को और भी बढ़ा देता है। ईद शेयरिंग का नाम है और अगर आप अपनी बनाई हुई डिशेज, आज की डिश की बात करें, कलेजी और शाही टुकड़ा किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें तो उसका मजा ही कुछ और होता है। खाना जब बनता है या बनाया जाता है या बांटा जाता है तो सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि दिल भी खुश हो जाता है। आपकी छोटी सी मेहनत किसी और के लिए बड़ी खुशी बन सकती है, ये याद रखने की जरूरत है। इसीलिए आज के दिन थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी खुशियां दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। ये ही ईद की असल पहचान है और रूह है। छोटों को, बच्चों को, अपकमिंग जनरेशन को ये बात सिखाइए, उनके हाथ से दिलवाइए, उनके हाथ से तकसीम करवाइए। आप देखिए कि कितनी इंशाल्लाह ताला आपको भी खुशी मिलेगी और ईद कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो जनाब, आप इस रेसिपी को फ्यूचर के लिए भी ऐड कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कलेजी एक क्विक और टेस्टी है जब आपको कुछ स्पेशल सर्व करना हो और शाही टुकड़ा एक परफेक्ट डेजर्ट है। हर दफा जब आप इन डिशेस को बनाएंगे, आज का ये प्रोग्राम और इसकी यादें आपके साथ होंगी। सरवर मिर्जा को याद करके दुआएं जरूर दीजिएगा। कुकिंग एक ऐसी स्किल है जो वक्त के साथ और बेटर होती चली जाती है और हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ नया सिखा खाता जाता है। तो दोस्तों, आज का सफर एक कंप्लीट एक्सपीरियंस था। उम्मीद करता हूँ खुशबू से शुरू हुआ, फिर रेसिपी तक पहुंचा, हेल्थ टिप्स भी मैंने समझाने की कोशिश की, वहीं हमने ग्लोबल कनेक्शन पे भी बात करी और अब हम इसे एक प्यार से सेलिब्रेट करके और आपसे अलविदा भी लेंगे। भाई, ये सब सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक जर्नी थी जो हमने मिलकर साथ गुजारी। आज ईद का खास दिन था तो सोचा आपके साथ गुजर रहा है तो कुछ बनाया भी जाए, पकाया भी जाए, यादें शेयर भी करी जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, 666-22-107। भाई, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो खींच के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब वक्त है इस महफिल को धीरे धीरे इख्तिताम तक पहुंचाने का। उम्मीद है कि आज का ये ईद स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और एंजॉयबल रहा होगा। आपने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो जबरदस्त डिशेस बनाना सीखी, एक सेवरी एक स्वीट, और अब आप अपने घर में इस कॉम्बिनेशन को कॉन्फिडेंटली
स्पेशली ट्राई कर सकते हैं और अपनी ईद को और भी खास बना सकते हैं। हर लम्हा एंजॉय करिए और अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए साहब, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, लेकिन जाने से पहले बस इतना कहूंगा कि अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट कीजिए, अपने घर को प्यार से भरिए, अपनी टेबल को टेस्ट से और अपने दिल को शुक्र से। मटन कलेजी और शाही टुकड़ा का ये कॉम्बिनेशन इस ईद को और भी ज्यादा यादगार बनाए।

0: यही मेरी दुआ है। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और ईद के इस खूबसूरत मौके को पूरी खुशी के साथ एंजॉय कीजिए। दोस्तों, जिंदगी का असल मजा इसी में है कि हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें, उन्हें सेलिब्रेट करें और अपनों के साथ बांटें। आज का ये मील सिर्फ खाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक याद है, एक एहसास है जो आपके दिल में हमेशा रहेगा। तो इसी के साथ इजाजत ले लेते हैं भाई। प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी के भी मुंह में पानी आ रहा है बहुत तेज से, उनको भूख भी लगी आई है। उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक शहबाज भाई। और आप सभी को सरवर मिर्जा की जानिब से ईद की पुरखलूस मुबारकबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देश।
1: ईद किचन्स विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

सुनिए आरजे महवेश के साथ खास ईद प्रोग्राम रूहानी लम्हे, जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें, ईद के खूबसूरत पैगामात, सब्र, शुक्र, कुर्बानी और मोहब्बत के रूहानी पहलू। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अपनों के साथ सुनिए रूहानी लम्हे।

0: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: इस ईद सिर्फ कबाब और दावतें नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है। जानिए कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा डिशेस बिना गिल्ट के। इबादत और अपनों के प्यार के साथ स्मार्ट तरीके से सेलिब्रेट करें ईद के दूसरे और चौथे दिन शाम के 7:15 से। सुनिए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को इन द शो फिट एंड फेस्टिव, जहां ईद एंजॉय करेंगे फिटनेस के साथ।
2: ईद का जश्न ना ऐसा होना चाहिए कि दावत और लोग दोनों की कमी ना हो, तभी तो होता है हाउस फुल। अब दस्तरखान पे महफिल और किस्से और साथ में पकवान, ओए होए, यही तो बात है, यही तो है हाउस फुल। तो किस्से वाला जो पार्ट है ना, वो आप हमसे शेयर करें, बिकॉज यू आर वेलकम इन आर हाउस फुल ईद। ईद का खास प्रोग्राम ईद के चारों दिन शाम 5 बजे से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। जरूर सुनिए हाउस फुल ईद सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे महावश, एफएम 107 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी जिंदगी को खुशियों, बरकतों और सलामती से भर दे और आपके घर को अपनी रहमतों से मुनव्वर करे। आमीन।

नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए, आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहानहू व तआला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और FM 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लु आम वअंतुम बख़ैर।

अल्लाह की रहमतों और नेमतों से आपका घर हमेशा भरा रहे। इस ईद पर सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि अपनों के साथ मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। FM 107 की जानिब से मैं आपकी अमीता आप सभी को ईद उल अदा की दिली मुबारकबाद देती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107, दिल से।

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
1: Midnight Melodies only on FM 107, दिल से देसी।

इनसे कहो मुझे उस वक्त की कोई खबर न थी जब मलाए आला में झगड़ा हो रहा था। मुझको तो वही के जरिए से ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला खबरदार करने वाला हूं। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाओ। इस हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सब के सब सजदे में

गिर गए, मगर इबलीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया। रब ने फरमाया, ऐ इबलीस, तुझे क्या चीज उसको सजदा करने से माने हुई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से? उसने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मट्टी से। फरमाया, अच्छा तो यहां से निकल जा, तू मर्दूद है और तेरे ऊपर यौमुल जजा तक मेरी लानत है। जो बोला, ऐ मेरे रब, ये बात है तो फिर उस वक्त तक के लिए मुझे मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे उस रोज तक की मोहलत है जिसका वक्त मुझे मालूम है। उसने कहा, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा बजुज तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है। फरमाया, तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूं कि मैं जहन्नम को तुझ से और उन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता और न मैं बनावटी लोगों में से हूं। ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए और थोड़ी मुद्दत ही गुजरेगी कि तुम्हें इसका हाल खुद मालूम हो जाएगा।

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस किताब का नुजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाजिल की है, लिहाजा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो, दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए। खबरदार, दीन खालिस अल्लाह का हक है। रहे वो लोग जिन्होंने उसके सिवा दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं और अपने इस फेल की तौजीह ये करते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई करा दे। अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और मुनकरे हक हो। अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता बरगुजीदा कर लेता। पाक है वो इससे कि कोई उसका बेटा हो। वो अल्लाह है अकेला और सब पर गालिब। उसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है। वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है। उसी ने सूरज और चांद को इस तरह मुसख़र कर रखा है कि हर एक एक वक्ते मुकर्रर तक चले जा रहा है। जान रखो वो जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर वही है जिसने उस जान से उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नरोमादा पैदा किए। वो तुम्हारी माओं के पेटों में 3-3 तारीक पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है। यही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है। बादशाही उसी की है, कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। फिर तुम किधर फिराए जा रहे हो।

उससे शदीद तर है। काश ये लोग जानते, हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालें दी हैं कि ये होश में आए। ऐसा कुरान जो अरबी जबान में है, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, ताकि ये बुरे अंजाम से बचे। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक शख्स तो वो है जिसके मालिक होने में बहुत से कज खुल्क आका शरीक हैं, जो उसे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, और दूसरा शख्स पूरा का पूरा एक ही आका का गुलाम है। क्या इन दोनों का हाल यकसा हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें भी मरना है और इन लोगों को भी मरना है। आखिरकार कयामत के रोज तुम सब अपने रब के हुजूर अपना अपना मुकदमा पेश करोगे।